0: कि मेरे मेरे को कितने लोग समझ पाए, वो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं कि कितने लोगों ने मुझे समझा, कितने, कोई लोग मुझे भगवान कहते हैं, कोई लोग मुझे गुरु कहते हैं, कोई लोग मुझे कुछ कहते हैं, पर एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमारा हमारी सोल, हमारा मतलब कि वो, ये इसका निचोड़ ये है कि भगवान, दुनिया और इंसान एक ही है। कोई भगवान हमें नजर नहीं आ रहा। भगवान ने तो ये बोला है, शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक सोल है। उस सोल को नर्चर करने की जरूरत है, उस सोल को पहचानने की जरूरत है, उसके ऊपर अपने एक्शंस निर्भर करने की जरूरत है। उन एक्शंस को हम किस तरीके से करें कि उस सोल पे चोट मत पहुंचे। एम आई राइट? तो फिर क्या हुआ, भगवान, दुनिया और जो हम इंसान हैं वो अलग नहीं है, वो एक ही है। पर डिफरेंसेस किसने क्रिएट करे हैं? हमारी सोच ने और हमारे एक्शन ने। बस दो ही चीजें हमारी लीडरशिप में काम आती हैं, एक हमारी सोच और एक हमारा एक्शन। हमें वो आसमान पे भी पहुंचा देता और मिट्टी में भी मिला देता। बस इनको पकड़ के हम चलेंगे तो हम बहुत हाई लेवल के लीडर्स बन जाएंगे, क्योंकि लीडरशिप क्या है? डूइंग फॉर अदर्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, दैट इज द स्टेटमेंट। व्हेन वी से व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हमारा सिर अपने आप झुकता है। और अगर हम बोलते हैं कि व्हाट यू हैव डन फॉर मी, तो हमारा सिर ऊपर करके बोलता है। ये बॉडी एंड एक्शन का सिंक्रोनाइजेशन है थॉट प्रोसेस के साथ। तो मैं अब सेशन को क्लोज इसी से करूंगी कि अगर हम हर इंसान में भगवान को ढूंढने की कोशिश कर दें, तो हमारी सब त्रुटियां जो हैं, जो हमारी सब मिस्टेक्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी आस्ता आस्ता, और हम एक ट्रू लीडर के रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से टुडे। अब वी कैन डिस्कस फॉर 10 मिनट्स। किसी के कोई कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, या कोई पूछना चाहता है कुछ, या और कुछ कहना चाहता है, तो मैं उसके आंसर देने के लिए तैयार हूँ।
1: थैंक यू सो मच मैम। कर्मा का पाथ जो डेली कुछ ना कुछ मिस हो जाता है उसको क्लियर करना है, बहुत अच्छे पॉइंट्स। कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है मैम, 100% श्योर।
0: हाँ, सबसे
1: ऐसा
0: होता
1: नहीं
0: है,
1: है कि
0: मेरे
1: नहीं
0: से भी
1: होता
0: होता है, मेरे से
1: जी।
0: भी होता है। मैं कोई हार्डकोर वो नहीं हूँ, प्योर, मेरे से भी होता है। पर जब तक हम इसको बात
1: रिवाइज
0: में नहीं लाएंगे, बातचीत में नहीं लाएंगे, हम इसको अनुभव नहीं करेंगे, हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम रास्ते से भटक जाएंगे।
1: लेकिन आज से डिस्कस करने से एक चीज ऐसी और एड ऑन हो जाती है, जैसे एक नेगेटिव हटाया, पॉजिटिव एड ऑन किया, कभी ट्रुथनेस एड ऑन किया। तो ऐसी बात आपका जब हम बताते हैं ना मैम, तो सच में कोई ना कोई पॉइंट लाइफ में ऐड हो जाता है। इट्स रियली वेरी थैंकफुल टू यू। पर मेरा थोड़ा सा आवाज खराब हो रहा है, सो सॉरी फॉर दिस।
0: नहीं, ठीक
1: थैंक
0: है।
1: यू मैम, बहुत
0: हाँ, बस
1: अच्छा
0: मुझे
1: लगा।
0: ये है कि ये चीजें हम रोजमर्रा डिस्कस करें
1: जी
0: और प्रैक्टिस करें, तो लाइफ में बहुत कुछ हम चेंज ला सकते
1: जी
0: हैं।
1: मैम,
0: रास्ते
1: जी
0: अपने आप खुलते हैं,
1: जी
0: बहुत
1: मैम, अपने आप
0: बहुत
1: सबसे
0: अपने आप
1: अच्छी
0: खुलते
1: पॉइंट
0: हैं।
1: यही है कि अगर किसी के लिए कुछ भी छोटा सा किया जाता है तो अपने आप झोली में आ जाता है। सबसे मेन पॉइंट आपका यही है। थैंक यू मैम, थैंक यू
0: बिल्कुल।
1: सो मच।
0: ओके, थैंक यू ज्योत्सना।
1: थैंक यू।
0: एनीबॉडी एल्स?
2: मैम, आप एक नए वर्ड पे के माने जाने जो कंपैशन है।
0: हाँ जी, करुणा, उसका हिंदी
2: जी,
0: मतलब है करुणा।
2: एक
0: हाँ
2: वर्ड के बहुत सारे मायने आज आपके जरिए जान दिए।
0: हाँ ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। मैं साथ में ये भी कह रही हूँ, बी अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग। बट वही मैंने बोला ना कि चैलेंज को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं। चैलेंज को हम लड़ के रिजॉल्व कर रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज में रिजॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिव सोच से कर रहे हैं, या हम पॉजिटिव होकर अपनी करुणा पर्सनालिटी से, कंपैशन से उस चैलेंज को रिजॉल्व कर रहे हैं. दिस इज द डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड. और कोई?
2: नमस्ते मैम, जय
0: नमस्ते.
2: बरानिया मैम।
0: थैंक
2: बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला लीडरशिप के संबंध में। एक्चुअली अभी हम सोचते हैं, और मैं अभी फिर वापस जब रीड से जुड़ा तो मुझे भी ऐसे फील हो रहा था, या मैंने अपने दिमाग से ऐसे सोचा कि भाई मुझे तो हायर किया गया है कि बच्चों को मुझे कंप्यूटर सिखाना है या महिलाओं को मुझे कंप्यूटर सिखाना है। तो इस थॉट प्रोसेस से मैं नहीं कह रहा था अभी तक कि एज ए लीडरशिप, क्योंकि मैं पहले भी संस्था में काम कर चुका हूं तो कुछ तो है लीडरशिप के इनपुट से, लेकिन इस बार मैं उस सोच से नहीं गया। लेकिन आज के आपके सेशन से मुझे लग रहा है कि मैं अगर इस सोच के साथ जाऊं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, और अपने सोल की सुन के कि भाई कहाँ गलती हो रही है, मैंने अपने टास्क को कैसे प्लान नहीं किया, मेरा दिन आज कैसे कैसे कैसे कैसे करना है, और मैं कुछ सिखा रहा हूं तो कितने लोग उससे लाभ होंगे जो कल को जब मेरा ग्रेटफुल करेंगे वो लोग कि हाँ विजय जी तुमने मुझे ये सिखाया। हालांकि मैंने इतने ट्रेनिंग्स किए इस मेरे संकल्प संस्था में, तो लोग जो मेरे साथ यूथ जुड़े हुए थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी, आज कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो लोग मुझे जब भी मिलते हैं तो बहुत थैंकफुल कहते हैं मैम। लेकिन कभी इस तरह से जो आपने आज लीडरशिप की जो टेक्निक्स बताई ना मैम, ये मैं आज मतलब मेरा बहुत सारा इम्प्रूव हो गया कि मुझे एक्चुअली लीडर बनना है, तो मुझे अभी मेरे अंदर क्या क्या कमी है वो सारे मुझे ठीक करने मैम। सो आज का सेशन
0: सो
2: बहुत अच्छा रहा मैम।
0: नाइस विजय. अब मैं नेक्स्ट आपको जब मिलूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी, दिसंबर में आई विल कम टू बारान. आई डेफिनेटली मीट यू. मैं आपको बुलाऊंगी, आपसे मुलाकात करूंगी. तो मैं उस लीडर को देखना चाहती हूँ
2: जरूर
0: जिसको
2: मैम,
0: मैंने
2: जरूर
0: 10 साल पहले देखा था. एक छोटा सा बच्चा जो जिसमें पैशन था कुछ करने का, और
2: जी
0: वो
2: मैम,
0: पैशन से इस लेवल तक पहुंच गया है, और आगे वो लीडर कैसे. देखिए मोती जी हजारों यूथ को एम्पावर करके गए हैं, है ना. पर हमने तो उनका उनके जैसा लीडर बनना है. दैट्स व्हाई
2: उनके जैसा
0: मैंने तो
2: बनना।
0: आपको सुप्रीम चीज का एग्जाम्पल दिया है कि हमने भगवान को देखा नहीं है, भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं. कल को हम भगवान, इंसान और दुनिया अगर एक हो जाएगी तो बुराई तो अपने आप ही निकल जाएगी, है ना.
2: मेरे साथ रेबा है मैम।
0: नमस्ते. नमस्ते रेबा.
3: मैं आपसे मिली थी आज से कम 15 साल पहले, जब फर्स्ट में रेड इंडिया शुरू हुई थी, चारुदी के साथ आई थी कंप्यूटर
0: हाँ
3: लेने।
0: जी,
3: तो
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी.
3: मैं अपने आप को बहुत बड़ा लीडरशिप मानती हूँ, क्योंकि चारुदी की तरह आज बोल रहे थे आप। मैंने विजय से कहा है कि उनको देख के मैं एकदम से इमोशनल हो गई, मैं कि आज चारुदी की शक्ल आ गई मेरे सामने, है ना। तो
0: मुझे
3: क्योंकि मैं
0: बारा
3: लीडर,
0: में सब लोग कहते हैं, मैं जहां भी जाती हूँ मुझे कहते हैं आपको देख के हमें चारू जी की बहुत याद आती है.
3: हाँ, तो क्या है कि आज मैंने लीडरशिप, तो मैं संस्था छोड़ने के बाद भी मैं लीडरशिप की तरह काम कर रही हूँ। मुझे मुझे कंप्यूटर सिखाता था तो मैं कहती ऐसा नहीं ऐसा, तो गुरु मेरा, लेकिन मैं कहती ऐसे। लेकिन आज जो दी आपने बताया ना कि वास्तविक एक लीडरशिप में किस तरीके के गुण होने चाहिए, वो वास्तविकता है कि हमारे दिन का प्लानिंग कैसे हो और किस हिसाब से हमें तीनों चीज को मिला के काम करें, ये बहुत बहुत ही जरूरी है, तभी हम कहीं ना कहीं अपनी छवि बना पाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ
0: मैं आप सबको एक और भी रिक्वेस्ट करूंगी. देखो मैं जो बोलती हूँ ना, मैं एक्सटेम्पोर बोल जाती हूँ, कहीं से थोड़े बहुत नोट्स लिख लिया या कुछ. आप प्लीज अपनी डायरी बनाइए जरूर. चार पांच लाइंस जो आप इस सेशन से लेकर जा रहे हैं ना, उसको लिख डालिए, और वो डायरी आपका एक मिरर बन जाएगी. आप कभी भी 2 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आप उनको उसको पढ़ेंगे ना, और किसी को पढ़ने के लिए देंगे, शायद बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा.
2: राइट मैम,
0: हाँ आप जरूर लिखिए. ठीक है, ठीक है विजय.
2: मैं
0: थैंक यू. हाँ जी.
2: थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जैसे विजय सर ने बोला ना अभी कि जैसे हमें कोई दूसरों को सिखाकर खुशी मिलती है बहुत, तो मैं उसका एक गीता जागता उदाहरण हूँ कि जब मैं भी ईट से जुड़ा था, तो फर्स्ट टाइम संकल्प के थ्रू जुड़ा था, तो उस टाइम मुझे आईटी के क्षेत्र में कुछ नहीं आता था।
4: तो मैंने भी विजय सर से बहुत कुछ सीखा था, और शुरुआत विजय सर ने की थी, और कंप्लीट जो मुझे किया है आईटी के क्षेत्र में या ट्रेनिंग्स में या जो भी आप लीडरशिप की है लाइफ स्किल ट्रेनिंग है, तो वो पूरा कुछ रीड ने पूरा कर दिया।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। और तुम तो लीडर हो ही अपने में, बहुत कुछ सिखा रहे हो लोगों को। बस ये थोड़े पर्सनालिटी ट्रेट्स हम अपने में अगर कॉन्शियसली इनग्रेन कर लें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो मेरे में सब ट्रेट्स हैं, नहीं। एवरी डे इज अ रिमाइंडर फॉर मी टू पॉलिश माई सेल्फ, टू हैव अ गुड डे फॉर मी, टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। वो क्या है कि जहन में बिठाना बहुत जरूरी है। जब हमारे जहन में बैठ जाता है ना, तो हमारे एक्शन हमेशा हमारा दिल उसको कंट्रोल करता है। तो आप सब लोग डायरी बनाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, जिससे आपको फायदा होगा, आप रेफर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, विथ दिस आई कंक्लूड द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थोड़ा हैवी टॉपिक था पर मुझे अच्छा लगा आप सब लोगों से शेयर करने के बाद, और हैवी बोलने में था, मैंने बहुत सारे नए वर्ड्स यूज करे थे यहाँ पे, बट बहुत सिंपल है अपनी लाइफ में इसको उतारना। ठीक है, और कोशिश से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट वीक, हम फिर मिलेंगे। ठीक है,
4: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू मैम।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं महान जनजातीय नायक टंट्या भील का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे

अगर तुम आना चाहो हमारी धरती पर, तो आओ बादलों की तरह और हरी कर जाओ हमारी कोख। अगर तुम आना चाहो हमारे जंगलों में, तो आओ वसंत की बयार की तरह और सूखी टहनियों में भर दो कोंपले। अगर तुम आना चाहो हमारी नदियों पर, तो आओ पंडुकों की तरह और अपनी चोंच से इसकी धार पर संगीत छोड़ जाओ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे आने पर, तो पहाड़ों से उतर आएंगे हमारे देवता आग बरसाने के लिए। हमारे पुरखों की पवित्र आत्माएं उठ खड़ी होंगी अपने सीने का पत्थर हाथ में लिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हमें सामने खड़ा पाओगे तीर धनुष और हाथों में कुल्हाड़ी लिए। हमारे संस्कारों में नहीं है कुछ भी धोखे से प्राप्त करना। कुछ ऐसी ही हुंकार थी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उस जनजातीय समाज की, जो उनके जल जंगल और जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र लगातार रच रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए युद्ध का शंखनाद करने वाले ऐसे ही जनजातीय महानायक थे टंटिया भील, जिन्हें अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिनहुड कहकर पुकारा। निमाड़ अंचल के घने जंगलों में पले बढ़े टंटिया भील ने निर्धन और पीड़ितों के दुख दर्द को कुछ इस तरह से बांटा कि निमाड़, मालवा, धार, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जनजातीय समाज ने उन्हें एक लोक देवता की तरह अपनी चेतना में शामिल कर लिया। इन अंचलों में उनका जीवन चरित्र आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ गाया जाता है। टंटिया भील का जन्म सन 1842 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा अहीर गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनका लालन पालन उनके पिता भाऊ सिंह भील ने किया, जो एक कृषक थे। गांव में ज्वार के पौधे को सूखने के बाद लंबा और पतला होने के कारण तंटा कहा जाता है। बचपन से ही दुबला पतला और लंबा होने के कारण भाऊ सिंह के इस पुत्र का नाम टंटिया पड़ गया। पिता ने उन्हें लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने में प्रवीण कर दिया। युवावस्था आते आते काजलबाई से उनका विवाह कराकर खेतीबाड़ी की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। टंटिया गांव के युवकों में अत्यंत लोकप्रिय और उनके अघोषित नेता की तरह थे। गांव में छोटे बड़े सभी लोग उन्हें हृदय से प्यार करते और बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनकी वीरता, धीरता और न्यायप्रियता की चर्चा गांव भर में थी। टंटिया के ऊपर दुख का पहाड़ तब टूटा जब इधर पिता की मृत्यु हुई और उधर भीषण अकाल पड़ा। पेट भर भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो गया था। 4 वर्षों का लगान देना शेष रह गया। ये वो समय था जब किसान ये महसूस करने लगे थे कि सरकार जमीन की मालगुजारी के नाम पर उनकी उपज का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे ले लेती है। सरकार का समर्थन उन लोगों को था जो किसानों का शोषण करते, मनमाने ढंग से उनकी जमीन छीन लिया करते थे। जब कभी किसान इस दमन के खिलाफ खड़े होते तो पुलिस और सेना कानून व्यवस्था के नाम पर उन्हें कुचल दिया करती। भाऊ सिंह के भलेपन और भोलेपन का बड़दा में बहुत सम्मान था। टंटिया के साहसी कारनामों की जानकारी भी मालगुजार को मिलती रहती थी, इसलिए वो टंटिया को अपने अधिकार की भूमि से बेदखल करने के बारे में बहुत पहले से ही सोच रहा था। भाऊ सिंह की मृत्यु को उसने इसका अच्छा अवसर जाना। टंटिया लगान देने में असमर्थ थे, लेकिन वो इतने स्वाभिमानी थे कि कृषक से मजदूर बनकर इसी गांव में काम करना टंटिया को स्वीकार्य नहीं था। ऐसे कठिन समय में उन्हें याद आया कि पोखर गांव में भाऊ सिंह और उनके मित्र शिवा पाटिल की भागीदारी की कृषि भूमि है, जिस पर शिवा पाटिल ही खेती करते हैं। भाऊ सिंह और शिवा पाटिल के बीच इतना गहरा प्रेम था कि भाऊ सिंह ने कभी न तो भूमि के आय व्यय की ही जानकारी रखी और न ही उपज से कभी अपना हिस्सा ही लिया। टंटिया भील ने अपनी पत्नी काजलबाई और पुत्र किशन को अपने ससुराल घाटखेड़ी छोड़ा और पोखर गांव की ओर चल पड़े। यही वो प्रस्थान बिंदु था जहां से टंटिया के जीवन की सारी उथल पुथल आरंभ हुई।

अपनी पैतृक भूमि पर शिवा पाटिल के साथ खेती किसानी कर सुखपूर्वक जीवन यापन करने का स्वप्न लिए टंटिया भील पोखर गांव पहुंच गए। शिवा पाटिल ने उनका आदर सत्कार तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन एक सप्ताह बीत गया, टंटिया जब भी भूमि पर काम करने की बात करते शिवा पाटिल उसे टाल जाता। अंततः शिवा पाटिल की मंशा जाहिर हुई जब उसने कह दिया कि इस भूमि पर सिर्फ उसी का अधिकार है, टंटिया चाहे तो यहां मजदूरी कर सकते हैं। शिवा के मुकरने के बाद टंटिया न्यायालय पहुंचे, लेकिन झूठे साक्ष्यों के आधार पर शिवा पाटिल की विजय हुई। ये अन्याय टंटिया को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लाठी लेकर अपने खेत पर गए और वहां काम कर रहे लोगों को मारकर भगा दिया, और इस तरह उन्होंने अपने खेत पर कब्जा कर लिया। इस पर शिवा पाटिल ने टंटिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने टंटिया को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा दायर किया। टंटिया भील को 1 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। जेल में कैदियों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होता था। ये सब देखकर टंटिया अत्यंत विक्षुब्ध हो गए। उनके मन में विद्रोह की भावना बलवती होने लगी। जेल से छूटने के बाद वो पोखर गांव में ही मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने लगे, किंतु वहां भी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया गया। गांव में कोई भी घटना घटती तो टंटिया को उसमें फंसा देने का षड्यंत्र रचा जाता। परेशान होकर वो पोखर से हीरापुर चले आए। शिवा पाटिल के लोगों ने यहां भी गांव वालों को टंटिया भील के खिलाफ भड़काया। 2 बार चोरी के झूठे आरोप में वो गिरफ्तार किए गए। जब तीसरी बार ये हुआ तो वो भाग निकले। वो समझ चुके थे कि अगर जिंदा रहना है तो इन लोगों से डटकर मुकाबला करना होगा। इस तरह लगातार होते अन्याय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वो योजनाबद्ध तरीके से अब आगे बढ़ना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वो खजूरी गांव के बिजनिया भील से मिले और उनके साथ आ मिला दौलिया। इन तीनों ने मिलकर गुप्त मंत्रणा की, योजना बनाई जिसे 3 चरणों में पूरा करना था। पहला चरण था अपने शत्रुओं से बदला लेना। दूसरा चरण था मालगुजार और पटेलों से लगान की रकम वसूल कर उसे गरीबों में बांटना। और तीसरा चरण था थानों को लूटकर हथियार प्राप्त करना और क्रूर अंग्रेज अत्याचारियों की हत्या करना। तीनों ने मिलकर अपने दल में अनेक क्रांतिकारियों को सम्मिलित कर लिया। इस दल का भरण पोषण लूट की रकम से होता था। इस दल ने सबसे पहले टंटिया के पोखर बस्ती के दुश्मनों को ठिकाने लगाना आरंभ किया। जिन जिन लोगों ने टंटिया को सताया था और उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी थी, उनसे बदला लिया गया। इसके बाद शिवा पाटिल, जिसने टंटिया को ये रास्ता अपनाने के लिए बाध्य किया, उसे समाप्त किया गया। पटेलों को घर से निकालकर बेघर किया गया, लेकिन कभी भी महिलाओं और बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई। उनके विद्रोही तेवर ने बहुत कम समय में ही उन्हें प्रसिद्धि दिलवा दी। अब उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा। टंटिया भील का दल एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता, लोगों के सुख दुख में सहयोगी बनता। किसे कब कैसी आवश्यकता है, ये टंटिया को मालूम होता था। लूट का सारा पैसा वो गरीबों में बांट देते, गरीब कन्याओं की शादी करवाते, लोगों की मदद कर वो चल देते दूसरे ठिकाने पर। जनजातीय समाज उन्हें टंटिया मामा कहकर पुकारने लगा। पूरे अंचल में ये विश्वास पैदा हो गया था कि टंटिया मामा के रहते कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। सेवा और पराक्रम की भावना ने उन्हें जननायक बना दिया। मालगुजारों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। टंटिया, बिजनिया और दौलिया को पोखर बस्ती में बुलाया और धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। हिम्मत पटेल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई और झूठी गवाही भी दी। तीनों को खंडवा की जेल में कैद कर दिया गया। जेल की कोठरी नंबर 7 में तीनों एक साथ रखे गए। इसी जेल की कोठरी नंबर 8 में टंटिया के 10 भील सेवक पहले से ही कैद थे। टंटिया के आते ही उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो जान गए कि अब जेल में होने वाली ज्यादतियों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। टंटिया ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा, अम तमरा आफत का दिन खत्म समझो, बखत देखी ना
हम सब यहाँ से संगात निकले चलंगा।

24 दिसंबर सन 1878 टंटिया को सजा हुए एक महीने का समय बीत चुका था। दूसरे महीने का ये चौथा दिन था जब साहस, शारीरिक क्षमता, सूझबूझ और बहादुरी की उस घटना को इन महानायकों ने अंजाम दिया जिसकी विश्व इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। टंटिया और उनके साथियों ने अपने कपड़ों और कंबल की रस्सी बनाई। दीवार के एक छोटे से छेद को नाखूनों से कुरेदते हुए इतना बड़ा सुराख बना दिया कि सभी साथी उससे निकल गए। कपड़ों की रस्सी के सहारे 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर बिना शोर शराबे के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 के सभी 12 भील कैदी फरार हो गए। टंटिया ने अपना वादा निभा दिया था। जेल में कोहराम मच गया। समस्त निमाड़ क्षेत्र में मालगुजारों की जान खतरे में पड़ गई। सन 1879 में जून महीने के अंतिम दिन टंटिया अपने दल के साथ भिनपान गांव पहुंचे और हिम्मत पटेल को उसके किए की सजा दी। इस लूट और हत्या के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई। उन्हें पकड़ने के लिए सरकार पर भारी दबाव पड़ने लगा। एक के बाद एक अधिकारी नियुक्त किए गए, लेकिन सभी को निराशा ही हाथ लगी। अब ये दल अपनी योजना के तीसरे चरण में था, अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना। टंटिया को पकड़वाने पर भारी इनाम की घोषणा हुई। टंटिया ने अपने दल को कई टोलियों में विभक्त कर दिया। एक टोली आज एक स्थान पर तो दूसरी टोली अगले दिन 20 मील दूर दूसरे स्थान पर और तीसरे दिन तीसरी टोली तीसरे स्थान पर धावा बोल देती। पुलिस इस तूफानी गति से परेशान हो उठी। अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई। अब अंग्रेजों ने गुप्तचरों और सादी वर्दी में पुलिस का जाल फैला दिया। दौलिया और बिजनिया गिरफ्तार कर लिए गए। टंटिया भील को इससे बहुत धक्का पहुंचा और उन्होंने बदला लेना आरंभ कर दिया। टंटिया भील ने अनेक अत्याचारी पुलिस अधिकारियों को मारा, वेश बदल बदल कर परेशान किया। वो इतने निर्भीक थे कि एक क्रूर अंग्रेज पुलिस अधिकारी के पास हजामत करने के बहाने से स्वयं थाने में पहुंचे और उसकी नाक काटकर उसे दंड दिया और निकल भागे। पुलिस देखती ही रह गई। सन 1878 से लेकर 1886 तक उन्होंने लगभग 400 लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। टंटिया का प्रभाव मध्य प्रांत से लेकर महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्र तक फैल गया। 11 वर्षों तक वो अंग्रेजों और शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। अब टंटिया के पास बिजनिया, दौलिया, हिरिया और मेदिया जैसे जांबाज साथी भी नहीं रहे। वो अब शिथिल से हो गए थे। 11 अगस्त सन 1889 श्रावण पूर्णिमा राखी के दिन गणपत ने अपनी पत्नी से राखी बंधवाने के लिए बनेर में अपने घर उन्हें आमंत्रित किया। अपने 6 साथियों को लेकर जब टंटिया अपनी मुंहबोली बहन के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही मौजूद सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ दिया गया। कड़े पहरे में उन्हें खंडवा से इंदौर होते हुए जबलपुर भेजा गया। टंटिया को जहां जहां से ले जाया गया उन्हें देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। जबलपुर न्यायालय में उन पर केस चला। 19 अक्टूबर सन 1889 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जंजीरों से जकड़कर जब न्यायालय से उन्हें जेल ले जाने के लिए बाहर ले जाया गया तब न्यायालय के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई थी। अपने टंटिया मामा की सजा पर भीषण कोलाहल के बीच रुदन की आवाजें गूंज रही थीं। 10 नवंबर सन 1889 को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स के अंक ने टंटिया भील की खबर छापते हुए उन्हें इंडियन रॉबिनहुड कहा। 4 दिसंबर सन 1889 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। माना जाता है कि इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी के पास उन्हें फेंक दिया गया था। यहां बने समाधि स्थल पर लकड़ी के पुतलों को टंटिया मामा की समाधि भी कहा जाता है। इस स्थल पर हर बार रेल के क्षणिक रुकने पर यात्रियों के बीच टंटिया मामा की प्रचलित और अप्रचलित कई कहानियां चर्चा का विषय होती हैं। उनके जन्म स्थान बड़दा अहीर में स्वराज संस्थान संचालनालय
संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक भव्य स्मारक का निर्माण करवाया गया है। ग्राम गढ़ी कोटहा में उनका एक मंदिर भी स्थित है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन ने 1,00,000 रूपये का जननायक टंटिया भील सम्मान भी स्थापित किया है, जो शिक्षा और खेल गतिविधियों में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रदेश के जनजातीय युवा को प्रदान किया जाता है। टंटिया मामा आज भी निमाड़, मालवा, धार, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की लोक स्मृति में उसी श्रद्धा और आदर के साथ उपस्थित हैं। नमन ऐसे अमर जननायक को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: I welcome everybody. This is a session on life skills. हमने पहले भी काफी सेशंस लाइफ स्किल्स पे करे हुए हैं, लेकिन जो अभी का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक तो एक्सेंचर का जो चल रहा है स्किल्स टू सक्सीड, उसके अंतर्गत भी और इन जनरल हमारे सभी सेंटर्स में हम लाइफ स्किल के सेशंस लगातार करते आ रहे हैं। तो ये जो सेशन है ये करीबन 10 भाग में बांटा जाएगा, ये जो पूरा सीरीज है। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है। वी विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, बिकॉज मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें जहाँ पे मैं सेशन दे सकूँ। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग बातचीत के जरिए कुछ ऐसी की स्किल्स को समझेंगे जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल स्किल्स हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उसमें वो काम आती हैं। तो शुरुआत करते हैं लाइफ स्किल्स से। सो व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स होती क्या है, कोई बताना चाहेगा हमें? लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, जो ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कि लाइफ स्किल्स, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? हम कोशिश करते हैं समझने की एक साथ। कोई भी, कोई सही या गलत आंसर नहीं रहेगा।
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर फ्रॉम रामपुर.
0: जी अकबर जी, मुझे पता था आप ही जवाब देंगे सबसे पहले।
1: नो, एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट
0: आई
1: सेशन
0: ऑल्सो
1: है
0: नो
1: लाइफ
0: दैट।
1: मेरा ये फर्स्ट सेशन है लाइफ स्किल्स पे. मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है इस पे, लेकिन मुझे इस नाम से थोड़ा सा लगता है कि लाइफ स्किल्स वो स्किल्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, जो डेली हमारा रूटीन रहता है, हम लोगों से मिलते हैं और जो भी हम इंटरेक्शन रहता है, कल्चरल हैबिट्स हैं हमारी, तो उसमें जो काम आने वाले स्किल्स हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, सोसाइटी से मिलना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उन तक बात पहुंचाना, तो उसके जो हमारे काम आने वाले स्किल्स हैं, हम उसको लाइफ स्किल्स शायद बोलते हैं.
0: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत हद तक हम इसी को कहते हैं। कोई और ऐड करना चाहेगा? अकबर ने जो कहा, थैंक यू अकबर।
1: वेलकम मैम.
0: किसी और ने अनम्यूट किया था अभी? तना
2: हेलो. हाँ जी मैम, मैं चांद खान बोल रहा हूँ.
0: जी जान बताएं।
2: मैम, जैसे कि लाइफ स्किल्स को मैं भी पहली बार सेशन ले रहा हूँ, तो इसमें कि मेरा एडिसिक जैसे कि लाइफ के बारे में कुछ, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है हमें, किस तरीके से अपने आपको मेंटेन करना है, तो उन चीजों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि मेरा पहला सेशन है और इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी इस चीज के बारे में.
0: जी, तो बिल्कुल सही आपने कहा। हम इसको बेसिक शब्दों में बांट सकते हैं। लाइफ मतलब जिंदगी, और स्किल मतलब वो कला जो जिंदगी जीने में या जिंदगी को आसानी से जीने में हमें हेल्प कर सके। तो अगर हम बहुत ही सिंपल वे में इसको समझें, तो जिंदगी जीने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें सीखने की जरूरत होती है। तो मोटे मोटे भाग में लाइफ स्किल्स को दो मेजर एरियाज में बांटा गया है। एक है हार्ड लाइफ स्किल्स, खाना खाना, चलना, बोलना, ये जो हम बचपन में सीख लेते हैं, जो बचपन में हम जैसे माइलस्टोन कहते हैं, अगर बच्चे का बर्थ होता है तो एक बर्थ चार्ट बनता है, उसका माइलस्टोन होता है कि अच्छा अब उसने इतनी उम्र में अपने आप खाना खाना सीख लिया है, इतनी उम्र में वो खुद से जाके अपने काम कर सकता है, चलना सीखा है। तो ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं ये हम शुरुआत में सीख लेते हैं। और किन चीजों की जरूरत होती है, हम खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, मान लीजिए हम कहीं अकेले हैं, हमें कोई खाना बना के देने वाला नहीं है, तो आज की जिंदगी में तो ये भी, अभी जैसे लॉकडाउन हो गया था, कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल अलग रह गए थे। मेरी मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे मेल थे, फीमेल्स को तो जनरली हम लोग सिखा देते हैं, बट क्या हम अपने मेल जनरेशन को भी सिखा रहे हैं खाना बनाना कि नहीं? ये है हार्ड लाइफ स्किल की, मतलब बेसिक चीजें, क्या हमें बेसिक क्या कहते हैं, तार लगाना आता है, बल्ब चेंज करना आता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हेल्प करती हैं, किसी और पे हम निर्भर ना रह सके, बेसिक जो हमारी चीजें हैं हम उन्हें पूरा कर सकें। तो ये हो गई हार्ड लाइफ स्किल। उसके अलावा होती है सॉफ्ट लाइफ स्किल्स, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। ये सॉफ्ट जो स्किल्स होती हैं इनको कुछ भागों में बांटा गया है, इनके बारे में हम जानेंगे, और फिर हर एक सेशन में एक लाइफ स्किल के ऊपर बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम खुद से भी पढ़ें। हमारी लाइब्रेरी में अगर कुछ किताबें हैं उस पर्टिकुलर लाइफ स्किल के ऊपर जिसमें हम आज के दिन पे बात करेंगे, तो अगले सेशन में आने से पहले हम कुछ ना कुछ उस पर नया पढ़ के आएंगे, और जो भी चाहें वो लोग शेयर कर सकते हैं। तो लाइफ स्किल्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो अभी हमने बात करी कि लाइफ स्किल्स होती क्या है, अभी उसी का हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हमें हेल्प किया लाइफ स्किल्स समझने के लिए. तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज टू अडैप्ट पॉजिटिव बिहेवियर दैट अनेबल्स ह्यूमन बींग्स टू डेवलप डील इफेक्टिवली विद डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग लाइफ. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज साइकोसोशल कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप कर सकें, और जो चीजें बदलती जा रही हैं, एनवायरमेंट जो रोज बदलता जा रहा है उसमें एक अडैप्टिव बिहेवियर यानी कि एक रेजिलियंट, जो चीजें बदलती जाती हैं उसके साथ हम बैठ न जाएं, अपने आप को चेंज करते रहें, लगातार चेंज करते रहें, ऐसी स्किल्स हमें अपने में डेवलप करनी है, जो हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, हमारे अंदर लीडरशिप लाएं, एक ऐसा सेल्फ इनिशिएटिव लाने का भाव अंदर आए, हम प्रोडक्टिविटी की तरफ काम करते रहें, चाहे वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी हो या प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी हो. और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव सोशल स्किल्स डेवलप हो सके, क्योंकि हम अकेले तो कहीं भी कुछ काम नहीं करते, हम जहां भी जाते हैं हमें आसपास लोगों से बातचीत करनी होती है, उनकी बातों को समझना होता है. तो हम कैसे इसको पॉजिटिवली अपने अंदर डेवलप कर सकें कि हम एक बेहतर तरीके से अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा सके. बहुत ही सरल शब्दों में ये जो डेफिनेशन है इसको बताया गया है. इसकी आप अगर नेट पे जाएंगे तो कई डेफिनेशंस हैं. तो जिस तरह मुझे लगता है कि जो सबसे सिंपल डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करी, शेयर करी है आप लोगों से. बट अगर आप चाहें, अगर आपको हिंदी में कोई डेफिनेशन मिलती है तो जरूर आप अपनी स्लाइड्स में इसे चेंज कर सकते हैं जब आप अपने बेनिफिशरीज के साथ इस पर चर्चा करेंगे. हमने बात करी लाइफ स्किल्स होती हैं जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर, अडैप्टिव बिहेवियर और रेजिलियंट बिहेवियर लेके आता है. पर हमें ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हर वक्त जो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, हर वक्त हम किसी ना किसी सिचुएशन में रहते हैं, अगेन चाहे वो पर्सनल सिचुएशन है, घर की कोई सिचुएशन है, या प्रोफेशनल ऑफिस की कोई सिचुएशन है, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है, उसमें पहले से हमारे पास 3 काम थे, वो प्रोजेक्ट में एक दो काम और आ गए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये कैसे करेंगे. तो अब इन सब चीजों को सॉल्व करने की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ये लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती हैं. जो हमें मतलब ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर लाने की कोशिश करती है लाइफ स्किल्स की, जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद कार्य करें, दूसरे को ब्लेम ना करें या सिचुएशन को ब्लेम ना करें. हम जब दूसरों से बात करें तो एक पॉजिटिव वे में बात करें, ग्रुप ग्रुप की कोलैबोरेटिव वे में बात करें, और कॉपरेशन में बात करें. तो ये सब चीजें हमें डेवलप करने में लाइफ स्किल्स हेल्प करती हैं, इसलिए हमें ये लाइफ स्किल्स जानना जरूरी है. अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसे ले सकते हैं, अदरवाइज हम अब आगे पढ़ेंगे कि लाइफ स्किल्स होती क्या, कौन कौन सी लाइफ स्किल्स को किन भागों में डिवाइड किया गया है. जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ स्किल्स को कई कई डेफिनेशंस दी गई हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी सदियों से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है. तो इनको हमने कई अगर आप चाहेंगे, अगर आप अगेन कुछ किताबें पढ़ेंगे या कुछ रिसर्च करेंगे तो कई बहुत अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेंगी. लेकिन WHO ने 1999 में ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जो लाइफ स्किल्स को उन्होंने मेजर जो लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाइड की उनको इन 6 की एरियाज में बांट दिया था. तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको लेके चल सकते हैं, कुछ शब्द हमें डिफिकल्ट लगे तो हम उसका आसान वाला शब्द भी ले सकते हैं. तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन या फिर इंटरपर्सनल स्किल. दिस ब्रॉडली डिस्क्राइब्स द स्किल्स नीडेड टू गेट ऑन एंड वर्क विद अदर पीपल, पर्टिकुलरली टू ट्रांसफर एंड रिसीव मैसेज इधर इन राइटिंग और वर्बली. कहने का मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल. कम्युनिकेट हम कब करते हैं? जब हम किसी दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम वर्बली कर रहे हैं, नॉन वर्बली कर रहे हैं, या फिर हम लिखित में कर रहे हैं. जब हम वर्बली करते हैं तो हम डेफिनेटली किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा के प्रयोग में किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए उस पर हम बात करेंगे. अगर हम नॉन वर्बली कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कौन सी बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे कि अभी हमने बात किया था, कभी भी किसी ने बॉडी लैंग्वेज की बात करी तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करते हैं, हम उन पे भी चर्चा करते हैं। अब तीसरा तरीका है किसी से कम्युनिकेट करने का, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आज की टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रह गई है प्रोफेशनली। पर्सनली तो हम ये व्हाट्सएप और इन सब चीजों पे करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहे हैं तब किन चीजों का ध्यान हमें रखना है। तो ये चीजों को हम एक्वायर कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे स्लाइड में, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। बोलना तो हम सीख जाते हैं बचपन में, भाषा तो हम सीख जाते हैं, बट भाषा का सही प्रयोग और जो हम कहना चाह रहे हैं सामने वाले को सही तरीके से समझ में आए, जो जो मकसद है हमारा बात करने का वो दूसरे तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और किसी और को हर्ट ना करे, किसी की फीलिंग को या किसी के इमोशन को या किसी के बिलीफ को हर्ट ना करे। तो इन सब चीजों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर डाला जाता है। इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं। ये सबसे मुश्किल और यही एक स्किल है जो सबसे आसानी से भी एक्वायर हो सकती है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने बात करी कि एनवायरनमेंट जो है हमारा लगातार चेंज हो रहा है। अब लगातार चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में तो कुछ ना कुछ हर वक्त हमें लगेगा कि प्रॉब्लम ही चल रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो लाइफ, ये डिस्क्राइब करती है कि प्रॉब्लम को पहले समझें, उसे तोड़ें, उसे भागों में तोड़ें और उसका सॉल्यूशन या तो खुद या तो दूसरों की मदद से निकालें और उस पे हम एक्शन लें। तो ये भी एक कला होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हमारे पास गीता मैम का। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के हम अंदर तक जाते हैं कि कोई ऐसा इश्यू क्यों आया। वो इश्यू आने के बाद हम उस पे सोचते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और फिर हम सबको साथ में लेके उस पे एक एक्शन प्लान बनाते हैं और वो एक्शन प्लान पे हम अपना एक्शन लेते हैं। तो ये एक कला है जो कि जब आप एक लीडरशिप रोल में आते हैं, जो कि आप काफी लोग हैं जो अपने अपने सेंटर्स में लीडरशिप रोल निभा रहे हैं या निभाना चाहते हैं, तो ये कला सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप 10 लोग से ज्यादा लोगों के आसपास आपके लोग काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम्स से अपने आप को सेफ करके चल सकता है हमेशा। तो ये भी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे के आने वाले सेशंस में। क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो नए आइडियाज लेके आने में हेल्प करती है। ये हमारे अंदर होता है, हर हर इंसान के अंदर होता है, क्रिएटिविटी सभी के अंदर होती है, बट हम इसे और कैसे निखार सकते हैं ये भी एक कला है। सो क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो न्यू आइडियाज हैं। अभी हम जो सुबह एक कॉल कर रहे थे अब हमारे साउथ के सेंटर्स में, तो हम बात कर रहे थे कि जो रोज बच्चे आ रहे हैं सेंटर पे, ठीक है किताबें पढ़ के चले गए, ठीक है अब कंप्यूटर्स हो गए, ये एक रेगुलर रोजमर्रा की चीजें चल रही हैं। बट व्हाट इज द क्रिएटिविटी, व्हाट न्यू थिंग वी आर ब्रिंगिंग इन। सो अगेन दिस इज अ लाइफ स्किल दैट यू नो वी ऑल शुड हैव, सो दैट हमारा जो काम है वो कभी भी रिडंडेंट नहीं हो, हम न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेके आते रहें और हर वक्त कुछ ऐसा नया करें कि जो हमारी ऑडियंसेस हैं, यानी कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, उनको भी उन न्यू आइडियाज से या न्यू सर्विसेज से फायदा हो। बट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। कहीं भी आप काम के लिए जाते हैं बाहर या कुछ भी करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन इनोवेटिंग योर सेल्फ सो दैट कि आप एक जगह पे स्थिर ना रह जाए। वो कहते हैं कि खड़ा पानी जो होता है उसमें गंद जल्दी मतलब लग जाता है, गंदगी जल्दी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन पानी अगर बेहतर रहेगा तो उसमें कभी भी गंदगी इकट्ठी नहीं होगी। तो हमें हमेशा अपने आप को एक बहते हुए पानी की तरह, कीप मूविंग अहेड, व्हाट एवर वी आर थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं उसमें नयापन लेके आए। अगली लाइफ स्किल्स है सेल्फ अवेयरनेस या फिर एम्पथी। हम अपने आप को समझें, अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आए और हम ये समझें कि दूसरे कैसा सोच रहे हैं। एम्पैथी बहुत डीप

अपने किन शब्दों का इस्तेमाल करें कि आप अपनी बात सामने रखें भी और आपको गुस्सा या आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत भी ना पड़े और सामने वाले को आपकी बात समझ भी आ जाए। क्योंकि जब हम कोई बात अपने सामने वाले के यहाँ रख रहे हैं, उसे नहीं समझ में आ रहा, हम अपनी आवाज तेज करते हैं, वो कॉन्फ्रंटेशन होता है, प्रोवोकेशन होता है, उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। स्पेशली कहीं कई हद तक पर्सनल, जब हम आपस में बात करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ है या हम अपने बच्चे से भी बात कर रहे हैं या भाई बहनों से भी बात कर रहे हैं या अपने सुपीरियर से बात कर रहे हैं या अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, तो एजर्टिवनेस मतलब बात, अगर आपको लगता है आपकी बात सही है तो उन्हें किन शब्दों में लेके आए, इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, बट देन इट इज अ स्टेप अहेड, ये एक स्टेप अहेड है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल आज के दिन, आज के टाइम में है, इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है कि जो चीजें हमारे हमें सेटबैक्स लेके आ रही हैं या जो हमारे थ्रेड्स हैं के ऊपर, कोपिंग अप मतलब उनको पहले तो समझना कि हाँ ये ऐसा है, दूसरा उसको उसको अपने अंदर लेके आना, ठीक है अब इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे हम आगे ग्रो करेंगे, तो दैट इज अ रेजिलियंस एज अ की लाइफ स्किल। तो ये छह लाइफ स्किल्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं, कोई कुछ इस बारे में कहना चाहेगा, किसी का कोई एग्जाम्पल है तो वो शेयर कर सकते हैं, किसी भी छह इनमें से कोई भी छह में से उठा के हम किसी चीज पे भी बात कर सकते हैं, इफ समबडी वॉन्ट्स टू एड। मैंने पहले भी कहा था, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, वी आर ऑल लर्निंग अबाउट लाइफ स्किल्स टुगेदर, तो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर इनमें से कोई भी आप उसमें एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में, डिसीजन मेकिंग में, क्रिएटिव थिंकिंग में, किस तरह से आपको लगता है ये लाइफ स्किल हेल्प करती है या रेजिलियंस में, जो हमने छह लाइफ स्किल्स देखी हैं उनको हम अगर चाहें तो इन इनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लाइफ स्किल्स हैं ये सोशल स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स तो हम कहते ही हैं इनको, पीपल स्किल भी कहते हैं, पर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कह सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं और इंट्रापर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं। सबको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप कहीं फर्दर रीडिंग करते हैं या कुछ और किताबें हैं आपकी लाइब्रेरीज में पढ़ी इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, और जो हमने पहले देखे थे ये वाले, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ये कहीं ना कहीं इन बॉक्सेस में हमें फिट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अच्छा डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें हेल्प करेगी, इंटरनल स्किल्स में हेल्प करेगी, सोशल स्किल्स में हेल्प करेगी, पीपल स्किल्स में हेल्प करेगी। अगर हम रिलियंट हैं तो अगेन इंट्रा इंटरपर्सनल करेगी, इमोशंस के हेल्प करेगी, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो ये शब्दों में कंफ्यूज ना हो कि लाइफ स्किल माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। बट लाइफ स्किल्स सीखने से पहले या अपने अंदर लाने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग को उसके यू नो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाँ हमें अगर लाइफ स्किल एक्वायर करना है तो उसमें की इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। तो कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं मैंने यहाँ लिखी हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करिएगा। अगर लाइफ स्किल हमें सीखनी है तो पहले तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, वो जो कांट में से टी है उसे हमें काट के बाहर फेंकना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एक्वायर कर सकते हैं। इसमें भाषा का नहीं मायने है, हिंदी इंग्लिश तेलुगु तमिल कोई भाषा का मायने उतना नहीं है, मायने है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर भाषा में बहुत अच्छा बोल सकते हैं और कुछ जिनको भाषा तो अच्छी आती है लेकिन जब वो बोलते हैं तो मन नहीं करता है उनको सुनने का। सो कम्युनिकेशन स्किल इज अ स्किल व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज बट द वे यू कम्युनिकेट। सो इसी तरीके से हमें आई कांट डू इट में से टी निकाल के पहले तो फेंक देना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, हु एम आई। इस लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए करने से पहले हमें अपने आप से जरूरी है, पॉजिटिव सेल्फ इमेज होनी बहुत जरूरी है, ये हमें मानना बहुत जरूरी है कि मैं अलग

0: मैं एक भीड़ का पार्ट नहीं हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ऐसा दिखता हूँ या मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसी बोलती हूँ, मैं ये पहनता हूँ, ये पहनती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अलग हूँ, लेकिन मुझे अपने आप से प्यार है। अगर आप खुद से प्यार कर भी, यू विल बी बेटर एबल टू डिवेलप योर स्किल्स कि दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करें, क्योंकि लाइफ स्किल्स का मतलब ही यही है कि आप जब लोगों के अंदर हैं तो किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग आपकी बात को समझें भी, अडाप्ट भी करें आपकी आपके जो आपके जो भाव हैं या जो आपके थॉट्स हैं, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, एक कोई झगड़े का या लड़ाई का एनवायरनमेंट नहीं रहे। ये हमें प्रोफेशनल स्किल्स में बहुत हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए, या अपना जॉब रिटेन करके रखने के लिए। हम हमें ना कहना भी आना चाहिए, लेकिन ना कहने का भी तरीका होता है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज में हाँ ही कहें। अगर आपके आपके कोई आगे कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो आप नहीं कर सके, ठीक है, आपने हटा तो दिया, लेकिन ये नहीं है कि हर वक्त हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपको ये एनालाइज करना है कि करंट सिचुएशन में कहाँ पे ना कहना ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी राइट्स एज ए इंडिविजुअल या एज ए एम्प्लॉय चाहिए, और आपको राइट्स के साथ साथ ज्यादा जरूरी है कि ड्यूटीज भी पता होना चाहिए। जब आप एक वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपकी ये लाइफ स्किल आपको हेल्प करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या है मेरे वर्क एनवायरनमेंट में। चैलेंजेस आते रहेंगे, हमें उनको फेस करना है, और ये स्किल्स डेवलप करनी है कि हम ये चैलेंजेस को फेस कर सके। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, इसके लिए आपको बस एक पेन या पेंसिल चाहिए होगा और पेपर। जो हमने बात करी है पिछली स्लाइड में कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हु वी आर, और अपने आप से अपने आप में जो पॉजिटिव इमेज है वो लेके आना बहुत जरूरी है। तो ये दो मैंने सेंटेंसेस स्टार्ट करे हैं, लेकिन फिल आपको करने हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन वन ले सकते हैं या ऑप्शन टू ले सकते हैं, बट मैं किसी को भी रैंडमली पिक कर लूंगी एंड आई विल आस्क कि उन्होंने ऑप्शन वन लिया है या ऑप्शन टू लिया है, और इस सेंटेंस को कैसे पूरा किया है। ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं आपको हिंदी में इसके मतलब बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है, आई लाइक हु आई एम बिकॉज, मैं अपने आप को अच्छा लगता हूँ, मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि, यहाँ तक लिखा हुआ है, आगे आपने भरना है। ऐसी कौन सी चीज है आपके अंदर जो आपको अच्छी लगती है खुद में, वो आपको यहाँ पे लिख के पूरा करना है। दूसरा ऑप्शन है, आई फील हैप्पी व्हेन, आगे आपको पूरा करना है, मैं खुश होता हूँ या मैं खुश होती हूँ जब, जब के आगे आपको पूरा करना है। तो देन आई विल आस्क रैंडमली एनीबडी, सो आई रिक्वेस्ट, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है हिंदी या इंग्लिश समझने में, बिकॉज साउथ से भी लोग हैं, सो आई कैन रिपीट माई सेल्फ इन वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट, बट आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी रैंडमली पिकिंग अप द पार्टिसिपेंट्स। ओके, शैल वी स्टार्ट शेयरिंग आवर फीलिंग्स? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा?
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून
1: मैम, आविता कलकर सेंटर से। हेलो मैम।
0: जी जी बताएं, आपकी आवाज एको।
1: मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है और उसको सराहा जा रहा है, और मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मेरी मेहनत कामयाब होती है और जिस मकसद के लिए मैं मेहनत करती हूँ वो मकसद पूरा होता है, तब मैं बहुत खुश होती हूँ।
0: जब आपकी मेहनत आप कामयाब होती है तब आप खुश होते हैं।
1: जी मैम।
0: अच्छा ठीक है, थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे?
2: मैं आई स्पीक मैम, सीमा बात
0: हाँ जी
2: कर रही
0: सीमा
2: हूँ।
0: जी।
2: I have written, I like who I am because I give value to relationship, whether it is my professional relations or my personal, both. And I feel happy when I complete my target. Again, वो मेरे घर की कोई चीजों के हों या मेरे काम से रिलेटेड कुछ भी हो, जब मेरी चीजें पूरी हो जाती है तो आई फील सो रिलैक्स एंड आई फील सो हैप्पी फॉर दैट।
0: तो सीमा जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हैं जब जो आप इनमें यूज करते हैं, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है यू नो मेक यू स्ट्रॉन्गर, मेक यू हैप्पी, मेक मेक्स हेल्प्स यू मेक बीइंग हैप्पी और यू नो लाइक योरसेल्फ।
2: हेलो, Can you hear me?
0: Now we can hear you.
2: Hello, am I audible?
0: हाँ जी आप audible हैं.
2: Hello, थोड़ा network issues है मैम इधर थोड़ा.
0: Okay, no problem.
2: I use my presence of mind.
0: Presence of mind, okay. ओके वहां नेटवर्क इश्यू आ रहा है. वी मूव ऑन टू समबडी एल्स. कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा इन दोनों ऑप्शंस में से? इसने क्या लिखा है
3: मैम? शैलजा हियर मैम.
0: जी शैलजा मैम.
3: मैम आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई एम रियली विद अ स्मॉल किड्स बिलो 5 years टू लिसन टू देयर ब्यूटिफुल टॉक दैट बेबी टॉक और व्हाटएवर इट इज. एंड आई आल्सो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई कैन डू समथिंग फॉर समबडी. इट कुड बी अ स्मॉल हेल्प और कुड बी अ स्मॉल एडवाइस व्हाटएवर इट इज.
0: व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्किल डू यू थिंक यू आर यूजिंग? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हेल्प? पॉजिटिव थिंकिंग.
3: आई डिडंट गेट यू मैम.
0: आप ऐसी कौन सी लाइफ स्किल यूज करते हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह की ऐसी एक एसेंस है आपके अंदर जो ये चीज आपको हैप्पी करती है?
3: I think it is something emotional, ma'am.
0: It's emotional. Okay, very good. Thank you.
4: Good afternoon, ma'am.
2: That can be joy of giving, ma'am.
0: Joy of giving.
3: Joy
0: very
3: of giving, yes.
0: Yes, yes.
4: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon, ji.
4: It's Divya.
0: Anji Divya.
4: I like who I am because I have some different abilities. Like, I can easily connect with people.
0: Very good, very good. इंटरपर्सनल स्किल है जो हमने सबसे पहली स्किल पढ़ी थी. आपको ये लगता है कि वो आपको मदद कर रही है इन सब इसको आपको पॉजिटिव इफेक्ट देने में?
4: Yes, ma'am, because whenever I talk with, I always use positive behavior, even politeness.
0: Okay.
4: Yes, ma'am.
0: All right. Thank you, Divya.
5: Good afternoon, ma'am. Ma'am, I feel happy when I'm teaching something to others, like social people, student, and center beneficiary. So the thing is, main thing is happy is teaching, ma'am. It includes social skill, interpersonal, and my personal skill, ma'am.
0: So आप खुश होते हैं? You are happy. Margaret ने कहा कि वो खुश तब होती हैं जब वो किसी को कुछ पढ़ाती हैं, जब वो एक इंटरपर्सनल स्किल को यूज करते हुए, सोशल स्किल्स को यूज करते हुए जो उन्हें आता है वो दूसरों से शेयर करती हैं. करेक्ट मार्गरेट?
5: यस यस यस मैम. यस मैम.
0: ऑलराइट थैंक यू मार्गरेट.
5: वेलकम मैम.
6: मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं किसी भी प्रॉब्लम हल ढूंढ लेती हूँ, चाहे पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो.
0: जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो आप अपने अंदर समझते हैं, रखते हैं, यही कहना चाह रहे हैं
6: जी.
0: ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आप जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो हमने एक स्किल पढ़ी थी, ये आपको लगता है ये सबसे स्ट्रांग है आपके अंदर. इसलिए जब भी आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आप उसे सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छा लगता है
6: जी.
0: ऑल राइट थैंक यू.
7: मैं बोलना चाहूंगा चांद खान
0: जी. बताए
7: मैम. आई फील हैप्पी व्हेन माय टारगेट एंड माय प्रॉब्लम सॉल्व एंड माय ऑफिशियल टारगेट कंप्लीटली.
0: जब आपका कोई टारगेट कंप्लीट हो जाता है तब आप खुश हो जाते हैं.
7: जी मैम. जी मैम.
0: ठीक है जी. ठीक है थैंक यू. कोई और बोलना चाहेगा कि हम आगे बढ़े?
8: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून.
8: हेलो मैम, देव सेंटर औरंगाबाद बिहार से बोल रही हूँ.
0: हाँ जी
8: मैम. मैं रीड इंडिया में टीचिंग ट्रेनर हूँ
0: जी.
8: और मुझे टीचिंग सिखलाने में, बच्चे को एडवाइस देने में बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है. फर्स्ट टाइम उन लोग बहुत नर्वस रहती हैं, उनको एडवाइस देकर हम बहुत उनका अच्छा फील करवाते.
0: पहले पहले आप कह रहे हैं आप नर्वस रहते थे और अब आपको लगता है आप अच्छे से कर पा रहे हैं?
8: हाँ यस मैम.
0: ऐसा क्यों हुआ? पहले नर्वस लगते थे, अभी अच्छे से कर पा रहे हैं? ये बहुत
8: बच्चे जो आते हैं मैम, स्टूडेंट जो आते हैं वो बस नर्वस रहते हैं, बट उनको हम समझाते हैं, जब फ्रेंडली बात करते हैं, जब फ्रेंडली सिखलाते हैं तो अच्छा लगता है, तो मिल घुल कर रहते हैं, वो बहुत खुशी मिलता है मुझे.
0: अच्छा, तो बच्चे जो आते हैं वो नर्वस होते हैं शुरू शुरू में, बट आपके साथ जब मिलजुल के काम करते हैं, सीखते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. तो आप करती है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में. All right, thank you so much. सो वील स्टॉप हियर टेकिंग मोर. हम यहीं पे रुकते हैं फीडबैक लेने के लिए. तो सभी ने ये बताया कि जब वो कुछ काम करते हैं, कोई पॉजिटिव काम करते हैं, तब वो या तो खुश होते हैं या उनको खुद में एक अच्छी फीलिंग आती है और वो अपने आप को पसंद करते हैं. हमें ये भी देखना है कि कोई काम नहीं होता तब क्या हम अपने आप को हेट करना शुरू कर देंगे? क्या अगर हमारा काम बिगड़ जाता है तो हम अपने आप को बुरा कहना शुरू कर देंगे? क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हमने सुने अभी, सभी ने ये बोला कि जब ये मैं कर लेती हूँ तो मुझे अपने आप को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नहीं हो पाएगा तब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी तब क्या होगा? कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपके उस काम में तब क्या होगा? तब आप अपनी इमेज, जो आपकी खुद की इमेज है, आई विल नॉट फील हैप्पी देन, आई विल नॉट लाइक हु आई एम देन. तो इन्हीं सब चीजों को हमें अपने अंदर लाना है कि बाहर की सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे आपका जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ इमेज है, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. उसे हमें ये देखना है कि वो एक सिचुएशन है जिसमें शायद हम और मेहनत करें तो वो सिचुएशन फिर से अच्छी हो सकती है. तो जब सब अच्छा हो रहा होता है तब तो हमें लगता है कि हम अब बहुत अच्छे हैं. जब हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं, हाँ बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप तो बहुत मेहनत करते हैं. लेकिन तब क्या है, किसी वजह से मार्क्स अच्छे नहीं आए, तब हम अपने बच्चे से क्या बोलते हैं? और कुछ शब्दों का हम यूज करते हैं. कोई काम नहीं होता, बनती बात बिगड़ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तब क्या होता है? उस वक्त भी हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है. ये एक सर्कल हमें बनाना है अपने आसपास, हर एक इंसान के लिए. आप अपने लिए बनाएंगे, आप अपने आपके जो सर्कल में लोग हैं उनको भी बताएंगे कि एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना बहुत जरूरी है लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए. अपने आप में ये बोलना कि मैं सक्षम हूँ, आई एम इनफ, मुझसे लोग प्यार करते हैं, आई एम लवेबल, आई एम ब्रेव, मैं हार्ड चीजें कर सकती हूँ, आई कैन डू हार्ड थिंग्स, मैं इन चैलेंजेस के लिए बना हूं या बनी हूं, मैं इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ, ऑल माय फीलिंग्स आर ओके, कोई भी अंदर मेरे फीलिंग आ रही है वो ठीक है, मैं इस चीज जगह को बिलोंग करती हूँ, मैं कोई बाहरी नहीं हूं, मैं इस जगह को बिलोंग करती हूँ, मिस्टेक्स मुझे हेल्प करते हैं सीखने में, मैं इन चार्ज हूं, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ एक सिचुएशन को, मैं इन चार्ज हूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ एक सिचुएशन को. ये एक सर्कल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक है जो हमें हर दिन तो करना ही चाहिए. खुद के बारे में खुद को एनालाइज करना चाहिए, क्या मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, क्या मैं टफ हूँ एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्या मैं अलग हूँ, क्या मैं खुश हूँ अपने आप से. क्योंकि जब हम अपने आप से खुश होंगे तब हम पॉजिटिव लाइफ स्किल्स अपने अंदर लेके आएंगे और हम मदद करेंगे दूसरों में भी ये लाइफ स्किल्स इनकल्केट करने के लिए. तो जब हमें लाइफ स्किल्स की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है कि लाइफ स्किल इम्पोर्टेंट क्यों है, और हमने वो 6 लाइफ स्किल्स पढ़ भी लिए हैं कि कौन से 6 लाइफ स्किल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं. सो टुडे वी आर टेकिंग फर्स्ट लाइफ स्किल, विच इज द कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल. कम्युनिकेशन स्किल की अगर बुक डेफिनेशन पढ़ी जाए तो बुक डेफिनेशन यही कहती है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है, यानी कि कम से कम 2 लोग चाहिए इस स्किल को यूज करने के लिए. इंटरपर्सनल स्किल दैट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद, इंटरैक्ट विद अदर पीपल. कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व्स आवर एबिलिटी टू टेक एन आइडिया और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड बी एबल टू कन्वे देम टू द अदर्स इन अ मैनर दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल. कहने का मतलब ये है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है जो हमारी एबिलिटी डिफाइन करती है कि हम कुछ आइडिया को, कुछ इंस्ट्रक्शन को या किसी बात को पहले तो समझें, उसे दूसरे तक पहुंचाने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें, और दूसरे को वो समझ भी आनी चाहिए. आपने कह दिया और दूसरे को समझ में नहीं आया, या आपने सही तरीके से नहीं कहा उसके बारे में और दूसरे को समझ नहीं आया, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बिल्कुल फेल हो जाती है. आपका कहना ही, आपका शब्दों का यूज करना ही जरूरी नहीं है, किस तरह से आप कह रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आप ये समझ रहे हैं कि सामने वाले को बात समझ में आ रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चीजें कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट रहती हैं। इसमें हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन भी हो सकते हैं। जब हम लाइफ स्किल की बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि यही एक स्किल है जो इंसानों के पास है, जो ये हम शब्द जो हम बातचीत करने की जो एबिलिटी है, ये सिर्फ इंसानों के पास ही है। जो हम एक जगह से, अभी मैं एक जगह से करीबन 70 लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये एबिलिटी जो है, ये हमें सबसे अलग करती है, चाहे वो कोई स्पीशीज है उससे अलग करती है, और विद इन ह्यूमन बींग्स में हम सेट अपार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग इतना अच्छा बोलते हैं, जैसे कि आपने वीडियोज देखे होंगे संदीप महेश्वरी के देखे होंगे, या फिर किसी गुरु के देखे होंगे, या फिर शिवानी बहन के देखे होंगे, या फिर किसी ओरेटर के देखे होंगे। कुछ लीडर्स आपको बहुत इंस्पायर करते हैं बोलते हुए, क्यों? क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग है। वो हर चीज को साथ लेते हुए, चाहे नॉलेज है उनको, एक से ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज रहती है उनको, और वो उस चीज को कैसे अपनी भाषा में, अपने बोलने के तरीके में उसे लेके आते हैं, वो एक कला है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, रीडिंग, जितना आप पढ़ेंगे, जितना शब्दों को समझेंगे, जितना दूसरे लोगों को सुनेंगे। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंस होता है सुनने की शक्ति का। जितना दूसरों को सुनेंगे, उतना आप कोशिश करेंगे ऐसी चीजों को पिकअप करने के लिए जो आपके अंदर अडेप्ट हो सकती हैं। ये स्किल बोथ प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल जगह पे यूज होती हैं। स्पेशली जो रिटन कम्युनिकेशन है, ये तो प्रोफेशनल में बहुत ही काम आती है। तो जब आप अपने बेनिफिशियरी से भी बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स रहेंगे, आप उनसे ये कहिए कि ये सेल्फ प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना इसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे, उतना वो प्रोफेशनली हमें हेल्प करती जाएगी। बहुत सारी किताबें हैं हमारी लाइब्रेरीज में भी, ऑनलाइन ई बुक्स भी अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए। बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, किस तरह से हम हाव भाव का, जो हाथ हम हिलाते हैं, आंखों का, हमारा आई कांटेक्ट कैसा है अपने ऑडियंसेस से, ऑडियंस चाहे एक हो, चाहे आप एक ही जन से बात कर रहे हो, बट जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंड करेगा आपकी बात को, तो किस तरीके से हमें बात करने, किन शब्दों का, ऐसे कौन से टॉप शब्द होते हैं जो इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट करने के लिए उनको यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है सेल्फ प्रैक्टिस से इस कम्युनिकेशन स्किल को हर रोज पॉलिश करने का। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है, सेल्फ प्रैक्टिस, लिसनिंग टू गुड स्पीकर्स हु इंस्पायर यू, चाहे वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, एनी अदर लैंग्वेज, हूसोएवर इंस्पायर्स यू, एंड किताबें पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो शीशे के सामने खड़े से 5 मिनट ऊंची आदत नहीं डालेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर। द मोमेंट यू नो यू स्टार्ट, आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए, फोन तो अभी सभी के पास है, आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए और उसमें अपनी आवाज सुनिए कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ सरल शब्द हैं, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से रख पा रहे हैं, एक ही बात को 10 बार बोलने की जरूरत पड़ रही है सामने वाले को समझने के लिए। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक येट मोस्ट इजिली एक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल, बट इसको जो पॉलिश करना है वो हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं, सुनने से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमें ओरली, रिटन कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं, अपने आप में आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, उसमें हमारी मदद करती है। तो जो बच्चे हैं जो जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, ये एक पहली स्किल होगी। कल मैम ने लीडरशिप सेशन में एक इंटरव्यू के बारे में बात करी थी, जो कि IAS के तैयारी के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसकी तैयारी के लिए हो रही थी। तो जब आपकी पहली बेसिक स्किल कम्युनिकेशन स्किल ही वीक रहेगी, आप अगला स्टेप नहीं ले पाएंगे। IAS या कोई भी बड़े एग्जाम्स जो होते हैं उसमें रिटन एग्जाम तो होता ही होता है बट ओरल एग्जाम भी होता है. क्यों? वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से बात रखते हैं. आप अगर कोई भाव को नहीं भी जानते, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो घबराइए नहीं. ना कहना भी सीखे कि हाँ मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ के या मैं समझ के आपसे इस चीज में बात करूंगा. बट उससे पहले वो कॉन्फिडेंस लेके आना अपने अंदर. यू हैव टू गो बैक टू द पॉजिटिव सेल्फ इमेज कि मैं, जरूरी नहीं है कि मुझे सब चीजों के बारे में पता हो, लेकिन जो मुझे पता है और जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, उसको मैं सरल भाषा में और साफ शब्दों में दूसरे तक ले जा सकूं. कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमें कॉन्फ्लिक्ट, किसी जो सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, सबसे ज्यादा हेल्प करती है. जो बड़े बड़े कंट्रीज में डिप्लोमैट्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो बोलते हैं कि ये तो बहुत डिप्लोमेटिक बात करता है. वो डिप्लोमेटिक रॉन्ग शब्द नहीं है. डिप्लोमेटिक मतलब कि दोनों साइड्स को या दो या तीन साइड्स की जो बातें हैं उनको समझना और बिना किसी के भाव को नुकसान पहुंचाए हुए एक एक सेंट्रल पोजिशन पे आना. तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हेल्प करती है. नेगोसिएशन में बहुत हेल्प करती है. किसी किसी सिचुएशन में जब आप पढ़ जाते हैं कि आपको इधर की बात भी सुननी है उधर की बात भी सुननी है, तो ये एक स्किल है जो बार बार काम आती है. कुछ किताबें हैं, मुझे नहीं पता ये लाइब्रेरी में है कि नहीं, बट ये किताबें ऐसा नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रही हूँ. मैंने इनके बारे में इनके पढ़े हैं तो मुझे लगी ये सरल भी है और ये हेल्प कर सकती है कम्युनिकेशन स्किल को, जो कि पहली लाइफ स्किल है एक्वायर करने के लिए और उसको पॉलिश करने के लिए. तो अगर आप चाहें आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं या फिर आप अपने बेनिफिशरीज को भी कह सकते हैं कि वो ये बुक्स रेफर करें. टेड टॉक्स जो है, बहुत सारे टेड टॉक्स हैं, आप बस उनको सुनिए. जब आपका फ्री टाइम होता है 5 मिनट, एक टेड टॉक को सुनिए, बहुत आपको पॉजिटिविटी आएगी आपके जो सिचुएशंस हैं लाइफ में. ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में. देयर आर मेनी मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एंड प्रोबेबली उनकी स्ट्रगल हमसे कई कई गुना ज्यादा है, बट वो कैसे उसको ओवरकम करके आए हैं. तो इन सब चीजों से बहुत बहुत हेल्प मिलती है जो ये चीज जो सेल्फ लोग अपने बारे में बात करते हैं जो कि टेड टॉक्स में है. तो अभी आज का सेशन हमारा कम्युनिकेशन लाइफ स्किल्स को समझने का था, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने का था, और अपने आप से पहले तो अपनी सेल्फ इमेज को क्लियर करना है कि क्या मतलब अपने आप में सेल्फ डाउट लाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं किसी से कम हूँ या मैं किसी से कम मतलब मेरी जो अपनी इमेज है, अपनी इमेज को सबसे ऊपर रख के उसको और किस तरह से निखार सकते हैं, वो लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती है. और हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो पहली लाइफ स्किल्स है उसके बारे में. सो इफ यू वांट वी कैन गो डीपर इनटू इट, बट आई वुड लाइक टू लीव इट हियर एंड आई वुड रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स से कि वो जाएं और कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ के, नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, हम पहले 5 मिनट कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे. तो अगर कोई लाइव एग्जाम्पल लाइव से देना चाहता है या कुछ किसी ने कुछ पढ़ा है उसके बारे में बताना चाहता है, सो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज ये सेशंस आपने आगे अपने बेनिफिशरीज को देने हैं. सो द मोर यू लर्न द मोर यू विल बी एबल टू यू नो डू जस्टिस टू द सेशंस. सो वी विल क्लोज द सेशन हियर, बट अभी भी हमारे पास 7 मिनट हैं और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं शेयर किया है, आई वुड रिक्वेस्ट somebody can share, उनको कुछ अच्छा लगा इसमें या वो कुछ ऐड करना चाहते हैं. Pam, would you like to add something? Do you think?
9: I was listening everything. It's a wonderful session and I would also like to mention here that life skills are day-to-day life. What we do, how perfect we are, how our behavior is and how our attitude is. So these all combination of all makes the personality, and that is the wonderful session. I would like to say that my only request to all everyone is that they must practice it, because this is purposely added into our program activities, because we don't want to focus on only livelihood, beauty and culture, education, because unless and until your personality is evolved, you will not be able to achieve anything. So these were very well thought of and added, and we are not the experts, as Smita has said, but hum isko kar rahe hain kyunki hum aapas mein baat cheet kar rahe hain aur isko hum apni soch ko us taraf bhi lekar ja rahe hain, right?
0: तो
9: ये वैल्यू भी ऐड करता है, हमारे काम में भी वैल्यू ऐड करता है, हमारी पर्सनालिटी में भी वैल्यू ऐड करता है. और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो सब इसकी बात कम्युनिटी के साथ करें. इसमें ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बढ़ता है, आपकी अपनी पर्सनालिटी का उनके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंक्रीज होता है, राइट? तो आप प्लीज इसको अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भी लेकर आइए, 10 मिनट इसके ऊपर बात करिए और कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलिए जो रिफ्लेक्ट करें कि हाँ आप एक बहुत ही वैल्यू ओरिएंटेड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल सेशन स्मिता, थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर
9: टेक केयर, बाय बाय.
0: All right. Thank you. Thank you, everybody. Bye-bye.

0: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026। तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
1: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ BSc एग्रीकल्चर के बारे में जानता था। मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
0: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटरनरी कॉलेज पहुंचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
1: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाई। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
0: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
1: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए 1 चम्मच एलोवेरा, 2 मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
0: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
1: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
0: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निःशुल्क हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुँचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
1: मैं दिल से खिलाड़ी हूँ, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूँ।
0: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: गुड आफ्टरनून, ऑल वेल, सब ठीक ठाक है?
1: यस मैम,
2: यस मैम।
0: टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीडरशिप। एवरीबॉडी इज अ लीडर, हर कोई लीडर है अपने अपने लेवल पे। एवरीबॉडी इज अ लीडर एट देयर ओन लेवल, वेदर वी से हाउस, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन। मैं यहाँ पे बोलूंगी कि हर कोई अपने घर में भी लीडर है, अपने समाज में भी लीडर है, और अपने रीड सेंटर पे भी लीडर्स हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें भी लीडर है। वॉट एवर इट इज, लीडरशिप क्वालिटीज तो सब में होती हैं, एंड वी हैव टू शार्पन देम, वी हैव टू नर्चर देम, and we have to practice leadership qualities. When we are saying that we have to practice leadership qualities, उसके कुछ कुछ दायरे होते हैं, कुछ norms होते हैं, what we say that we are the leaders. वो norms कोई define नहीं कर सकता है कि अगर मुझे leader बनना है तो अगर मैं ये 5 या 10 norms सीख लूँ तो मैं leader हूँ। No. The first is that you have to put yourself into their shoes. अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं और लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ग्राउंड से ऊपर जाना है। We have to start from the bottom and rise up the ladder. बहुत सारे आपने कार्टून्स भी देखे होंगे, जो मैनेजर होता है, जो जिसमें लीडरशिप नहीं होते, उसको काम ही करवाना है, तो वो एक टॉप पे खड़ा हो जाता है और नीचे ऑर्डर देते हैं कि आप काम कर लो। और जो लीडर है वो फर्स्ट स्टेप पे ही खड़ा होता है और हाथ पकड़ के सबको ऊपर लेके जाता है। समझ में आ गई? ये फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमारे वर्किंग पैटर्न में। लीडर्स को जो भी सर्कमस्टांसेस हमारे सामने हो तो हमें लर्न करना है, हमें सीखना है कि हम नीचे से ऊपर कैसे जा सकते हैं। और उन सर्कमस्टांसेस में सबके डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं। जो भी ट्रू लीडर्स हैं दे हैव टू लर्न टू राइज अबव ऑल द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा वहां पे रहेंगे। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी को घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को खेत में जाना है, किसी को घर का काम करना है, किसी के बच्चों का इश्यू है, किसी की फैमिली में कोई इश्यू है। बट शुड वी सकम टू ऑल दीज इश्यूज, बिकॉज देयर आर मल्टीपल इश्यूज अराउंड अस, राइट? एंड इफ वी कीप ऑन सेइंग दैट ओ गॉड वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी इश्यूज, हम हमेशा भगवान को ब्लेम करें कि भगवान मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही क्यों ये सब कुछ हो रहा है, मैं क्यों नहीं दूसरों की तरह आगे बढ़ रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आगे रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। रोड ब्लॉक्स क्या होता है कि हम अपने आगे एक बैरियर, एक एक दरवाजा बंद कर रहे हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में है। अगर 1000 समस्याएं भी है हमारे जीवन में और हम ये ठान लेते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सरकमस्टांसेस हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट वी थिंक, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस एंड व्हाट इज द डिटर्मिनेशन इन आवर, हमने अपने मन में क्या ठाना है कि हमको क्या करना है। मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि लीड सेंटर्स में इस बात से बहुत सारे लोग ऊपर उठ गए कि एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, बिकॉज आई नो दैट एवरीबॉडी रीड सेंटर्स में, खासकर महिलाएं, इस दायरे से बाहर आ जाए। और कोई लड़ झगड़ के नहीं, कोई फैमिली से अलग होके नहीं, या फैमिली से फैमिली को इग्नोर करके नहीं, बट यस दे हैव कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जो इस मेरी बात से एग्री करते हैं, आप प्लीज अपना अनम्यूट करके एक बार यस बोलिए। आई रियली वांट टू काउंट द यस यू पीपल असल।
2: गुड आफ्टरनून मैम,
0: ज्योत्सना, ज्योत्सना,
2: गुड
0: यस। नेक्स्ट
2: आफ्टरनून,
0: नेक्स्ट, हु इज हियर? प्लीज टेक योर नेम एंड से यस। आप अपना नाम लीजिए और यस बोलिए।
3: मैम माई सेल्फ सत्यम सिंह, यस मैम,
0: वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? जल्दी से, 5 मिनट में मैं बहुत सारे यस काउंट करना चाह रही हूँ।
2: यस मैम,
1: यस मैम,
0: कौन बोल रहा है? ओके, और जल्दी जल्दी।
2: यस मैम,
0: यस मैम, वेरी
1: रवीना
0: नाइस, वेरी नाइस,
1: भी ऐसे है मैम, बात तो सुन,
0: वेरी नाइस।
2: ये
0: और
2: बोला
0: यस मैम, यस, और
2: मैम,
0: वेरी नाइस। अब मैं किसी को ये बोलूंगी कि अपना कैमरा ऑन करके आप अपना कैमरा ऑन करके जो आज तक कभी नहीं बोले हैं वो बोलेंगे कि वो यस किसके बेसिस पे कह रहे हैं। एनीवन, मैं आई एम नॉट नेमिंग, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। आप अपना कैमरा ऑन करके बोले कि आप में ये हिम्मत कैसे आई कि आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है, उसकी आपने एक प्रण ले लिया है, एक ठान लिया आपने, वो मैं सुनना चाह रही हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले अपना कैमरा ऑन करेगा उसी को चांस दिया जाएगा। मुझे एक से ही सुनना है, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मैं ये आपको बाद में बताऊंगी, पर जल्दी से कोई भी अपना कैमरा ऑन करे और बोले कि ये कैसे आए।
3: मैं मेरी जो हिम्मत सबसे ज्यादा है वो मेरी माँ को देख कर आई, क्योंकि वो हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल रहती है और वो मतलब मल्टीपल काम्स कर लेती है एक टाइम में, तो उनसे सबसे बड़ी सीख मिली कि अगर वो बिना बैठे हम लोग के लिए कुछ कर रही तो हम लोग को भी कुछ बनता है कि उनको हम उनके लिए कुछ करें।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। और अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, राइट? अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे बढ़ के करेंगे, है ना?
3: यस मैम,
0: वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? इनको अपनी मदर से प्रेरणा मिली। आप और कोई बोलेंगे प्लीज? कोई ना कोई लाइफ में होता है जो प्रेरणा देता है।
4: हेलो मैम
0: हाँ जी,
4: जी, मैम नमस्ते। हाँ
0: नमस्ते मीना।
4: मैम, मुझे तो जो सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली वो आपसे और मोदी जी साहब दोनों से प्रेरणा मिली।
0: हाँ,
4: मैं अपनी
0: बहुत
4: लाइफ के रोल मॉडल हमेशा दो लोगों को मानती हूँ, एक मोदी जी सर थे और एक आप हो। आपसे मैम मैंने इतना सीखा है, मोदी जी से तो चलो मैंने काम करना सीखा था, पर काम के साथ साथ अपनी लाइफ लाइफ को भी कैसे बेहतर बनाए वो मैंने आपसे सीखा है। और कई बार मैं जब सोचती हूँ कि मेरे पास ज्यादा काम है या कुछ है तो मेरे को तुरंत आपका ध्यान आ जाता है कि मैम इतने सारे लोगों को साथ में लेके चल रही हैं और वो भी तो सब लोगों को लेके कर ही रही है ना, तो हम भी इंसान ही है तो क्यों ना हम भी एक कोशिश करें। और मुझे इतनी हिम्मत मिलती है मैम, मैं बता नहीं सकती। कभी मैं हॉपलेस होती हूँ और आपके बारे में जैसे सोचती हूँ कि नहीं मैम भी तो कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे एक पता नहीं एक ईश्वर का क्या हुआ है, मुझे ऑटोमेटिक एक ताकत मिल जाती है। ये एक बार नहीं 100 बार हुआ है।
0: वेरी गुड मीना, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मैं अभी इसका एग्जाम्पल मैं लिंक कर रही हूँ जो मैंने 5 मिनट पहले बात करी थी। मैंने मैंने ये बोला था कि सरकमस्टांसेस कुछ भी हो, प्रेरणा हमें लेनी है अपने आसपास के सरकमस्टांसेस को समझ के। तो मीना उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फतेहपुर से अभी somebody शेयर, मैं उनका नाम नहीं अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें जो इंटरनल आवाज आती है, जो हमारे दिल से आवाज आती है, वो एकदम सच्ची आवाज होती है और वही प्रेरणादायक भी होती है। हम बाहर से लोगों को अपना मेंटर मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, पर जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट, यू वांट टू से समथिंग? आप कैमरा के आगे बैठी हैं, कुछ कहना चाह रही हैं?
5: मैम हमको ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेरणा ना सना मैम से मिलती है, क्योंकि जब भी हमें कुछ लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं तो वो मेरा सपोर्ट पूरा करती है, इसलिए अगर हम किसी को मानते हैं तो वो मैम को मानते हैं।
0: वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और ये जो मैम ये जो लीडर्स रीड इंडिया के लीडर्स है ना, दीज लीडर्स आर द मेंटर्स फॉर ऑल ऑफ यू। यही लीडर्स मेंटर्स हैं, क्योंकि आप सना मीना मेनी पीपल आर देयर इन द रीड कम्युनिटी। और रीड का ना एक स्लोगन है, वन वुमेन वन फैमिली वन विलेज। एंड ये लीडर्स को बहुत पहले इसके बारे में सिखा दिया गया था कि आपने हर गांव में हर फैमिली में एक लीडर तैयार करना है, एंड वो उनका मिशन बन चुका है, वो उस मिशन को आगे लेके जा रहे हैं और उसी पे अपने फोकस हैं। और वो आप लोगों को ये बात बोलते नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना स्लोगन तो, वन वुमेन वन फैमिली वन विलेज, बट दे आर एट इट, दे आर वर्किंग ऑन इट। वो उसको एक मिशन के तौर पे आगे लेके जा रहे हैं और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर आज मैं सना या मीना को बोलू ना कि आप मुझे अपने गांव में हर फैमिली से एक लीडर का नाम दे दो, तो वो बना देंगे लिस्ट मुझे, और वो लिस्ट अभी मुझे चाहिए आप लोगों से। सना एंड मीना एंड ऑल अदर्स हु आर द लीडर्स इन दिस सेशन, प्लीज स्टार्ट मेकिंग दैट लिस्ट, ठीक है? और ये लिस्ट, हाँ ये लिस्ट मुझे अगर एक हफ्ते दिवाली तक अगर आ जाती है या 15 नवंबर तक भी आ जाती है, वो लिस्ट मैं पब्लिश करना चाहती हूँ कि ये लीडर्स हैं हमारे, जहां जहां रीड के सेंटर्स हैं ये हमारे लीडर्स हैं, और ये हमारे एल्यूमिनाई हैं। एल्यूमिनाई का मतलब पता है कि ये हमारे सेंटर से जुड़े हैं, इस सेंटर की ताकत ये औरतें हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है? तो आप मुझे जरूर उनके नाम देंगे और लिस्ट में उनके आगे उनके साइन भी कराएंगे, ठीक है? इज इट ओके?
4: यस मैम,
6: यस मैम,
0: हाँ। तो ये हम एक मैं मतलब कि जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, अपने वोटिंग राइट्स इकट्ठे करते हैं कि हमारे वोटर्स कौन है, हम वोटर्स नहीं इकट्ठे कर रहे हैं, हम चेंज मेकर्स इकट्ठे कर रहे हैं। कि अगर 10 साल पहले मीना मोती जी से सीख रही थी या गीता के कांटेक्ट में आई थी, आज वो 1000 लड़कियों को मेंटर कर रही है, उनके सामने एक लीडर बन के खड़ी है, तो हम क्यों ना हर परिवार में से एक महिला को चुने अपने गांव में जो लीडर का रोल प्ले कर सकती है। और ये जो मिशन है हम इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि जब तक ये मिशन के लेवल पे ये काम नहीं होगा तब तक हम सोशल चेंज की जो बात करते हैं वो नहीं आएगी, है ना? कहीं ना कहीं कोई ना कोई औरत के सामने मल्टीपल चैलेंजेस हैं और वो उन चैलेंजेस में खो जाती है, डूब जाती है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता है। पर अगर उन चैलेंजेस का हल निकाल के हम वहां से बाहर आ जाए तो उसकी दुनिया बदल जाती है, उसको एक मिशन मिल जाता है कि वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाती है और वो उस मिशन पे चलने के लिए तैयार हो जाती है। ये इसका निचोड़ है, राइट? तो आप लोग एग्री कर रहे हैं जो मैंने कहा है, और इससे मेरा काम भी आसान हो रहा है, क्योंकि मुझे रीड इंडिया ने कहा है कि पूरे भारत में औरतों की एल्यूमिनाई के नाम हमें दो जो वुमेन लीडर्स हैं, और आप लोग मेरी मदद करेंगे उन लिस्ट बनाने में। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे पास 50,000 नाम आएंगे, पर मुझे लगता है ये नाम 1,00,000 से ऊपर जाए, जो मेरी समझ में आ रहा है। और फिर मैं एक और बड़ा सेमिनार करूंगी जिसमें हम इन सबको बुलाएंगे और बोलेंगे देखिए हमारे देश के लीडर्स, राइट? तो आप ये जरूर करिएगा, इसमें बहुत आपको भी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, रीड इंडिया को भी होगी, और जो औरतें आपके साथ जुड़ेंगी उनको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट ये हो गया कि कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो हमें आगे बढ़ना है, और सेकंड चीज क्या है कि हमें अपनी सोच को बदलना। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। सोच कैसे बदली जाती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात को लेके अपने परिवार में बहुत परेशान हूं, ठीक है? अगर मैं उस परेशानी से घर में बैठ जाऊं, छुट्टी ले लूं, अपने चार पांच लोग जो मेरी बातें सुनते हैं उनके सामने मैं वो बातें करना शुरू कर दूं, और मैं अपने आप को बहुत वीक समझना शुरू कर दूं, और मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि मेरी जिंदगी बस अब खत्म है, तो वो एक नेगेटिव थॉट मेरे को घेर रहा है। मेरे को उस नेगेटिव थॉट से बाहर आना है। बाहर कैसे आना है कि मैं 10 औरतों को देखूं, उनकी लाइफ को रियलाइज करूं और उनको मोटिवेट करूं अपने आप को चेंज करने में, मैं खुद अपने आप ही चेंज हो जाऊं, राइट? ये एक साइकी है जो बहुत पावरफुल है और ये हमारे माइंड पे काम करती है, ठीक है? दूसरी बात ये कि हम अपने पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते। वी ऑलवेज डिबेट इन आवर माइंड्स, आई डोंट नो वेदर आई बी एबल टू डू इट, आई डोंट नो व्हाट विल बी द आउटकम, आई डोंट नो वेदर दिस विल हेल्प मी टू कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन। तो क्या है, हम अपनी जो अंदरूनी ताकत है उसको पहचान ही नहीं पाते। उस ताकत को हर समय एक पॉजिटिव एंगल से पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे, हम कैसे इतना बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हम दूसरों की जिंदगी को चेंज कर देंगे, है ना? और पोटेंशियल को पहचानना ये नहीं होता कि मैं बहुत जोर से, मैं बहुत चिल्ला के बोल रही हूँ, मैं सबके सामने ये कह रही हूँ कि आई एम द बेस्ट, मेरे से बढ़ के तो कोई है ही नहीं, जो मैं कर रही हूँ बस वही ठीक है। वो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप ये है कि हलीमी से, बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही आई शुड से दैट अफेक्शनेट होके हम कैसे किसी को बहुत ही मुश्किल मुश्किल बातें समझा सकते हैं, बशर्ते आगे सुनने वाला भी उसी लहजे में हो। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उस ग्रुप के साथ बात करके जो हमें ऊपर से हाँ कर रहा है और अंदर से हमारी बात को समझ ही नहीं रहा है, राइट? अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे में जो क्षमता है दूसरों को पहचानने की वो भी शार्प होती जाएगी, वो भी बढ़ती जाएगी। हमें आदत पड़ जाएगी कि हम जो हमारे सामने बैठे हैं हम उसको पहचाने कि वो हमारी बात को कितनी वेटेज दे रहे हैं, कितनी समझ रहे हैं, कितना अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उनको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यस, हम जो भी बात इनसे कर रहे हैं इनकी जिंदगी में बदलाव आस्ता आस्ता आना शुरू हो गया है। और जब हम ये देखते हैं कि बदलाव आना शुरू हो गया है तो हमारी टीम में वो जुड़ जाते हैं, वो लीडरशिप की क्वालिटीज को समझना शुरू कर देते हैं, तो हम एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाते हैं कि यस, हम जिस रास्ते में जा रहे हैं वो रास्ता ठीक है, हम अपने आप को तो बदल ही रहे हैं, हम दूसरों को बदलने की भी क्षमता रखते हैं। तो जब हम कहते हैं, सेकंड पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ कि पहला तो हमने कहा कि हमें नीचे से ऊपर उठना है और अपने साथ लोगों को जोड़ना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने अंदर की क्षमता को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हम जिनके साथ जाके बात करने वाले हैं उनकी क्षमता तो हमें पता है, क्योंकि वो उन अपनी क्षमता को पहचान नहीं पा रहे हैं। और अगर हम भी अपनी क्षमता को नहीं पहचानेंगे तो हम दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे इंस्पायर करेंगे, कैसे उनके साथ हम हाथ पकड़ के अपनी टीम को बड़ा करेंगे और सोशल चेंज की तरफ जाएंगे। हमारी जो इस बार की एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें भी हमने जो टॉपिक को हाईलाइट करा है उसमें ये हाईलाइट करा है कम्युनिटी फर्स्ट। एंड हमारे जो एडवाइजर्स हैं डीड इंडिया के वो भी हमें ये कहते हैं कि हमारे लिए कुछ मायना नहीं रखता है एक्सेप्ट आर कम्युनिटीज विद होम वी आर वर्किंग। दे आर द रोल मॉडल्स फॉर अस। रोल मॉडल्स एक लेयर पे तो बन गए, यू ऑल आर रोल मॉडल्स, उसमें कोई दूसरी थॉट प्रोसेस ही नहीं है, बट आगे कैसे हमने ये रोल मॉडल्स क्रिएट करने हैं वो आपके हाथ में। आपने वहां पे जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ आपने इस बात को 100 times रिपीट करना है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ। आप खुद अपने आप को पहचान पाएंगे, जो मैं कह रही हूँ ना कि अपने पोटेंशियल को समझने की जरूरत है। जब ये एक्सरसाइज आप बार बार करेंगे तो क्या होगा, आपको अपनी पर्सनालिटी को रिफाइन तो करेंगे बट आपको अपने पोटेंशियल का भी अंदाजा हो जाएगा। जब आप रात को सोएंगे ना, जिन्होंने हर्ष अरोड़ा के सेशंस अटेंड करे हैं वो यही कहते हैं कि सुबह हम साइलेंस से शुरू करें, पूरा दिन हम जो कर रहे हैं रात को सोने से पहले जब हम बेड पे लेट रहे हैं तो हम उस पर रिफ्लेक्ट करें। अगर हमने किसी के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करी है तो वी शुड से थैंक्स टू गॉड, ओ गॉड यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैव गिवन मी दैट पोटेंशियल कि मैं किसी की लाइफ में थोड़ा सा बदलाव ला सकूं। यहाँ किसी के साथ हमने 5% 10% कुछ गुस्से में बात कर ली है या कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए हम माफी भी मांग लें। तो क्या है, एवरी डे इज अ न्यू लाइफ। तो हम जब सुबह उठेंगे हम बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठेंगे, हल्के माइंड से उठेंगे और फिर हम अपने मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे कि नेक्स्ट डे भी मेरे लिए एक मिशन है। और मैं आपको बताऊं मेरा काम करने का तरीका यही है। चैलेंजेस हर एक की लाइफ में होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हर एक की लाइफ में होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक की लाइफ में होती हैं, पर जब मैं एनवीसेज कर रही हूँ कि अगर आज मैं रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर हूँ, आप अपने सेंटर्स के डायरेक्टर हैं राइट, और जब डायरेक्टर बनना है और आप कह रहे हैं कि आप गीता मैम से सुन रहे हैं तो यहाँ पे मैं हंड्रेड्स ऑफ गीता क्रिएट कर रही हूँ राइट, और आप मेरे से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये जो सोशल चेंज की हम चेन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वी वुड लाइक टू सी फिजिकली द वुमेन। हम ये नेटवर्क इतना बड़ा क्रिएट कर लेंगे कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा मीना आप मुझे बताओ तुम्हारे इलाके में कितने वुमेन लीडर्स है, 100 के नाम मेरे सामने आ जाने चाहिए, है ना, क्योंकि आपने उन मैंने तो 50 लोगों की जिंदगी चेंज करी है ना सेंटर लीडर्स की, आप लोग तो 500 लोगों की जिंदगी चेंज करें, 5000 लोगों की जिंदगी चेंज करें, एंड दैट इज द अचीवमेंट ऑफ रीड इंडिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनली एज गीता मल्होत्रा फॉर मी, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू बिकम द चेंज मेकर्स। और फिर जब हम आपके नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे शेयर करेंगे कि दीज आर द चेंज मेकर्स फॉर अस, तो आप देखिए

करना है, हमारे अंदर एक भूख है, हंगर है, और हंगर क्या है, वन वुमेन वन फैमिली वन विलेज, हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म, राइट। ये हंगर जब पैदा हो जाती है ना, तो फिर आपका मिशन कहीं भी रुकता नहीं, आपका मिशन आपको सपोर्ट करता है। आज आप अपने विलेज में हैं, कल आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, कल आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, आप अपने स्टेट लेवल पे जाएंगे, तो आप देखिए आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज आपको कहाँ लेके जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं कि हम अपने पोटेंशियल को पहचाने, तो फर्स्ट पोटेंशियल क्या है? ट्रूथ, सच्चाई। और सच्चाई आपके दिल में है, आपके आसपास है, आपकी जुबान पे है, आपकी सोच में है, आपके ख्याल में है। और अगर सच्चाई आपको इस तरह से घेर रही है, तो आपका रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। और ये स्मिता विटनेस करती है इसको, और मेरी पूरी टीम रीड इंडिया के विटनेस करती है कि रीड इंडिया की बुनियाद जो है पिछले 16 साल की, वो सच्चाई पे निर्भर, कुछ भी ऐसा यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता। और जो मेरी टीम है वो भी इसको प्रैक्टिस करती है कि वी नेवर टेल लाई, और जो भी हमारे सामने आके झूठा झूठी बात करता है या रॉन्गली प्रेजेंट करता है या दिल में कुछ और सामने कुछ और है, वो हमेशा कट जाता है रीड से, वो रीड के साथ कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये जो मैं बात आपको बोल रही हूँ, मैंने पिछले 16 साल से इसको प्रैक्टिस किया है, और इतनी हिम्मत आ जाती है बोलने की, अगर आपके सीनियर्स भी और बहुत मतलब कि आउटसाइडर्स भी आपके सामने कुछ ऐसे बात बोलते हैं जो आपको सच्चा नहीं लगता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि कम्युनिटी हमारे सामने फर्स्ट है, अगर वो कम्युनिटी के हित में नहीं है, तो आप स्टैंड ले लेते हैं कि यस आई रिस्पेक्ट यू, बट इट इज नॉट वर्केबल विद द पीपल विद हुम आई एम वर्किंग, राइट। ये तब आता है कि जब आप सच्चे हो और सच्ची बात कर रहे हो। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गुड टू अदर्स। मैं कुछ फेसबुक पे बहुत सारी चीजें आती हैं, आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है और मैं बच्चे की पाठ पूजा में भी बिलीव करती हूँ, तो मैं कल रात को एक मैसेज पढ़ रही थी कि कार्तिक के महीने में अगर हम एक अच्छा ही करते हैं ना, तो 100 अच्छाइयां आपको वापस आती। नो डाउट विष्णु भगवान का ये महीना है और विष्णु भगवान बहुत दयालु है, हम एक अच्छाई करते हैं और वो हमें 100 अच्छाई देते हैं, पर ये एक बुनियाद है हमारी जिंदगी की हमेशा के लिए। इट्स नॉट दैट कि मैं कार्तिक के महीने का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट दिस इज द नेचर नेचर ऑफ द कॉस्मोस और द एनवायरमेंट अराउंड अस। इफ वी डू गुड टू अदर्स, गुडनेस ग्रोस एंड कम बैक टू अस इन अनकाउंटेबल वेज, बट वी शुड लर्न हाउ टू डू गुड टू अदर्स। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा कुछ करेंगे और वो अच्छाई हमारे पास किसी ना किसी तरीके से वापस आएगी, और ये एक जिंदगी की बहुत ही दृढ़ पहचान है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगी, क्योंकि लीडरशिप की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करें। अगर कोई बुरा भी है और वो हमारी बात नहीं समझ रहा, मैं इसलिए कह रही हूँ एक बार समझाएं दो बार समझाएं, पर अपना पूरा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग भी लाइन में खड़े हैं जो समझ रहे हैं, उनका नंबर भी आना चाहिए। इनको साइड करके इग्नोर नहीं करें, जिनको आप बदल रहे हैं शायद वो लोग उनको बदल दें। हम उनके लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, हम उनको कुछ कह भी नहीं रहे हैं, पर हम भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान इनको सक्षम बुद्धि दे, जब इनके पास बुद्धि आ जाए शायद ये मेरी बात समझ पाए।
ऑलवेज हेल्प अदर्स इन डिफिकल्ट सिचुएशन।

0: एक्शंस, बट जब आपका इंटरनल इनर पोटेंशियल इतना स्ट्रांग हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी आप में आ जाएगी, तो आप तुरंत ही समझ पाएंगे कि वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में उसको कैसे बाहर निकालना है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी एम्पैथेटिक. आप अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखिए, जो आप अपने लिए समझते हैं कि ठीक है, वो सलाह आप उसको भी दे सकते हैं कि इन सिचुएशन से बाहर कैसे आया जा सकता है. पर सिचुएशन से बाहर उनको आना है, आपको नहीं. यू आर द एनेबलर, यू आर नॉट द डूअर फॉर देम. जब आप एनेबलर बनेंगे और उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे एनेबलमेंट के ऊपर, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यू आर क्रिएटिंग द पावर इन देम, यू आर इनकल्केटिंग द पावर इन देम टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. और सक्सेस कहाँ रहती है? सबसे पहले सक्सेस आपके अंदर रहती है, आपकी आपके एक्शंस में रहती है, बिकॉज सक्सेस इज द आउटकम ऑफ योर एक्शंस. एक्शंस कहाँ से आते हैं? आपके माइंड से आते हैं. माइंड में क्या आता है? थॉट प्रोसेस आते हैं. थॉट प्रोसेस कहाँ से आते हैं? आपके पॉजिटिव, जो पॉजिटिविटी है उससे आपके थॉट प्रोसेस का बहुत ही गहरा संबंध है. दूसरी बात ये यहाँ पे कि सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है. सेल्फ कंट्रोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी ऐसी जगह पे बैठी हूँ बीइंग अ कंट्री डायरेक्टर, जो बहुत सारे सेंटर्स हैंडल करती है, बहुत सारे लोगों को हैंडल करती है, बहुत सारे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करती है, आपकी बात डोनर्स तक रखती है, डोनर्स की बात आप तक रखती है. पर अगर मेरे में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल इन एनी सिचुएशन, सबसे पहला सेल्फ कंट्रोल क्या है? हम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, हम किसी की बातों के बहाव में तो नहीं आते, हमें कोई कोई चरा तो नहीं रहा, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बोल रही हूँ, कोई हमें चलाकी से हमारा माइंडसेट तो नहीं चेंज करता है, कोई हमें गलत रास्ते पे चलने के लिए तो नहीं कह रहा है, कोई हमें कोई हेरा फेरी करने के लिए तो नहीं कह रहा है. तो अगर ये सारे सेल्फ कंट्रोल के करेक्टरिस्टिक्स हैं और हम एक एक करके अपने आप में इसको दृढ़ करते रहते हैं, तो ये एक लीडर की बहुत बड़ी पहचान होती है. कि वो हमेशा फिर बाहर वाले लोग क्या कहते हैं, शी इज अ रॉक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज हर, यू कैन नॉट चेंज हर थॉट प्रोसेस, शी विल नॉट कम इनटू योर टॉक्स, है ना. तो लोग आपके बारे में ऐसी बातें कहनी शुरू कर देते हैं. जब लोग ऐसी बातें कहते हैं दूसरों के सामने आपके बारे में, तो उनकी हिम्मत ही नहीं बढ़ती आपके बारे में, आपके सामने आके आपको कुछ गलत करने के लिए उत्साहित करें. ठीक है, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो हमसे कोई इसके बारे में बात नहीं करता है. पर ये मैं क्यों आपसे चर्चा कर रही हूँ, बिकॉज यू आर द बडिंग लीडर्स. मेरी लाइफ में भी मेंटर्स थे जिन्होंने मुझे सिखाया, जो मुझे इस लेवल तक लेकर आए. और अगर हम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो लाइफ में बहुत सारी चीजों की समझ आ जाती है कि हमने लाइफ को किस तरीके से आगे लेके जाना. ठीक है, और आप दूसरों को समझाने के लिए भी सक्षम हो जाती. अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब तक हम अपनी लाइफ के गोल सेट नहीं करते हैं, हम दूसरों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि तुम अपने लाइफ के गोल सेट करो. आई एम स्टैंडिंग देयर, आई विल सी टू इट दैट टू अचीव दोज गोल्स, नेवर एवर पॉसिबल. आपको अपने लाइफ के गोल भी सेट करने हैं. गोल, मैं बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं कह रही हूँ अभी, मैं छोटे छोटे गोल सेट करने की कोशिश करती हूँ. एक अपनी लिथार्जी को छोड़ दीजिए, जो काम करना है वो खुद प्रोत्साहित होके करिए. दूसरा, हम फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटी बात करती हूँ कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, हम कहते हैं कि हमारे दिनचर्या सेट हो जाए, पर हम उठ नहीं पाते। हमने 10 चीजें सोची हैं कि आज इस ये 10 चीजें आज के दिन में कर लेंगे, पर हम दो ही कर पाते हैं। अगर दो कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम टाइम को ऐसे ही वेस्ट करते जा रहे हैं। अगर 10 में से हम 5 चीजें भी कर लेते हैं तो दैट मीन्स वी आर मूविंग इन अ राइट ट्रैक, बिकॉज काम तो एक प्रार्थना है, एक वर्शिप है, भगवान का नाम लेने की बात है। और अगर हम काम ही नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, या अपनी जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए, तो हम उसका मतलब ये सब कुछ हमारे थॉट्स में है, हम उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनका एक दूसरे के साथ तालमेल है, और अगर हम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, करना शुरू कर दें, अब कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल आप देखो, संस्था को चलते हुए 16 साल हो गए, और अगर मैं अपना हर काम अगले दिन पे डाल दूं, उससे अगले दिन पे डाल दूं, उससे अगले दिन पे डाल दूं, कैसे संस्था ग्रो करेगी? नहीं कर पाएगी ना। तो मैं ये एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपके सामने, और ये साधारण एग्जाम्पल करते करते करते करते कितना बड़ा एग्जाम्पल हो गया। और जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने अंदर की प्रैक्टिस आपको बता रही हूँ, मैं कोई किताब में से नहीं बता रही हूँ, मैंने कोई किताब नहीं खोली हुई है, कुछ भी मेरे सामने नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्टेप्स हाउ आई पॉलिश माई लीडरशिप क्वालिटीज, एंड आई वुड लाइक यू टू पॉलिश योर लीडरशिप क्वालिटीज। जैसे मैंने अपनी लाइफ में बदलाव लाए हूँ, वैसे मैं आप सब लोगों को अपनी जिंदगी की किताब खोल के आपके सामने रख रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन सब बातों पे खरे उतरेंगे और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। और हमेशा जो चीज आपको लगता है कि ठीक है, उसको अपनी जिंदगी का एक लॉ बना लीजिए। लॉ मतलब कि अगर मैं बस ये मेरे लिए कानून बन गया है, उस कानून से मुझे हटना नहीं है। जब आप इस सिचुएशन पे आ जाएंगे तो आप रॉक बन ही जाएंगे, आपको कोई नहीं झुठला सकता, आपको कोई आपके दृढ़ विश्वास से डगमगाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो लॉ कैसे बनता है? जब आप रेगुलेशंस में आ जाते हैं, जो मैंने आपके साथ बातें करी हैं, आप अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप रात को सोती हैं तो आपको अंदर से ही ख्याल आता है कि मैं ठीक थी या गलत थी। देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारा मन है ना, वो हमारा आईना है, वो आईना पे थोड़ी सी भी धूल आती है ना तो हमको तकलीफ होती है। ये प्रैक्टिकल बात है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ फिलोसफी की बात कर रही हूँ, आप अपने को अनम्यूट करके बाद में, बस 2 मिनट है मैं खत्म कर रही हूँ अपनी बात, आप मुझे बता सकती हैं कि उस आईने को कभी भी आप मैला नहीं होने दीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना भी है और एक लॉ की तरह बोल रही हूँ। जिस दिन आपने अपने आईने को मैला कर लिया, उस दिन आपकी लीडरशिप क्वालिटी सब पानी में बह जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी। इसको तो आप एक मंत्र की तरह बांध लीजिए अपने साथ, और हमेशा अच्छे कर्म करिए, और सक्सेस की सीढ़ियों पर आस्था आस्था चढ़ने की कोशिश करिए। बिल्कुल ऊपर जाके गिरने की कोशिश मत करना। हमेशा सक्सेस जो आती है दृढ़ विश्वास से आती है, छोटे छोटे कदम लेकर आती है, और वो छोटे कदम लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे कदम स्ट्रांग होंगे, एक एक दृढ़ता से वो कदम लिए हुए होंगे, वो कदम कभी डगमगाएंगे नहीं। आपको अपने रास्ते से कभी भी अंधेरे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में रोशनी लाएंगे और दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। अब कोई बोलना चाहता है तो प्लीज बोलिए, मैं अपना ऑफ कर रही हूँ स्पीकर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
1: मैम नमस्ते, विजय बोल रहा हूँ बारा से।
0: हाँ
1: मैम
0: जी विजय जी बोलिए
1: मैं मुझे
0: आप।
1: अब बीना दीदी ने वापस रीड इंडिया में जोड़ा है,
0: हाँ जी विजय, बहुत
1: और
0: अच्छी
1: अभी
0: बात है।
1: मैं पिछले 1-2 महीने से लगातार अभी रीड इंडिया के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। अभी परानिया में कंप्यूटर सेंटर खोला है हमने, तो वहाँ पे
0: वेरी
1: अभी
0: नाइस वेरी नाइस।
1: 25-30 लड़कियां और महिलाएं हैं। उसमें अधिकांश गांव की महिलाएं हैं, जो काफी दिनों से मुझसे कह रही थी कि कंप्यूटर सीखना चाहती हो, कंप्यूटर सीखना चाहती हो। तो फिर ये मौका दिया उन्होंने, मीना दीदी ने कहा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी सोनी नेटवर्क का, है हमारे पास कुछ लोगों का ट्रेनिंग कर सकते हो तुम, तो उनको तो जोड़ लो। तो मैंने अभी शुरू किया है मैम, और अभी अभी रिसेंटली मैं अभी घट्टी में हूँ, घट्टी ग्राम पंचायत में हूँ। यहाँ पे कुछ लड़कियों को बुलाया मैंने, उनका नया नामांकन किया है, एनरोलमेंट किया अभी। तो उससे पहले आपकी मीटिंग थी तो मैं टाइम से जुड़ नहीं पाया, लेकिन आज आपने लीडरशिप के ऊपर बहुत अच्छा सेशन दिया कि खुद की क्षमताओं को पहचानना है, उसके साथ आगे बढ़ना है सच्चाई के साथ होगी। तो ये बहुत अच्छा सेशन था आपका, अच्छा लगा मैम, और अभी लगातार जुड़ के काम करूंगा आप लोगों के साथ।
0: हाँ विजय, जुड़े ही रहिएगा क्योंकि हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, और
1: जी
0: आपने जो अपनी स्किल्स डेवलप कर रही है उसको अब आपको दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, है
1: जी
0: ना
1: वही एक्सप्लोर करना है
0: उसको।
1: मैम, एक मंच चाहिए, जो रीड जैसा बेहतर मंच मुझे शायद नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर से शुरुआत करके वापस अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ।
0: ठीक है, महिपाल के टच में रहिएगा और
1: जी
0: महिपाल आपको बताएगा कि कैसे हम आपके स्किल्स को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है ठीक
1: जरूर जरूर।
0: है ठीक है। एनीबॉडी एल्स?
2: हेलो मैम,
0: हाँ जी हाँ जी ज्योत्सना।
2: कैसे
0: हेलो
2: हैं
0: हेलो
2: मैम? मैं भाई
0: हेलो
2: जी को आपको बहुत
0: हेलो।
2: अच्छे से सुन रही है, और सब लोग बहुत खुश हैं। आज हमारा सेशन बहुत टाइम बाद थोड़ा सा हुआ है, हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, और सीरियसली हम लोग इस पे बहुत वर्क कर रहे हैं, सच पे, और अपनी पोटेंशियल को जज करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने भी एक बहुत अच्छा सेशन स्टार्ट किया लेटेस्टली, छोटा सा ग्रुप बनाया है स्टूडेंट्स का, छोटे छोटे बच्चों का, जो डांस कर रहे हैं। आशा मैम उनको
0: वाह
2: हैंडल कर रही है। हाँ जी मैम, दो छोटे छोटे बैच बने हैं, स्पेस के अकॉर्डिंग 5-10 दिन बच्चे हैं टोटल, दो बैच में 5-5, 6-6 स्टूडेंट। और मैम बहुत अच्छा है, बस अच्छे से सीख रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे हम इस सबको आगे और प्रोसेस पे भी लेके जाएंगे। छोटे छोटे स्टार्ट कर रहे हैं मैम, लेकिन कोशिश करते रहेंगे, और लीडरशिप के लिए
0: बहुत अच्छी
2: ऑलरेडी
0: बात है, बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे
2: हम
0: स्टेप्स से
2: सेशन
0: आगे
2: सुनते
0: बढ़ना।
2: हैं मैम, सीरियसली यू आर माई रोल मॉडल। ऑनेस्टली सबसे पहले तो मैंने आपसे पोलाइटनेस सीखी है, पर मेरे में अभी भी बहुत लगता है कि मुझे बहुत सीखना है। जब भी मैं आपको सुनती हूँ तो मैं दो स्टेप सीखती हूँ, दो स्टेप सीखती हूँ, धीरे धीरे जरूर उसको कन्वे करने की कोशिश करती हूँ, मैं थोड़ी और अच्छा पोलाइट और ट्रुथ वर्क कर सकूँ। थैंक यू मैम, सब लोग थैंक
0: थैंक
2: यू बोलना चाहते हैं।
0: यू
2: थैंक
0: सो मच।
3: हेलो मैम, रिया बंसल फ्रॉम
0: अच्छा
3: बारान।
0: रिया बंसल बारान। यस यस
3: मैम ये मेरे साथ और 20 लर्नर्स और स्टूडेंट बैठे हैं। तो मैम जैसे आपने बोला कि जैसे मैं बहुत सारी गीता रेडी कर रही हूँ, तो मैम मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है। तो एक गीता मूवी है साउथ की, तो उसमें भी
0: अच्छा
3: जैसे आपका जैसा रोल है वैसे ही उस मूवी में गीता मैम का रोल है। तो जैसे स्टूडेंट्स को उनसे जो वो सलाह मिलती है, तो वो भी जैसे बहुत सारी गीता रेडी कर रहे थे। तो आप जैसे हमें आपसे सीखने को, सबसे पहली बात तो जब आपकी शक्ल देखते हैं, आपका फेस देखते हैं, तो आपकी वो पोलाइटनेस देख के अपने आप फेस पे स्माइल आ जाती है। तो आज का जो सेशन था मैम बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू। प्रैक्टिस करना है उसको, है ना।
3: यस मैम।
0: सेंटर से बात कर रहे हैं हम, हमारे घर बात कर रहे हैं हम,
3: कहाँ से?
0: कार्यगाम
3: कार्यगाम से। यस यस
0: से मैम।
3: हाँ जी हाँ जी। नमस्ते,
0: मैम
3: कैसे? सुवर्णा बोल रही है ना? हाँ ठीक है, कैसे
0: हाँ,
3: आप?
0: कंपनी
3: हाँ
0: के क्लास करते हैं हम बाहर जा नहीं सकते, यहाँ फ्री में बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं आपकी धन्यवाद देना चाहती हूँ।
3: थैंक यू थैंक यू
0: थैंक यू मैम।
3: थैंक यू। सुवर्णा कुछ बोलना चाह रही हैं आप? ये
0: थैंक यू सो
3: आपकी
0: मच मैम।
3: लीडर है सुवर्णा, इज योर लीडर, है ना
0: हाँ
3: सुवर्णा?
0: मैम
3: तुमको, हाँ तुमको सबकी जिंदगी बदलनी है।
4: हाँ मैम, बहुत अच्छा
3: हाँ
4: सेशन लिया मैम आपने, थैंक
3: चलो
4: यू सो मच मैम। और
3: ठीक
4: सभी
3: है, मैं
4: स्टूडेंट का ये मानना है मैम, एक बार हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट देने के लिए आ जाए आप, मैंने आपको एक
3: आऊंगी,
4: मीटिंग।
3: पक्का पक्का मैं
4: यस
3: आऊंगी
4: मैम, यस
3: आपकी। मेरे को लेटर मिल गया था और वो
4: बिल्कुल,
3: ग्रीटिंग कार्ड भी मिल गया है जो मैंने
4: हाँ
3: अपने पास संभाल के रखा हुआ है,
4: हाँ
3: और ये मुझे
4: मैम,
3: याद दिलाता है कि मुझे जाना है आपके पास, तो मैं
4: हाँ मैम,
3: जरूर आऊं, जरूर आऊं।
4: ओके मैम,
3: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू
4: थैंक
3: थैंक
1: यू मैम,
3: यू थैंक यू
4: बाय
3: सो
4: बाय,
3: मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, ये सेशंस रेगुलर होंगे, बीच में किसी तरीके से नहीं हो पाए उसके लिए सॉरी, और हम हर हफ्ते मिलेंगे। प्लीज वेट फॉर दिस सेशंस एंड बी रेडी टू शेयर, आप भी कुछ शेयर करिएगा जरूर, ठीक है? ओके,
4: ओके
3: ऑल द
4: मैम,
3: बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर,
2: थैंक यू मैम,
4: थैंक यू मैम,
3: थैंक
4: बाय,
3: यू।
1: थैंक यू मैम।

0: प्रयासों की बुनाई, सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
1: मैं जब पढ़ रहा था तो एक दिन संत कबीर जी के बारे में जाना, उनका बड़ा नाम है और हम जितनी किताबें पढ़ते हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
0: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरियाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरियाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट SV निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टेपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
1: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
0: इसी दौरान खेमराज सुंदरियाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
1: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
0: खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे तो ये अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हो, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है और इक्विवेलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आपका, एक तरह से 12th के इक्विवेलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या ले, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलोसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं, जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज आप देखेंगे NCR एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगिनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट PSUs में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं,
बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे, बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्विवेलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, टीचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-4-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना। अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4-5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है। जैसे आप सोच के देखिए, गुड़गावा में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेज के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती है काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर
जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्विवेलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जैसे मैंने आंसर किया उसका, हाँ जी मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए एसेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है, आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं, प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली, स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है,
जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे, भी जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है। तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर 3-3 साल का, तो अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमा को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आपको एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर आईटीआई, वो क्या करते हैं आईटीआई भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो आईटीआई है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है, मतलब ये 3 आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो आईटीआई आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब से अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल VLCC का नाम आप सबको पता ही होगा, VLCC एक तरह से आपका जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं, ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में, डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं।
अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं। वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं। वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट्स जो बनती है वो आप बन सकते हैं बना। जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं, लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है। मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका माने, मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं, वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू, Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है। अगर आपने ये किया हुआ है, SEO का कोर्स किया हुआ है, तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है, अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं, सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं, कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है। मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब दे दे। एक तरह से ये हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो हमें खुद कुछ भी कोर्स, कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हो, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशन के हैं, हायर क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है, तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। आप देखिए कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक में हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये मैं ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स है। होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI आई है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, बस इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास है, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नगर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना NCR एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गावा की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में
लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहां पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ जिसे हम कहते हैं, कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी हैं जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है। बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है उसके बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज हैं। आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी PSU या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा है इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब

में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ कोविड 19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल। और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहाँ पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं, जो डीएमआरसी है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं डीएमआरसी के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं डीएमआरसी में। और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है। अब तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि डीएमआरसी ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसी निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो डीएमआरसी के अंदर लग गए जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th, 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंटी हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है। जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीट का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीट का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है, भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीट कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही DTE केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं PSU की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ONGC, GAIL इन सब के बारे में बताया,

0: देखिए उनमें क्या होता है, ओएनजीसी में, गेल में, कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की, तो बीटेक आप करते हैं तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है, तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड, टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है, तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिटर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप फॉरन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। 10th के पास, 10th पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, 10th पास
0: जी जी
1: करके
0: सर जी
1: डिप्लोमा है,
0: बिल्कुल सर
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में
0: बिल्कुल
1: है, आपको ऑलरेडी चेन्नई
0: जी
1: में
0: जी
1: भी है, जैसे ज्वेलरी पर
0: जी
1: भी
0: जी
1: आपको
0: सर जी
1: डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। अब प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारत वर्ष में जो है 10th पास करके 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो 10th पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं, +2 करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों 10th पास करके या +2 पास आउट करके, 10th पास करके जाएंगे तो 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, +2 करके जाएंगे तो 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं, तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है।
1: काफी है,
0: वो बस
1: काफी,
0: एक थोड़ा
1: करेक्ट,
0: आप याद,
1: यस,
0: हाँ स्कोप
1: हाँ
0: है, और मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये
1: एग्जैक्टली
0: काफी वाइड एरिया
1: गोल्फ
0: होता
1: कंट्री में भी सर, आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड
0: है।
1: होती है डिप्लोमा के
0: गल्फ
1: बाद,
0: कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत। सर मेरा एक
0: ऑस्ट्रेलिया
1: क्वेश्चन
0: है
1: था कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहां पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहां पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं
0: सर।
1: शायद आईटीआई
0: बेसिकली
1: में।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो
1: करेक्ट,
0: इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और
1: करेक्ट,
0: सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो आपकी एडवोक इन नेचर होती है, 1 साल की, 2 साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो जो आपके परमानेंट जॉब्स हैं जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है, टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

0: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयां बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता।
1: शुरुआत में सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी।
0: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
1: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
0: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
1: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
0: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, किसी भी देश के विकास की मजबूत नींव उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पुल, सुरंगें, मेट्रो, पानी और आवास, ये सभी सुविधाएं लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी गति देती हैं। पिछले 12 वर्ष में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बदल रहा है, रेलवे और सड़कों से लेकर हवाई और समुद्री संपर्क तक क्या विस्तार हुआ है और किस तरह अब इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योग, लॉजिस्टिक्स, आवास और रोजमर्रा की जरूरतों से जोड़ा जा रहा है। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। भारतीय रेलवे तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। रेलवे का बजट वित्त वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे विद्युतीकरण में भी बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले लगभग 20% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ था, जो जुलाई 2026 तक बढ़कर 99.6% हो गया। देश में 162 वंदे भारत, 2 वंदे भारत स्लीपर और 72 अमृत भारत सेवाएं चल रही हैं। वहीं जुलाई 2026 तक 2633 किलोमीटर पर कवच वर्जन 4.0 लागू किया जा चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर के रूट पर विकसित किया जा रहा है। इसकी डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुने गए 1340 स्टेशनों में से 18 जुलाई 2026 तक 261 स्टेशनों का पुनः विकास पूरा हो चुका है। जुलाई 2026 में देश में बनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन भी लॉन्च की गई। श्रोताओं, अब रुख करते हैं उन सड़कों की ओर जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए विकास और संपर्क को नई गति दे रही हैं। पुल और सुरंगें भी इस बदलाव की अहम कड़ी हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
4: भारत का कुल सड़क नेटवर्क 63.73 लाख किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में लगभग 61% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2014 में ये लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 146,572 किलोमीटर हो गई। 4 लेन और उससे ज्यादा लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भी 2014 के 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर हो गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2000 से 2014 के दौरान 3.86 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, जबकि 2014 से 2026 के दौरान ये लंबाई बढ़कर 4.11 लाख किलोमीटर हो गई। सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 2029 तक 25,000 ऐसी बस्तियों को सड़क संपर्क देना है जहां अभी सड़क नहीं पहुंची है। भारतमाला योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक 22,590 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। 2025 में बना चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। ये चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना है और इसकी लंबाई 1,315 मीटर है। इसी तरह अंजी खड ब्रिज जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है और इसमें 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। जम्मू कश्मीर में 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग हर मौसम में आवाजाही की सुविधा देती है। 2024 में 2.32 किलोमीटर लंबे सुदर्शन सेतु ने गुजरात में ओखा को बेट द्वारका से जोड़ा। 2020 में बनी 9.09 किलोमीटर लंबी अटल टनल 10,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। वहीं 2017 में बनी 9 किलोमीटर लंबी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जम्मू और श्रीनगर के बीच हर मौसम में खुली रहती है और यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम करती है।
3: श्रोताओं, अब बात करते हैं हवाई संपर्क की। 15 जुलाई 2026 तक उड़ान योजना ने 679 रूटों के जरिए 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरड्रोम को जोड़ा है। इससे 1,68,00,000 से ज्यादा यात्रियों को फायदा हुआ है। 2014 में देश में 74 चालू हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या जुलाई 2026 में बढ़कर 165 हो गई। 2014 के बाद 25 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में संशोधित उड़ान को मंजूरी दी गई। इसके तहत 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने की योजना है। श्रोताओं, अब शहरों में परिवहन की बात करें तो मेट्रो नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार हुआ है। देश का मेट्रो नेटवर्क 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 2026 में में 1155 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। मेट्रो कनेक्टिविटी वाले शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 26 हो गई है और रोजाना यात्रियों की संख्या 1,15,00,000 से ज्यादा है। 2024 में कोलकाता ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल शुरू की। वहीं कोच्चि ने भारत का पहला वाटर मेट्रो सिस्टम शुरू किया। अब बात समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की। बड़े बंदरगाहों की कार्गो संभालने की क्षमता 2014 के 873 MMTPA से लगभग दोगुनी होकर 2026 में 1728 MMTPA हो गई है। बंदरगाहों पर जहाजों के टर्न अराउंड समय में भी सुधार हुआ है। ये 94 घंटों से घटकर 2025-26 में 48.8 घंटे रह गया। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 2014 के 5 से बढ़कर 2026 में 111 हो गई। भारत 2025 में दुनिया का नंबर 1 जहाज रिसाइकलिंग देश भी बन गया। श्रोताओं, अब इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उस महत्वपूर्ण पहलू को जो सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों को उद्योग तथा व्यापार से जोड़ते हुए देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और औद्योगिक क्षमता को मजबूत करता है।
5: पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में 3,291 से ज्यादा डेटा लेयर्स का इस्तेमाल करके 58 मंत्रालयों और विभागों में एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की है। 11 अगस्त 2026 तक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के जरिए लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 396 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 198 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 7 औद्योगिक कॉरिडोर में 20 औद्योगिक स्मार्ट सिटीज को भी मंजूरी दी गई है। मार्च 2026 में 100 नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भव्य योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 24 जुलाई 2026 को 3030 करोड़ रुपए के बजट के साथ भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी गई। विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क्स का भी प्रस्ताव रखा गया है। श्रोताओं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में नल से जल पाने वाले घरों की संख्या 2019 में 3,23,00,000 थी, जो 10 अगस्त 2026 तक बढ़कर लगभग 15,91,00,000 हो गई। मार्च 2026 में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 12 अगस्त 2026 तक 99,25,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लगभग 96% घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किए गए 3,91,00,000 घरों में से 12 अगस्त 2026 तक 3,13,00,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। 2019 में शुरू किए गए स्वामी फंड के जरिए जून 2026 तक 63,000 से ज्यादा घर उपलब्ध कराए गए, जिससे लगभग 2,52,000 लोगों को फायदा हुआ। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत मार्च 2026 तक 7,790 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।
3: श्रोताओं, अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो यही बदलते भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नई तस्वीर है। सड़कों से आगे बढ़ता हुआ बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत क्षमता और एकीकृत विकास की ओर बढ़ता भारत। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुण दीप। नमस्कार।
6: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम। सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
7: नमस्ते, मैं कुमारी उषा भारती, मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ रीज इंडिया में कुछ सीखती हूँ। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम कुछ सीख कर आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी भविष्य बना सकते हैं, ऐसा यहाँ है। बस इतना ही कुछ कहना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को कुछ लड़कियों के बारे में एक दहेज गाना सुनाना चाहती हूँ, जो आप लोग भी सुनेंगी और जानेंगी कुछ कि लड़कियाँ कितनी आगे हैं और कितनी चल सकती हैं। ठीक है, मैं सुना रही हूँ। कब

छोड़ो, जिसके घर में है कन्या कुमारी, उस पिता के दिलों से तो पूछो, उस

आदेश सहजी, क्या पता बेटी सादिश सहजी, क्या पता है कफन ओढ़ लेगी। मैं आप लोग को ये दहेज की सुनाई, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, दहेज को दूर करो और लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे भेजो, आगे बन कुछ बनाओ उन्हें, क्योंकि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, एक कदम आगे हैं। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसके नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
3: भरपूर साथ।
0: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई, ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं, ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है, जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।

0: सभी श्रोताओं को मंजू
1: और महिपाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे हैजा बीमारी पर।
0: हैजा रोग वीबीओ कोलेरी बैक्टीरिया से फैलता है
1: और इसका असर आपकी आंतों में होता है, जिससे उल्टी दस्त लग जाते हैं।
0: अभी कल की ही तो बात है, मेरी सहेली सुनीता अपने बच्चों को लेकर कल इंडिया गेट पर घूमने गई थी, मगर वहां पर उसने न जाने क्या खा लिया कि वो और उसके बच्चे सभी बीमार हो गए, उनको अस्पताल तक जाना पड़ा।
1: आप ठीक कह रही है, आजकल गर्मियों के मौसम में सभी बच्चों का दिल ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कटे हुए फलों को खाने का करता है,
0: और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। गंदे पानी का सेवन और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से यह बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है।
1: हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया मनुष्य के मल में पाए जाते हैं, और जब मक्खियाँ उस मल पर बैठती हैं तो उनके पैरों की गद्दियों में ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं।
0: ये मक्खियाँ खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं और जब कोई इन वस्तुओं को खाता है तो यह उसकी आंत में पहुंचकर बीमारी पैदा करती हैं।
1: देखिए, यह बीमारी खुले में फल, खाद्य पदार्थ व अन्य प्रकार की खाने की वस्तुओं के सेवन से फैलती है। दूषित पानी ना पिएं, खुली जगह पर मल त्याग ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का प्रयास करें।
0: इस रोग में जबरदस्त दस्त होने के कारण शरीर के पानी के साथ ही द्रव व लवण भी निकल जाते हैं। इनकी पूर्ति शरीर में फिर से करना जरूरी होता है। यदि दो दिन तक ऐसी ही स्थिति व इलाज में कोताही की जाए तो रोगी की मौत भी हो सकती है।
1: तो मंजू जी, सबसे पहले आप तो हमारे श्रोताओं को यह बताओ कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, और श्रोताओं को यह कैसे पता चलेगा कि स्वस्थ व्यक्ति को हैजा हुआ है या नहीं।
0: हैजा के बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और जब यह पर्याप्त संख्या में हो जाते हैं तो वहाँ पर विष पैदा करते हैं। यही विष रोग का कारण बनता है। इसमें जबरदस्त उल्टियाँ व दस्त होते हैं। उल्टी में पानी बहुत अधिक होता है और उल्टी के साथ पतले दस्त लग जाते हैं, जिससे कि शरीर का सारा पानी दस्तों के कारण शरीर से निकल जाता है।
1: इस कारण तो शरीर कमजोर हो जाता होगा और मरीज की हालत तो बहुत बुरी हो जाती होगी।
0: आपने सही कहा, इस बीमारी में बुखार नहीं आता, बस रोगी निढाल, थका थका सा, कमजोर व शक्तिहीन हो जाता है। प्यास जल्दी लगती है, पल्स मंद पड़ जाती है, यूरिन कम आता है व बेहोशी सी महसूस होने लगती है।
1: तो फिर मंजू, हमारे श्रोता को क्या करना होगा? क्या इसका कोई वैक्सीन भी बना है? अगर हाँ तो जरा इसके बारे में तो बताओ।
0: देखिए महिपाल, यह एंटीबायोटिक दवाएं बीमारी को फैलने से रोकती हैं, मगर इसका एक वैक्सीन भी बना है जो कि 6 माह तक ही क्रियाशील रहता है।
1: तो मंजू, सबसे पहले डॉक्टर से इसका इलाज लेना चाहिए, और जब तक मरीज को बार बार नमक शक्कर का घोल बनाकर पिलाना चाहिए, जिसे हम ORS का घोल भी कहते हैं। यह किसी भी डिस्पेंसरी व अस्पताल में मुफ्त मिल जाता है। इसे पिलाकर भी रोगी के शरीर में लवणों की पूर्ति की जाती है।
0: हैजा से बचने के लिए खुले में बिकने वाली वस्तुओं को ना खाएं और हमेशा अपना खाना ढककर रखें।
1: दोस्तों, उल्टी दस्त लगने पर तुरंत अपने नजदीक के अस्पताल या नर्सिंग होम में इसका इलाज करवाएं।
0: और हाँ, जहाँ भी जाएं साफ सुथरा खाना ही खाएं।
1: मंजू, हैजा बीमारी पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, चलिए सुनते हैं उनके विचार।
2: मेरा नाम शालिनी है और मैं विवेक विहार से हूँ। हैजा फैलने का मुख्य कारण ये है कि हम जब साफ सुथरा खाना ना खाएं और बाहर की कटे हुए फल जिन पे मक्खियाँ बैठती हैं उनको खाने से जो कीटाणु आते हैं उन सब की वजह से हैजा फैलता है।
3: मेरा नाम अमी है। सड़ी गली चीजें अगर कहीं खाते हैं या उससे हैजा हो जाता है, या कहीं गंदगी फैली होती है वहाँ अगर आप रहते हैं या उस जगह से भी हैजा होता है, मतलब जहाँ भी गंदगी होती है बस वहाँ से मतलब हैजा हो जाता है बस ये।
4: मेरा नाम सिल्वी है, मैं साकेत में रहती हूँ। हैजा मेली खुले में खाना रखने से और उसको खाने से होता है, तो जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखें और खुला खाना को हमेशा ढक के रखें।
5: मेरा नाम निर्णय है, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ। हैजा बीमारी का मुख्य स्रोत गंदगी होता है और जो मक्खियाँ जो भी बाहर खाने से वो हैजा बीमारी फैल जाता है।
6: I'm Madhu, I live in Kutub Enclave and as far as my knowledge goes, cholera is caused by the pathogen called Vibrio cholerae. It's a waterborne disease and we have to be careful about the kind of water we drink. In our home, we've got the 0B fitted on to the drinking water tap so that we are able to drink filtered water.
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हैजा बीमारी पर।
1: मंजू, इस विषय पर आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर संजीत, जो कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, और उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी गीता जी।
7: डॉक्टर संजीत, आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये बीमारी बच्चों को ज्यादा होती है, बच्चे शिकार हो जाते हैं, बिकॉज बच्चों को पता नहीं होता कि खुला सामान जो मार्केट में बिक रहा है उसको नहीं खाना है। तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे?
8: देखिए, एक तो है कि क्या ये जो बीमारी है ये मेनली अनहाइजीनिक और इनसैनिटेशन कंडीशन में ज्यादातर ये फैलती है, और पेरेंट्स इसके सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो इनको सिखा सकते हैं कि कैसे सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है। सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक वॉशिंग ऑफ द हैंड्स, हाथ धोने का, कैन रिड्यूस दिस एपिडेमिक बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि बाय सिंपल मैकेनिज्म्स, नो कॉस्ट, जस्ट बाय अवेयरनेस और बाय बिहेवियरल चेंज हम इसे कॉम्बैट कर सकते हैं।
7: इसका मतलब संजीत जी कि बच्चों को जो माता पिता हैं वो ज्यादा शिक्षा दे सकते हैं कि वो खाना खाने से पहले हाथ धोएं,
8: हाँ,
7: बाजार से खुला खाना न खाएं, ज्यादातर जहां मक्खी वगैरह हो उस जगह को साफ रखना चाहिए, भोजन ढक के रखना
8: चाहिए और गर्म भोजन खाना चाहिए। जहां आप कट फ्रूट्स और जहां ज्यादातर फ्लाइज बैठते हैं वहां से ये ज्यादा फैलती है। ये बीमारी इज ओनली ट्रांसमिटेड इन मैन, इट इज मैन इज द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
7: डॉक्टर साहब, एडल्ट्स भी इसका शिकार हो जाते हैं, ये मेरे को लगता है कि टोटल इग्नोरेंस है।
8: हाँ जी, और ये एडल्ट्स में ज्यादा प्रेवलेंट भी नहीं है क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी ज्यादा होता है बच्चों से, बट ये एडल्ट्स में भी होता है क्योंकि एडल्ट्स ज्यादातर आजकल बाहर खाना भी पसंद करते हैं और कट फ्रूट्स और ज्यादातर अनकुक फूड या कुक्ड फूड जो कोल्ड हो गया है और उसपे मक्खी बैठा है उसमें भी ये ट्रांसमिट होता है।
7: और बीमारी का अगर सही तरीके से उसकी प्रिवेंशन के बारे में नहीं पता है कि इससे कैसे बच सकते हैं और इलाज के बारे में नहीं पता है तो ये घातक भी हो सकती है।
8: हाँ जी, इसका मेन कारण है कि इससे बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है, इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं, इसके कारण शॉक होता है और शॉक के कारण एक आदमी मर भी जा सकता है। और ये एक बहुत लिमिटेड टाइम विद इन 24 आवर्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से डेथ देखा गया है। आजकल हैजा घट गया है पर ये एक एंडेमिक साइकिल होता है और ये साइकिल, लास्ट साइकिल हमने जब देखा था वो 1967 में देखा था और ये इंडोनेशिया में हुआ था, पर उसके बाद स्पोराडिक केसेस हर टाइम देखा गया है। भारत में बहुत ज्यादा है अभी भी और इसका प्रिवेंशन के लिए अभी वैक्सीन्स भी है और बच्चों में ज्यादातर जब मेले होते हैं या रथ यात्रा होता है तो मास वैक्सीनेशन होता है, पर ये एक ज्यादातर इम्यूनिटी उसी टाइम के लिए ही देती है, बट टू हैव टू वैक्सीनेशंस अपार्ट इन अ मंथ्स टाइम गिव्स फुल इम्यूनिटी, पर एडल्ट्स में एक ही बार वैक्सीन की प्रयोग से कॉलेरा कॉम्बैक्ट किया जा सकता है।
7: तो ये बच्चे को इसका वैक्सीनेशन कब लगता है?
8: देखिए, जैसे दूसरा वैक्सीन है वैसे इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है।
7: अच्छा,
8: ये एज इन वेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे मान लो आप जा रहे हैं कि तीर्थ में और जहां बहुत लोग जा रहे हैं तो वैसे आप 1 month अहेड आप एक वैक्सीन ले सकते हैं एंड देन जस्ट बिफोर यू लीव यू कैन टेक अनदर वैक्सीन।
7: तो ये एडल्ट्स भी ले सकते हैं?
8: हाँ, एडल्ट्स भी ले सकते हैं, पर एडल्ट्स में 2 doses की जरूरत नहीं होता है क्योंकि उनका प्रीवियसली कुछ इम्यूनिटी डेवलप्ड हो रहता है, तो इसमें एक ही डोज ऑफ वैक्सीन इज गुड एनफ।
7: तो ये तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी बाहर जा रहे हैं या जहाँ पे बहुत सारे लोग हों तो अपने बचाव के लिए 1 महीना पहले वैक्सीन ले सकते हैं इसकी, तो हम कुछ हद तक बीमारी से बच जाते हैं। तो डॉक्टर संजीत, ये जो प्रिवेंशन है वो तो इट्स ऑफकोर्स बेटर देन क्योर, पर आप थोड़े से सिम्टम्स बताएंगे हमारे श्रोताओं को कि जैसे बच्चा अगर हैजे का शिकार हो जाता है तो माता पिता को एकदम क्या लक्षण से पता चलता है कि ये हैजा का शिकार हुआ है।
8: इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं और उल्टियां भी होते हैं, और ये जो दस्त होता है ये बहुत वाटरी होता है और बॉडी वेट का जितना वजन होता है उसका ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है इसमें। और ये जो दस्त होता है इसको हम लोग राइस वाटर स्टूल बोलते हैं, क्योंकि वो आप रिलेट कर सकते हैं जब आप राइस बनाते हैं तो उसका
7: उसकी मार का जो कलर होता है वैसे दस्त का कलर होता है।
8: और इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है सॉल्ट्स का, ये लीड करता है जनरली हाइपो वॉल्यूमिक शॉक को और जिससे आदमी का डेथ भी हो सकता है।
7: ये शॉक इंसान को या बच्चे को लगता है कि जैसे ही बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई है और उसको बहुत ही कमजोरी सी महसूस होती है।
8: हाँ, कमजोरी तो महसूस होती है, पर इसमें सबसे ज्यादा पहले देखा जाता है कि मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं।
7: हाँ, हाँ.
8: और क्रैम्प्स के बाद आपको आपका जो पल्स है
7: हाँ,
8: वो बहुत थ्रेडी हो जाता है।
7: थ्रेडी मतलब?
8: थ्रेडी मीन्स आप फील करना मुश्किल हो जाता है। और कई जगहों में तो आप फील भी नहीं कर सकते हैं।
7: अच्छा।
8: और आपका जो स्किन का टेक्सचर भी है वो भी लॉस होता है इसमें।
7: पीलापन आ जाता है इसके?
8: नहीं, पीलापन तो नहीं आता है इसमें, पर इसमें ज्यादातर जब क्रैम्प्स होता है तो आप फेंट भी कर सकते हैं, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है।
7: तो इसका मतलब इमीडिएटली पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और ORS घोल भी पिलाते रहने की जरूरत है घर पे।
8: वो बहुत जरूरी है ORS घोल पिलाने में, जितना जल्दी हो डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉस है हम तो घोल जो पिलाते हैं उससे तो बहुत ज्यादा है, तो इंट्रावीनसली भी फ्लूइड्स देके इसको बैलेंस मेंटेन करना होता है।
7: और कितने दिन का ये इलाज होता है? 2 दिन या 3 दिन या ज्यादा समय भी लग जाता है इसको ठीक होने में?
8: ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, जनरली 4 to 6 days में आप सही हो जाते हैं
7: अगर आप समय पे डॉक्टर
8: के पास पहुंचे। एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ता है, पर देर आर 2 schools ऑफ थॉट वेदर टू गिव एंटीबायोटिक्स और वेदर नॉट टू गिव एंटीबायोटिक्स, पर क्योंकि खाली फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी वेदर इट कैन बी टेकन केयर ऑफ,
7: तो वो तो उस समय डॉक्टर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। पर ये तो पक्का है कि जैसे ही उल्टी और दस्त हो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है।
8: और पेशेंट को आइसोलेट करना का भी बहुत
7: अलग से उसको रखने की जरूरत होती है। इसका क्यों ऐसे है?
8: क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है मैन टू मैन, सो इट इज बेटर टू आइसोलेट देम फॉर अ वाइल। तो उससे क्या होता है कि यू आर एबल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीज।
7: बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देते हैं इसके ऊपर?
8: एक है कि खाना खाने के पहले हाथ धो के खाना खाना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल के पीना चाहिए, और ज्यादातर बाहर के कटे हुए जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाना नहीं चाहिए, उसको घर लाके धो के खाना चाहिए। ये मेरा सुझाव होगा।
1: तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मंजू और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
9: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं विशाल शर्मा। श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने द सेमिकॉन कंसोर्टियम की शुरुआत की है। ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप निवेशकों और वैश्विक कंपनियों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। ये पहल ऐसे समय में हुई है जब सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई को 1,27,500 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए इस मिशन को मंजूरी दी। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सेमिकॉन 2.0 भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्या बदलाव ला सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर इसका क्या असर होगा और सेमीकंडक्टर का बढ़ता क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक क्षमता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। अब पहले चरण से मिली गति को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले चरण यानी सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। आइए अब समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की अब तक की यात्रा कैसी रही है और सेमीकॉन 2.0 इस यात्रा को किस तरह आगे बढ़ाएगा।
10: सेमीकॉन 2.0 के तहत पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला क्षेत्र है डिजाइन। देश में 100 से अधिक स्टार्टअप चिप डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप के जरिए रणनीतिक और व्यावसायिक उपयोग वाले उत्पादों के लिए जरूरी डिजाइन और तकनीक विकसित की जा रही है। दूसरा क्षेत्र है मशीन और सामग्री। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी मशीनों, सामग्री, रसायनों और गैसों के निर्माण तथा इनके क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जरूरी आधार तैयार होगा और देश में प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा क्षेत्र है और अधिक फैब स्थापित करना। फैब यानी फैब्रिकेशन प्लांट वह विशेष संयंत्र है जहां सिलिकॉन वेफर पर बेहद छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किए जाते हैं और उनसे सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है। भारत में पहली फैब के 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। चौथा क्षेत्र है ATMP और OSAT उद्योग को और मजबूत करना। भारत में ATMP यानी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग से जुड़े संयंत्रों में हो रहे काम के बाद दुनिया भारत को ऐसे संयंत्रों के लिए एक वैकल्पिक स्थान के रूप में देख रही है। सेमीकॉन 2.0 के तहत इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाएगा और उन्नत ATMP तकनीकों को भारत लाने पर जोर रहेगा। पांचवा क्षेत्र है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। छठा क्षेत्र है टैलेंट डेवलपमेंट। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कुशल लोगों की जरूरत को देखते हुए देश में 315 विश्वविद्यालयों में छात्रों को आधुनिक EDA टूल्स की मदद से चिप डिजाइन की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक करीब 68,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्रोताओं, अगर सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के पहले चरण की बात करें तो अब तक 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें कुल 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। इन 12 स्वीकृत प्रस्तावों में से 3 कंपनियों ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है जबकि एक और कंपनी के जल्दी ही उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। डिजाइन के क्षेत्र में भी पहले चरण के तहत स्टार्टअप और MSME की 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।
9: श्रोताओं, सेमीकॉन 1.0 के तहत भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार किया। अब सेमीकॉन 2.0 के साथ इस यात्रा को अगले चरण में ले जाने की तैयारी है। पहले चरण से दूसरे चरण तक भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में क्या बदलाव आया है, इसे समझने के लिए आकाशवाणी समाचार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
11: फेज 1 में हमारा क्रेडिबिलिटी बन गया है और फेज 2 में आउटकम जो होगा हमारा उससे हम कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे और इस पॉलिसी में पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम बनेगा, जो फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है जिसे ATMP कहा जाता है, डिजाइन है, R&D भी किया जाएगा इसमें और साथ में मशीनरी और मटेरियल्स कहेंगे हम, उसमें करीबन 200 से 250 प्रकार के केमिकल्स, गैसेस और मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और इक्विपमेंट की, उसको भी फोकस किया जाएगा। उसके लिए भी 30% का गवर्नमेंट ने सब्सिडी तय किया है जिससे वो काम भी इंडिया में बना जाएगा। हमें अब सिर्फ चिप बनाने की बात नहीं लेकिन चिप बनाने के लिए और इसके डिजाइन के लिए जो भी कौशल विकास और सप्लाई चेन है उस पर ध्यान देना जरूरी है। इस इनिशिएटिव से देश में अधिक मूल्य संवर्धन होगा, इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होगी, देश में आयात की निर्भरता भी बहुत कम होगी। मैं अगर नंबर की बात करूं यहां पर हमारा 2030 में करीबन $100 बिलियन का सेमीकंडक्टर कंजम्पशन होगा।
9: श्रोताओं, सेमीकॉन 2.0 में पूरे इकोसिस्टम के विकास के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर भी विशेष जोर दिया गया है। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में इन प्रयासों का क्या महत्व है, इस पर अशोक चांडक ने विस्तार से बात की।
11: अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, इसके बिना ये होगा नहीं। हमारे पास प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं है, नथिंग रॉन्ग, नहीं है तो नहीं है, उसको ला सकते हैं। तो इसलिए भारत केवल जो आर्थिक प्रोत्साहन है, जिसे हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में भारत की जो स्टेबल पॉलिसीज और कुशल मानव संसाधन टैलेंट और जो हमारा घरेलू बाजार है, डोमेस्टिक मार्केट, ये काफी तेजी से विकसित हो रहा है। और इसीलिए ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पूरा टोटल है, इसे हम बना रहे हैं, और ये जब बनेगा तभी भारत में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इंटरेस्ट बताएंगी और वो निवेश करेंगी। हमारे पहले चरण में जो सेमीकॉन फेज वन में कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। और मैं और एक कहना चाहूंगा, एक हम इवेंट करते हैं सेमीकॉन इंडिया, जो कि अभी सितंबर में आ रहा है, इसमें हम काफी प्रमोशन करते हैं और विदेशी कंपनियां आती है। इस साल भी सेमीकॉन इंडिया में करीबन 300 विदेशी कंपनियां आएंगी।
9: श्रोताओं, सेमीकंडक्टर को अक्सर केवल मोबाइल फोन, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज सेमीकंडक्टर आधुनिक अर्थव्यवस्था के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का आधार बन चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर उद्योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं।
10: अनुमान है कि 2035 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का हो सकता है। वहीं भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2035 तक करीब 200 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। देश में सेमीकंडक्टर की मौजूदा खपत का करीब 90 से 95% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसका मतलब है कि घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसे पूरा करने की हमारी अपनी क्षमता अभी सीमित है। भारत की आयात निर्भरता का एक सीधा आर्थिक असर विदेशी मुद्रा पर भी पड़ता है। वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2025 के बीच भारत ने महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात पर करीब 150 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च किए। इसी अवधि में सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात में सालाना औसतन 23% की दर से बढ़ोतरी हुई। अगर ये गति बनी रहती है तो 2035 तक सालाना आयात लागत 40 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकती है। इसलिए भारत के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमता विकसित करना केवल आयात कम करने का सवाल नहीं है, ये देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने, विदेशी मुद्रा बचाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सप्लाई में होने वाले व्यवधान से बचाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आज की आधुनिक रक्षा प्रणालियां भी सेमीकंडक्टर पर काफी हद तक निर्भर है। मिसाइल, ड्रोन, रडार, लड़ाकू विमान, नौसैनिक प्रणालियां और सुरक्षित संचार व्यवस्था, इन सभी में सेमीकंडक्टर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
9: श्रोताओं, भारत ने अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी आगे की दिशा तय करना शुरू कर दिया है। 2035 तक भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को 120 से 150 बिलियन अमरीकी डॉलर का बनाना है और इसी अवधि में 35 से 50% तक चिप सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह देखें तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की कोशिश केवल अपनी जरूरत पूरी करने की नहीं है, लक्ष्य एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है जो घरेलू जरूरतों को पूरा करे, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ाए और सेमीकंडक्टर को आर्थिक विकास, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का आधार बनाए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
12: रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
1: ओ, तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
0: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट। बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा। ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है। हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है। इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।

आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियो आर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ न होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपके बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कोल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, भारत आज ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से विस्तार किया जा रहा है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा अब केवल भविष्य की संभावना नहीं बल्कि वर्तमान की एक मजबूत वास्तविकता बन चुकी है। सौर और पवन ऊर्जा की बढ़ती स्थापित क्षमता, घरेलू विनिर्माण में विस्तार, ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और नई तकनीकों के विकास ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नए चरण में पहुंचाया है। इसी क्रम में 31 जुलाई को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना यानी PMSSY को मंजूरी दी। ये योजना ऊर्जा भंडारण के साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता किस तरह तेजी से बढ़ रही है, सौर और पवन ऊर्जा इस परिवर्तन के प्रमुख आधार क्यों बन रहे हैं, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना किस तरह फ्लोटिंग सोलर और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा दे सकती है और हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन में भारत ने किस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। वर्ष 2014 में भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 2.82 गीगावाट थी। ये क्षमता 30 जून 2026 तक बढ़कर 162.15 गीगावाट हो चुकी है, यानी एक दशक से कुछ अधिक समय में सौर ऊर्जा क्षमता में 53 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ये बदलाव केवल बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों तक सीमित नहीं है। सोलर पार्क, रूफटॉप सौर ऊर्जा, सौर कृषि पंप और अब फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जैसी नई व्यवस्थाएं भारत के ऊर्जा परिदृश्य को व्यापक बना रही हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में वितरित सौर ऊर्जा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान जोड़ी गई 44.61 गीगावाट सौर क्षमता में लगभग 16.3 गीगावाट यानी करीब 36% वितरित सौर ऊर्जा से आया। इसमें रूफटॉप सौर ऊर्जा और पीएम कुसुम के तहत स्थापित क्षमता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत का सौर परिवर्तन केवल बड़े बिजली संयंत्रों तक सीमित नहीं है, ये घरों, खेतों और स्थानीय स्तर तक पहुंच रहा है। अब बात करते हैं भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा के एक नए और महत्वपूर्ण आयाम फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक यानी FSPV परियोजनाओं को समर्थन देना है। योजना के तहत कम से कम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी जिसकी कुल क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। इससे पीक डिमांड के समय बिजली की अतिरिक्त मांग पूरी की जा सकेगी। फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में सौर पैनल जलाशयों और जल निकायों की सतह पर लगाए जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता कम होती है और उपलब्ध जल संसाधनों के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाएं भी जन्म लेती हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। योजना से हर वर्ष लगभग 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। इस योजना का महत्व केवल अतिरिक्त सौर क्षमता विकसित करने तक सीमित नहीं है। ऊर्जा भंडारण को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ने से दिन में उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को आवश्यकता के समय इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है।
1: श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।
3: भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षमता में 6.057 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ ही 30 जून 2026 तक देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 57.44 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा से वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 106 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष के 83 अरब यूनिट की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। भारत वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। मार्च 2014 में देश की पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 21.04 गीगावाट थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 56.09 गीगावाट हो गई। पवन ऊर्जा की खासियत ये भी है कि इसका उत्पादन सौर ऊर्जा के साथ बेहतर तालमेल बना सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन का लगभग 45% हिस्सा पीक डिमांड के समय आता है। इससे ग्रिड की विश्वसनीयता मजबूत करने में मदद मिल सकती है। पवन टर्बाइन के घरेलू विनिर्माण में भी तेजी आई है। मार्च 2026 तक भारत की विंड टर्बाइन विनिर्माण क्षमता थी लगभग 24 गीगावाट, जबकि 2014 में ये करीब 10 गीगावाट थी। इस तरह सौर और पवन ऊर्जा मिलकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण को मजबूत कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, नवीकरणीय ऊर्जा की कहानी केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, अब स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा कर रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन।
4: 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को जीन सोनीपत रेल खंड पर हरी झंडी दिखाई गई। ये ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से ट्रेन के भीतर ही बिजली पैदा करती है। इसके संचालन के दौरान मुख्य उप उत्पाद के रूप में जल वाष्प निकलती है और टेल पाइप से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। भारत की ये हाइड्रोजन ट्रेन स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2 ड्राइविंग पावर कार हैं, जिनकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट है। इसकी परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा और डिजाइन गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइड्रोजन की आपूर्ति के लिए जींद में समर्पित हाइड्रोजन भंडारण और रीफ्यूलिंग व्यवस्था भी विकसित की गई है। ट्रेन के संचालन के शुरुआती चरण में ही ये 1200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुकी है और 3200 लीटर से अधिक डीजल की बचत दर्ज की गई है। ये उपलब्धि दिखाती है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा को केवल बिजली उत्पादन में ही नहीं बल्कि परिवहन क्षेत्र में भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: श्रोताओं, सौर और पवन ऊर्जा के तेजी से विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, जबकि पवन ऊर्जा का उत्पादन हवा की गति पर। इसलिए भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था के लिए केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी जो जरूरत के समय बिजली उपलब्ध करा सके और ग्रिड को स्थिर बनाए रखे। यहीं पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पंप्ड स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ जाती है। श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति अब कई महत्वपूर्ण आयामों को एक साथ आगे बढ़ा रही है। पहला है अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, दूसरा ऊर्जा भंडारण और ग्रिड की विश्वसनीयता, तीसरा घरेलू विनिर्माण और रोजगार, और चौथा परिवहन तथा उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। वर्ष 2025-26 में भारत ने 55.3 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। मार्च 2026 तक देश की कुल गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 283.46 गीगावाट हो चुकी थी। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की दिशा में सौर और पवन ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ परिवहन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां सूर्य, हवा, जल, हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण मिलकर देश के भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था को आकार दे सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा से ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से विकसित भारत, यही भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति की व्यापक दिशा है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक है अक्षत ममगई। नमस्कार।
5: दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी दोस्तों, मैं हूँ संजना, मैं झज्जर जिले के माजरी गांव से हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का प्रोग्राम दहेज प्रथा पर है, तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये दहेज की कहानी।
6: बहू बहू, जरा सुनती हो?
7: क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया?
6: बुलाया तो है, मगर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया है। तेरे माँ बाप ने जो 3 लाख रुपए गाड़ी देने की जो बात की थी, वो पैसे और गाड़ी अब तक देने क्यों नहीं आए?
7: माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उन्होंने मेरे पढ़ने लिखने में सारे पैसे लगा दिए।
6: अपने पापा से कह देते, अपना मकान गिरवी रख कर दहेज के पैसे दे देती।
7: माँ जी, मुझे घर से मत निकालो, मैं अपने घर से दहेज ले आऊंगी।
6: दहेज के तो पैसे नहीं लाई, मेरी माँ से ऐसे जुबान लड़ाएगी, निकल जा मेरे घर से।
7: माँ जी, मुझे मत निकालो।
8: बाबूजी।
9: हाँ बेटी।
7: मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा है कि जब तक तुम पैसे नहीं लेके आओगे, जब तक तुम्हारी शक्ल नहीं मत दिखाना।
9: ठीक है तो बेटी, मैं घर को गिरवी रख कर दहेज के पैसे दे दूंगा।
7: अगर वो अपने लिए पैसे मांग सकते हैं, अपने लालच को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो पापा मैं आपके साथ हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको घर गिरवी रखने की। आप है तो हम है, किसी से दबकर नहीं, सिर उठाकर और अपनी हिम्मत से जीना सीखिए।
5: तो दोस्तों, आपने सुना, दहेज लेना और देना पाप है। तो दोस्तों, संजना को दीजिए इजाजत, तो कल मिलेंगे इस समय और इसी चैनल पर। आप सबको मेरा नमस्कार।
10: रीड इंडिया का कार्यक्रम सुनने वालों को गीता का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ है वंदना जी, जो बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। वन्ना जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
11: थैंक यू सो मच गीता जी।
10: वन्ना, आप मुझे बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से 6 साल तक, गांवों में तो उनके लिए स्कूल ही नहीं है, आंगनवाड़ीज हैं, आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, और हमें साइंस ये कहती है कि इन बच्चों को 6 महीने से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना शुरू कर देना चाहिए, तो इसमें आपका क्या विचार है?
11: बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम, कि हमें 6 महीने के बच्चे से बच्चे को एक्टिविटीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब एक छोटा बच्चा घर में आता है हमारे, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बढ़ जाती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अपना रोल प्ले करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम 3 महीने, आपने 6 महीने का बच्चा बोला और मैं 3 महीने से ही बोलती हूँ, या जब बच्चा घर में आता है, उसी दिन से हमें जो वैल्यूज बच्चे को देनी है, हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा होकर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाए, तो उसे किताबों की आदत डालिए। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छी बातें बोले, तो उसके सराउंडिंग आप जो भी बात कर रहे हैं, उसमें वो चीज आप में भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है छोटा बच्चा सुनता नहीं है, बट बच्चा माँ के पेट के अंदर से ही सुनना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जब वो फैमिली में आता है, 6 महीने का होता है, साल का होता है, तो घर के सिस्टम को ही हमें स्कूल में बदलना बहुत जरूरी हो जाता है।
10: वंदना जी, अगर आप शहर की बात करें, तो सब माएं तो नौकरी करती हैं, और बच्चा जब जगता है उससे पहले ही वो दफ्तर चली जाती हैं, और जब वो वापस आती हैं तो 1 घंटा ही बचता है उनके पास, बच्चे के सोने का टाइम हो जाता है। इस केस में बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है?
11: ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कि माँ बाप के पास बहुत कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज छोटे होते बच्चे के अंदर हमें डालनी है, उस टाइम पे वो मदर जो है वो एक वर्किंग वुमेन का रोल प्ले करना चाहती है। तो बहुत जरूरी है आपको उस बैलेंस को मेंटेन करना, उस क्वालिटी को मेंटेन करना कि अगर आप बाहर निकलना चाहती हैं तो ये आपको देखना है कि आप बच्चे को वो वैल्यूज कहाँ से देंगी। या तो आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स वो रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ देते हैं। मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ने का मतलब है बच्चे के अंदर वो वैल्यू नहीं आएगी, उसका रहना बोलना वो नहीं होता। सेकेंड पार्ट है मोंटेसरी स्कूल्स, डे केयर्स, जिसमें बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डाली जाती हैं। तो क्योंकि आजकल वर्किंग वुमेन का कल्चर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी के लिए हम लोगों का जो मोंटेसरी सिस्टम है एजुकेशन का, वो हमें लाइन में लाना पड़ रहा है, सो दैट हम पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों के अंदर उन वैल्यूज को इनकल्केट कर सके।
10: वंदना, आपके सुझाव सुनने के बाद मेरे दिमाग में तीन बातें आ गई हैं, और तीन बातें ही अलग अलग हैं। एक तो ज्वाइंट फैमिली का ब्रेक होना, पर ज्वाइंट फैमिली का होना भी एक प्लस पॉइंट है। पर अगर हम ज्वाइंट फैमिली का प्लस पॉइंट समझते हैं, तो आजकल एजुकेशन में इतना गैप आ रहा है कि जो यंग मदर है वो कहती है मेरे बच्चे को एक पर्टिकुलर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए, जो मदर इन लॉ या मदर में वो टेक्निक नहीं होती है, तो वो भी गैप फिल करने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, तो मेड्स को वो नहीं आता है तरीका बच्चों को रखने का, जिससे बच्चों को वो वैल्यूज नहीं आती हैं। तीसरी बात ये कि अगर वो मोंटेसरी स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स भी उसको एक जॉब की तरह लेती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मुझे तो ये इतनी बड़ी आगे आने वाले समय में समस्या लग रही है, और हम इससे झुलझ रहे हैं, हम भुगत भी चुके हैं, और आगे जो जनरेशन आ रही है उनको वैल्यू सिस्टम देना, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम कैसे एक बैलेंस ड्रॉ करें।
11: इस बैलेंस को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सी, इट डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फैमिली क्या है। जैसे आपने मुझसे पहला सवाल किया कि अगर ज्वाइंट फैमिली है तो हर मदर चाहती है कि मैं उसको अपने तरीके से वैल्यू दूं, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको आजकल के बारे में नहीं पता। बट उस मदर का ये समझना जरूरी है कि जो एक बेसिक वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ देने का तरीका बदल गया। 10 साल पहले या 20 साल पहले भी जो बच्चे बड़े हुए थे या जिस कैटेगरी में हम अपने आप को डालते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम किसी गलत सिस्टम में फॉलो करा हमने, कि हम आजकल के बच्चों को सिस्टम में नहीं ला सकते हैं। तो जो आजकल की जनरेशन, आजकल की जो मदर है, उसके माइंड में एक सिर्फ एक माइंडसेट उसका चेंज करना है कि जो वैल्यू आपके घर के लोग आपके बच्चे को दे सकते हैं वो बाहर की मेड कभी भी नहीं दे सकती। सेकेंडली, जो एक टीचर का आपने बोला कि आजकल 90% टीचर्स जो हैं वो ये मान के काम करती हैं कि हम प्रोफेशनलिज्म पे काम करें, कि हमारी हर मंथ की सैलरी हमारी पॉकेट में आ रही है, बट हमें बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बनाना। सो मेरी लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, जिन लोगों में पर्सनल टच नहीं है, वो लोग टीचर की जॉब के लिए कभी भी आगे नहीं आए। बिकॉज एक टीचर है जो बच्चे को बनाएगी या बच्चे को तोड़ेगी। माँ बाप के पास बच्चा रहता है पूरा दिन, लेकिन बीच में 6 घंटे बच्चा जो है वो स्कूल में टीचर के पास आ रहा है। तो जब हम किसी टीचर को भी अपॉइंट करते हैं तो हमें उनके साथ मिलकर ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चों से कैसे डील कर रही है। वैल्यू सिस्टम सालों से सेम चलता आ रहा है, उसको आगे पहुंचाने का तरीका धीरे धीरे साल में बदलता चला जा रहा है, जिसको हमें कनेक्ट करना है।
10: बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि वैल्यू सिस्टम्स तो वही है, पर हमें देने का तरीका बदलना है।
11: जी।
10: देने का तरीका बदलने पे मुझे एक और सामने समस्या खड़ी हो रही है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो कमर्शियल में बदलता जा रहा है। हर कोई पैसा देके डिग्री लेने की दौड़ में चला जा रहा है, और जो वैल्यू है एजुकेशन की वो कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है, उसको भी समेटने की बहुत जरूरत है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम जो हम आज हमने ये बात करी, ये उस महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए जहां पे रीड इंडिया के सेंटर्स हैं, और रीड इंडिया के जो सेंटर्स हैं उनके साथ हमने प्री स्कूल भी खोले हैं, और उन प्री स्कूल्स में हम कितने वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, और टीचर्स को कैसे हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज दे रहे हैं, जॉब भी दे रहे हैं, उससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनको पैसे भी उतने ही दे रहे हैं जो एक कमर्शियल स्कूल में मिलते हैं, पर जो हमारी ट्रेनिंग है, जो बच्चों का रख रखाव है स्कूल में, और जो बच्चों को हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मैं ये पढ़ाई नहीं कहूंगी, हम उनको वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं, और अगर एक बच्चे की बुनियाद अच्छी बन जाती है तो वो बड़े होके इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने आप अपनी राह को तराश करने की कोशिश करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये बात करने का।
11: थैंक यू सो मच।

0: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
1: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किए।
0: पर असल समस्या और थी।
2: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
1: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टार डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
0: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
1: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
0: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
1: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
0: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
1: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
0: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
1: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
0: श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026।
3: इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन डॉक्टर आईके धवन। डॉक्टर धवन से हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर धवन, कैंसर की बीमारी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे होती है, किस बीमारी को कैंसर कहा जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए।
4: ऐसे है कि बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू रिपेयर का सिस्टम या मैकेनिज्म है वो बड़ा रेगुलेटेड है, उसके रेगुलेटेड है और वो मतलब गलत नहीं होता, चलता रहता है। जैसे नेचर ने कहा है ऐसे ही रिपेयर सिस्टम होता रहता है। हर एक सेल मर जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, पर एक किसी ऑर्डर में आता है, किसी नियम से आता है। पर जब ये नियम टूट जाता है, जब सेल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं और ट्यूमर बनते जाते हैं, तो फिर हम उसको कैंसर कहते हैं।
3: डॉक्टर धवन, क्या ये बात सच है कि ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं?
4: ये बात सच है कि दो किस्म के ट्यूमर होते हैं, एक तो जो मैलिग्नेंट होते हैं और एक जो बिनाइन होते हैं। जो बिनाइन होते हैं वो तो 100% इजीली क्योरेबल होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो हर एक जगह, हर एक अंग के फर्क फर्क क्योर रेट्स होते हैं। और फर्क उनमें ये है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो सेल्स अपना रूप छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर रहता है, डिसऑर्डरली नहीं होते। जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो अपना रूप छोड़ देते हैं, वो डिसऑर्डरली हो जाते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ब्लड वेसल में चले जाते हैं, लिम्फैटिक्स में चले जाते हैं, जो अपनी कैप्सूल होती है उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो ये फर्क है दोनों में।
3: डॉक्टर धवन, इस बीमारी के साथ स्टेजेस हैं कि स्टेज वन का है, स्टेज टू का है, तो कई बारी पता चलता है जब तक कि इसको व्यक्ति को कैंसर है और ये कहा जाता है कि आखिर स्टेज का पता चला, तो ऐसा क्यों होता है?
4: ऐसे है कि ये सच है कि किसी किसी ऑर्गन्स में कैंसर जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए देर से महसूस होता है, पर जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती है तो हर एक अंग में यही कोशिश है कि कैंसर जल्दी पकड़ा जाए, उस स्टेज पे पकड़ा जाए जिस स्टेज पे उसका इलाज हो सके। एक तो बात यह है। दूसरा बात यह है कि बहुत ज्यादा जोर और एम्फेसिस है अपनी लाइफस्टाइल पे। जो फैक्टर्स कैंसर को प्रमोट करते हैं, जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल से निकाल देना चाहिए, जैसे स्मोकिंग एंड टोबैको यूज।
3: डॉक्टर धवन, अमूमन ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी उम्र की महिलाओं को ही होता है, क्या छोटी उम्र की महिलाएं भी इसकी शिकार होती हैं?
4: सच है कि ब्रेस्ट कैंसर यंग महिलाओं में भी, छोटी उम्र की महिलाओं में भी होता है, पर इतना कॉमन नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, महिलाओं को इसकी सही सही जानकारी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए?
4: थोड़ी सी गलतफहमियां भी दूर करना जरूरी है। सबसे दुनिया भर में अच्छा सिस्टम जो डेवलप और मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम जो डेवलप हुआ है कि औरतों को 50 साल की उम्र या 40 साल की उम्र की औरतों को ये सिखाना चाहिए कि अपना ब्रेस्ट को कैसे पैल्पेट करें या फील करें। हम लोग यही कहते हैं कि महीने में एक दफा जब आप नहा रहे हों, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएं, पीरियड्स के बीच में, मतलब पीरियड्स के वक्त तो गांठें महसूस हो जाती हैं, पीरियड से पहले महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स के बाद हफ्ता भर बाद आप अपना ब्रेस्ट नहाते वक्त, क्योंकि साबुन लगाएं ब्रेस्ट के ऊपर फिर अपना हाथ उसके ऊपर लगाएं, तो गांठ जो हो वो अच्छी तरह महसूस हो जाती है। हमने देखा है कि जो अनपढ़, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं औरतें, उन्होंने भी कभी रेडियो में सुना हो तो वो आते हैं क्योंकि हमने रेडियो में सुना, तो हमने अपना ब्रेस्ट को फील किया तो हमें ये गांठ मजर। सो ये बहुत सबसे अहम बात है कि औरतों को सिखाना। दूसरी बात ये है कि 50 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग या 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है 15 या 20 औरतों में से 50 साल की उम्र के बाद एक को जरूर होगा ब्रेस्ट कैंसर, इतना इसका इंसिडेंस हाई है। तो इसलिए हर एक की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। नाउ स्क्रीनिंग में थोड़ी सी गलतफहमी ये है कि मैमोग्राम करा लो तो स्क्रीनिंग हो गई, ये नहीं है। स्क्रीनिंग के दो भाग होते हैं, एक तो कोई डॉक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर को देखते रहते हैं वो ब्रेस्ट को अच्छी तरह फील करें, और दूसरा एक साल में या दो साल में मैमोग्राम कराएं। सो ये दोनों भाग हो तब स्क्रीनिंग इफेक्टिव होती है, अगर एक ही भाग करें तो स्क्रीनिंग आधी इफेक्टिव होती है।
3: डॉक्टर धवन, अगर हम कामकाजी महिलाओं को देखें तो बच्चा होने के एक दो महीने के बाद से ही वो ऑफिस जाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में बच्चे को दूध पिला पाना तो संभव नहीं है, इसका भी कोई असर होता है उनकी सेहत पर?
4: ये बिल्कुल कंसर्न है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर के वजह से कंसर्न है और दूसरा बेबी के लिए भी कंसर्न है कि द बेबी डजंट गेट द मदर्स मिल्क, ही इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन और शी इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन, सो दोनों तरफ से कंसर्न है।
3: डॉक्टर धवन, आप हमारे स्टूडियो में आए और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इतनी सारी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी, हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं तो जरूर बताइए।
4: सबसे अच्छा सिस्टम तो यही है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। लाइफस्टाइल में सबसे जरूरी चीज है कि टोबैको का इस्तेमाल या सिगरेट के रास्ते या तंबाकू खाने के रास्ते या नसवार रखने नाक में डालने के रास्ते, ये तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि ना ही ये कई जगह कैंसर का रोग करता है। बाकी और लाइफस्टाइल, ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको भी कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होता है, और खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिलाओं को यही एडवाइस होगी कि दे शुड गेट देयर चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ, दे शुड ब्रेस्ट फीड देम फॉर अ ईयर, ईयर एंड हाफ और टू ईयर्स, एंड दैट विल बी अ बिग बोनस, एंड दे शुड फील देयर ब्रेस्ट वंस अ मंथ, अ वीक और 10 days आफ्टर देयर पीरियड्स, एंड इफ दे नोटिस एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत मिले तो फौरन अपने कंसल्टेशन करें।
0: डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
5: एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं, इसकी खेती आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है क्योंकि इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके गुणों की अब पहचान हो गई है, जिसके चलते अब इसकी मांग में लगातार हम बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं, जिसका फायदा हमारे किसान भी उठा रहे हैं इसकी खेती को अपनाकर। जी हाँ, अगर आप भी करना चाहते हैं एलोवेरा की खेती, तो क्या है इसका सही तरीका, आइए आपको बताएं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से।
6: एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच एक एक मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह एक हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी।

भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का करो या मरो आह्वान और देश भर से अनगिनत आजादी के मतवाले बलिदान की राह पर चल पड़े। उन्हीं में से एक वीरांगना थी कनकलता बरुआ। असम के गोहपुर में जन्मी कनकलता के मन में क्रांति का अंकुर महज 7 वर्ष की उम्र में ही फूट चुका था, जब कनकलता ने पास के गांव में हुई एक क्रांतिकारी सभा में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तेजपुर में मृत्यु वाहिनी दल के गठन के दौरान कनकलता दल की सक्रिय सदस्य बन गईं। आंदोलन के समर्थन के लिए मृत्यु वाहिनी ने गोहपुर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया और 20 सितंबर 1942 को हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए कनकलता जुलूस के साथ आगे बढ़ने लगी। पुलिस की चेतावनी से बेपरवाह निर्भीक कनकलता के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ता रहा। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। गोली लगते ही कनकलता गिर पड़ी और आखिरकार हाथ में तिरंगा और दिल में आजाद राष्ट्र का सपना लिए ये महान स्वाधीनता सेनानी हमेशा के लिए पंचतत्व में लीन हो गई।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: मृदंगम ही उनकी धड़कन है। श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति संगीत ममूर्ति की जन्मस्थली।
1: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं, और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
0: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
1: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
0: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
1: जब मैं मद्रास आया तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
0: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. वसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्त वत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्त वत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो।
1: संगीत मेरी सांस है, मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा।
0: श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026।

रीड इंडिया रेडियो में फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अनुजा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम लेकर के आए हैं अपनी सभी महिला साथियों और बेटियों और बहनों के लिए और बाकी और श्रोताओं के लिए भी। हॉस्पिटैलिटी

0: जीवन बेहतर कर सकते हैं, इस पर ही बात हम करेंगे आज। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास है, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में है दीक्षा। तो दीक्षा, आपका रीड इंडिया रेडियो में स्वागत है।
1: थैंक यू
0: दीक्षा। अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं।
1: मेरा नाम दीक्षा है, मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। मैंने अपना बैचलर्स करा है होटल मैनेजमेंट में, उसके बाद मैंने एक साल का डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करा था कुकिंग में, जो कि एफिलिएटेड था ले कोडब्लू पेरिस से, जो कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। मेरे पास उसका भी सर्टिफिकेट है। तो अब मैं रीड इंडिया में आई हूँ और रीड इंडिया में लोगों को हॉस्पिटैलिटी के बारे में सिखाऊंगी।
0: क्या चीज आपको खींच के होटल मैनेजमेंट की ओर ले गई, जबकि आज भी दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम लोग बहुत ही ग्लैमरस व्यवसाय समझे जाते हैं, तो क्या चीज थी जो होटल मैनेजमेंट की ओर आपको खींच ले गई?
1: जैसे कि आपने बोला कि ग्लैमरस, एक्चुअल ग्लैमर आपका होटल इंडस्ट्री से आता है। मैंने होटल इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन करी थी कि मेरे को मौका मिलेगा, मैं अलग अलग देश के अलग अलग लोगों से मिलूंगी, उनको सर्व कर सकती हूँ या उनके साथ बैठ के मैं उनसे बात कर सकती हूँ, उनसे इंटरैक्ट कर पाऊंगी। तो मैं उनको और उनके कल्चर को जान पाऊंगी। उनसे अगर मेरे को मतलब मौका मिलेगा किसी से बात करने का, तो मेरे को एक तरीके का जैसे कि किसी नए इंसान से मिलने में हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, मेरे को वो उत्साह था, तो मैंने इसलिए होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करा था।
0: तो देखिए दीक्षा हर बार कुछ नए लोगों से मिलना चाहती थी, कुछ नया जानना चाहती थी, और इसीलिए दीक्षा ने चुना होटल इंडस्ट्री को, और उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, और कुछ नया सीखने सिखाने के लिए वो फिर अब आपके बीच में भी हैं। तो दीक्षा के होने का हमें फायदा मिलना ही चाहिए, क्योंकि दीक्षा अब हमारे साथ रीड इंडिया की बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी लड़कियों को जो गांव में हैं, जो बाहर अभी निकली भी नहीं है, जो रोजमर्रा की चीजों में आनंद लेती हैं, मजा लेती हैं, वो अच्छी बात है, बट उसको और कैसे सुंदर बनाया जाता है, इस पर बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाली है। तो दीक्षा हमें आप बताइए कि होटल मैनेजमेंट में एक टर्म होता है, एक शब्द होता है हॉस्पिटैलिटी, क्या है ये हॉस्पिटैलिटी?
1: हॉस्पिटैलिटी लोग अक्सर जब सुनते हैं हॉस्पिटैलिटी, तो कुछ लोग उसको हॉस्पिटल के पास ले जाते हैं, वो नहीं है। हॉस्पिटैलिटी होता है जैसे अब मैं आपके यहाँ पे आई हूँ रेडियो पे, तो मेरे को आप अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, मतलब आप होस्ट है और मैं गेस्ट हूँ,
0: मतलब कि हम कैसे आपका स्वागत कर रहे हैं, कैसे आपकी आवभगत कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटैलिटी में वो हमारे साथ क्या करने वाली हैं दीक्षा, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं हॉस्पिटैलिटी में जो मेरे पास लेडीज होंगी उन सबको मैं अच्छे से ट्रेन करूंगी। किस में? सबसे पहले मैं उनको किसी से अगर कोई आता है उससे कैसे उसकी आवभगत करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे उसके साथ पेश आना चाहिए, क्या जैसे हम कभी होटल में जाते हैं तो हम देखते हैं अंदर घुसते ही हमें टाइम के हिसाब से लोग ग्रीट कर रहे हैं, मतलब विश कर रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो ऐसे मैं उन लोग को पहले सिखाऊंगी कि हम लोग को अपना पोस्चर, मतलब कैसे बैठना चाहिए, कैसे किसी के सामने आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये वो बात है। हॉस्पिटैलिटी में सबसे बड़ा की पॉइंट होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, मतलब जब आपको इंसान पहली नजर में देखेगा जो इम्प्रेशन तब पड़ेगा वो पहला और आखिरी इम्प्रेशन है, उसके बाद आप इम्प्रेशन कुछ भी करते रहो वो इम्प्रेशन कभी नहीं बदलेगा आपका। तो मैं हमारी सारी लेडीज को ऐसे ट्रेन करूंगी कि लोग अगर कहीं वो बाहर जॉब अप्लाई करने जाते हैं, कुछ करते हैं, लोग देखें, ये ना बोले कि ये लोग गांव के हैं, ये बोले यार ये गांव के होके भी ऐसे हैं, इनको तो हमने लेना ही लेना है।
0: थोड़ा सा दीक्षा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि ये गांव की औरतों के साथ या गांव की बेटियों के साथ या गांव के लड़कों के साथ हम इस कोर्स को करेंगे अगर, तो उससे उनके लिए क्या अवसर खुलते हैं, क्या मौके खुलते हैं?
1: ये एक सिर्फ टर्म है कि हम गांव के लोगों के साथ कर रहे हैं। अभी अगर आप देख लो कि जो हमारे शहर के लोग हैं और जो गांव के लोग हैं, अगर मैं अभी कंपैरिजन करूं तो मेरे गांव के लोग ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं शहर के लोगों से ज्यादा। शहर के लोगों के सर पे हवा चढ़ी हुई है, गांव के लोग उतने ही हैं कि हाँ हमें कुछ करके दिखाना है, तो उनके लिए काफी अवसर है। अब जैसे आप मुझसे बात करें कि मैं उनको अगर पोस्टर्स भी सिखाऊंगी, जेस्टर्स सिखाऊंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे किसी को ग्रीट करना है वो सिखाया जाएगा, कैसे बैठना है, कैसे अपने आप को

0: पेश करना है लोगों के सामने, एक बार ये चीज सिखाई जाएगी तो उनमें अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के अब आप पूछेंगे इसका होटल में क्या काम है। अगर ये लोग किसी क्वालिफिकेशन की वजह से आगे फ्रंट होटल के फ्रंट में नहीं जा सकते तो ये बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं। होटल में एक होता है सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर हर होटल का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो सर्विस सेंटर में गेस्ट, जितने भी गेस्ट होते हैं, हमें लगता है हम गेस्ट हैं, हम फोन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट रिसेप्शन पे जा रहे हैं, वो कॉल जाती है सर्विस सेंटर में। ये लोग उठाते हैं, ये लोग ग्रीट करते हैं, ये लोग बात करते हैं, ये लोग होटल को रिप्रेजेंट करते हैं गेस्ट के सामने, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि ये सॉल्व नहीं कर पाते तब फ्रंट ऑफिस पे जाती है वो बात, रिसेप्शन पे तब जाती है, ऐसे नहीं जाती। तो ये ही लोग संभालेंगे, तो इनके लिए ये अवसर है।
1: एक बात मैं और पूछना चाहूंगी आपसे कि बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि बैक ऑफिस के लोग जो होते हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने फ्रंट ऑफिस वाले, और सच में वो बड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होते हैं कई बार। एक होटल इंडस्ट्री के अलावा एक नई तरीके की सीरीज, एक नए तरीके का फूडिंग कल्चर डेवलप हो रहा है हमारे देश में सब तरफ, खासकर अगर आप हाईवे पर देखेंगे जो ढाबे खुल रहे हैं वो ढाबे ज्यादातर लोकल लोग ही खोलते हैं, चाहे वो शहर के हों चाहे वो गांव के हों। ये जो हॉस्पिटैलिटी का कंपोनेंट हम पाते हैं अपने होटल्स में, जो हाई ग्रेड होटल्स हैं, 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, वहां से अगर हम इन ढाबों का कंपैरिजन करें, देखिए ढाबों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। पहले गुमटी होती थी, फिर थोड़ा कहीं कोई खाना बना लेता था, वो अपने अपने इनकम और अपने कैपिटल के हिसाब से करते हैं। फिर अभी मैं क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, रोड ट्रैवल भी बहुत करती हूँ, तो मैं कई अलग अलग तरीके की जगहों पर जा रही हूँ जहां पर लोग ढाबों को एक अलग शक्ल में पेश कर रहे हैं, जहां पर वो लोकल टेक्सचर देते हुए ढाबों को प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने हट शेप में केबिन्स बना रखे हैं, कुर्सियां रख रखी हैं। मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर इन ढाबों को और बेहतर, कम खर्च में और बेहतर करने, और यहाँ के जो बच्चे हैं जो काम करते हैं यहाँ पर या जो पकाते हैं, हालांकि ढाबे के खाने का एक अलग टेस्ट होता है लेकिन वो वहां पर उतनी वैरायटी में नहीं आपको मिलता है कि अगर मैं एक दिल्ली के होटल में चली जाऊं और उनको बोलूं कि मुझे वेज दलिया दे दीजिए तो वो दे देते हैं। तो क्या हम ढाबे को की नजरिए से भी हॉस्पिटैलिटी को देखेंगे कि वो खुद कैसे रहें, कैसे प्रेजेंट करें, कैसे सफाई रखें, कैसे फूडिंग करें, कैसे सॉल्व करें चीजों को, वो सारी चीजें भी क्या आप इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो होटल मैनेजमेंट में जाएंगे वो एक ग्रुप हो सकता है मगर कुछ लोग अपना खुद का शुरू कर सकते हैं जी, तो इसमें क्या संभावनाएं हैं?
0: जरूर उसकी पूरी संभावना है, मैं आपको बताती हूँ। एक ढाबा, अगर आप ढाबे के नजरिए से देखें ढाबा, आप भी वही ढाबा चूज करेंगे जो साफ सुथरा आपको लगेगा। गंदे ढाबे में तो आप भी पैर नहीं रखेंगे। तो हॉस्पिटैलिटी वहां भी आपकी काम करती है। एक ढाबा किस तरीके से ढाबा आपको लॉन्च करना है, स्टार्ट करना है, जरूरी नहीं है एक ढाबा आप शुरू करें तो उसमें आप 100 चीजें एक साथ रखें। आप 10 चीजें रखें लेकिन उन 10 चीजों का पूरा टेस्ट रखें और पूरी सफाई से अपने ढाबे को साफ रखें। आप साथ ही में बात कर रहे थे कि ढाबे को कैसे डेकोरेटिव वे में आजकल रखा जाता है, तो जैसे कि एक नाम इंसान की अगर लैंग्वेज में मैं बोलूं तो जो दिखता है वो बिकता है, तो वही आजकल केस है हमारे ढाबों के साथ। जो आप देखेंगे, जो छोटे छोटे लोग भी होते हैं, जो गांव के ही लोगों का ढाबा देख लीजिए, वो अपने गांव की जो भी कल्चर होता है उस कल्चर के हिसाब से वो ढाबा बना के सुंदर तरीके से हाथ से डेकोरेट करके वैसा ढाबा रखते हैं। और अगर हम जैसे लोग वहां जाएंगे वो देखेंगे और सफाई है उस ढाबे में तो कौन नहीं रुकेगा उस ढाबे पे।
1: मतलब हमारा ऐसा विश्वास है हमारे सोसाइटी में कि जो जिस खाने में बहुत तेल और मसाला होता है वो खाना स्वादिष्ट होता है, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है।
0: ऐसा नहीं है, ये गांव के लोगों की सोच है कि उनको बचपन से जो सिखाया गया है कि बेटा ज्यादा तेल वाला खाना ही सबसे स्वाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब मैं जो करूंगी इन लोग के साथ, मैं इन लोग को सिखाऊंगी इन्हीं का रोजमर्रा का खाना, लेकिन कम तेल में
1: और न्यूट्रिशन को बचाते हुए
0: जी पूरा हेल्दी उसका क्या मतलब जो वो खाते हैं वो कितना हेल्दी है उनको मैं सब एक्सप्लेन करूंगी समझाऊंगी कि क्या कितना हेल्दी है। अगर इतना तेल यूज करोगे तो इतना हेल्दी है, इससे ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए खराब है, तो वो समझाया जाएगा।
1: तो एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे गांव आज भी बहुत ही साफ सुथरा और ताजा सामान के साथ खाना बनाते, क्योंकि सब्जियां वहां मिल रही हैं, अनाज वहां मिल रहा है, तेल वहां मिल रहा है, तो शुद्धता तो उनके पास है,
0: लेकिन सफाई और खाना बनाने के बाद की सफाई, उससे पहले की सफाई, खाना बनाते समय सफाई रखना और कितना न्यूट्रिशन आप डाल रहे हैं। ज्यादा घी ज्यादा तेल न्यूट्रिशन नहीं होता,
1: ना न्यूट्रिशन होता है ना स्वाद होता है,
0: वो सिर्फ आपको आंखों में दिखता है जिनको तेल देखने की आदत है कि हाँ भाई बहुत तेल पड़ा है अच्छा ही होगा, लेकिन उसमें ना कोई स्वाद होता है कुछ नहीं होता, वो आपकी बॉडी के लिए एक तरीके से जहर होता है,
1: क्योंकि समय बदल गया है तो अब खान पान के तौर तरीके भी बदलने
0: काफी बदलने की जरूरत है।
1: तो दीक्षा बहुत जल्दी आपके बीच में आ रही है अपनी चटपटी मजेदार और अलग तरीके की चीजें आपको बता सकती हैं और मैं बहुत सारा कुछ वो आप उनसे सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा चीजें बाहर काम करने के लिए ही सीखी जाएं, बहुत कुछ हम अपने को आनंद देने के लिए मजा देने के लिए भी सीखते हैं और दीक्षा हमारे साथ यही करने वाली हैं। तो तैयार रहिए अपना परचम उठा करके कि दीक्षा का स्वागत करने के लिए एक नई हॉस्पिटैलिटी के साथ। नमस्कार और हम लेते हैं कार्यक्रम से विदा। धन्यवाद, नमस्कार।

0: ఎన్నికయ్యాయి. ఆయతే 5-6 సంవత్సరాలు పెళ్లే ఎన్వైరన్మెంట్ కో సాబ్ రఖనే కే లియే బోలా థా కే పవన్ గురు వాణే పితా మాతా తర్త మహత్ అప్పని మాతా పర్ కుచ్ గందగీ ఫేలే తో సబ్సే బురా ఇన్సాన్ హమ్సే కోయి నహీ. ਸ਼ਰਮਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲਣਾ. ਔਰ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਚ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ.
1: ਯੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ DIG ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਸੜਕੋਂ ਕੀ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ. 6 June 1938 ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇ ਜਨਮੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਵਿਰਾਸਤ ਮੇ ਮਿਲੇ ਥੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ. ਇੱਕ ਮੇਧਾਵੀ ਛਾਤਰ ਰਹੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 1961 ਮੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ. ਆਪਣੀ ਕਰਤਵਯ ਨਿਸ਼ਠਾ ਏਵਮ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਸੇ ਇਨ੍ਹੋਂਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ. ਯੇ ਜਹਾਂ ਭੀ ਜਾਤੇ सफाई की जिम्मेदारी सहजता से अपने कंधों पर ले लेते.
2: तो शादियों में जाना तो कभी वो डिस्पोजेबल कप्स में लोग बस पी के ऐसे ही फेंक देते थे. यूजली उसको बोलते थे कि इसको उठा के डस्टबिन में फेंको, भाई यहाँ पे क्यों रखा है. दैट इज हिज नेचर, शुरू से ऐसे ही है.
1: 1996 में सेवानिवृत्ति के बाद इंदरजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ आ गए. इंदरजीत सिंह सिद्धू ने देखा कि एक समय में देश का सबसे सुनियोजित माना जाने वाला शहर स्वच्छता में भारत के सर्वोच्च 10 शहरों में भी नहीं गिना जा रहा है. उनके लिए ये बेहद खेदपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में घर नहीं बनाया था, उन्होंने चंडीगढ़ को घर बनाया था. इंदरजीत सिंह सिद्धू ने बेझिझक रास्तों की गंदगी को अकेले ही नियमित रूप से साफ करना शुरू कर दिया.
0: धीरे धीरे ये बात बढ़ती गई. कूड़ा उठाने के लिए ज्यादा टाइम लगा लिया, शहर के लिए कम. अल्टीमेटली हुआ कि मैंने शहर को बिल्कुल बंद कर दी, सिर्फ कूड़ा उठाना याद रह गया.
1: एक रिटायर्ड DIG को सड़कों पर खुद सफाई करते देखना लोगों को अटपटा लगा. किसी ने उपहास किया तो कोई चौंक गया.
2: मेरे दोस्त हैं अभी आते हैं मिलने के लिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे नेबरहुड में ना हो तो हम तो इधर ही फेंक दें. अब हमें लगता है कि आपके फादर उठा रहे हैं तो हम इधर फेंकते नहीं.
1: इन्हें कूड़ा उठाते देख हाथों में दस्ताने पहनने की सलाह देने तो कई आए, मगर हाथ बटाने के लिए कोई नहीं आया. पर ये बिना किसी दिखावे या हिचकिचाहट के सफाई को अपना कर्तव्य समझकर करते रहे हैं.
0: मैं ये सड़कें और ये पार्क ये पब्लिक प्लेसेस साफ करने की कोशिश करता हूँ, ताकि बाकी लोग भी देख लें कि भाई ये खाली हाथ से काम कर रहा है, हम भी लग जाए इनके साथ और पब्लिक प्लेसेस को साफ कर दें.
2: लेकिन जब पद्मश्री मिला है तो वही लोग जो मुझे बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, व्हाट इज योर डैड डूइंग, उनका एटीट्यूड में चेंज मैंने देखा है. मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम.
1: सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार.
3: एवरीवन, मेरा नाम काजल है. आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. मैं एक स्कूलमेट हूँ और मुझे कई चीजों का शौक है, जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग. और मैं आपको अपने सपने के बारे में बताना चाहती हूँ. मेरा सपना है कि मैं विदेश जाकर वहाँ घूमना चाहती हूँ. सब जो मतलब एक तरह से आज़ाद पंक्षी की तरह वहाँ पूरी तरह से घूमना चाहती हूँ. लेकिन कई बार प्रॉब्लम जो होती हैं उनके वजह से मेरा शायद ये सपना पूरा नहीं हो सकता. जैसे मेरे डैडी हैं जिन्हें पसंद नहीं है कि कोई लड़कियाँ घूमे, लेकिन मैं उन्हें कई बार कहती हूँ, उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ. और एक बार मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं अपने पापा को खुश देख सकूं, और ये सोचती हूँ कि मैं एक न एक दिन अपने पापा का सर ऊंचा जरूर करूँगी. यही मेरी कामना है. और आज मैं आई हूँ, थोड़ा डर तो लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ लोगों को कुछ बता पा रही हूँ. जो मैं बोलना चाहती हूँ वो मैसेज दे पा रही हूँ. मैं आपको एक छोटा सा गाना सुनाना चाहती हूँ.

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: विटामिन ऐसी चीज है जिसे अगर खाया नहीं जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। विटामिनों की ये परिभाषा नोबल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्टेंस ग्योर्गी ने दी थी। उन्होंने विटामिन सी का पता लगाया था और जीवित कोशिकाओं में इसकी भूमिका की खोज की। विटामिन मानव शरीर के सामान्य विकास और कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनमें से कुछ विटामिन तो मेटाबॉलिक क्रियाओं यानी कि शरीर की चयापचय क्रियाओं में कोएंजाइम की तरह से काम करते हैं। कोएंजाइम एक ऐसे गैर प्रोटीन पदार्थ हैं जो कुछ एंजाइम के साथ मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। एंजाइमों के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन कोशिकाओं की झिल्ली के निर्माण और रखरखाव में मदद करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और चयापचय में भी ये सहायक हैं। जीवित कोशिकाओं में कई जरूरी प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका रहती है। जीव जंतुओं को अधिकतर विटामिन बाहर से प्राप्त होते हैं, ये उनके शरीर में नहीं बनते। सिर्फ विटामिन बी और विटामिन डी के निर्माण में जीवों की कुछ भूमिका रहती है। विटामिन डी पाचन प्रणाली में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और विटामिन डी धूप में त्वचा द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ खास तरह के भोजन की आवश्यकता के बारे में विटामिनों की खोज से काफी पहले से पता था। 1970 के दशक में स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर जेम्स लिंड ने पता लगाया कि स्कर्वी नाम की बीमारी नींबू का रस पीने से दूर हो जाती है। एक डच चिकित्सक क्रिश्चियन इजिकमैन ने 1890 में बेरीबेरी बीमारी और कुछ खाद्य पदार्थों के बीच संबंध स्थापित किया। 1906 में ब्रिटेन के जैव रसायनज्ञ सर फ्रेडरिक गार्लिन हॉपकिंस ने पता लगाया कि जब जब चूहों को एक खास तरह की खुराक दी जाती है तो उन्हें जीवित रखने के लिए सहायक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। पोलैंड के रसायन शास्त्री कैसिमर फंक ने 1912 में सबसे पहले बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम के तरीके का पता लगाया। उन्होंने इसे विटामिन यानी विट प्लस अमीन नाम यानी अमीन नेसेसरी फॉर लाइफ दिया। लैटिन भाषा में जीवन को वाइटा कहा जाता है। आज भलीभांति इस बात का पता लग चुका है कि बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम करने वाला तत्व और कुछ नहीं बल्कि विटामिन B1 ये थायमिन है। थायमिन एक रासायनिक यौगिक है जिसमें अमाइनो समूह मौजूद रहता है। शीघ्र ही सहायक तत्व के स्थान पर विटामिन शब्द का उपयोग किया जाने लगा। बाद में ये भी पता चला कि विभिन्न विटामिनों के अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं। कुछ में तो अमीनो समूह जरा भी इस्तेमाल नहीं होता, मगर फंक द्वारा इजाद किया गया विटामिन शब्द इस्तेमाल होता रहा। सिर्फ विटामिन की अंग्रेजी स्पेलिंग में से आखिरी अक्षर मा हटा दिया गया। तरह तरह के भोजन में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिनों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले वर्ग में वे विटामिन आते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी। दूसरे वर्ग में वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे कि ए डी ई और के शामिल हैं। विटामिन ए या रेटिनल हमारी आंखों के दृश्य रंगों का आवश्यक घटक है। वसा में घुल सकने वाला ये विटामिन बीटा कैरोटीन नाम के पदार्थ से बनाया जाता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं मछली का तेल, कलेजे का मांस, दूध और इससे बनने वाले पदार्थ, फल तथा सब्जियां आदि। बीटा कैरोटीन जिससे कि विटामिन ए बनाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से मुंह तथा श्वास नलिका की झिल्ली में सूखापन आ जाता है। इसके अलावा अंधापन, शरीर के विकास में असामान्यता और संक्रमण जैसी बीमारियां भी इसकी कमी से हो सकती हैं। विटामिन ए से त्वचा तथा श्लेष्मा बनने वाले ऊतकों का निर्माण भी होता है। विटामिन बी पानी में घुलनशील कई विटामिनों का समूह है। इसके अंतर्गत विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोबिन, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनाकोल कोबेलामिन, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन एच और फॉलिक एसिड आते हैं। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोतों में अनाज, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालें, मटर और मांस शामिल हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। इस बीमारी से शरीर की परिधीय तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होने लगता है। इसी तरह की एक अन्य बीमारी जिसे वेट बेरी बेरी कहा जाता है, भोजन में प्रोटीन और विटामिन बी दोनों की कमी से शरीर के अंगों में तरल पदार्थ का जमाव बढ़ जाता है। इससे अंगों में सूजन आ जाती है और बाद में दिल की बीमारी भी हो सकती है। विटामिन B2 कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के पाचन में सहायक होता है। ये खमीर, जिगर के मांस, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों और मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर की बढ़वार रुक जाती है। विटामिन B6 खमीर, जिगर, दूध, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालों और अनाज में पाया जाता है। अमीनो एसिड के चयापचय में इस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि इसकी कमी से कोई खास बीमारी होने का खतरा नहीं पाया जाता, मगर आहार में इसकी मात्रा न होने से केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में गड़बड़ी तथा त्वचा संबंधी सामान्य विकार पैदा हो सकते हैं। विटामिन B12 इसका निर्माण आमतौर पर आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। कलेजे के कच्चे मांस में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से एक तरह की खून की कमी पैदा हो जाती है। पर्निशियस एनीमिया नाम की इस बीमारी में लाल रक्त कणिकाओं का विकास धीमा पड़ जाता है और मेरुदंड में विकार उत्पन्न होने की आशंका रहती है। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए का हिस्सा है, जो शरीर में अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। यूनानी भाषा में पेंटोथिन का नाम है, रिपीट, यूनानी भाषा में पेंटोथिन का मतलब है चारों ओर से। इसके प्रमुख स्रोतों में जिगर, खमीर, अंडे, मांस, डेयरी उत्पाद, शीरा, फूलगोभी और फल आदि शामिल हैं। अगर जानवरों को पेंटोथेनिक एसिड से रहित खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं तो उनकी बढ़वार रुक जाती है, उनके बालों का रंग उड़ने लगता है और उनमें त्वचा संबंधी विकार भी पैदा हो जाते हैं। बायोटिन, विटामिन एच खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया में भी इसका निर्माण होता है। फैटी एसिड्स के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन एच को एंटी एज फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। फॉलिक एसिड पत्तेदार सब्जियों, खमीर, जिगर, गुर्दे और ताजे फलों में पाया जाता है। इसे फॉलिक एसिड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। लैटिन भाषा में पत्तेदार सब्जी को फोलियम कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से अस्थि मज्जा में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे परिपक्व रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती। पर्निशियस एनीमिया नाम की बीमारी में रोगी को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दिए जाते हैं। नाइसिन का इस्तेमाल पेलेग्रा नाम की रिपीट नाइसिन का इस्तेमाल पेलेग्रा नाम की बीमारी के उपचार में किया जाता है। इस बीमारी में अमाशय और आंत संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं तथा खाल फटने व मानसिक गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। विटामिन सी की आवश्यकता कई शारीरिक प्रक्रियाओं में पड़ती है, खास तौर पर स्वस्थ योजक ऊतकों के लिए ये बेहद जरूरी है। विटामिन सी सब्जियों और ताजे फलों, विशेष रूप से नींबू प्रजाति के फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। इस बीमारी में कमजोरी, जोड़ों में दर्द आदि की शिकायत हो जाती है और बाद में मसूड़ों तथा अन्य अंगों से रक्तस्राव आरंभ हो जाता है। विटामिन डी स्टेरॉल्स नाम के अनेक मिले जुले यौगिकों के समूह का नाम है, मगर मुख्य घटक हैं कोलिकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी कैल्शियम और हड्डियों का निर्माण करने वाले खनिजों को जमा करने के काम आता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। बच्चों को होने वाली इस बीमारी का असर हड्डियों पर पड़ता है। विटामिन डी भोजन में तो मौजूद रहता ही है, धूप में हमारी त्वचा भी इसका निर्माण करती है। विटामिन ई एक तरह के अनेक यौगिकों के समूह का नाम है। इन्हें टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ये यौगिक जैव एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम करते हैं, यानी ये फैटी एसिड्स में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं। इस तरह ये विटामिन फैटी एसिड्स को परऑक्साइड्स और रेडिकल से बचाता है। विटामिन ई चोकर वाले आटे, गेहूं के अंकुर, जिगर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। टोकोफेरॉल्स का व्यावसायिक इस्तेमाल वसा, खास तौर पर वनस्पति तेलों में बनाने में भी किया जाता है। विटामिन के पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। आंतों में कुछ लाभप्रद बैक्टीरिया भी इसका निर्माण करते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और इसकी कमी से खून का थक्का आसानी से नहीं जम पाता। विटामिन के अंतर्गत नैप्थेक्विनोन यौगिकों का एक समूह भी आता है। रक्त को जमाने में काम आने वाले रसायनों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिनों की आवश्यकता बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है। सामान्य संतुलित भोजन में आदमी की जरूरत के तमाम विटामिन मौजूद रहते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग संतुलित भोजन नहीं खाते, जबकि बहुत से अन्य लोग संतुलित भोजन खाने की स्थिति में नहीं होते।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं स्नेहा। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए विचार, नए विषय के साथ, और मेरे साथ हैं सपना।
1: मेरी तरफ से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम छायसा की आवाज में।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके प्रति समाज में जागरूकता बहुत आवश्यक है, और आज का विषय है धूम्रपान।
1: हाँ स्नेहा, सही कहा तुमने। धूम्रपान के प्रति जागरूकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी नशे के आदि बनते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सपना, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी नशे की चपेट में आते जा रहे हैं, और उनको नशे के नुकसान के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है।
1: स्नेहा, क्या तुम्हें पता है कि बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, चरस, गांजा आदि का सेवन करने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?
0: हाँ सपना, मुझे पता है। धूम्रपान करने से कैंसर, हृदय रोग, हृदयघात, फेफड़ों का रोग और क्रॉनिक पुरानी प्रतिरोधी फुसफुसीय बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD होती हैं। तो चलिए दोस्तों, धूम्रपान पर और लोगों की राय जानने के लिए हम चलते हैं छायसा गाँव में।
2: नमस्ते, मेरा नाम पूनम है, मैं छायसा गांव से हूँ। जो मतलब ये बीड़ी सिगरेट का सेवन है, ये बहुत ही ख़राब होता है, और जैसे कि इनसे बीमारी भी होती है, दिन पे दिन बीमारी भी, कैंसर और TB वगैरह जो फेफड़ों को गला देती है। ये धूम्रपान नहीं करना चाहिए।
3: मेरा नाम सुखबीर है, और मेरे विचार से जो धूम्रपान है, इसके बहुत ही कमियाँ हैं, जैसे जान की भी और माल की भी। देखो, जान से तो जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और माल से यह है कि हमारा जो धन संपत्ति है वो भी बेकार नष्ट होती है। इसे हमारे जो बच्चे, जो आर्थिक स्थिति है, जो बेचारे इन पे भूखा पेट रहते हैं, और लोग पैसे को बर्बाद कर देते हैं नशे में, नशीली चीज़ खरीद लेते हैं, शराब खरीद लेते हैं, है ना, तो उनसे हमें बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए हमें ऐसी ओर ध्यान नहीं करना, ऐसी ओर नहीं जाना चाहिए जिससे कि हमारे जान और माल दोनों को नुकसान हो। मेरा विचार से तो यही है कि हमें इस ओर ध्यान मत करने नहीं चाहिए, कि हमें केवल अपनी ओर ऐसे अच्छे विचारों को लाना चाहिए।
4: नमस्ते, मैं रचना हूँ छायसा गांव से। हम आपको धूम्रपान के बारे में समझाते हैं कि ये धूम्रपान करना ठीक नहीं है। इससे अन्य लोग भी परेशान होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। इससे कई बीमारी होती हैं, जैसे कैंसर, फेफड़ों में गिरावट, ये अन्य। इससे हमें बहुत ही बचाव चाहिए, और अन्य लोगों को भी समझाना चाहिए कि धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहें। यह बिल्कुल भी सेहत के लिए सही नहीं है, और इसे रोकने के लिए हमारी सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है। पर हमें उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर हमारे साथ देंगे और धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
1: तो सुना आपने दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि धूम्रपान के कितने सारे नुकसान हैं और कितनी गंभीर बीमारियां इससे हो सकती हैं।
0: तो आप सभी से अनुरोध है कि नशे से जितना हो सके दूरी बनाए रखें और इसके सेवन से बचे रहें।
1: तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है आज के कार्यक्रम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, और धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी मिली होगी।
0: कल हम फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 की, जिसका उद्देश्य देश की न्यायाधिकरण प्रणाली को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी, प्रभावी और पेशेवर बनाना है। न्यायाधिकरण एक ऐसा विशेष संस्थान है जहां कर, बिजली, दूरसंचार, कंपनी कानून, पर्यावरण, उपभोक्ता मामलों और प्रशासन जैसे विशेष विषयों से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। हाल ही में संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया है। ये विधेयक न्यायाधिकरणों में नियुक्ति, कार्यकाल, प्रशासन और निगरानी से जुड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है। श्रोताओं, इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना। इस आयोग में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका के विवेकाधिकार को कम करना और न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को मजबूत करना है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि न्यायाधिकरण क्या होते हैं, वर्तमान व्यवस्था में क्या चुनौतियां हैं, नए विधेयक में क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं और इससे न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता तथा कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि ये विधेयक आम लोगों को तेज और प्रभावी न्याय दिलाने की दिशा में किस प्रकार मददगार हो सकता है। श्रोताओं, आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यायाधिकरण सुधार की जरूरत क्यों महसूस की गई और नए विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं।
2: न्यायाधिकरणों का गठन ऐसे मामलों के निपटारे के लिए किया जाता है जिनमें किसी विशेष क्षेत्र की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। देश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण और दूर संचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे कई संस्थान काम कर रहे हैं। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 के दायरे में 16 न्यायाधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। इनमें केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, रेलवे दावा न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं। अब सवाल है कि इन न्यायाधिकरणों में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों और प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था को लेकर लंबे समय से स्वतंत्रता, पारदर्शिता और कार्यपालिका के प्रभाव जैसे सवाल उठते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न मामलों में न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इसी संदर्भ में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को निरस्त करने और एक नई संस्थागत व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस नई व्यवस्था का केंद्र होगा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी NTC।
3: आइए सुनते हैं इस बारे में और जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन को।
4: सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि आपने कहा, एक नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया जाएगा। वो जो कमीशन है वो तय करेगी जो यूनिफॉर्मिटी अपॉइंटमेंट्स में होती है, जो चेयरपर्सन हैं, 16 ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे देश में, उसके चेयरपर्सन और उसके मेंबर्स की समय अवधि की कितनी सीमा होनी चाहिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग है। अब इस मसौदे में ये प्रपोज किया गया है कि चेयरपर्सन का जो टर्म है वो 5 साल का होना चाहिए और या फिर वो 70 साल की उम्र तक होने चाहिए और जो बाकी लोग हैं वो 67 ईयर्स तक होने चाहिए जो मेंबर्स हैं। ये जो नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया गया है, अब ये कमीशन चेयरपर्सन को सिलेक्ट करेगा। एक सर्च और सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे और कमीशन को ये भी हक होगा कि वो एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करें, एम्पैनल करें इस सर्च और सिलेक्शन कमेटी में। उससे क्या होगा कि एक वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन और एक वाइड रेंजिंग प्रोसेस के बाद अच्छे और जो बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा।
2: आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अलावा आयोग में 2 न्यायिक और 2 तकनीकी सदस्य होंगे। तकनीकी सदस्यों के लिए लोक प्रशासन, वित्त, कानून, लेखा, बैंकिंग, प्रबंधन या प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष के अनुभव का प्रावधान है। आयोग का मुख्य कार्य केवल नियुक्तियां करना नहीं होगा, ये न्यायाधिकरणों के कामकाज की निगरानी करेगा, सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की जांच की निगरानी करेगा और वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इसमें 16 न्यायाधिकरणों से जुड़े मामलों की जानकारी उपलब्ध होगी।
1: श्रोताओं, किसी भी न्याय व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जरूरी होती है। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए विधेयक में न्यायपालिका की भूमिका मजबूत करने के साथ साथ निगरानी और रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। आइए अब अगली रिपोर्ट में जानते हैं कि नई व्यवस्था से न्यायाधिकरणों के कामकाज में क्या बदलाव आएंगे।
5: न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 में न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज तथा चयन समितियों का प्रावधान किया गया है। इन समितियों में न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के चयन के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के अध्यक्ष, आयोग के एक तकनीकी सदस्य, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार के एक सचिव और दो विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रावधान है। न्यायाधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होगी, जिसमें आयोग के एक न्यायिक सदस्य को समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। समिति प्रत्येक रिक्त पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार और एक अतिरिक्त उम्मीदवार की प्रतीक्षा सूची की अनुशंसा करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति की सिफारिशें 3 दिन के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी और केंद्र सरकार को अनुशंसा पर 3 महीने के कार्रवाई करनी होगी। इससे नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने में मदद मिल सकती है। विधेयक में कार्यकाल को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो रहेगा। वहीं न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो पहले हो रहेगा। कुछ परिस्थितियों में पुनः नियुक्ति का भी प्रावधान है। विधेयक में नया सचिवालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। ये सचिवालय आयोग को प्रशासनिक सहायता देगा, विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगा, चयन समितियों की सिफारिशों को आगे भेजेगा और आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके अलावा न्यायाधिकरणों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने का भी प्रयास किया गया है। हर न्यायाधिकरण अपनी वित्तीय, मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों का आकलन करेगा। इन जरूरतों को आयोग का सचिवालय एकत्र करेगा और आयोग एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर उनका मूल्यांकन करेगा। वित्तीय पारदर्शिता के लिए आयोग के खातों का भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक यानी CAG द्वारा ऑडिट किए जाने का प्रावधान है। ऑडिट रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाएगी।
1: श्रोताओ, न्यायाधिकरणों में विशेषज्ञता और तेजी से विवादों का समाधान महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में नई व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य यही है कि लोगों को प्रभावी और समय पर न्याय मिल सके तथा न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां और उनका कामकाज अधिक पारदर्शी तरीके से हो। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 भारत की न्यायाधिकरण प्रणाली को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका मजबूत करने, विशेषज्ञता को महत्व देने और कार्यपालिका के विवेकाधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही कार्य निष्पादन की समीक्षा, शिकायतों की निगरानी, डेटा ग्रिड, समयबद्ध नियुक्तियां और CAG ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत कर सकती हैं। आम नागरिक के लिए किसी भी न्याय व्यवस्था की सफलता इस बात से तय होती है कि उसे न्याय कितनी जल्दी, कितनी निष्पक्षता से और कितनी आसानी से मिलता है। ऐसे में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 का व्यापक उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जो स्वतंत्र भी हो, विशेषज्ञ भी हो और जनता के प्रति जवाबदेह भी हो। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह। नमस्कार।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं महान शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का।
1: ये वतन का
0: एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, ये कहना था अखंड भारत के प्रबल समर्थक, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, महान चिंतक, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्होंने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक दक्ष राजनीतिज्ञ तो थे ही, लेकिन उससे भी पहले वे एक प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। देश से उनके सरोकार गहरे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कोलकाता के एक संपन्न और अत्यंत प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक जाने माने शिक्षाविद थे। उनकी माता का नाम जोग माया देवी था। बचपन से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी अत्यंत संवेदनशील और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। बचपन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को घर पर बेनी कहकर पुकारा जाता था। उनका रंग अपने भाइयों की तुलना में सांवला था, इसलिए सभी उन्हें चिढ़ाते और भूतिया भूती कहकर बुलाते थे। एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण में उनकी परवरिश आरंभ हुई। घर पर अध्ययन अध्यापन का बहुत अच्छा वातावरण था, जिसका प्रभाव बचपन से ही उन पर पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। शिक्षा के प्रति उनके भीतर गहरा अनुराग था। सभी विषयों में उनकी गहरी रुचि थी। अपने जीवन में शिक्षा को उन्होंने एक अनमोल निधि की तरह एकत्रित किया और आने वाली पीढ़ी में विद्या की ये निधि वे उसी उदारता और जिम्मेदारी के साथ बांटते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्राथमिक शिक्षा भवानीपुर के मित्र इंस्टीट्यूशन से हुई। सन 1917 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। बीए करने के बाद उनका विवाह सुधा चक्रवर्ती के साथ संपन्न हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने आजीवन पुनर्विवाह नहीं किया। सन 1923 में वे विश्वविद्यालय सीनेट के फेलो बने। 1924 में लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया। कुछ समय बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी विदेश चले गए। वहां पर लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी ने उन्हें सम्मानित सदस्य बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अपने पिता की तरह उन्होंने भी बहुत कम उम्र में ही शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित कर ली थीं। भारत लौटने के बाद डॉ. मुखर्जी वकालत तथा कोलकाता विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत हो गए। मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही वे कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वो सबसे कम आयु के कुलपति थे। इस तरह एक विचारक, एक प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति निरंतर बढ़ती चली गई। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कुलपति थे, तब 1937 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को पहली बार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण देने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। उनके आत्मीय आमंत्रण पर गुरुदेव पधारे और बांग्ला भाषा में उन्होंने भाषण दिया। सभी छात्रों के लिए ये एक सौभाग्य क्षण था। सन 1938 तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पद पर बने रहे और शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया।

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरंभ से ही मानवता के उपासक और अत्यंत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों के भीतर आजादी की अलख जगाने के उद्देश्य से अपना राजनैतिक जीवन आरंभ किया। गुलाम भारत की स्थितियां उन्हें परेशान कर रही थीं। एक बेचैनी उनके भीतर लगातार बनी रहती थी। भारत की आजादी के लिए उनके भीतर एक तीव्र छटपटाहट थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सभी भारतीय एक हैं। इसलिए धर्म के नाम पर लोगों के मन में कड़वाहट बोने के वो कट्टर विरोधी थे। वो मानते थे कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम में कोई अंतर नहीं है। हमारी नसों में बहने वाला रक्त एक है। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है। हमें हर हाल में एकजुट रहना चाहिए। 1929 को वो बंगाल विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए, किंतु कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए। 1937 में वो बंगाल सरकार में वित्त मंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान वे अत्यंत ईमानदार और निरपेक्ष रहे। पद पर रहते हुए उन्होंने अतुलनीय कार्य किया, लेकिन एक साल से कम समय में ही इस पद से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1940 में उन्हें हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1944 में वो इसके पूर्ण अध्यक्ष चुने गए। देश की आजादी के तुरंत बाद जो अंतरिम सरकार बनी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग और आपूर्ति मंत्री का पदभार संभाला। संविधान सभा में उनके प्रदर्शन, उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता, शानदार भाषण कला और संसदीय प्रक्रिया में उनकी कुशलता, इन सब बातों ने उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई प्रदान की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने कार्यकाल के दौरान चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने का कारखाना और बिहार में खाद का कारखाना स्थापित करवाया। देश की आजादी के बाद देसी रियासतों के भारत में विलीनीकरण की प्रक्रिया में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हैदराबाद के निजाम को अगर भारत में विलीन होना पड़ा तो सरदार पटेल के साथ साथ इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। विभाजन के बाद कश्मीर में जो तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां थीं, उससे वो सहमत नहीं थे और 6 अप्रैल सन 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत उनका मान था। एक भारत, अखंड भारत उनकी आत्मा का संगीत था।

अपने सिद्धांत, अपनी स्पष्टवादिता, अपनी विचारधारा और प्रखर राष्ट्रप्रेम की वजह से न केवल अपने चाहने वालों के बीच बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विशेष सम्मान था। एक भारत, अखंड भारत का भाव उनके लिए सर्वोपरि था। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण और तकनीक की दिशा में उन्होंने जो काम किया, वो काम उस दौर की सोच से बहुत आगे का काम था। खासतौर पर वो देश के विकास में जन भागीदारी को बखूबी समझते थे। उनके पास अत्यंत प्रभावशाली राष्ट्रवादी चिंतन था जिस पर वो अटल थे। यही कारण है कि अक्सर सहकर्मियों से उनका मतभेद हो जाया करता था, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के आगे कभी झुके नहीं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी संपूर्ण देश को एक इकाई के रूप में देखना चाहते थे। उनका स्पष्ट मत था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकते। 21 अक्टूबर 1951 को देश को एक नई दिशा देने की सोच के साथ दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। इस तरह एक मजबूत राष्ट्रवादी प्रतिपक्ष तैयार हुआ। सन 1951-52 के आम चुनावों में वे विजयी हुए। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता के दृढ़ पक्षधर थे। उनका मानना था कि आजादी के बाद भारत की एकता और अखंडता कायम रखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आजादी के बाद राज्यों के विलय को लेकर उनका अपना स्पष्ट मत था और इस हेतु उन्होंने सत्याग्रह भी किया। कच्छ और कश्मीर में क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। संसद से सड़क तक उन्होंने आंदोलन किए। कश्मीर में चल रहे डोगरा आंदोलन का भी उन्होंने भरपूर समर्थन किया था। कश्मीर में लागू परमिट व्यवस्था का विरोध करते हुए उन्होंने एक लोकतांत्रिक सोच का परिचय दिया और उस पर अडिग रहे। कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियां उन्हें कचोट रही थीं। जम्मू कश्मीर की परमिट व्यवस्था से वे अत्यंत आहत थे। इसके विरोध स्वरूप वे बिना परमिट लिए ही जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। 8 मई सन 1953 की सुबह 6:30 बजे अपने समर्थकों के साथ वो पंजाब के रास्ते जम्मू के लिए रवाना हुए। जलंधर से अमृतसर के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी। अमृतसर में 10 मई 1953 को भारत की एकता पर उन्होंने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया और 11 मई 1953 की शाम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर की सीमा के 2 मील भीतर लखनपुर से गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया। नजरबंदी के दौरान ही 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। इस तरह देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। नमन ऐसे महान राष्ट्रभक्त को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानॉइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं।
3: हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
4: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
3: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है।
2: ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है।
3: एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
2: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
5: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि जहाँ पर भी क्रीम लगाई है वहाँ पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयाँ आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर में, नंगे पाँव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो?
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स है तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर एक किसी आदमी को वॉट्स हैं तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौरतलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलेनिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलेनिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीज की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: नमस्कार। आज हम मेवात की बात करने जा रहे हैं और मेवात में जो रीड इंडिया का प्रयोग है उसका बात करने जा रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ है रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जी। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेवात। मेवात इज ए लोकेलिटी वेयर मेवातीज मोस्टली मुस्लिम्स आर लिविंग। This locality is just 35 kilometers away from Gurgaon, the mega city, and 50 kilometers away from Delhi, in the most developed, growing industrial state of Haryana. And if you go to that state, people are in a pathetic conditions. Most of the truck drivers, the maximum truck drivers that we have, are from Mewat. The rate of illiteracy is very high. Women are not allowed to go to the school and do the proper schooling. The situation of male literacy is also not very prominent. There is a complete sense of ignorance. People don't know how to do, what to do. And there is an inherent history of Mewat. They were the warriors. They fought against the Mughals. And Mughals didn't take care of them. They thought that they are the warriors, they are the looters, they are the nefarious people, they are not the good people, so they were always sidelined by the Mughals. Then came the British. They were the real freedom fighters. You can find many villages in Mewat where in one mound 30-35 men were buried because they were the freedom fighters. In 1857 and also in the later phase of Indian freedom movement, if the Mewat is being properly studied, explored, if the historians are taking interest into it, then you will realize the role of Mewat in the freedom struggles. There are many people in Mewat who often call me and say, Misra Sahab, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही है, आप उनके बारे में कुछ कर लो, गीता मैम कुछ कर ले, नहीं तो सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप क्या करोगे। एंड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस वी डू व्हाट एवर मैक्सिमम वी कैन डू इन दैट मेवात। रीड इंडिया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर गीता मल्होत्रा इंचर्ड into that locality where women were not even allowed to talk with the women. The every person outsider was kind of alien for them. They were not allowed, even the male were not allowed to have, you know, proper interactions with them. And with this situation, Dr. Gita Malhotra with her team went there and they have two things to convince them. Culture matters, number one, and understand that, respect that nativity, the native cultures. With these two things, they motivated the people. They said, we are not outsiders. They ate together. They talked together. They could somehow manage to convince them that we are not alien. We are an insiders. We have come here with the message to improve your lifestyle, the way you want to improve yourself. And that was the power of Dr. Gita Malhotra and the entire team of Reed India and the Reed Global. They changed the world. How do they change the world? That is also a very interesting, Dr. Gita ji will tell you. But I must tell you, after 1 year and so, they happily agreed to donate the land and they themselves constructed the library. Reed India paid the cost of the library, not the land. And some of them also contributed significantly, nominal, but that contribution was significant. And then the library was made, women started reading. Now the women which were motivated by Read India, they are the representatives of the Gram Panchayat and they are powerful women. And the new beginning was made and prevalence of Read India can easily be found in the locality of Mewat. Mewat is now divided into two districts. Initially, it was a Mewat district. That was Firozpur, Jhirka, Nuh, Tavru, Punahana, Hathin and Nagina. Now the Hathin part is in Palwal district and remaining is in the Mewat district. So before I go to invite Dr. Geeta Malhotra ji to talk about her experience and the experience of Read India, her innovations and everything that she did. Now, without any delay, I would request Dr. Geeta Malhotra, the country director of Brief India, the visionary, the leader, the master. She is a proper leader who works 24/7. And this is, I remember one thing, I am not exaggerating. I have been feeling her commitment. I am the witness from last 12 years, what she has been doing and how she has been motivating, energizing, emotionally evaporating the people who have been working with her. So, Geeta ji, aapka bahut bahut swagat hai. Humne chaha tha ki log jo hai, wo dekh le ki aap kaise karti hai. Aapka presence, I have seen people is teaching their vision, decision and future. I have seen women reading and writing. I have seen women, you know, using the library. I have seen people using the computer. I have seen women reading. So, you know, this is a new discovery that you have created. Please.
1: Thank you, Dr. Mishra, for such a elaborate description, which I don't need at all. But I'm so thankful to you for giving this gesture to me. You know that I am very simple, very introvert person, but I do believe in doing. I do believe in action. That's what you have narrated. थैंक यू सो मच. मेरा जो सोच है, आप मुझे अपने 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन में 2012 में ले गए. मुझे 2012 में जब मैं रीड ग्लोबल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीड ग्लोबल के साथ बात कर रही थी, 2012-14 कुछ ऐसे ही है, मुझे पक्का याद नहीं है, बट हाँ 7 साल पहले की बात है. मुझसे टीना शाबिका हमारी उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी. शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट टाइम एंड द ईयर शी जॉइंड शी केम टू चाइसा विलेज टू डू द स्टोन लिंग सेरेमनी ऑफ द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर. शी केम इन मे, इट वॉज वेरी हॉट एंड आई टुक हर टू चाइसा फॉर स्टोन लिंग सेरेमनी. But before stone laying ceremony, she asked me that Geeta, one of my very close friend settled in Singapore would like to dedicate one of the library in her mother's name. Her mother was live. She's live now also. But she said, "Ki I would like to build a community library, but let me know the area, the geography, who need the most." That time back home, I was interacting with Mewat people, the stakeholders there, and Asif Ali, who was the sarpanch that time, came to my house in Gurgaon and said that Geeta ji, we need the most. Hamari community ko bahut zarurat hai. Agar aap wahan aake study kare, जो डॉक्टर मिश्रा ने स्टडी करी, तो आपको पता चलेगा कि कितनी जरूरत है. तो आई वॉज कन्विंस्ड. आई विजिटेड द एरिया. आई सैट विद हिम. आई सैट विद अदर मेवाती स्टेक होल्डर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हाउस, द लैंड. आई वॉज द ओनली वुमेन. ऑल वर मैन. बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट that I have to come back again in this area. I have to work in that area. Mujhe wahi kaam karna hai. Mujhe unhi logon ke saath kaam karna hai. Because one thing which I experienced, because I am a great observer for culture and attitude of the people, they gave me lot of respect. Lot of respect. First time the woman came in one room, they gathered. They did not come out where I was sitting with the stakeholders. They told me later on that the women are waiting inside the room. When I went inside, there were more than 100 women sitting in just in each other's on each other's lap, and they welcomed me. They said, "Hum aapko dil se swagat karte hain aur aapka bahut bahut welcome hai. Aap hamare liye, hamare bachiyon ke liye, hamare bachchon ke liye, hamare samuday ke liye kuch kariye." That changed my mind 100%. I said, whatever challenging it would be, but I have selected a community. Next very day, I called my executive director in US and said, I have found a community where I would like to set up a community library and resource center. Then I started working there. And that Singapore friend of my executive director committed that she will come on the inauguration of the building, which was great, great emotional attachment with the building, which I'm going to show you the inauguration also. Then we did the stone laying ceremony. Asif Ali had a house on the main road of Hathin block in Chansa village. He said, ma'am, the whole land, whole building is for you. You decide what you want to take. Then I said, okay, main road part I will not take because the children will come. It will be risky for them to cross the road and come through the main road because it was part of the highway. I said, give me the backyard. And he divided completely half of his land. उन्होंने वो प्रोग्राम देख भी रहे होंगे जरूरी, मैंने उनको लिंक भेजा है. एंड ही वो इतने जेनरस थे, मैं ये एक्नॉलेजमेंट हिंदी में बोलना चाह रही हूँ उनके लिए. वो इतने जेनरस थे, उन्होंने अपने प्लॉट की जो लंबाई थी उसको बिल्कुल आधा करके उसमें दीवार बना दी और बोला, ये पीछे वाला लैंड आपका, आप जो मर्जी करिए, आप बिल्डिंग आप सेंटर बनाइए, मेरी 100% सपोर्ट आपके साथ है. तो दैट वाज द कमिटमेंट ही गेव मी एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट एंड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एरिया. मैं मिस्टर आर एस दलाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी इस फोरम पे, क्योंकि ही वॉज द वन हु एनकरेज्ड. ही इज द रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर ऑफ हरियाणा. व्हेन बिफोर द बिल्डिंग वॉज यू नो इनॉग्रेटेड, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड, सर आपके एरिया में हमने एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बनाया है और मैं आपको इन्वाइट करने आई हूँ कि आप उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करिए. एंड ही वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया और दैट वॉज द जर्नी वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट वॉज ग्रेट ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर अस बिकॉज एट द बैक ऑफ अस उनका हाथ था, उनका आशीर्वाद था, उनकी सपोर्ट थी और आज तक हर रोज जो एक मैसेज वो नहीं भेज लेते हमें एनकरेजमेंट का, वो आराम से नहीं बैठते हैं. तो मैं उनकी एसोसिएशन को यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहती हूँ. और उन्होंने खाली हथीन ब्लॉक में हमारे सेंटर को इनॉग्रेट नहीं किया, हरियाणा में हमने जितने भी सेंटर बनाए हैं उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, दिल से वो रीड को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट्स की के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है जो काम करती है और लोगों को साथ लेके चलती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है अपने कार्यक्रम से, ये वो बहुत अच्छे से जान गए हैं. तो डॉक्टर मिश्रा, अलोंग विद यू आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज Mr. R. S. Dalal on this platform because he supported us a lot and till today he is supporting us. So aapne launch
0: mein he is a bubbling star and energized, you know, he is an energizer. his emotional charge. He makes you work and work for the community. That is the power that we have learned from him. He has donated his entire haveli for the Reed activities, you know.
1: तो झज्जर उन्होंने कैसे हमें अपनी पूरी हवेली दे दी कि गीता जी एक सेक्टर मेरी कम्युनिटी के लिए भी बना दीजिए. तो दैट इज जेस्चर ही एक्सटेंडेड टू अस एंड टिल नाउ ही इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग दैट झज्जर विलेज मेहंदीपुर विलेज द बोदा विलेज अ ब्यूटिफुल विलेज वेयर वन कैन गो एंड इवन यू नो स्पेंड डेज टुगेदर. The community is so, you know, welcoming, and the plants, the gardens he has created there, it's worth visiting that place also. So, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि Reed India के जितने भी सेंटर हैं, वो community tourism को भी support करते हैं, because home stays are welcomed there by the communities, and we always make it a point that people come there and होम स्टे तो है ही है, पर जो खाना वो लोग हमें परोसते हैं, जो खाना हमें वो खिलाते हैं घर में बिठा के, घर में फ्रेश खाना कुक करके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकमिंग आई शुड से दैट. और आसिफ अली जी के घर में तो मैंने कम से कम 100 बार ही खाना खाया होगा. उनके घर में उनकी वाइफ को मैं नहीं मिल पाती थी, पर उनके ड्रॉइंग रूम में बैठ के खाना जरूर खाती थी. इतना तो मैं कह सकती. और मैं वेजिटेरियन थी और उनके घर में तो नॉनवेज इट्स अ कल्चर देयर. आई शुड से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर. बट व्हेन आई यूज्ड टू गो विद माय टीम स्मिता राय नाहिद जुबेर एंड अदर्स ही मेड इट अ पॉइंट कि दो डिशेस तो वेजिटेरियन होनी ही हैं, क्योंकि स्मिता और मैं दोनों ही वेजिटेरियन थे. तो ये हमारी बिगनिंग थी मेवात में चाइसा के सेंटर के साथ. और अभी डॉक्टर मिश्रा यू कैन से समथिंग अबाउट द बेसलाइन.
0: जब आपने मुझे बोला कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो मेरी एक आईएएस फ्रेंड हुआ करती थी डॉक्टर निरुपमा अनुपमा. तो जो डॉक्टर अनुपमा थी शी वॉज एन आईएएस ऑफिसर और शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेवात डेवलपमेंट एजेंसी व्हाट यू कॉल इट MDA. और उस समय बाद में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने अंसारी साहब, उनकी पत्नी भी मेवात में कुछ काम करना चाह रही थी. सी ऑल्सो टोल्ड मी डॉक्टर मिश्रा लेट अस गो टू मेवात एंड डू समथिंग देयर. मैं दोनों के साथ मेवात गया और मैं आपको और अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रता और निष्ठा पूर्वक ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ मेवात में काम करने का. लेकिन जब डॉक्टर गीता जी हमको बोली कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो पता नहीं मुझे कहाँ से एनर्जी मिली और मैंने कहा कि मैम लेट अस वर्क देयर. और हम वहां गए. जब हम वहां गए तो मैं एक महिला से मिला और वो महिला अनाज को फैला रही थी. उस महिला के साथ उसके 17 बच्चे थे जो फोटोग्राफ मेरे पास है. तो और And she was expecting one more baby. उसके बाद मैंने देखा वहां का सिचुएशन, वहां की गंदगी देखी, वहां का बहुत सारी चीजों को हमने देखा. Then I realized कि ये एरिया है जहां पर काम करने की जरूरत है. हमने उनके नमाज में भाग लिया, उनसे दोस्ती की और हम वहां पे काम करने लगे. शुरू में थोड़ा सा हुआ लेकिन बाद में वो हमें इतने प्यार करने लगे, खास करके अशरफ जी, आसिफ जी और सारे लोग, पूरे गांव के लोग, महिलाओं को, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को, उनको लगा कि ये लोग अपने लोग हैं. और हमने उनकी सारी जानकारी ली. वहां पे हर एक घर में 2-4 भैंस है और एक जो दूध वाला होता है जिसको दूधिया कहते हैं, उनसे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था. उनके दूध को बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदते थे. हमने सारा रिपोर्ट इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है. उसके बाद जो गीता जी ने कहा कि एक प्रपोजल आया और वो प्रपोजल 2011 में ही आ गया था मैं और 12 में वो बन गया था. तो वो प्रपोजल आया और गीता जी वर्क डे एंड नाइट. वो एक विजन ही कह सकता है कि अगर कोई दूसरा कंट्री डायरेक्टर होता तो रोड के साइड का ही जगह ले लेता. लेकिन गीता जी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा कि हमें रोड के साइड का जमीन नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है? मदर वॉज हिडन इन साइड हर एंड द मदर से लुक, बच्चे एक्सीडेंट में कुछ हो सकता है, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो पीछे का वहां भी रास्ता है, पक्की रास्ता हो गया है लिया और वहां पे काम शुरू करने लगे. बाद में धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने ये महसूस किया कि रीड जो है ये रीड कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई धर्मांतरण की संस्था नहीं है, कोई पॉकेट की संस्था नहीं है, यह कमिटमेंट की संस्था है. इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं हैं जो बहुत मातृस्नेह के भाव से काम करना चाहती हैं. और वैसा ही जिस तरह से ये कहने की तो जरूरत है कि गीता जी ने बहुत ही मातृभाव से अपनत्व को लगाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे. और उससे हमें ये लगता है कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली नो मैटर, आप दुनिया के किसी भाग में काम करें, लोग आपको उसी समर्पण से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गिव बैक आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा. वो जो कंसेप्ट था वो गजब कंसेप्ट था और वो आपने देखा.
1: ओवर टू स्मिता. थैंक यू मैम. थैंक यू डॉक्टर मिश्रा. एज राइटी सेड, इट्स अ वेरी वेरी रिच कल्चर इन दिस कम्युनिटी, वेरी वेरी वार्म वेलकमिंग कम्युनिटी. As shared in the PPT, there are many, many programs that we have done in partnership with this community. We've done the setting up of community library and resource center. There are many, many women who've been trained on livelihood skills. Then we've had trainings on as advanced computer skilling. This was done through Adobe IT skilling program for youth. Then since past 4-5 years, we have been doing Skills to Succeed program in this area and skilling women on enhancing their livelihood skills. We are having programs for mother and girl child literacy in this community. So each household have one mother and her girl child get coming to the center and walking towards a more literate future. So this is beautiful Mevat for us. As far as culture is concerned, they have very beautiful crafts such as they make changeris, the baskets made out of moonj grass. This grass is eco-friendly and it helps in keeping. They normally use it to store food. Like, we have covered more than 12 villages as Kamlesh is rightly. Thank you, Smita. जैसा कि स्मिता ने कहा, लिटरेसी से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके महिलाओं की पढ़ाई तक हमने काम किया. महिलाओं को हमने सक्षम बनाया, उनकी जो कल्चरल स्किल्स थी उसको एनहेंस किया. और कल्चरल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए अब रीड तो बहुत छोटी सी संस्था है, तो हमने सृष्टि स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट्स मंगवाए जो डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने मेवात में लाइब्रेरी में रह के रात को वहीं बिस्तर बिछा के सोना और महिलाओं के साथ चर्चा करनी और महिलाओं के जो हुनर था, जो छिपा हुआ हुनर था, उसको उभारा. और उन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए जो दरी था और तापर से उन्होंने बास्केट्स और बहुत सारे हमारे गिफ्ट आइटम्स बनाए जो हमने कॉर्पोरेट्स को गिफ्ट दिए, बिकॉज हमें फंड रेज भी करना था और मेवात के लिए फंडिंग लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए. पर मैं उन डोनर्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, हमारे कमिटमेंट को रिकग्नाइज किया. और सीरीज ऑफ डोनर्स आए जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मेवात में काम करने के लिए. तो ये एक मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज वर्क स्पीक्स वॉल्यूम. जब हमने काम किया, डोनर्स ने अप्रिशिएट किया और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एक साल का एमओयू साइन होता है, और कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उस एरिया में। बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं मेवात में, मैं सबका बहुत ही मतलब कि आई नो देम वेरी वेल, दे आर डूइंग एंड आई एम अप्रिशिएबल ऑफ देयर वर्क ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम गोइंग टू द ग्रास रूट्स, कैचिंग देयर कल्चर, अंडरस्टैंडिंग देयर एटीट्यूड्स एंड ब्रिंगिंग वैल्यू टू देयर लाइव्स वॉज वॉट रीड हैज डन। दीज आर द 3 मेजर अचीवमेंट्स वी हैव डन इन दिस एरिया। Dr. Mishra, would you like to add something here, what I have said?
0: Yes, ma'am. Without any political motive, you know, yeah. Reed has gone there as an organization to work without any political motivation, without any political inclination, without any interest. The only interest was to see that people are raising their social economic status, their livelihood, they are well-respected people, well-educated people, well-cultured people, their culture glory is restored. So these the women are well-respected. There is a continuous harmony, you know, visible harmony between men and women, between husband and wife. So these are the things that are clearly visible, tangibly see. People can go and view. You know, that is the USP of working Reed in the Mewat, you know, area. That is really very, very great.
1: Memory goes back when we saw power to hai nahi, to computer kaise seekhenge bachche?
0: Yes.
1: Oh, power, how they will read the books. Then we requested Bill and Melinda Gates Foundation. They gave us a special grant to put solar panels in the areas where we are facing problems with regard to the power. So you could see in the film also, we put solar panels on top of the building so that 24/7 there is a power in the library and there is no power cuts, and the children can come, enjoy it there, talk to each other, learn from each other, study the books, and 50% of the books are their own language. Because we did not want to put the book they cannot touch, they cannot read.
2: बिगावली की रहने वाली हूँ और ताराक्षर में मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लगता है। ऐसा है कि हमारे पास में ताराक्षर का अध्यक्ष लेके आए थे सुनील कुमार, तो इन्होंने कहा कि अब पढ़ाई कर लो। हमने कहा ऐसे बुढ़ापे में क्या हो, कौन पढ़ावेगो, कौन पढ़ पावेगो। उसने कहा नहीं जी, कोशिश करके देखो एक बार। तो हमने कोशिश करी तो हमको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में लिखने में हमारा मन भी लग रहा है। फिर वो हम तो हर जगह पे कर लेंगे, कोई हिसाब है, किताब है, घर का धंधा है, घर के बच्चे है, घर की पढ़ाई है, काम है, कोई भी सब में काम आती है पढ़ाई, मतलब ठीक है ना, हर चीज में आती है। अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी बैठा के पढ़ा सकते हैं, बच्चे ये है हर को इसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो।
3: पहले भैया हमने इसलिए पढ़ा, मान पढ़ते तो हमने आवाज दी कि भैया हम पढ़ जाएंगे तो हम बैंक में भी काम करते हैं, चाहे घर पे करते हैं, आदमी का नाम भी लिखने सीख जाते हैं, अपनों भी सीख जाते हैं, बैंक में जाते अपने पैसा निकाले तो अपने हिसाब करे आते हैं बैंक में जाके। इसीलिए हम भैया के पास पढ़े थे, यही बारे हम अनपढ़ते थे, भैया पढ़ा देंगे तब इससे सीख जाएंगे।
2: मेरा नाम गजना है और हमारे ये भैया आए पढ़ाने के सुखवीर सिंह, और इनने पढ़ा

0: पढ़ना चाहते अपने बच्चे ने पढ़ा ले, घर का काम कर ले, कोई काम काज आ जाए उसे कर ले, और सेंटर आ जाए कोई काम आ जाए, इसलिए
1: मेरा सीख लूंगी कुछ तो कुछ काम कर बैठूंगी मैं। परेशान आदमी आंगनबाड़ी लग जाए या कुछ सिलाई में लग जाए, कुछ भी काम जो तुम खिलाओगे वो करने
0: ये पढ़ाने आवे हम लोग ना पढ़े पर दो बार आए तीन बार आए हम बोले हम पढ़ेंगे, हमको पहले कुछ नहीं आवे हम नाम भी लिख ले और जो काम दे पूरा काम कर ले।
2: हम पैसा एन आर भी ना आवे अब तो एन आर भी सीख ले। अरे बेचारा आया पढ़ने सुखवीर लगो न भाई लाली पढ़ लियो माता जी पढ़ लियो, हम बोले हम ना पढ़े हम अब रास्ते में कहा पढ़ेंगे। तो बेचारा कई बार आया फिर हम पढ़ने लग गए कई सीखो हमने पढ़ना हम पे अनार भी नहावे या फिर या भी सीख गई नाम भी सीख गई अपना।
0: मेरा नाम अमता है, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं तारा शहर में पढ़ती हूँ। पहले इन लोगों ने आकर हमारे गाँव में सर्विस करी थी, हमने जाने क्यों कर रहे हैं। और जब हमारे सब आई थी तो पढ़ाई करने के लिए, पहले हम पढ़ाई नहीं जानते थे और अब इससे पढ़ के नहीं पढ़ना सीखे हैं और इससे पढ़ने से हमें बहुत कुछ आने लगा है। और हमारे गांव के अंदर तीन तारा छवि एक ज्ञान चौपाली खुली हुई है और हम बचत पढ़ते हैं सभी और उसके बारे में भी जानते हैं, पहले जानते नहीं है कुछ।
3: मेरा नाम भगवती है, मैं स्वामी की रहने वाली, मुँह पे कुछ भी नहीं आता है, मैं अक्षर समाज जान गई नाम हाँ अक्षर जान गई हूँ, मैं अक्षर समझ गई नाम लिख लेती हूँ।
4: मेरा नाम रजनी है, मैं स्वामी के रहने वाली हूँ, मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी और यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ जान सकती हूँ।
5: मेरा नाम आशा है, मैं स्वामी के में रहने वाली हूँ, मुझे तारा अक्षर से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। हमने हम पर पहले अपने साइन भी करने नहीं आते थे, हम पर साइन कर सकते हैं, अक्षरन की पहचान कर सकते हैं।
6: मेरा नाम सरस्वती है, गाँव में तारा अक्षर का स्कूल खुला है, ये लोग आए तो कहने लगे हम पढ़ाएंगे, हमें बात समझ में आई और पढ़ाई लिखना शुरू कर दिया। ये इनसे पढ़ के हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते थे। और ये गांव के अंदर जो समूह खुले रहते हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते, बैंक में जाते थे पैसे भरना निकालना कुछ नहीं जानते थे, अब हम खुद पैसे भी निकाल लेते हैं फार्म वार्म भर देते हैं। पढ़ाई से ये फायदा है कि अपने बच्चे जहाँ भी कहीं पढ़ने जाते पहले कुछ नहीं जानते, उसकी किताब कॉपी वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा है, कहीं हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए पैसे वैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं लगता था कितने दे रहे कितने नहीं दे रहे, तो अब हम उसे पढ़ के बता सकते।
7: अपना नाम कांति।
8: कौन से गाँव से? यहाँ
7: छाए से।
8: तो आपको पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा
7: है? इतना फर्क है, पहले हम 100-200 रुपया का हिसाब लगा सके, अब हम 500 रुपए तक हिसाब लगा लें। पढ़ाई इतने जब थोड़ी बहुत पढ़े अब थोड़ी बहुत अक्षर मिला के मात्रा मिला के सब कुछ अब हम कर लें, मात्रा लगा दें डंडा लगा दें।
9: मेरा नाम मीना है, छांसे के रहने वाली हूँ, पहले कुछ आवे ना हो अब हम पे लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आने लगो, हिसाब जोड़ जैसे 100-200 रुपए आए 500 है उन्हें भी जोड़ सके।
10: मेरा नाम बबीता जी है, छांसे के रहने वाली हूँ, पहले कुछ नहीं आता था अब बहुत कुछ सीख गई, बहुत अच्छा लगा पढ़े के, इन्होंने नीतू जी ने बहुत अच्छा सिखाया हमें लोकेशन की बात, अच्छा पढ़ाने सुनाया वो।
11: हम तारा सर में ट्रेनिंग ली थी हमने, जो कि मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जन अक्षर होते हैं, अब वो पढ़ लिख थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने जान गई है और अपना नाम लिखना सीख गई है, अपने गाँव का नाम कहीं भी आ जा सकती है, हिसाब किताब लगा लेती है। इस प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी और हमको भी।
12: तो सबसे पहले हमने औरतों को मोटिवेट किया पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, उनको मैंने फिर क्लास में बुलाया, बेगाजी में मेरी ड्यूटी है वहाँ पे, मैं 3 बैच चलाता, वहाँ पर 10-10 महिला आती है, प्रत्येक बैच में 10 महिला होती है, बहुत ही अच्छी तरह से वो पढ़ रही है और उनसे मैं बातें करता हूँ। अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है मैं उनके घर जा करके, अगर कोई मना करता है तो उनके घर जा करके परिवार वालों से मिलता हूँ और उनसे समझाता हूँ पढ़ाई के फायदे क्या होते हैं, तो वो भी क्लास में आ जाती है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत खुश हैं इसमें आकर।
13: ताराक्षर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि हम इसमें जो निरक्षर महिलाएं हैं उसको साक्षर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी अमेवात इलाके के 3 गाँव में चला हुआ है, छायसा, बिघावली और स्वामी का, इसमें लगभग 90-100 महिलाएं इसका लाभ उठा रही है इस कार्यक्रम का, और ये 3 गाँवों में कार्यक्रम चल रहा है, प्रत्येक गाँव में 3 बैच चलते हैं।

0: इस कुल मिला के 9 बैचेस चलते हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। पहले जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने, आज अब वो महिलाएं बोलने लगी हैं और अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गई हैं और वो किसी के सामने भी खुलकर उनको जवाब देने लगी, अच्छे से बोलने लगी हैं। और वो पहले उनपे कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, अब वो क्या नाम है पढ़ने लगी हैं, लिखने लगी हैं, अपना खुद का नाम लिख सकती है, पति का नाम, अपने बच्चे का नाम और अखबार भी पढ़ने लगी हैं। इस कार्यक्रम से महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और हम सभी खुश हैं कि ये कार्यक्रम हमारे इस पिछड़े इलाके मेवात में चलाया जा रहा है।
1: मैं पूरे अपने गांव की औरतों से, बड़े बूढ़ों से ये एक मैसेज देना चाहता हूं, जो भी ये स्कीम है, जो भी संस्थाएं यहां आ रही हैं, वो हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे गांव के हित में, हमारे गांव को अच्छा समझ के इस गांव में वो काम कर रही हैं। इसमें हर एक जन जन को इसमें जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। मैं गीता मल्होत्रा जी का और मैडम मई जी का तह दिल से अपने गांव की तरफ से, अपने तीनों चारों गांव की तरफ से बहुत बहुत दिल से, तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनका एहसान मंद हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे गांव और हमारे अड़ोस पड़ोस को चुना।

0: Wonderful, wonderful. So much to be shown. We have so much of content to be shown to the audience, but the time is so short that we have to move further also. इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेरी टीम लिखती जा रही है कि हमने क्या क्या और काम किए. तारा अक्षर के अलावा हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया यहाँ पे मैजिक बस के साथ मिलके, क्योंकि हमें उनके एटीट्यूड को बदलना था कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाने थे. अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने नहीं आते थे, हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को लाइफ स्किल्स सिखाए कि कैसे एक लड़की लड़के की इज्जत करती है और लड़का लड़के की इज्जत करता है, कैसे फैमिली में हम एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं. तो ये हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सिखाया था. और इन सब कार्यक्रम को बंद करने का दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है. मैं कहती हूँ जितनी भी पॉपुलेशन है मेवात की, उन सबको इन सब प्रोग्राम्स की बहुत बहुत जरूरत है. इसके आगे की जर्नी में हमने औरतों को स्पिनिंग सिखाई, धागा लेके कैसे धागा बुनते हैं ये उनको सिखाया, चरखा कैसे चलाते हैं, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उस कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी. यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, यही सोच के सब कुछ किया कि कभी औरत को काम करने की जरूरत पड़े तो वो अपने हुनर को निखार सके और अपने हुनर को पहचान सके और अपने बुरे टाइम पे इस हुनर को यूज करके अपनी आमदनी को इंक्रीज कर सके. यही हमारा सोच थी और कंट्रीब्यूशन था. अभी हम छायसा से आगे तारू में जाएंगे. तारू में हमने एक और सेंटर लॉन्च किया था, तो हमें Amazon ने सपोर्ट किया. I would like to show that film, Dr. Mishra, Read in Taro.
1: इस फिल्म के में जो भी हमने दिखाया उसके बारे में एक चीज में गीता मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परिवर्तन आपने देखा वो तो हुआ. सबसे बड़ी बात है कि जो समाज को ये भी, जिस महिलाओं को ये भी नहीं मालूम था कि हम अपने पैसे को कैसे रखें, क्या करें, कहाँ रखें, उनको न्यूमरेसी लिटरेसी का ज्ञान हो गया. इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उनके कपड़े साफ हो गए, उनमें हाइजीन का सेंस आया, उनमें हेल्थ और क्लीनिनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदेही का है ना निर्माण हुआ. तो ये जो छोटे छोटे विजिबल चेंज है, तो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चेंज अगर आप डे वन से उस दिन तक को देखें तो महिलाओं में जो स्वच्छता, निर्मलता, लिटरेसी न्यूमरेसी, काउंटिंग करना, ये सब चीज में और एकाएक सारे महिलाओं के चेहरे पे एक गजब ही नैसर्गिक हंसी, उल्लास का भाव था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
2: Partnered with Read India in 2015 to set up Amazon Care Community Outreach Centers in Taulu in the villages Chamwad, Dingaveri and Gujarat. Through these centers, we are covering 5 villages, including Nihalgarh and Sheikhpur. The center focuses on education, women empowerment and livelihood, skill development and entrepreneurship, and health awareness and advocacy. We do focus on education by designing programs on improving reading and writing habits of children, studying in government schools, training Anganwadi teachers on teaching small children through playful activities and the same activities are repeated at the Reed Center. We have a library with more than 1,000 books where children, youth and other community members come and have access to books for reading and reference. We conduct classes to enable youth for competitive examination and do career counseling. So the funds for regular and uninterrupted supply of power. We have special workshops with women on women empowerment and provide them a safe space to learn, teaching in PB to start with and enable them to learn how they can start their small enterprise and also collectively join the group for working together to reach center. We have also designed the programs to make them learn financial and adult literacy. Women have started moving out from their villages to other READ centers and also to other organizations to learn from other women how they are involved in these programs and enhance their networks. Job-oriented workshops are organized for youth, girls and boys, to focus on their future careers and learn specific skills for suitable jobs. Farmers' meetings are conducted on a regular basis with planned visits to other parts of Haryana, including meeting with government officials so that they themselves realize where they are and where they have to reach in relation to profit-making, agribusiness they can do. Health intervention is the important component. We do regular workshops on best practices and also partner with other organizations to organize health camps. Audio workshops are being organized at the center to enable youth on voice modulation, and exposure visits are done at community radio stations. Various visuals are displayed at the centers, Anganwaris and the villages to constantly remind the villagers about best practices. Women and men are understanding the gaps in their lives and uniting together for the progress of their villages, and also focusing on their children's growth by creating a positive environment at the READ centers and at their homes. READ India and Amazon Care work closely with local government, completing the collective efforts. Within 1 year, this partnership was extended to another village, Tamaspur in Sonipat. The center is repeating the same activities through effective community mobilization, effective involvement of the school teachers and other stakeholders.
3: एक दिन ज्योति ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर गांव में आया हुआ है जो रीड इंडिया एंड अमेजोन मिलकर चला रहे हैं, तो मैंने आके देखा कि यहाँ सिलाई हो रही है और सिलाई का काम ज्योति सिखाएगी। तब मैंने ज्योति से बात की कि मुझे भी सिलाई सीखनी है, तब ज्योति ने सिलाई सिखाई मुझे, तो मैंने 3 महीने तक सीखी और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यशाला भी होती है जो फार्मर भी की भी मीटिंग्स हुई, हेल्थ वर्कशॉप भी हुए और पढ़ाई के बारे में बताया, आगे कैसे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया। तब मैंने 10वीं के ओपन पेपर फॉर्म भरे और अपनी पढ़ाई चालू की फिर से, और फिर आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ।
4: मैंने सिलाई सीखना मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने देखा कि मैं अपने भी कपड़े सिल सकती हूँ और दूसरों के भी, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है।
5: मैं रीड अमेजोन सेंटर में लाइब्रेरी कम कंप्यूटर ट्रेनिंग की जॉब कर रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बच्चों को सिखा पा रहा हूँ और उनके साथ कुछ सीख भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रीड की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यशाला की जाती है, जैसे इस्लामी सर ने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया, उस प्रोग्राम से बच्चों ने कुछ सीखा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
6: रीड इंडिया अमेजोन तरफ से जो सेंटर चल रहा है, इसमें मैं जो छोटे बच्चों का एसीडी का सेक्शन है वो देती हूँ। यहाँ सेंटर पे नई नई एक्टिविटी होती है, जैसे हेल्थ की भी हुई है, लोगों के बारे में भी होती है, तो उसमें भी क्योंकि मैंने खुद भी बीए करके बीएड की हुई है, तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ को कह रही कि कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें मैं भाग ले रही हूँ, तो उससे मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा।
7: मैंने प्लस टू करने के बाद जेबीटी किया है और सरकारी नौकरी के लिए स्टेट हरियाणा का एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना जरूरी है। वो क्लियर करने के लिए किताबों की आवश्यकता थी। मैंने रीड इंडिया एंड अमेजोन के सामुदायिक लाइब्रेरी है, वहां से मैंने मुबारक सर से संपर्क कर 2 बुक्स प्राप्त की और वहां 2 बुक्स लेकर मैंने उनकी पढ़ाई की और टेस्ट आने पर मैंने टेस्ट दिया, जिससे मेरा पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गया।
8: यहाँ पर पहले मैंने सिलाई सीखी थी, उसके बाद मैं कंप्यूटर के और बच्चों को कंप्यूटर सिखाते, जिससे उसे सिखाने में मुझे भी बहुत फायदा हुआ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है उसे सिखाते सिखाते। बहुत अच्छा है वैसे यहाँ पे सब चीज, क्योंकि यहाँ पे सिलाई सेंटर कंप्यूटर का भी है, लाइब्रेरी भी है, ईसीडी का भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें सुधार की गई है। मैं अकेडमी भी जाती हूँ और रीड एंड राइटिंग का कोर्स चल रहा है, बच्चों को कराती हूँ और इससे इधर मीटिंग होती है, इससे किसानों की मीटिंग होती है, इधर डॉक्टर आते हैं और इधर हमने सिलाई भी सीखी है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं रीड इंडिया अमेजोन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
9: रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ, अब तक मैं 10 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ, जो कि वो अपना काम आराम से कर लेती हैं और घर में दिन महीने में 2-4 हजार रुपए भी कमा लेती है, अब उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो हर कार्य को अच्छे से कर लेती है।
10: मेरा नाम राम बाबू, 8 जिला में पढ़ता हूँ। अब मैं जब छुट्टी हो जाती सेंटर में आता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, फिर खिलौना से खेलता हूँ, फिर कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ।
11: पहले ये सिलाई सेंटर यही नहीं था, तो अब इसके आने से हमारी जितनी लड़कियाँ हैं औरत हैं जो यहाँ पे सब सिलाई सीखने के लिए आ जाती हैं, इससे काफी सुविधा है क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, यही कपड़े सी जाते हैं तो अपना काम हल हो जाता है, पैसे की भी बचत है।

0: నా పేరు సరిత. మా గ్రామం పేరు కలుగుట్ట గ్రామం. నేను కడతెట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీనివల్ల మనకు చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
1: పేరు ధనశ్రీ. మా ఊరు పేరు వెళ్ళండి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడపనకంకి వెళ్ళి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడపనకం పక్కనే కడతెట్లపల్లి ఉంది. మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్లి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో ఉంది కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పిరు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన ద్వారా చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th లో ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి నాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతా ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్లారు, వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది, కానీ ఏమీ నష్టం లేదు. కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పాను. చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇంకా చాలా మంది. రీడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
2: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ షాల్ని ఫ్రమ్ బారెట్పల్లి. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఐ అటెండెడ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ కండక్టెడ్ బై రీడ్ ఇండియా. Before this class, we had no idea about such frauds. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friend lost 2000 rupees, but now we all are aware of such frauds. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. Thank you very much.
3: मेरा नाम रेखा सिंह है. हम कटहरी गांव में रहते हैं. हमारी उम्र 40 साल है. हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं. जी, हमारे यहाँ रीड इंडिया का सेंटर खुला है. वहाँ पर कंप्यूटर सिलाई सबसे जुड़ा है. हम लोगों को पता चला तो हम लोग अपना भी रजिस्ट्रेशन कराए और पढ़े सीखने भी आते थे. वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज सिलने और काटने का आ गया कि हम लोग कुछ नहीं जानते थे. तो इतना सब बहुत कुछ आ गया है. मास्क वगैरह, फ्राक, कुछ बेबी मेकर और बहुत से सलवार कुर्ता चीज, ब्लाउज पेटी को बताया गया. सब कुछ काटे, अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले. थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ.
4: मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है. मेरी उम्र 20 साल है. हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर समराइज से सिलाई सीखी है. पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी. उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है. और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं. इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया. और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ.
5: मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है. मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ. मेरी उम्र 16 साल है. रीड इंडिया सेंटर जो कटहरी में खुला है उससे मुझे पर्चे के द्वारा पता चला. जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुँचे तो मैं यहाँ पर आई और इससे जुड़ी. मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूँ. पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे. लेकिन जब यहाँ रीड इंडिया सेंटर खुला तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर ख़त्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
6: मैं विनीता मौर्य है, मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, एक अच्छा तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला है, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ।
7: कोमलपाल है, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं अपने पूरे घर परिवार के, और कपड़े जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
8: मेरा नाम विंदेश सिंह है, हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं इस सिलाई को लेकर, और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
9: मेरी उम्र 21 ईयर है, मैं बी ए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ, मेरे ग्राम का नाम कटारी चंदार है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पर हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके, और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीखकर हम आगे अपने रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
10: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा, मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी जरूरी होती है, शारीरिक हाइजीन्स में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था जो चल रहा है, इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने अस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है जिससे मतलब हमारी जो सांस नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज आती है, तो इसके उपचार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है कि हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
11: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम जेलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
12: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
13: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
14: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज कांकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीन इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया। मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट स्टेज इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए। शारीरिक क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापे जाता है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीकों का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवी, लीवर, किडनी, इसके बारे में मैम ने हमें बताया। साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। ये बहुत ही अच्छी जनरेसी, अच्छे से मैम ने हमें समझाया एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।
15: मैं निर्मला पांचाल बोल रही हूँ और गांव भवरगढ़ की रहने वाली हूँ। और इसमें जो लॉकडाउन के दौरान रेड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनिंग कराई गई थी उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टेली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टेली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सूचना, मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, इससे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया, लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवा ऐसे जो करे वह प्राप्त किया जाता है, उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है जैसे कि चल, अचल, धरस्य, अधरस्य। धरस्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो धरस्य संपत्ति होती है। अधरस्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अधरस्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
16: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसिन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रीड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कि परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
17: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा जिले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय परचेज करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की, लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी। लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया। जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया। उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। रीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे, वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
18: हेलो, मेरा नाम मुस्कान मनर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ, और मैंने जब रीड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर रीड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी है। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी, मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ, और तुम और भी बच्चे रिश्तेदार, तुम्हारी मम्मी, इनकी जो भी महिलाएं हैं उनको तुम सिखाओ। तो मैं यहाँ से ले गई और उनको मैंने सिखाया। मैंने भी उनको वही सिखाया जो मैंने सीखा था, जैसे कि यहाँ से फोटोशॉप के अंदर जैसे फिल्टर, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना, उसके बाद शरीर को अलग करने करके वहाँ पे चेहरा लगाना, ये सब मैंने सिखा था। जो जो मैंने वो सब अपने बच्चों को, इनके अपने स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया।
19: हेलो नमस्कार रीड इंडिया वाले, मैं मंजू हूँ। मैं गांव परैया की रहने वाली हूँ, और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मैं महिला समूह की सदस्य हूँ, और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रीड इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें, और मुझे राजीविका वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है। तो हम मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
20: मध्यम से मैं जुड़ी हुई थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, और बैंक का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा, इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से मान लो किसी ने फोन कर दिया कि जे तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया तुमको, जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, इसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फोन आए कि तुम्हारा फोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते, हम इसमें सतर्क हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में हम मिला हुए थे, जो ट्रेनिंग में, जो उसमें भी हम बढ़िया तरह से सीख गए। और मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें स्टोर पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत खांसी भी आए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
21: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से। मैं रीड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हमने जैसे हमें हम जैसे शॉपिंग करते हैं उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है और ये खुद मैंने भी मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट, हमारी OTP, ये सब मैं उनको भी इस सब कैसे जागरूक करवाऊँगी।
0: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक BSc किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचे के बारे में बताया गया था और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताया था। हम जैसे कि हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। वो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। इस ये लिंक से कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम हमें भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें #@ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी एप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
1: नेहा राठौर है, मैं भवरगढ़ की रहने वाली हूँ और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी और इसपे हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी वैक्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी और इनमें वो शहद घी और वो ग्रीसलीन और रिबाम ये चीज़ों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको 3 तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के शेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में और रीड इंडिया में। यह सब चीज़ हमको रिया दीदी ने सिखाया था और इसमें मीना दीदी भी थी और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज़ सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
22: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट बोयल तहसील सावा डिस्ट्रिक्ट 12 से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉप

0: मेरा नाम जया बंसल है और मैंने रेडिनिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। इसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है, और फेसबुक पर पेज बना कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से, और मैं करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है। और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रेड इंडिया।
1: मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है, यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और अब पेंटिंग बनाने के लिए बेबी पेंटिंग ये बना ली मैंने, और अब वो बना के आई अम्ब्रेला वाला बात वो प्लाजो।
2: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
1: हाँ, मैं दो बार ले गई थी।
2: दो बार आप लेके गए?
3: मेरा नाम निशा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ। और हाँ, मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ कहीं दुकान वकान भी नहीं थी। अब ये तो बहुत महंगे महंगे उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जाती है, तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है बीमटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी यहाँ से सीखने लगी। और मुझे आता भी कुछ नहीं था, मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान मतलब अनजान जो लड़कियाँ मरती आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है, और कोई भी मतलब बुरा बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम भी मिला था, और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसमें सिखाया था, और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है। और यहाँ से मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी, जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी, जिसपे मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
4: नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से। मैं तनु सैफी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए, जैसे सूट सलवार प्लाजो पैंट बहुत सारे ब्लाउज।
2: खुद कटिंग कर लेती हूँ? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
4: कैंची भी चलाने नहीं आती।
2: कैंची भी चलाने नहीं आती थी? अच्छा, तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
4: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले करूँ।
2: हाँ,
4: और फिर अपनी एक छोटी सी शॉप
2: बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ से सीखने के बाद?
5: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास से तुगलपुर गांव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीजों के साथ, बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ। और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे, मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रीड इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ, और यहाँ आके तो एक नई जिंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे, बच्चों के लिए बड़े खुशी से आते हैं बच्चे, कौन सिखाता है, नहीं तो हजार हजार रुपए देते हैं मंथ के यहाँ पे, तो बच्चे गरीब बच्चे नहीं सीख पाते। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने की।
2: लगन है सीखने की।
6: उनको फायदा भी है, मैं रहती हूँ, मेरे गांव, मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैंने ऑनलाइन सेलिंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था बट अब बहुत कुछ पता है, मैं इसके बारे में सीख चुकी हूँ और जानकारियाँ मैं देती रहूंगी। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला है।
7: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूनम मैम का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी बट जब

0: यहाँ पे जुड़ी, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स, फोटोज ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रेडियो डेटा सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ, इन सब चीजों से मैं अनजान थी, पर जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसे, ये मायने लगता है हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, जरूरी ये है। जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है, लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं, हम भी इस समय में हम खाली नहीं बैठे। रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के, लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे एफएम रेडियोस को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था, लेकिन रेडियो सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं बट कभी जाना नहीं, जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर, करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ ये सब महिपाल सर, पूनम मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ आप सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
1: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। पहले हमें नॉलेज थी बट इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी अभी हमारी डेवलप हो गई है। अभी हमें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्किल सीखने को मिली है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ से वीडियो खुद बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे आकर बहुत फायदा हुआ है, सीखने को मिला है। थैंक यू।
2: मेरा नाम रितिका है, मैं 16 साल की हूँ और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडिटिंग का कोर्स किया है। ये कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज किया है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
3: मेरा नाम माया श्री है, मैं 32 साल की हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर द्वारका सेंटर से टैली का कोर्स कर रही हूँ। मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ।
4: मेरा नाम रंशिका जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख रही हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ। और मैंने पोस्टर डिजाइन करना सीखा और पैम्फलेट्स बनाना सीखा और मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ। और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइन में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइन में बनाना चाहती हूँ।
5: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि YouTube, Instagram, WhatsApp इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया। जाए वो भी सेफली। थैंक यू।
6: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट प्लाजो फ्रॉक सूट ये सब। और अब मैं बहुत खुश हूँ सीखने के बाद। मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं हमारी रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है। और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, चाहे कितनी बार भी पूछो बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूंगी, और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूंगी, अपने भी बाहर के भी। और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई जरूर करती रहूंगी, जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूंगी। धन्यवाद।
7: मेरा नाम गरमा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कम्प्लीट हो जाएगी और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी, जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा, जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
8: मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गाँव में रहने वाली हूँ। मैंने रेड इंडिया से स्टिचिंग एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह गले की डिजाइन बाजू सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
9: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला, जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक। और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन, ये सब अच्छी तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है, मेरे कपड़ों में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं, जिससे मेरी अपनी खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
10: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास स्टिचिंग के लिए कपड़े आते थे, लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिज़ाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नई नई डिज़ाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रेड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रेड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
11: मेरा नाम मीनू है, मैंने रीड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी, जो मैं जिसके पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती भी हूँ और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ शाहबाद मोहम्मदपुर में। थैंक यू सो मच।
12: मेरा नाम किरण राजपूत है, मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रेड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया, जिससे कि हम मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
13: हेलो, मेरा नाम आशु है, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरी फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं पार्लर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम, एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर, थैंक यू सो मच।
14: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रीड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया, हर्बल प्रोडक्ट, जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया, मेरी फैमिली को भी यूज कराया। सबको बहुत अच्छा लगा और सब ने मतलब बहुत तारीफ किया। इसलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम, एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए, थैंक यू सो मच।
15: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था, तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई, तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला, तो मैं रीड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते, और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रीड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिसके वजह से मुझे मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है, क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम, एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।
16: हाय, माझं नाव सामी, मी जोगेश्वर आहे। माझं शिक्षण 11वीपर्यंत झालेलं आहे। मी रीड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते। त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज, परत प्रिन्स कटोरीवाला ब्लाऊज वगैरे सर्व शिकते।
17: हाय, मेरा नाम है रेशमा अभिरव जोगिनकर, मैंने 12वी की हूँ सायन्स से, गोरेगाव से, और मैं 3 महीने से रीड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ, बेसिक टेलर कोर्स का। और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, लिम्बाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कटोरी ब्लाउज, फ्रॉक और पंजाबी सूट। थैंक यू।
18: हाय, माझे नाव अक्षता अशोक कांबळे, मी ऍग्रीकल्चर डिग्रीमध्ये डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे। त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लागण्यासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जाते आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या, रेड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासाठी मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते। थँक्यू।
19: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन अडवीलकर, माझं शिक्षण पीवाय बीए मधून झालेलं आहे। मी इथे रीड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे। त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकली आहे। थँक्यू रीड इंडिया।
20: माझं नाव नौशीन वजीर जोगिरकर, माझं शिक्षण 12वी, मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास, 3 महिन्याचा कोर्स आहे। त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवले
0: गेलाय. हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत.
21: आपकी उम्र
22: 22.
21: डीड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
22: कंप्यूटर के पार्लर की.
21: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं.
22: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं.
21: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
22: कंप्यूटर ही कोचिंग देनी है और कंप्यूटर में ही स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब करनी है.
21: आपका नाम क्या है?
22: स्वाति.
21: आपकी उम्र?
22: 24.
21: बीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग दी?
22: यस मैम, हमने दो ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का.
21: तो आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा?
22: कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग
21: बेसिक सीखा आपने. और पार्लर में?
22: पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग.
21: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
22: कंप्यूटर सीखने के बाद घर पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम होती है.
21: और पार्लर का?
22: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है.
21: अच्छा. जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
22: यस मैम, पहले से ज्यादा इनकम होने लगी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया.
21: गुड. आप आगे क्या करना चाहती हैं?
22: मैम पार्लर में कर रहा है, पार्लर खोल रहे हैं.
21: अपना पार्लर खोलना है? अच्छा. तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
23: माझे नाव आदिती संजय वाळणकर, माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली. रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटरे मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो.
24: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमने आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे. त्यामुळे आम्ही टाटरे मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत.
25: माझे नाव शर्मिला मंगेश विसापूरकर, माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली. या वतीने टाटरे मॅडम रीड इंडिया व टाटरे मॅडम यांचे मी आभार मानतो.
26: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला. यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं. त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.
27: माझं नाव श्वेता रोशन सप्पा, वय 29 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला. या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो. या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू. रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद.
28: मेरा नाम लक्षा है, मैं रीड इंडिया पडवाई सेंटर सिलाई सीखी है. मैं पडवाई में रहती हूँ और मैं इस सेंटर में आती जाती रहती हूँ. इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है, अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ. इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं. इस रीड इंडिया में सिलाई सीख कर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ, उससे जो पैसा आता है मैं अपने कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ.
29: मेरा नाम निशा है, मैं पढ़वाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है. मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ. और मेरा एक सपना ये है कि मैं एक सेंटर खोल सकूं जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूं। मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद।
1: मेरी एज 21 है। मैं लास्ट डे पर रहती हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर में एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पैंट, लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है। और मेरे डिजाइनिंग मैं अपने डिजाइन खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना डिजाइन सिलाई करना। और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर। और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ। और मैं पहले मतलब अभी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ। और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ, पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपने लिए कर सकती हूँ। मैं एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है। मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ। या कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, जैसे कि लिप बाम, बॉडी वैक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है। और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं रेड इंडिया कलघर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनब है और मेरी एज 18 ईयर्स है। और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर आरी डिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं। तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूँ अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूँ, मम्मी पापा से नहीं लूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूँ, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूँ खुद भी। फिर मैंने मुझे यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पर आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। इसके वजह से मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है, और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है। पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी, और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके। और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट स्टिचिंग कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे मैं अपनी इनकम भी अच्छे से काम कर लेती हूँ और मैं अपना खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और पहले मैं मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही, मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है, उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिज़ाइन अपलोड किए और मैं उसको अब सेल करती हूँ उस पर। उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने मैं इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरे रीडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मैं रीडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रीडिया सेंटर।
4: आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम चांद खान है। मैं राजस्थान के दौसा जिले के सिकराय तहसील के गिजगढ़ गांव का रहने वाला, जहां पर रेड इंडिया का सेंटर है, गिजगढ़ ज्ञान केंद्र के नाम से है। सबसे पहले मैं आपको गिजगढ़ के बारे में बताता हूं कि यह गांव पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। 100 से अधिक पुराने मंदिर हैं, इसकी आबादी करीब 15,000 के करीब है। यहाँ के लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे रोजगार के लिए। तभी एक गिजगढ़ गाँव में रेड इंडिया संस्था आई, जो 8 मार्च को आई थी, जिससे लोगों को रोजगार में काफ़ी सहायक रही, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर उनको हुनर सिखाया गया, स्किल सिखाया गया। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ आप लोगों को कि मैं कहीं भी नहीं जाता था, ना ही मैं किसी से बात किया करता था। आज मेरे अंदर, इस संस्था के अंदर मुझे काफ़ी सीखने को मिला। मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स में, जैसे हेल्थ कैंप है, रेडियो ट्रेनिंग है, मोबाइल वाणी है, ताराक्षर, इनमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया मैंने और यूथ ने। तो मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं इस संस्था में काम कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक वॉलेंटियर था और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। इस संस्था के कार्य में हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश जी का भी बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस संस्था के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर जो स्किल वगैरह है उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। लाइब्रेरी के अंदर हमारा सबसे पहला पार्ट आता है लाइब्रेरी सेक्शन। लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी यूथ, काफ़ी बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की और आज वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कंप्यूटर सेक्शन के अंदर बच्चों ने कंप्यूटर सीखा, स्किल सीखा कंप्यूटर का, आज वो प्राइवेट जॉब कहीं पर कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, ECD है, तो इन सब के अंदर काफ़ी हुनर सीखा और आज वो खुद कमा रहे हैं। ECD सेक्शन में बच्चों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, फ्री सिखाया जाता था उन बच्चों को, उसके बाद में स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता था। जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम थे जैसे कि ऑर्गेनाइज किए गए थे रेड इंडिया द्वारा गिजगढ़ गांव में, हेल्थ कैंप है, रेडियो प्रोग्राम है, होटल मैनेजमेंट है, ताराक्षर है, किसान मोबाइल है, हैंडीक्राफ्ट है और हैंडलूम ट्रेनिंग है। जैसे हेल्थ कैंप के अंदर गांव में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो हेल्थ कैंप लगाया गया था। रेडियो प्रोग्राम के अंदर काफ़ी यूथ ने पार्टिसिपेट किया। होटल मैनेजमेंट में काफ़ी बच्चों ने सीखा और आज वो वर्क कर रहे हैं। तारा अक्षर में जो महिलाएं साइन सिग्नेचर करना तक नहीं जानती थी, अंगूठा लगाती थी, उन महिलाओं को पढ़ाया और उन महिलाओं को सिखाया। किसान भाइयों के लिए किसान मोबाइल वाणी का एक प्रोग्राम चलाया गया था। हैंडीक्राफ्ट का प्रोग्राम महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी और आज महिलाएं जॉब वर्क कर रही हैं और काफ़ी इनकम भी कर रही हैं। हैंडीक्राफ्ट है तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर जॉब वर्क करके ही कमा रही हैं। हैंडलूम ट्रेनिंग दी गई थी औरतों को, तो हैंडलूम के अंदर कपड़ा बनना सिखाया गया था, तो औरतों ने कपड़ा बनना सीखा और खुद इनकम जनरेट कर रही है। स्टिचिंग, ब्यूटी पार्लर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इनके अंदर काफ़ी स्किल सीखा औरतों ने और आज औरतें खुद कमा रही हैं, खुद की इनकम जनरेट कर रही हैं, खुद का घर चला रही हैं। जो हमारा रोज़गार का प्रोग्राम था वो गाँव से शहरों की ओर लोग जा रहे थे रोज़गार के लिए, वो रुक गए और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और इसमें काफ़ी गरीब परिवारों को सहायता मिली। उसके बाद हमारे पास भारती वॉलमार्ट के वर्क आया था बैग्स का, तो जिन औरतों ने हमारे पास स्किल सीखा था उन लोगों को वह वर्क दिया गया। उन लोगों ने काफ़ी पैसा किया, इनकम किया इस भारती वॉलमार्ट में। 10,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग रेड इंडिया संस्था द्वारा दी गई है। रेड इंडिया संस्था द्वारा स्किल सिखाया गया था औरतों को, औरतों में काफ़ी स्किल हुआ। जो औरतें घर से नहीं निकलती थी, जो औरतें घर तक ही सीमित थी, उन औरतों ने ट्रेनिंग ली और आज खुद की शॉप खोल रखी है घर के अंदर मार्केट में। जो औरतें शॉप नहीं खोल पाई वो औरतें आस पड़ोस के कपड़े सिलकर इनकम जनरेट कर रही है। जैसे मैं कुछ नहीं जानता था और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ आकर और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश जी का इसमें बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद रेड इंडिया, धन्यवाद गीता मैम।

0: कीचगढ़। दौसा जिला में बसा हुआ एक खूबसूरत गांव, NH-11 से 10 किलोमीटर दूर। इसकी आबादी लगभग 15,000 है।
1: गीचगढ़ अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध है। गीचगढ़ की अपनी एक छटा है, इसमें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
0: कीचगढ़ जो कि खूबसूरत और खुशहाल गांव है, लेकिन रोजगार की समस्या के सामने गांव के लोगों ने यहां से पलायन करना स्टार्ट कर दिया है।
1: गीचगढ़ अपनी खूबसूरती और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। लोगों के अनुसार राजा गिद्ध यहां के महाराज थे, उन्हीं राजा के नाम पर इस गांव का नाम गीचगढ़ हुआ है। यहां का किला बहुत ही प्रसिद्ध है।
0: आइए जानते हैं कुछ कीचड़ के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं गीचगढ़ के किले की ओर। यहां 280 सीढ़ियां चढ़ने पर हम पहुंचते हैं राम झरोके पर। आगे चलकर हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह किला सुदृढ़ता और सुंदरता के लिए विख्यात है।
1: किले के अंदर चलते हैं। ये हैं किले की बावड़ियां। ये प्राचीन समय में पेयजल का स्रोत रही है और ये किले के अंदर आप देख रहे हैं शिव मंदिर, ये है रामदेवरा, यहाँ जगदम्बा माता का स्थान है। यहाँ ऊपर इस जगह पर चलने पर पूरे गांव को एक साथ आप देख सकते हैं।
0: ये है किले का दूसरा दरवाजा। यहाँ से निकलकर हम किले के पिछले हिस्से पर पहुँचते हैं। यह तोप प्राचीनता और वीरता की गवाही दे रही है। ये है गीचगढ़ बस स्टैंड। यहाँ पर हम चल रहे हैं बाकली के बालाजी की तरफ। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। यहाँ पर दशहरे पर हजारों की संख्या पर भीड़ जुड़ती है।
1: यह है यहाँ का शीतला माता मंदिर। यहाँ पर शीतलाष्टमी पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है और होली के अवसर पर होलिका दहन के उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है।
0: आगे आपको ले चलते हैं यहाँ के प्रसिद्ध बावड़ी के बालाजी के मंदिर। इस मंदिर का नाम बावड़ी वाला बालाजी होने का कारण है मंदिर के पीछे बसी हुई बावड़ी। सन 1985 तक इसमें खूब सारा पानी भरा हुआ था। अब लगभग 1995 से यह बावड़ी सूख रही है।
1: इसी क्रम में अब हम आपको लेकर चलते हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर। आप यहाँ पर देख रहे हैं इन छतरियों की शोभा देखते ही बन रही है, इनको यहाँ के महाराजाओं ने बनाया था। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं।
0: कोटेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, गोपाल जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर,
1: यह है रामदेवरा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो घंटाघर यहाँ पर बनाया गया है, ये बहुत ही प्राचीन समय में बनाया गया था। पहले इस पर बहुत बड़ी घड़ी भी जो है लगी हुई थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। और यह भी गांव के बीच में बसा हुआ, गांव की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है।
0: गीचगढ़ के लोगों ने बताया कि यहाँ गीचगढ़ चार दीवारियों से घिरा हुआ था। गीचगढ़ के अंदर चार प्रमुख दरवाजे हैं, जिससे कि गीचगढ़ को एक बंद गांव के रूप में देखा जाता है। गीचगढ़ के आसपास गांव और ढाणियां मिलाकर कम से कम यहाँ की आबादी 25,000 है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं गांवों के लोगों की तरफ, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी हमारे साथ है बिजराज सिंह जी। नमस्कार बिजराज सिंह जी।
2: नमस्कार सर।
0: सर, आप इस गांव गीचगढ़ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
2: जो गीचगढ़ जो नाम है वो एक गिद्ध राजा के नाम से पड़ा था, जो कि यहाँ पहले राज करते थे। क्या है कि वो पानी बड़ा पहले भरा हुआ था गीचगढ़ के अंदर, तो उनका रानी का जो हार गिरा हुआ था वो अपने त्रिवेणी जी के मंदिर में गिरा था, तो उसको हार को निकालने के चक्कर में पानी निकाला गया, मतलब जगह जगह से पहाड़ काट गए, तो ये धीरे धीरे बसावट होती गई गीचगढ़ की। तो राजा ने बसावट कर दी सबकी, धीरे धीरे सब आदमी उन्होंने घर बना लिए, ऐसे करके ये गांव बसा हुआ है गीचगढ़।
0: बिजराज जी, यहाँ के लोगों के आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है?
2: आजीविका का स्रोत है अपने यहाँ पे खेती वगैरह और दुकानें वगैरह। तो अब धीरे धीरे लोग जो पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पे क्या धंधा वगैरह नहीं है, तो वो दुकान पे तो सहमत नहीं है, तो जयपुर वगैरह से मतलब बाहर जाके मतलब काम कर रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे आदमी यार रह नहीं रहे, पलायन कर रहे हैं सब। इसलिए गांव पहले बहुत खूबसूरत था, पर अब क्या है कि मतलब धीरे धीरे पलायन की वजह से मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा गांव के ऊपर, और जो अभी ऐतिहासिक जगह है अपनी देखने की गीचगढ़ में, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
0: जी धन्यवाद। दोस्तों, हमारा गीचगढ़ प्राचीन समय से ही राजस्थान में एक खुशहाली का प्रतीक रहा है, पर मौजूदा परिवेश में पलायन, बेरोजगारी और प्राकृतिक समस्याओं के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। अब समय है हम लोगों को मिलजुल कर हमारे गीजगढ़ की बेहतरीन के लिए काम करने का, जिसमें स्थानीय लोग विशेषकर युवा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वरना गीजगढ़ सिर्फ इतिहास ही बनकर रह जाएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई, और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है, और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते, लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं, तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया और मेरे बाद में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बातचीत करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा, और यहाँ से उन्होंने देने के बाद कमाना शुरू किया और अपने पैर पर खड़ी हुई है, उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया, काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा रही, कमा भी रही हैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत
0: जी मैम,
1: बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा,
0: जी मैम,
1: और आप तो रीट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीट से जुड़ी हैं, और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कल घर में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब
0: जी मैम,
1: पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता है। और जब मैं अबिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अबिता की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
0: जी मैं ऐड करना चाहूंगी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ, बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ, रीट से जुड़ने के बाद ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है, जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी, तो मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं, तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी, तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे, मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो मुझे लगा कि हाँ भाई फरा के जैसी भी कोई और है, करने के लिए जज्बा रखती है, तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए, तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं, तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है जो घर से बिल्कुल लड़के नहीं निकल पाती है, तो इन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं, तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां लाके दी, और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी, उन्होंने हमें बताया कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस, लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया, तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों

0: पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई और लड़कियां आज इतनी हैं कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहाँ पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है या स्विमिंग का कोई काम है या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया और वो फर्क लाने के लिए आबिता ने बहुत कोशिश की है और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही हैं, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150, 150 से 400 लड़कियां बन जाएं और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों, लड़कों तक पहुंचे और रीज का नाम बहुत रोशन हो। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
1: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आएं और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के घर की रजामंदी ना होने की वजह से या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसेस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से। और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी, क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड ऑल्सो फरा पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है। और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो हम किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम। और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है, इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली, जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ। तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। अभी
0: बिल्कुल
1: मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
0: मैं ऐसा है जैसे

0: और अपने पेरेंट जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना फर्ज भी उठा रही हैं और अपने घर का फर्ज भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी और उन्होंने इतना कमाने लगी हैं वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़की ऐसी है जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती है कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना फर्ज अपने बच्चों का खुद खुद उठा रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया। दूसरा,
0: जी
1: उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। ये बहुत बड़ा
0: जी
1: स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा, जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है, जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सर्कमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
0: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है, स्विमिंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें दीदी दिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विमिंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकेंड लॉकडाउन बाद में लगा था तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीट में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं, उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों

0: क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्प्रिंग बूट स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई, क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला, तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के, जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंग बूट स्कूल की भी क्लासेस ली जाती है, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक बेस बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेस बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर और क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली, मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए, और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं इस पे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी, वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं, जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में भी बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे, अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए। लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो, हमने उन्हें बताया, बात करते हो, फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हमसे ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो। वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे ले, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था। तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई, और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग सब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी वो चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ। तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी, वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी और हमने आपस में 20-20-30-30 चुन्नी बांट दी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000-1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है, उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है, हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग फिर जाते हैं आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है, फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है, तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी है जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती है। तो सीखने के बाद जो फरह ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
0: जी भाई, भाई हमारे पैनल में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में ये ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही हैं, उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूँ। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां
1: वेरी गुड, बहुत
0: कर रही
1: अच्छी बात है। और मैं फरा को बोलूंगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं
0: हैं।
1: बोलूंगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिजाइन्स की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
0: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए और गरारों की, कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहनते हैं तो प्लाजो। प्लाजो प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं, बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आविदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो। अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया तो उसको ना नहीं करना है। चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे, कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आएंगे तो उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
1: बहुत
0: जी
1: बढ़िया
0: मैम,
1: फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
0: पहले मैं शुरुआत बेबी फ्रॉक से करवाती हूँ। बेबी फ्रॉक वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेक वगैरह, ये काफी पसंद है। यहाँ पर काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस यही कहती है, मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए। नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट फरारे और पटियाला सलवार, ट्यूलिप सलवार, धोती सलवार, और यही सारा कुछ साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना, और लहंगा और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
1: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
0: जी
1: और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या
0: जी
1: हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
0: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी, और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं, ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं, वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है, जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोचें कैसे करेंगे। तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है, वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताए कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
0: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को नाम है
1: ऑनलाइन ट्रेनिंग को टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सकें, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सकें आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सकें फोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं, उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना
0: टेक्नोलॉजी
1: चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
0: में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें सुइंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर में कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर, रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम सेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए, वो ऑनलाइन पे आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आते बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
1: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए, और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अभिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
0: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीट के जरिए हूँ और मैं रीट के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीट इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया है हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीट इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीट इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम की तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रीड इंडिया का नाम रोशन करूँ। और अपने आप पूरे करूं अपने और अपने परिवार को।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अबिदा। मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है। और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं। और उस फलों का जो जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आए, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत जरूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രറീസ് ബനാന ഹൈ ഓർ ആജ് കേ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രറീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നേ കേ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രറീസ് ഏക് ഐസീ ജഗഹ ഹൈ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നേ ലിയേ ഭീ കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കേ ലിയേ ഭീ കർ സക്തേ ഹൈ മാനെ പഢ്ഹേ തോ ഹം അപ്നേ ബച്ചോ കോ ഭീ പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭീ പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കേ സാഥ് ഭീ ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകേ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖതി ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണി ഇസ് സമയ കേ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കേ ലിയേ ഭീ കുഛ കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നേ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തി ഹൈ അപ്നേ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തി ഹൈ ഓർ ജിമ്മേദാരി അപ്നേ ഷോൾഡേഴ്സ് പേ ലേ സക്തി ഹൈ കി അപ്നേ ബച്ചോ കാ വികാസ് കൈസേ കർനാ ഹൈ വോ ഭീ റീഡ് ഇന്ത്യ അപ്നേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈബ്രറീസ് ഓർ റിസോർസ് സെന്റേഴ്സ് മേ കർതി ഹൈ ഹംനേ ഔരതോ കേ ലിയേ ബഹുത് ഹി അച്ഛേ അച്ഛേ കാര്യക്രമ കിയേ ജൈസേ സിലായി സിഖാനാ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കി ട്രേനിംഗ് ദേനാ ഓർ ഭീ ബഹുത് സാരി ഐസീ ട്രേനിംഗ്സ് ഹൈ ജോ ഹം അപ്നേ സെന്റേഴ്സ് മേ കർതേ ഹൈ പർ ഉസ്കാ जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: नमस्ते, मैं कुमारी उषा भारती, मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ रीज इंडिया में कुछ सीखती हूँ। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम कुछ सीख कर आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी भविष्य बना सकते हैं, ऐसा यहाँ है। बस इतना ही कुछ कहना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को कुछ लड़कियों के बारे में एक दहेज गाना सुनाना चाहती हूँ, जो आप लोग भी सुनेंगी और जानेंगी कुछ कि लड़कियाँ कितनी आगे हैं और कितनी चल सकती हैं। ठीक है, मैं सुना रही हूँ। कब

छोड़ो, जिसके घर में है कन्या कुमारी, उस पिता के दिलों से तो पूछो,

0: इस सहजी क्या पता बेटी शादी से सहजी क्या पता है कफन ओढ़े लेगी। मैं आप लोग को ये दहेज की सुनाने सुनाई बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, दहेज को दूर करो और लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे भेजो, आगे बन कुछ बनाओ उन्हें, क्योंकि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, एक कदम आगे हैं। थैंक यू।
1: भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, लेकिन शायद कम ही लोगों को मालूम होगा कि 1857 से करीब 77 बरस पहले भारत की एक रानी थी जिसके युद्ध कौशल और बहादुरी ने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि उनको परास्त कर कई बरसों तक राज किया। हम बात कर रहे हैं शिवगंगा की रानी वेलु नाचियार की, जिनको आज भी तमिलनाडु के लोग वीर मंगई या बहादुर रानी के नाम से जानते हैं। 3 जनवरी 1730 तमिलनाडु के रामनाथपुरम के राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा और रानी ने प्यार से इस कन्या का नाम वेलु रखा। बचपन से ही वेलु न सिर्फ अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थीं, बल्कि इन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और बिना हथियारों के युद्ध में भी महारत हासिल थी। वेलु अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू में भी पारंगत थीं। 16 बरस की आयु होते होते वेलु के लिए सुयोग्य वर की खोज शुरू हुई। राजा और रानी को उनके लिए शिवगंगा के राजा मुतुवडुगनाथ पेरिया के रूप में जीवन साथी मिला। करीब 20 बरसों तक रानी वेलु और राजा पेरिया ने शिवगंगा पर राज किया। इसी बीच वेलु ने एक सुंदर कन्या विलच्ची को भी जन्म दिया, लेकिन खुशियों के ये पल ज्यादा दिन नहीं चल सके। सन 1772 में अरकोट के नवाब मोहम्मद अली खान वालजा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर शिवगंगा पर हमला किया। भीषण युद्ध चला और राजा की हार हुई। रानी वेलु से पति और शिवगंगा दोनों छिन गए। उन्हें अपनी दुधमुही बच्ची की जान बचाने के लिए जंगलों में भागना पड़ा। रानी वेलु को संरक्षण मिला डिंडीगुल के विरुपची में, जहां इन्होंने गोपाला नायकर के संरक्षण में करीब 8 बरस बिताए। इतने दिन रानी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगी रही। इस बीच इनकी मुलाकात टीपू सुल्तान के पिता और मैसूर के सुल्तान हैदर अली से हुई। कहते हैं रानी वेलु ने उनसे शुद्ध उर्दू में बात की थी, जिससे प्रभावित होकर हैदर अली ने न सिर्फ इनकी मदद की बल्कि इनको अपनी बेटी की तरह माना। इस तरह अब वेलु के पास न सिर्फ एक मजबूत साथी था बल्कि मरुदू भाइयों और उदयाल जैसे शक्तिशाली सिपहसालार भी। अगले 8 वर्षों तक वेलु नाचियार धीरे धीरे अपने खोए हुए इलाके वापस पाने में लगी रही, और एक दिन वो भी आया जब वो अपने किले के सामने खड़ी थी। ये साल था 1780। रानी को मालूम था कि इस किले को भेदना आसान नहीं है, लेकिन इनके पास उस मुश्किल का तोड़ था। इन्होंने अपनी कमांडर कोयली के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना ये थी कि किले के अंदर विजयदशमी को प्रवेश किया जाए, जब आम दिनों के विपरीत किले में आने जाने पर उतने प्रतिबंध नहीं होते थे। कमांडर कुइली ग्रामीण औरतों के भेष में किले के अंदर प्रवेश कर गईं, और जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को कुछ समझ में आता वो उन पर कहर बनकर बरसने लगी। इस बीच अपने गुप्तचरों की मदद से कुइली को अंग्रेजों के गोला बारूद के भंडार का पता चला। उनके पास बस यही मौका था। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर मंदिर के दिए में जलने वाला घी लगाया और आग लगाकर बारूद के भंडार में घुस गईं। जबरदस्त विस्फोट हुआ और इसी धमाके के साथ शिवगंगा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। लिखित इतिहास का शायद ये पहला आत्मघाती हमला था। रानी वेलु ने अगले 10 बरस तक शिवगंगा पर राज किया और अपनी बेटी वेलच्ची को उत्तराधिकारी बनाया। 1796 में 66 बरस की उम्र में रानी वेलु का स्वतंत्र शिवगंगा में निधन हो गया। इनकी वीरगाथा दक्षिण भारत की कला और नाट्य का हिस्सा है। भारत सरकार ने सन 2008 में रानी वेलु नाचियार की याद में एक डाक टिकट जारी किया।
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करते हुए आज देश 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2025 के 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए, 2 विशेष प्रकाशनों का विमोचन हुआ और पुरस्कार विजेता उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का महत्व क्या है, इस वर्ष दिए गए पुरस्कार क्यों विशेष हैं, सरकार हथकरघा क्षेत्र को किस प्रकार सशक्त बना रही है और ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा ग्रामीण आजीविका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत की हथकरघा परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारतीय बुनकरों ने अपनी कला, कौशल और रचनात्मकता से दुनिया में अलग पहचान बनाई है। हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जिसने भारतीय उत्पादों और हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है जिसने भारतीय उत्पादों और विशेष रूप से हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा दी थी। वर्ष 2015 से इस दिवस को राष्ट्र स्तर पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से भारत के समृद्ध हथकरघा परंपराओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है।
4: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर, आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
3: आज भारत का हथकरघा क्षेत्र केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी है। देश में 35 लाख से अधिक बुनकर और संबद्ध श्रमिक इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें 72% से अधिक महिलाएं हैं। ये क्षेत्र लाखों परिवारों की आजीविका का आधार होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। हथकरघा क्षेत्र के विकास, सरकार के विभिन्न पहलों और भविष्य की संभावनाओं पर विकास आयुक्त हथकरघा डॉक्टर एम बीना ने आकाशवाणी संवाददाता उत्पल कुमार से विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं।
5: डॉक्टर बीना, सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए हैं और अब तक इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या रही है?
6: भारत के हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसके तहत हमारा अप्रोच है क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, क्योंकि वीवर्स जो हैं ज्यादातर एक ही इलाके में रहते हैं, तो उस पूरे इलाके को एक क्लस्टर आइडेंटिफाई करके वहाँ पर विकासशील कार्यक्रम और योजनाएं हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें 2 तरह की योजनाएं हैं, एक तो है स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ 500 लगभग वीवर्स जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे हम ये योजना चलाते हैं, 2 करोड़ तक उसका हम सहायता देते हैं। इसमें हम लूम्स, सोलर लाइटिंग, वर्कशेड वगैरह का हम सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा क्लस्टर में जो एक क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होगा जब तक ये क्लस्टर कार्यक्रम चलाया जाएगा, और एक क्लस्टर डिजाइनर भी रहेगा ताकि वीवर्स को नए डिजाइन से भी वो उनको अवगत किया जाएगा। दूसरा, हमारे मेगा क्लस्टर्स, माने जो बड़े क्लस्टर्स हैं जहां

0: जहाँ 10,000 से ऊपर वीवर्स है, तो वहाँ पे मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो 30 करोड़ तक उसका हम असिस्टेंस देते हैं। वो राज्यों के साझेदारी से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्ट हैं, जैसे कि स्किलिंग सपोर्ट। देखो, वीवर को नए वीविंग टेक्निक्स के बारे में, नए डिजाइन्स के बारे में वगैरह के लिए हम समर्थ स्कीम के तहत उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको डिजाइन सपोर्ट, प्रोडक्ट नया करने के लिए भी उनको सपोर्ट देने के लिए डिजाइन रिसोर्स सेंटर्स भी बनाया गया है।
1: हथकरघा बुनकरों की आजीविका में सुधार लाने में सरकार की कौन सी योजनाएं सबसे अधिक प्रभावी रही है?
0: बुनकर की आय को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जो रॉ मटेरियल है, सूता जो है, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। तो अगर आप नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया, या फिर सिल्क हो गया, या वूल हो गया, तो उसमें हम 15% हम प्राइस सब्सिडी देते हैं। और जो भी अगर इसके अलावा जो नॉट नेचुरल फाइबर्स है, उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी देते हैं। तो इस तरह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट में हम कमी लेके आते हैं। दूसरा, वीवर को मुद्रा लोन का भी फैसिलिटी है, और जब प्रोडक्ट बन जाए तब उनको वीवर को चाहिए मार्केटिंग सपोर्ट। तो उसके लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर बुनकर मेले लगाए जाते हैं।
1: डॉक्टर बीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार केवल उत्कृष्ट बुनाई के लिए नहीं, बल्कि नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप, उत्पादक कंपनियों और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी दिए जाते हैं। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान और पारंपरिक बुनाई को संरक्षित रखने वाले बुनकरों को दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन बुनकरों और अन्य हितधारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने परंपरा और आधुनिक तकनीक के संतुलित प्रयोग से गुणवत्ता और रचनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद हाजाम और फैयाज अहमद वानी भी शामिल हैं, जिन्हें चंदर कानी शॉल की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा।
3: मैं फयाज अहमद वानी और मेरे साथ है मंजूर अहमद हजाम। हम कानी हमा बड़गाम के रहने वाले हैं। हम बहुत ही खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये लम्हा हमारे लिए इज्जत और फख्र का दिन है, और हम ये अवार्ड उन कानी हमा के बुजुर्गों को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने इस फन को नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँचाया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे गांव टूरिज्म विलेज और हैंडलूम विलेज करार देकर करोड़ों रुपयों की मावनत की। हम उनके भी बहुत ही आभारी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसने हमें इस एजाज से नवाजा।
2: इसी तरह ओडिशा के प्रफुल्ल कुमार साहू को पारंपरिक जगतपुर साड़ी की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने भी आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए।
4: मैं प्रफुल्ल कुमार साहू फ्रॉम ओडिशा जगतसिंहपुर। आज मेरे लिए बहुत गर्व और भावुकता का क्षण है। मुझे 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के करकमल से नेशनल हैंडलूम अवार्ड प्राप्त करने के सौभाग्य मिला है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि ओडिशा के जगतसिंहपुर जिलों के सभी बुनाकर और हमारी समृद्ध हथकरघा परम्परा का सम्मान है। मैं भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, ओडिशा सरकार वीवर सर्विस सेंटर, नेताजी तंतुबाई सहयोग समिति के सदस्य, बॉयनिकाओं और सभ्य संस्थाओं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम जैसे बुनकर को प्रोत्साहन दिया। मैं इसी सम्मान को अपने परिवार, अपने गुरुजन और सभी साथी बुनकर को समर्पित करता हूं।
2: श्रोताओं, इन पुरस्कार विजेताओं की बातें ये बताती हैं कि भारतीय हथकरघा केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत है, जिसे आज भी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हथकरघा क्षेत्र ने तेजी से नए आयाम हासिल किए हैं। वर्ष 2025-26 में भारत का हथकरघा निर्यात लगभग 1,331 करोड़ रुपए रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देश इसके प्रमुख बाजार हैं। सरकार ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 36 हस्तशिल्प वस्तुओं पर GST घटाकर 5% किया गया, हथकरघा क्लस्टरों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, राष्ट्रीय फाइबर योजना तथा राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम जैसी नई पहलें शुरू की गई। डिजाइन, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम हैकाथॉन 2026 जैसी पहलें भी की जा रही हैं। भारत की हथकरघा परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ी हुई है। आज भारतीय हथकरघा फैशन, डिजाइन, निर्यात, डिजिटल विपणन और सतत विकास के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें उन लाखों बुनकरों के श्रम, समर्पण और सृजनशीलता का सम्मान करने का अवसर देता है, जिनके हाथों से भारत की सांस्कृतिक पहचान दुनिया तक पहुंचती है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अरुण दीप का था। नमस्कार।

0: अमृत काल में प्रवेश कर चुके हमारे देश के लिए ये आजादी बेशकीमती है,
1: जिसका सपना संजोए ना जाने कितने जांबाजों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कितनों ने तो बेहद कम उम्र होने के बावजूद स्वाधीनता की लड़ाई में ऐसा किरदार निभाया जिसे भुला पाना बेहद मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक वीरांगना रानी गादिल्लू की, जिन्होंने महज 13 बरस की उम्र में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर ब्रिटिश सरकार की नींदें उड़ा दी थीं। अपने बगावती तेवरों के कारण अंग्रेजों की आंख का काटा रही रानी गादिल्लू देश की वो अकेली महिला क्रांतिकारी भी हैं जिन्होंने 15 बरस का लंबा समय ब्रिटिश कैद में काटा। रानी गादिल्लू का जन्म 26 जनवरी 1915 में मणिपुर के जोलियांगलोंग कबीले के रोंगमई खानदान में हुआ था। बचपन से ही स्वतंत्र और स्वाभिमानी गादिल्लू 13 बरस की आयु में नागा नेता जादव नांग, जो रिश्ते में उनके चचेरे भाई थे, उनके संपर्क में आई। जादव नांग हिरका आंदोलन के जरिए मणिपुर से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयत्न में लगे हुए थे। आंदोलन आगे बढ़ पाता इससे पहले ही 29 अगस्त 1931 को अंग्रेजों ने जादव नांग को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। आंदोलन का नेतृत्व बालिका गादिल्लू के हाथों में आ गया। गादिल्लू ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अपने 4000 सशस्त्र नागा सिपाहियों के साथ गादिल्लू भूमिगत होकर अंग्रेजों को लगातार टक्कर देती रहीं। हतोत्साहित अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के प्रयास शुरू कर दिए और आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों के कई गांव जलाकर उनका उत्साह कम करने की कोशिश की। घटना से सशस्त्र नागा आक्रोशित हो गए और उन्होंने एक दिन खुलेआम असम राइफल्स की सरकारी चौकी पर धावा बोल दिया। रानी गादिल्लू की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव ब्रिटिश सरकार को खटकने लगा था। तय किया गया कि गादिल्लू को पकड़ने के लिए खास बटालियनें तैनात की जाएं। लेकिन गादिल्लू भी अंग्रेजों से दो कदम आगे ही थीं। वो लगातार अपनी जगह बदलतीं और छापामार तरीके से अंग्रेजों पर प्रहार करतीं। लेकिन उनकी चिंता अपने साथियों को लेकर भी थी। अपने साथियों को सुरक्षित करने के लिए गादिल्लू ने असम के पुलोमी में एक लकड़ी का किला बनाने का फैसला किया, जिसमें वो अपने 4000 साथियों के साथ रह सकें। किला बनाने का काम शुरू हो गया। इस पर काम चल ही रहा था कि असम राइफल्स ने कैप्टन मैकडोनल्ड के नेतृत्व में अचानक हमला कर दिया और गादिल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। साल था 1932। गादिल्लू को इम्फाल ले जाया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। रानी गादिल्लू ने अगले 15 बरस गुवाहाटी, शिलोंग, तूरा और आइजोल की जेल में बिताए। गादिल्लू तभी मुक्त हो सकी जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। कोहिमा में रहने के दौरान सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 1982 में समाज में अभूतपूर्व योगदान के लिए रानी गादिल्लू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1983 में उन्हें विवेकानंद सेवा सम्मान से भी नवाजा गया। 1991 में रानी गादिल्लू अपने जन्म स्थान लोंगकाव लौट गईं, जहां 17 फरवरी 1993 को 78 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। साल 1996 में रानी गादिल्लू को मरणोपरांत बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी बरस उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया। वही साल 2015 में रानी गादिल्लू के जन्म के 100 बरस पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष स्मारक सिक्के जारी किए गए। देश के इतिहास में वो एकमात्र महिला क्रांतिकारी थीं जिन्होंने 15 बरस का लंबा समय कारावास में काटा। रानी गादिल्लू को आज भी नागा समाज एक देवी के रूप में याद करता है, जिसने अपना सारा जीवन मातृभूमि और लोगों के कल्याण को समर्पित कर दिया।

0: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। टीबी छाती की, चेस्ट की ही नहीं होती, पल्मोनरी टीबी जिसे हम बोलते हैं, चेस्ट की टीबी जो खांसी से फैलती है, वो टीबी के मरीज अगर हम 100 देखेंगे तो 80 लोगों को छाती की ही टीबी होती है, परंतु 20 लोगों को छाती के बाहर की टीबी भी होती है। टीबी शरीर के किसी भी अंग को, हड्डी, लिम्फ नोड, लिवर, इंटेस्टाइन, किसी भी अंग को प्रभावित करके वहां रोग पैदा कर सकती है। उसका इलाज तकरीबन सेम दवाइयों द्वारा किया जाता है। जो इलाज की ड्यूरेशन है, जो इलाज का समय है, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि ये इलाज 6 महीने चाहिए, 9 महीने चाहिए या 1 साल का चाहिए, परंतु दवाइयाँ सेम रहती हैं। और डॉट्स के तहत ज़्यादातर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का भी अच्छा इलाज होता है।
1: डॉक्टर साहब, हर साल 24 मार्च को, यानी कि 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। इस दिन को सुनिश्चित करने की क्या जरूरत थी और इसका क्या उद्देश्य है?
0: टीबी के लिए भी एक दिन साल में हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में या ग्लोबली टीबी की रोग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। विश्व भर में 8.8 मिलियन टीबी के केसेस हैं और हमारे देश में 1/5 जो केसेस हैं वो हमारे देश से हैं। तो एक दिन निश्चित करके इस दिन द्वारा हम आपको मीडिया द्वारा, गेट टुगेदर्स द्वारा, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा मिलकर डॉक्टर लोग अगर सब जगह ये अपने विचारों को फैलाएं कि टीबी एक कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका इलाज कराना पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है, पूरी परिवार के लिए जरूरी है, नहीं तो ये परिवार में हर व्यक्ति को हो सकती है। इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए जो दिन है ये सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सब लोग जो है इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें और जो रिजल्ट हमने पूरे साल मेहनत करके अक्वायर किए हैं उनको भी एनालाइज कर सकें।
1: इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहे हैं और ये प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं?
0: सरकार की तरफ से बहुत अच्छे डॉट सेंटर पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं और उस सेंटर में ट्रीटमेंट मुफ्त उपलब्ध है, डायग्नोसिस की सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं और पेशेंट्स को वहाँ पर अंडर सुपरविजन दवाई दी जाती है। इन प्रोग्राम्स के द्वारा दिल्ली में टीबी के पेशेंट्स को बहुत राहत मिली है और जितनी मेरी समझ है ये पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी कम्युनिटी में।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि जब किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो उसके परिवार वालों को भी ये होता है कि इन्फेक्शस हो सकता है। पहले तो ऐसे होता था कि टीबी सैनिटोरियम्स में छोड़े जाते थे ये लोग और इनके साथ एक छुआछूत का जैसे बर्ताव किया जाता था। तो अब आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कैसे इनका इलाज करना चाहिए परिवार वालों को?
0: जब तक टीबी के रोग का ये नहीं मालूम चला कि ये एक इन्फेक्शन है, जब तक इसके दवाइयाँ 1940 तक नहीं आई दुनिया में, इसकी ट्रीटमेंट नहीं बनी, तब तक टीबी से तकरीबन 100% लोग जो है वो मर जाते थे। मगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल हो गया, अच्छी से अच्छी सेफ दवाइयाँ आ गई। जब तक पूरा इलाज नहीं था तब तक सैनिटोरियम का इलाज किया जाता था ताकि आसपास के लोगों को बीमारी ना फैले और मरीज को ताजी हवा में, पहाड़ में अच्छी तरह से खुराक दी जाए और धीरे धीरे वो नेचुरली अगर हील हो सकता है तो हो जाए, अदरवाइज कम से कम वो पूरे शहर में बीमारी ना फैलाए। परंतु टीबी के अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट की डिस्कवरी के बाद इस तरह के सैनिटोरियम ट्रीटमेंट बंद हो गए, तकरीबन सारे सैनिटोरियम बंद हो गए हैं और घर पे रह के आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं आप अच्छी से करवा सकते हैं। इस इलाज से तकरीबन 100% लोग ठीक हो जाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से टीबी होने का खतरा होता है, परंतु जैसे ही आप इलाज शुरू करते हैं 7 से 10 दिन में पेशेंट टोटली नॉन इन्फेक्शियस, मतलब बिल्कुल सेफ हो जाता है, आपको बीमारी नहीं दे सकता। 7 से 10 दिन में जो टीबी के कीटाणु हैं वो इतने क्षीण हो जाते हैं कि वो आपको बीमारी नहीं दे पाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से, खाना खाने से कोई भी टीबी नहीं फैलती है। सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन लेनी होगी कि वो जो अपनी स्पूटम या थूक है उसको किसी कंटेनर में जिसमें एंटीसेप्टिक है उसमें डिस्पोज करे, घर में इधर उधर ना फेंके, और अपनी बलगम से बने जो क्लोथ्स होते हैं, जो रुमाल है या कोई तौलिया है, उसको भी अच्छी तरह से गर्म पानी में धोए। तो टीबी के पेशेंट्स को घर पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इलाज हो सकता है।
1: वैसे कहा जाता है कि टीबी एक गरीब तबके के समाज के लोगों को ज्यादा असर करता है, क्या यह सही है?
0: टीवी

0: सोसाइटी के हर प्रकार के आदमी को इफेक्ट करता है। इसमें गरीब और अमीर का फर्क नहीं है। आपको अपनी हाइजीन लेवल को मेंटेन रखना है। अगर आप स्वस्थ वातावरण में, ताजी हवा में रहते हैं, अपनी खुराक का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, तो टीबी आपको होने के चांसेस कम है। तो इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है कि गरीब को होगा टीबी, जिसके पास अमीर है या पैसे वाले हैं। हर प्रकार के पेशेंट को, इट्स ए इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकती है।
1: डॉक्टर बॉबी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सब बहनों भाइयों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को भी 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो तुरंत डॉट केंद्र में जाके अपना जांच करवाएं। जांच करने के बाद अगर टीबी निकलती है तो मेडिकल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करके अपना कोर्स कंप्लीट करें। ये कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है, तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना हिम्मत मत हारें और पूरा डट के इलाज करवाएं।

0: स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबां पर वंदे मातरम, यही थी मातंगिनी हाजरा। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने के ललक से युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाली मातंगिनी हाजरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: हेलो, मैं पूजा शाबाद मोहम्मदपुर से। मैं रीड इंडिया से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने रीड इंडिया से सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर सीखा, उसके बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग की, फिर मैंने सिलाई की। सिलाई करके फिर काफ़ी टाइम तक मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहने लगी। लेकिन मेरे एक दिन एक लेडीज़ मेरे पास आई कि बेटा मेरे को सूट सिलवाने हैं, अगर यहाँ पे कोई आसपास में सूट सिलता है तो मुझे बता दो। वो भी फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी, वो भी यहाँ पे नहीं जानती थी किसी को, क्योंकि वो यहाँ पे किराए पे रहने वाली थी। उसने वो मेरे पास आई, फिर मैंने उनको बोला कि आंटी मैं सिल सकती हूँ। बोले कि बेटा आप सिलना जानते हो? मैं बोली कि हाँ आंटी मैं सिल सकती हूँ, मेरे को सिलाई आती है। उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे से सूट सिलवाया। उन्होंने जो सूट सिलवाया था, उन्होंने मेरे को सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था और मैंने उनको 2 घंटे में सूट तैयार करके उनके पास फ़ोन किया कि आंटी आपका सूट कम्प्लीट है, आप ले जा सकते हो। तो वो मेरे घर आई, उन्होंने सूट देखा, उन्होंने सूट मेरा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसे ही सूट सिलते रहोगे तो हम आपसे और सिलवाएंगे। नेक्स्ट डे आई, फिर उन्होंने मेरे से एक ब्लाउज सिलवाया। मैंने उनका ब्लाउज सिलवाया, उन्हें वो भी अच्छा लगा कि बोला कि बेटा तुमने फिटिंग बहुत अच्छी मतलब बिठा रखी है कि सूट की और ब्लाउज की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बोले कि थैंक यू आंटी। बोले कि नहीं बेटा आप सिलते रहो, हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे ही सिलवाएंगे। मैंने कहा ठीक आंटी आपकी मर्जी है। उस टाइम मेरे पास हाथ की मशीन थी, वैसी पैर वाली मशीन नहीं थी। धीरे धीरे करके मैंने सिलाई की, सिलाई करके अपना पैसा जोड़ा, इकट्ठा किया। सबसे पहले मैंने अपनी एक गुल्लक खरीदी 5 रुपए वाली। मैंने उस गुल्लक में जितना मैं सिलाई करती थी सारा पैसा उस गुल्लक में डालती रहती थी। मैक्सिमम मुझे 1 साल हो गया था जब मैंने अपनी गुल्लक को फोड़ा, तो मेरे गुल्लक में मैक्सिमम 3000 रुपए निकले। मैं यहाँ से घर से निकली, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सिलाई मशीन के पैर लेके आने हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। फिर मैंने अपनी सास को बोला, वो बोली कि क्या करेगी आंखें खराब होती हैं। फिर मैंने पापा को बोला, ससुर को, उन्होंने कहा बेटा नहीं कोई सिलाई विलाई नहीं करनी है, अपने घर में रहो, बच्चों को देखभाल करो, उनको खाना पीना खिलाओ। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। एक दिन मैं खुद पालम गई, फिर मैं वहां से अपनी मशीन के पैर लेके आई। आके मैंने घर पे एक मशीन वाले को बुलाया, उन्होंने मेरी मशीन उस पे रखी, उसको स्टार्ट किया। उसके बाद मैं अपनी सिलाई करना शुरू किया। सब मेरे को टोकते थे कि बेटा नहीं तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मत सिल, और फिर यही है कि तेरे को दिखना बंद हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा। मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं सिलूंगी, मेरा मन करता है कि मैं सिलाई करूं। उस दिन के बाद मेरे को इतना प्राउड हुआ कि मैं खुद सिलाई करती हूं, और आज है मेरे अंदर इतना प्राउड कि मैं बाहर के सिलती हूं और अपना सारा पैसा इकट्ठा करती हूं, मेरे बच्चों को जो भी जरूरत होती है। जैसे कि हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करता, उनको किसी भी हेल्प बुक की ज़रूरत होती है, किसी भी पेन की, पेंसिल की, मैं सारी चीज़ें अफोर्ड करती हूँ उनके लिए। हस्बैंड तो सुबह के ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, वो मेरे को कोई खर्चा भी नहीं देके जाते, लेकिन जब भी पीछे से बच्चे बीमार होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि सास ससुर को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं एक बार भी ये नहीं सोचती कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं उनके लिए भी हर टाइम तैयार रहती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे बीमारी के लिए कोई पैसा हुआ, या खाने पीने की चीज़ हुई, या कि कोई भी चीज़ पसंद आए कि हमें ये सूट चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें दिलाती हूँ। लेकिन एक बार भी उनको अब तक ये नहीं है कि हाँ वो हमारे लिए इतना कर रही है कि हम उसको सपोर्ट करें। रीड इंडिया से फिर मैं दोबारा से जुड़ी हूँ, क्योंकि रीड इंडिया में कंप्यूटर और सिलाई और ब्लॉक पेंटिंग और पार्लर का कोर्स किया जाता है। अब मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ और मैंने बेसिक कंप्यूटर भी सीख लिया है, और पार्लर का कोर्स करने के बाद अब मैं घर पे जाके मेरी दो देवरानियाँ हैं उन पर ट्राई करती हूँ, मेरी सास है उन पर ट्राई करती हूँ, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड है मेरे को अपने मतलब खुद मेरे हाथ से खुद अपनी हेड मसाज करवाते हैं, फुट मसाज करवाते हैं, वो बहुत बोलते हैं कि मुझे बहुत रिलीफ मिला है। लेकिन अब तक उन्हें भी मेरा 1% भी सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं निकली हूँ घर से और मैं सीख रही हूँ कि मैं भी कुछ करूँ और मेरी भी एक अलग पहचान हो। जब फर्स्ट टाइम मैंने सिलाई की थी, जो मेरे पास सबसे पहले पैसा आया था, सबसे पहले तो मैंने भगवान के मंदिर में जाके उनका प्रसाद बांटा था, और सबसे पहले मैंने अपने एक सूट लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रीड इंडिया से भी जुड़ी हूँ, उससे मैंने सिलाई भी सीखी है, उस बेस पे मैं अपने पैरों पे स्टैंड हुई हूँ। तो मैं थैंक यू करती हूँ पूरी रीड इंडिया के टीचर्स का कि थैंक यू, आप सबने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल बनाया कि ठीक है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन घर में एक पूरी फैमिली के सामने मैं स्टैंड हूँ कि कल को अगर मेरे पर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो मैं किसी की तरफ देखूंगी नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ अपना। तो थैंक यू।

0: स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली असंख्य महिला क्रांतिकारी हुईं, जिन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थीं। ऐसी ही एक वीरांगना थी गुलाब कौर। पंजाब के बेहद गरीब परिवार में जन्मी गुलाब कौर ने विवाह के बाद बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। पैसों की कमी के कारण पति मान सिंह के साथ गुलाब कौर पहले मनीला पहुंची, जहां से पैसे कमाकर आगे अमेरिका जाने की योजना थी। इसी दौरान गुलाब गदर पार्टी के नेताओं के संपर्क में आई। गदर पार्टी एक भारतीय क्रांतिकारियों का संगठन था, जिसकी स्थापना अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से पंजाबी सिख प्रवासियों द्वारा की गई थी। गदर पार्टी ने गुलाब कौर को क्रांतिकारी साहित्य छापने की जिम्मेदारी दी। जल्द ही भारत की आजादी के लिए गदर पार्टी ने वतन वापसी का फैसला लिया। गुलाब कौर भी भारत लौटने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन तय दिन उनके पति मान सिंह फैसले से पलट गए। गुलाब अपने इरादे पर डटी रहीं और भारत जाने वाले जहाज पर सवार हो गईं। जहाज पहले हांगकांग पहुंचा, जहां प्रवासी भारतीयों की सभाओं में गुलाब कौर गदर की गूंज कविता की पंक्तियां गाती और अपनी चूड़ियां उतार कर लोगों को ललकारती। जहाज भारत पहुंचा और पहुंचते ही गदर पार्टी के कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन गुलाब बचकर पंजाब आ गईं। उन्होंने होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला में लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। गुलाब क्रांतिकारी साहित्य छापती और उसे स्वतंत्रता सेनानियों में बांटने का काम करती। गुप्त रूप से वो क्रांतिकारियों तक हथियार भी पहुंचाती थी। धीरे धीरे गुलाब कौर के प्रेरक व्यक्तित्व और अथक प्रयासों से पंजाब में एक मजबूत आंदोलन खड़ा हो गया। कई बार ब्रिटिश पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार गुलाब कौर गिरफ्तार कर ली गईं। राजद्रोह के मामले में उन्हें लाहौर के शाही किले में कैद कर लिया गया, जहां उन्हें गंभीर यातनाएं दी गईं। 1931 में आजादी का सपना दिल में ही लिए ये महान वीरांगना हमेशा के लिए अमर हो गई।
1: शुक्रिया अदा करती हूँ गीता मैम और रेड इंडिया का, क्योंकि मुझे ये फील्ड के दौरान ही पता चला था कि यहाँ पर एक सेंटर है, और मैंने उस सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखा, और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में जॉब ज्वाइन की, और जो मैं दीपशिखा में ही दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दिल्ली महिला आयोग में, वो सब संभव हो पाएगा आपकी वजह से। गीता मैम थैंक यू।
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताएं और जलवायु परिवर्तन। ऐसे में ऐसे ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है जो स्वच्छ भी हो, भरोसेमंद भी हो और लगातार बिजली उपलब्ध करा सके। यही कारण है कि दुनिया में एक बार फिर परमाणु ऊर्जा की ओर ध्यान बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत स्वच्छ तो हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता मौसम और समय पर निर्भर करती है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2400 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए इन्हें बिजली व्यवस्था की एक विश्वसनीय आधारशिला माना जाता है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही है। एक ओर शांति अधिनियम के माध्यम से कानूनी और नीतिगत ढांचे को आधुनिक बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकियों के विकास और नई पीढ़ी के रिएक्टरों पर निवेश बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ईंधन सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हाल के वर्षों में किस प्रकार भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई दिशा मिली है और इस क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को किस प्रकार मजबूती प्रदान कर रही है। श्रोताओं, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम देश के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला बना। इसके बाद संशोधनों के माध्यम से सरकार ने इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, तकनीकी क्षमताओं और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों में तेजी से बदलाव आया है। ऐसे में आवश्यकता महसूस की गई कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को एक आधुनिक और व्यापक कानूनी ढांचे में समाहित किया जाए। इसी सोच के साथ शांति अधिनियम 2025 लाया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
4: भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो देश के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की वर्ष 2024-25 में हिस्सेदारी लगभग 3% रही, जबकि देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.78 गीगावाट है। सरकार का लक्ष्य स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विकसित रिएक्टरों के माध्यम से वर्ष 2031-32 तक 22 गीगावाट से अधिक की क्षमता विकसित करना है। वहीं दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि देश में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा दिया जा सके। लक्ष्य ये भी है कि वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR विकसित किए जाएं। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लाया गया शांति अधिनियम 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। इसके तहत नियामकीय निगरानी के अंतर्गत निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सीमित भागीदारी की अनुमति दी गई है। वे परमाणु बिजली संयंत्रों के संचालन, बिजली उत्पादन, उपकरण निर्माण और निर्धारित सीमा तक परमाणु ईंधन निर्माण जैसी गतिविधियों में भाग ले सकेंगी। हालांकि संवेदनशील गतिविधियां केंद्र सरकार या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगी। अधिनियम में परमाणु ऊर्जा और विकिरण से जुड़ी गतिविधियों के लिए लाइसेंस तथा सुरक्षा स्वीकृति की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को वैधानिक दर्जा देकर नियामक व्यवस्था को और सशक्त बनाया गया है। इसके साथ ही परमाणु क्षति से जुड़े दायित्व, मुआवजा, दावों के निपटान और अपील की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है। स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में परमाणु तथा विकिरण तकनीकों के उपयोग के लिए भी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाई गई है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
3: श्रोताओं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कोई अल्पकालिक योजना नहीं बल्कि 6 दशकों से अधिक समय में विकसित हुई एक दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। सीमित यूरेनियम संसाधनों और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। इसकी खास बात ये है कि हर चरण अगले चरण की नींव तैयार करता है। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरे चरण में उसी प्रक्रिया से प्राप्त ईंधन का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में किया जाता है। इसके बाद तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडारों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी दूसरे चरण की दिशा में भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि इस रिएक्टर में पहली बार नियंत्रित और सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिय सफलतापूर्वक शुरू हुई। इसके साथ ही भारत ने अपने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। लेकिन आखिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है और इसे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है, इस विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया।
5: एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में हम लास्ट अबाउट 30 ईयर्स उसी कल्पाकम में टेस्ट कर रहा था। उस अनुभव का बेसिस में ये हम बिल्ड किया है। यूजुअली आप एक एटॉमिक रिएक्टर लिया तो वो एटॉमिक रिएक्टर से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बट इस रिएक्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो वर्ड ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब किसी चीज को नया पैदा कर सकता है ना, तो उस तरह से फ्यूल को ये पैदा करता है, वेस्ट को पैदा नहीं करता है। इस रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन फास्ट तरीके से निकलेगा। इसके कारण वो क्या करेगा, ये रिएक्टर के बाहर एक कवच के रूप में हम किसी नॉन फिसाइल मटेरियल को हम रखेंगे, लाइक थोरियम को हम रख सकता है, उसमें ये फास्ट न्यूट्रॉन टकरा के उसको फ्यूल बन, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक विशेष मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल होने के बाद अपनी आप एक चेन रिएक्शन में उसे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो ये क्रिटिकलिटी। इंडिया का एक अपनी आप एटॉमिक पावर का प्लान है, उस प्लान में 3 स्टेज बोलेगा, ये सेकेंड स्टेज है, ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है, इसमें हमको कामयाब हो गया तो होगा, पक्का होगा, मुझे यकीन है। सो कामयाब होने के बाद हम देखा तो स्टेज थ्री में हम इंडिया में अवेलेबल है थोरियम, वो थोरियम को हम यूज कर सकता है। थोरियम बहुत सेफ विषय है, तो ये एटॉमिक पावर प्रोड्यूस करने का थोरियम यूज किया तो बहुत सेफ होगा। एंड सेकेंड, वो पूरा की पूरा इंडिया में अवेलेबल, सो इसका मतलब दैट हमको एक एनर्जी सॉवरनिटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा।
3: श्रोताओं, भारत के पास यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, जबकि थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत के पास है। भारत का तीन चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी सोच पर आधारित है कि भविष्य में इन विशाल थोरियम संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। आइए इस विषय पर वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन की राय सुनते हैं।
5: लास्ट 20-30 वर्ष में एटॉमिक पावर के ऊपर एक नेगेटिव व्यू था, बट अभी पेट्रोलियम एंड कोल का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देख के बहुत लोग ये बोलने लगा दैट हम नया दौर पर नया दृष्टिकोण से एटॉमिक पावर को देख, तो एक एटॉमिक पावर ग्रीन एनर्जी है, इसका मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाला चीज को नई पैदा कर। एंड हम थर्ड स्टेज दैट इज थोरियम यूज करने लगा तो इवन एटॉमिक सेफ्टी का इश्यू बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो फ्यूचर में आई थिंक सर्टनली ये एटॉमिक पावर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में, एंड बिकॉज वी हैव थोरियम इन ह्यूज रिजर्व, बहुत ज्यादा मात्रा में थोरियम इंडिया में है, तो फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एटॉमिक पावर प्ले करेगा।
3: श्रोताओ, आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग और अधिक बढ़ने का अनुमान है, और ऐसे समय में पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक संघर्षों ने ये दिखाया है कि ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अनेक देश परमाणु ऊर्जा को एक दीर्घकालिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वर्ष 2023 में आयोजित COP28 सम्मेलन में 20 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कम से कम 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत भी अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लगातार विस्तार दे रहा है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के कुल यूरेनियम संसाधनों का 1/3 से अधिक हिस्सा है। ऐसे में ये व्यवस्था भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ईंधन सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी और सुरक्षा प्रावधानों के तहत की जाएगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया है। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक है अलका सिंह।
6: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है, तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
7: माय नेम इज नौशाबा अंसारी, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया, उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरा 1.5 साल का बेटा है। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो यहाँ पर मैंने TG का एंड NTT का कोर्स किया, कर रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ करके, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ। मेरे इन-लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है NGO के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से। यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे।
8: हेलो, मेरा नाम दीपा है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ। मेरा एक बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैंने 12th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 महीने का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। जैसे बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी, उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर वो राजी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने NTT का कोर्स किया, उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए, तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला। फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर का कोर्स भी किया। उससे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी कम महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके, या फिर भाई पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
9: मेरा नाम रिया है, मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी, क्लास आना बंद हो गया था मेरा, और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा। मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ मैं बिल्कुल, मेरे को वो हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है, टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ ये कर सकती है कुछ।
10: हमारे सभी व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ एक और कार्यक्रम में, रिकॉग्नाइजिंग द लीडर्स फ्रॉम आवर ग्रासरूट्स। ये एक यूनिक कहानी है जहाँ पे आर एस दलाल, उनका जो दिल है वो इतना बड़ा है कि वो अपने गांव को जितना देना चाहते हैं उससे भी ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो हर वक्त अपनी कम्युनिटी को गिव बैक कर सके। तो यही एक स्टोरी है हम आज आपके साथ लेके आए हैं, और इस स्टोरी को और अपनी कहानी को नरेट करने के लिए हमारे साथ रितु हमारे साथ हजर से जुड़ी है। वेलकम रितु।
11: मैम मैं सोनीपत से हूँ, मैंने BA/BEd किया हुआ है, और मैम मेरी शादी यहाँ पे हुई 2012 में, मेरी शादी हुई उस टाइम यहाँ पे हवेली की रिनोवेशन चली हुई थी। 2014 में यहाँ पे रीड इंडिया ने सेंटर ओपन किया, यहाँ पे रीड इंडिया ने मल्टी टास्क लेडीज के लिए रखा।
10: व्यूअर्स को बताना चाहूंगी जो पिक्चर्स शशांक अभी शो कर रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी जो झज्जर में है, जो मिस्टर दलाल के जो एंसेस्ट्रल हवेली है उसमें सेटअप है। इसमें एक लाइब्रेरी है जिसकी लाइब्रेरियन रितु है, वो बात कर रही थी कि उन्होंने किस तरीके से सेंटर पे काम करते हुए ही अपना जो है लाइब्रेरी में ही उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया है इस सेंटर के दौरान, इस सेंटर के साथ जुड़े रहने के दौरान। तो इसमें जो बच्चों के कार्यक्रम हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। अभी हम मिस्टर दलाल की फोटो भी हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई थी, वी विल कम बैक टू दैट अगेन। तो रितु आप बताइए कि किस तरीके से सेंटर से कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बाकी जो हमारे संसाधन चल रहे हैं इसमें लाइवलीहुड को लेके, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को लेके, उसमें थोड़ा आप शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ।
11: मैम जैसे कि 2014 में जब सेंटर की ओपनिंग तब हुई थी तब गांव कुछ और था, और आज 2021 में गांव कुछ और है। स्टार्टिंग में मैम यहाँ पे जो लेडीजें थी उनको ये नहीं पता था कि ये सेंटर किस लिए खुला है, क्या इसका पर्पज है। उन्होंने यहाँ पे आके सिलाई सीखी, क्योंकि गांव का जो एरिया होता है वहां पे 11th और 12th में ही लड़की को सिलाई सिखा दी जाती है और फिर बाद में उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आके लोगों ने इंटरनेट से कनेक्ट हुए, समाज को देखा, यहाँ पे विजिटर्स आए, उनके बिहेवियर को देखा कि वो कितना स्टडी कर चुके हैं, आज समाज कितना ऊपर जा चुका है। वो समाज में एक मतलब एक आईना है ये सेंटर समाज का। यहाँ की औरतों ने शुरुआत में सिलाई सीखी, महिलाओं ने सिलाई धीरे धीरे सीखी, फिर उसको एक रोजगार बनाया कि हम सीख रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ कमाएं। वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले उनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा स्किल नहीं था। स्किल था बट वो बाहर उभर के नहीं आया था, सेंटर ने उस स्किल को उभारा है।
10: इसी तरीके से हम स्पोर्ट्स का भी काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसे गांव में स्पोर्ट्स को, एक स्पोर्ट्स की पूरी टीम बनी है आपकी एरिया में, और एक बहुत ही बड़े दर्जे पे मैच भी हुआ था फुटबॉल का, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगे कैसे फोकस।
11: मैम यहाँ पे टाइम टू टाइम टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें बॉयज गर्ल्स जितने भी यूथ हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं, और वो स्टेट लेवल तक भी जा चुके हैं। और यहाँ तक कि सर हर साल में जो वुमेन्स डे होता है उस पे लेडीज के लिए कि लेडीज भी आगे आए, वो भी स्पोर्ट्स को देखे कि स्पोर्ट्स क्या है जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, यहाँ पे सर उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स रखवाते हैं, जैसे रनिंग का हो गया, मटका कंपटीशन हो गया, साइकिलिंग कंपटीशन हो गया। मैम जैसा कि हर इंसान के मन में पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग होती है, जब स्टार्टिंग में सेंटर ओपन हुआ था तो हम लोगों को लेकर काफी नेगेटिव थिंकिंग थी कि ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, हर मंथ इनको सैलरी मिल जाएगी बस काम खत्म। लेकिन अब जब हम हर बार सर्वे करते हैं वो देखते हैं कि ये अपने नियर बाई जो विलेज है वहां पे भी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ की औरतें बहुत खुश होती हैं। हम पहले हाउस वाइफ के उसमें जाने जाते थे कि ये उसकी पत्नी है, ये उसकी उसकी लड़की है, इस तरह से जाने जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे औरतों को खुद के उनके नाम से जाना जाने लगा है कि ये जो है प्रोडक्शन की यूनिट है, इसमें 20 महिलाएं हैं, इस महिला का नाम ये है, इस महिला का नाम ये है। तो मैम बहुत ज्यादा चेंज आया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमने कम्युनिटी को देखा है कि इंडिपेंडेंट हो गई है, और हमारे लिए भी पॉजिटिव थिंकिंग आई है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी सोशल वर्क कर रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं निस्वार्थ काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो निस्वार्थ काम करते हैं।
10: वेरी नाइस। और आपकी जो हवेली है वो भी सस्टेनेबल है, क्योंकि जिस तरीके से इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है और डिजाइन है, ये ज्यादा बिजली खर्च नहीं करते, तो जो हमारा ये कार्यक्रम है ये कल्चर को भी प्रिजर्व करने की बात करता है, कि किस तरीके से हमारे गांव में हमारे जो रीड के सेंटर्स हैं वो नॉट ओनली क्राफ्ट्स एंड कल्चर बल्कि जो हमारे रहन सहन का तरीका है, खान पान का तरीका है, उसके ऊपर भी हम जितना हो सके नेचर और सस्टेनेबल तरीके से काम कर सके।
11: अभी जैसे कोरोना टाइम में घर में लाइट्स की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क्स की प्रॉब्लम थी, सेंटर पे वाईफाई होने के कारण यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, एक दिन में कम से कम 60-70 स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते थे, अपने प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट देते थे, उसी टाइम उनके एग्जाम भी होते थे, तो उनके लिए बाहर नेटवर्क में आना बहुत मुश्किल हो गया था, तो यहाँ पर बैठकर वो अपना काम पूरा करते थे। और मैम जैसे कि कोरोना की वैक्सीनेशन है तो सेंटर पर इतनी सफाई है, यहाँ पर टॉयलेट्स हैं, वाटर की फैसिलिटी है, लाइट्स की फैसिलिटी है, वाईफाई की फैसिलिटी है, तो ये सब कुछ कोरोना की जो वैक्सीनेशन टीम है उनको ये सब फैसिलिटी चाहिए थी, तो यहाँ पे आके हम उन्होंने यहाँ पे हर हफ्ते हफ्ते में दो बार या एक बार यहाँ पे कैंप लगता है। सिर्फ वो इस हवेली में जो फैसिलिटी है उनके लिए नहीं आते, कि वो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पे दो गांव हैं मैम, मेहंदीपुर है और डाबोदा है, दोनों अलग अलग गांव हैं, तो दोनों गांव के लोग इस सेंटर से कनेक्ट हैं। उनको हर गांव में रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो किसी को बोलेंगे कि यहाँ पे वैक्सीनेशन चली हुई है, तो वो एक बंदा 10 लोगों को बताएगा कि आज वैक्सीनेशन शुरू हो रखी है। तो मैम इससे उन लोगों को भी बहुत फायदा है कि उनको घर घर जाकर बताना नहीं पड़ता। हम भी उनको बताते हैं कि आज के टाइम में वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। और मैम एक सेंटर एक मतलब उनके लिए भी एक बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड बन गया, मतलब हर बंदे के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा था जिसमें हर व्यक्ति निराश बैठा था कि हम क्या करें, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएं, लेकिन यहाँ पर आकर बच्चों ने पूरा पूरा दिन वाईफाई यूज किया, क्योंकि घर में नेट का पैकेज खत्म हो जाता है और एक घर में ये है कि फोन की दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो हम भी अपना पर्सनल फोन उनके साथ शेयर कर देते थे कि आप अपना लिंक इस पे डालिए और आप पढ़ाई कीजिए।
10: वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग ऋतु। आपके यहाँ पे शुरुआती तौर में एक CSC भी चला था जिसमें कि पेंशन और जितना भी अकाउंट बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज थी वो भी आपने गांव में उपलब्ध कराए, तो थोड़ा उसका भी आप चर्चा करें।
11: मैम CSC और CSV सेंटर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन यहाँ पे आती है, और यहाँ पे कम से कम 450 या 500 के करीब लोगों का अकाउंट ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ से पेंशन लेके जाते हैं, अपना जो बजट है उनका अपनी बचत यहाँ पे डाल के जाते हैं। ऑनलाइन जितनी भी सर्विस है जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो वो यहाँ से करवा के जाते हैं, यहाँ से एकदम से। जैसे मैम ट्रैवल की मैंने आपसे कहा था कि ट्रैवल की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो बुजुर्ग वहां पे जा नहीं सकते और हर मंथ उनको पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि पेंशन से कुछ घर ऐसे हैं जिनका पेंशन से ही गुजारा चल रहा है, जो बुजुर्ग हैं अकेले रहते हैं तो वो यहाँ पे आके पेंशन लेते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम पेंशन मिलती है। और ऑनलाइन CSC CSP उनको इतना प्रॉफिट दे रही है कि बच्चों के जैसे ऑनलाइन एडमिशंस हैं तो वो यहाँ पे आके ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, फीस पे करते हैं, ऑनलाइन टिकट ट्रैवल टिकट बुक कराते हैं। तो मैम ये भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। और मैम यहाँ पे एक फोटोकॉपी की भी मशीन रखी हुई है, फोटोकॉपी के लिए दूसरे गांव में कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उनको फोटोकॉपी के लिए, लेकिन जब से सेंटर ओपन हुआ है तब से मशीन यहाँ पे होने के कारण लोगों का इतना इतना मतलब उनको प्रॉफिट मिला है इससे भी, कि क्योंकि फोटोकॉपी ऐसी चीज है कि आज के टाइम में हर फॉर्म के लिए किसी ना किसी कॉपी की जरूरत होती है, तो वो यहाँ से कॉपी करवा के जाते हैं और यहाँ से फायदा उठाते हैं, और हम भी उनसे बहुत कम प्राइस में उनकी फोटोकॉपी करते हैं जिससे कि वो यहाँ पे खुश होके आते हैं।
10: थैंक यू हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमारे साथ हमारी मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जुड़ी हैं। मैम वेलकम टू द शो।
12: थैंक यू स्मिता। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे याद करना चाहती हूँ कि मिस्टर दलाल से मैं कैसे मिली थी। हमने एक सेंटर बनाया था खैंसा में जो कठिन ब्लॉक में है, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए मैंने मिस्टर दलाल को बोला था कि आप आए। वो पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे सेंटर लॉन्च करने के लिए आए थे, और तब से उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे गाँव में प्रपोजल, बिकॉज it was not that very easy to start the youth center. So many formalities and so many documentation are to be done. So what I would like to say here that this presentation, this partnership and this association has given so much to Youth India from Mr. Kalash. I would like to recognize here that every time he is ready to help us, every time he is ready to walk with us, wherever we are facing any challenges or wherever we are facing any issues, with a matured guidance and help is highly appreciated. और ये जो थर्जर का सेंटर है ये बहुत ही प्यारा हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ इन्होंने और भी पुलिस ऑफिसर्स को एनकरेज किया कि आप अपनी भी हेल्प करो. तो दो साल पहले कांडा के लिए एक ग्राम है जो मैनपुर के साथ है और वहाँ पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी हवेली हमें दी और बोला कि यहाँ पे भी आप इनका सेंटर बना सकते हैं और वहाँ पे भी हमने स्टाफ रखा, स्कूल चलाया, सल्ला जी हैं जो वहाँ पे सिटिंग इंजीनियर चलाती है और उर्वशी मैम हैं जो उस हवेली की ओनर हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ी है वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट का काम कर रही है. द पॉइंट हियर आई एम मेकिंग इज द विलिंगनेस टू गिव बैक टू योर दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और अगर ये थॉट हर एक के मन में हो तो हमारे गांव तो कभी भी पिछड़े नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा शहरों से भी आगे बढ़ जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. और दूसरी बात मैं जो यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जैसे ही गांव में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वुमेन कम फॉरवर्ड इन अ ग्रेट वे, दे आर द रोल मॉडल्स, दे आर द मेंटर्स. आई शुड नॉट से दैट आई एम द मेंटर, आई जस्ट प्ले द रोल. But these women like Ritu and many other Kavita ji, many other have taken the position of mentors now, mentoring the rural women who are residing with them in the villages. Or center mein wo khali bhula seekhte nahi aati hain, but center mein wo apne mind ko strong karne aati hain, apne parivar ke liye wo kya kar sakti hain wo seekhne aati. और एक कोहेसिवनेस बनती है गांव में कि यस ये हमारा सेंटर है. और जैसे अभी एक वीडियो शशांक ने दिखाई थी उसका टाइटल था हमारा हरियाणा, तो मैं ये कहूंगी कि ये लोग अभी ये नारा बोल सकते हैं हमारा मंदिर, हमारा चर्च, हमारी कांडा खेड़ी. सो वो सिचुएशन आ गई है अब. और सच में मैं बोल रही हूँ कि as a human being, I highly appreciate Mr. Dalal's contribution and the team who has really contributed so well and nurtured the center like their own house. So ye bahut badi achievement hai hamare jo I should say hamara jo network hai, hamare jo colleagues hain jo center mein kaam karte hain. और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं ऋतु और कविता में देख रही हूँ पिछले 6-7 साल से, वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पक्का विश्वास है बहुत सारी औरतों में भी हुई है गांव के लेवल पे. और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक जील है उनके मन में कि हमें कुछ करना है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो ऋतु जी, मैं आपसे एक बस यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने हजारों में औरतों, आप मेहंदीपुर गांव से आगे भी गई हैं और आसपास के गांव में भी आपने औरतों को मोटिवेट किया है कि आपके सेंटर में आए और जो ट्रेनिंग दिए, बहुत लड़के भी कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं, बहुत लड़कियां भी आती हैं गांव पे. सबसे बेस्ट प्रोग्राम आपके सेंटर में कौन सा चला है और मैक्सिमम औरतों और बच्चों ने उसको एंजॉय किया?
13: मैम, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक करना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया, सर ने दिया, आप दोनों ने मिलकर एक खंडर में जान डाल दी है. क्योंकि जैसे एक शरीर और आत्मा का मिलन होता है, वैसे ही सेंटर, अगर अकेला एक सेंटर होता और उसमें और कुछ नहीं होता तो वो एक अकेला सेंटर कुछ नहीं कर पाता. वैसे ही कम्युनिटी है मैम, अगर हम हैं, हमारे साथ कम्युनिटी नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है. हमारे साथ कम्युनिटी ने मिलकर इतना हम लोगों को भी सपोर्ट किया है,
11: जो हम उनसे बोलते हैं कि आप आइए, हमारी एक रिक्वेस्ट करने पर वो हमारे सेंटर पर आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो औरतों में है, औरतों को स्टिचिंग का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगता है कि वो उसमें मगन हो जाती हैं। हम उनका 1.5 घंटे का बैच बनाते हैं, लेकिन वो 1.5 घंटे में यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि कम से कम हमें 3-4 घंटे आप लोग यहाँ पे बैठने दीजिए। तो जब हम लोगों के बैच फिनिश हो जाते हैं, तो वो सैटरडे को आती हैं, हमसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम, आप कविता से भी रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दीजिए, मुझे ये करना है। जो हमारे पुराने जो यहाँ पे जा चुके हैं, जैसे 2016 में या 17 में जो बेनिफिशरी रह चुके हैं, वो यहाँ पे आते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आज सेंटर पर आकर कविता से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये न्यू फैशन चला हुआ है, हमें ये बताइए। तो मैम, हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि लोग, यहाँ की औरतें हैं जो सिलाई से इतनी जुड़ी हुई हैं, वो एकदम कपड़े में इतना मगन हो जाती हैं। प्रोडक्शन का जब हम लोग काम करवाते हैं, कुर्तियां जब लेडीज सिलती हैं, तो वो इतनी मगन हो जाती हैं कि कविता उनको बोलती है कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं हम बताएंगे नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे। तो मैम वो इतना इतना अच्छा काम करती हैं कि बहुत ज्यादा, कि उनके बगैर हम कुछ नहीं है। लेडीजों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया है, हमारे सेंटर को आगे बढ़ाया है। सेंटर में जान उन औरतों ने डाली है, क्योंकि वो इतना मेहनत करती हैं, इतना परिश्रम करती हैं, इतना खुश होती हैं, यहाँ पे बच्चों को लेके आती हैं। तो मैम वो भी आपको बार बार थैंक करती हूँ।
14: बहुत अच्छा लग रहा है सुन के रितु और कविता जो आप कह रही हैं, क्योंकि ये ही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, हम सब की। मैं तो ये बोलूँगी, नॉट हमारी ओनली, हम सब की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहते हैं आप लोग? आप सबको बताइए कि आपके दिल में क्या है और इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज इतना जील है, इतना कमिटमेंट है, बहुत सारी औरतें जुड़ी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, वो थोड़ा हमें बताइए।
11: मैम जैसा कि हमारे यहाँ पे मल्टी फैसिलिटीज हैं, तो मैम हम हर फैसिलिटी से कुछ ना कुछ इनकम ले सकते हैं। हम औरतों को ये बोलते हैं कि आप आज हमारे पास प्रोडक्शन की 20 की यूनिट है, तो हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो हमारी 50 या 100 की यूनिट हो, जिससे कि हम बड़े लेवल पर हम वर्क कर सकें। क्योंकि अभी हम जो क्लॉथ मार्केट में लेके जाते हैं वो कम प्राइस में सेल होता है, तो उसको हम चाहते हैं कि, और हम उसको मार्केट में ना सेल करके अपना खुद का नाम दें। क्योंकि मैम मार्केट में जो हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है, मार्केट में जो एक शॉप वाला होता है वो इतना पैसा उनसे कमाता है, हमसे बिल्कुल सस्ते प्राइस में, जो कि जो मेहनत करते हैं उन बंदों को कम पैसा मिलता है, और जो खरीदता है उसको, जो उसको पीस को खरीद कर बेचता है वो इतना इनकम कमाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी एक ऐसा बड़े लेवल का वर्क हो कि हम खुद इंडिपेंडेंटली अपना नाम उससे जोड़ें, एक बड़ी यूनिट बनाएं, और हम लोग जितने भी नियर बाय विलेज में गए हैं वहां पे भी हम लोगों की यूनिट्स हो। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं या ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ, हर किसी चीज से अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी पैसा मिलता है, तो हम और हमारे जो साथ वर्क कर रहे हैं, बेनिफिशरी हैं, उनको भी प्रॉफिट हो, और ये हवेली इसी तरह रनिंग करती रहे। और जो आने वाला फ्यूचर है, उसमें अभी जो औरत यहाँ से 100 रुपए कमा रही है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ से 50,000 कमाए।
14: वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बड़ी सोच है रितु, और हम मिलके इसको पूरा करेंगे, मैं इसकी एश्योरेंस देती हूँ। तो सिर्फ अगर कमिटमेंट है आप में और मेहनत करने की क्षमता है, तो ड्रीम्स तो फुलफिल हो ही जाते हैं। मैं रितु को बोलना चाहूंगी कि अगर वो कोई एक मैसेज हमारे सारे रीड की वुमेन के लिए कहना चाहे तो प्लीज शी शुड शेयर विद अस।
11: मेरा यही मैसेज है कि हमारा जितना भी रीड का स्टाफ है, हम मिलकर, अलग अलग ना हो, मिलकर कुछ ऐसा प्लान करें जिससे जितनी भी कम्युनिटी है उसको फायदा हो, और वो जैसा कि अभी मैम कर रही हैं, हमें भी गीता मैम जैसा और रंजीव दलाल सर जैसा लीडर बनना चाहिए कि इन फ्यूचर में जब हमारे हम ना रहे तो लोग हमें याद करें कि इन लोगों ने क्या किया है। गीता मैम इतना बड़ा एम लेकर चली हुई हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आज का जो टाइम है वो अपने लिए सोचता है, न्यू जनरेशन सिर्फ अपने लिए काम करती है। तो हम जो है, हमें भी मैम ने ऐसा बना दिया है, सर ने ऐसा बना दिया है कि हम ये मैसेज हर किसी तक पहुंचाए कि निस्वार्थ भाव का से काम करें, अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए, जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए जिए, उनके लिए कुछ करें जितना आप कर सकते हो, क्योंकि शिक्षा हर किसी के पास है लेकिन शिक्षा को बांटना बहुत जरूरी है। शिक्षा से व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है लेकिन जब तक वो अपनी शिक्षा को दूसरों तक नहीं बांटता वो इंसान अनपढ़ है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितना जिसके पास जो स्किल है वो हमें समाज में बांटना है, और आगे हमें अपनी जनरेशन को भी यही सिखाना है। एक कोरोना ने हमें इतना बड़ा मैसेज दे दिया है कि जब तक हम हैं, हमारे शरीर में जान है, तब तक सब कुछ है, जब हम नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी समाज में देखा गया है कि लोगों ने कोरोना ने लोगों को अकेला कर दिया है, तो हमें अकेला नहीं रहना है, हमें मिलकर रहना है, हमें ऐसा काम करना है जिससे पूरा समाज को बेनिफिट हो। थैंक यू मैम।
14: थैंक यू सो मच। इतना अच्छा मैसेज रितु आपने दिया, एंड सेल्फलेस लाइफ इज द मैसेज विच यू हैव गिवन टू एवरीवन। एंड मुझे पक्का विश्वास है कि जितनी भी औरतें, जितना भी लोग रीड इंडिया के साथ जुड़े हैं, उन सबकी सोच यही है कि कैसे हम दूसरों के लिए सर्विस कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों के साथ अपनी एजुकेशन को शेयर कर सकते हैं। Wonderful message, Ritu, and thank you so much, Smita. You would like to conclude the program.
10: So I'm very, very thankful to Dalal sir for taking that initiative, and of course to Dr. Geeta Malhotra for, you know, so many resources are required. इसके पीछे बहुत काम होता है जो कभी-कभी हम recognize नहीं कर पाते. बहुत मेहनत लगती है लोगों को जोड़ने में, इस मुकाम तक लाने में कि इस center को आज इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, 8-9 सर्विसेज इस एक अकेले सेंटर से प्रोवाइड हो रही हैं, और कोशिश ये है कि इसको धीरे धीरे करके सेल्फ सस्टेन किस तरीके से बनाया जाए, और बिल्कुल जो है सेल्फलेस होके निस्वार्थ, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों ही हमारे मेंटर्स जो हैं मिस्टर दलाल एज वेल एज डॉक्टर गीता, इसी जुट में जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से ये कम्युनिटी सेंटर सेल्फ सस्टेन हो और ये आगे बढ़ता जाए और एक रोल मॉडल की तरीके से हम इसको भारतवर्ष में प्रेजेंट कर सके। सो थैंक यू वेरी मच टू आवर व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस। दिस वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट वी वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच।
6: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
15: हेलो, मेरा नाम नीलम है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीट इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लगी थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ, और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन ही रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए, ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें, और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे, मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो

0: टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स, ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और आगे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज़ का भी, और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ। और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद कर रही हूँ ये सब और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
1: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ तनु तनवर। आई पास 10th क्लास एंड आई ज्वाइन रीड इंडिया एकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज़ ओनली वन एकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। दिस एकेडमी हेल्प्स टू बी अ वुमेन इंडिपेंडेंट। रीड इंडिया स्टार्ट्स टैग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ओनली टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन फॉर वुमेन्स, एंड इट हेल्प्स अस इन फॉर्म फिलिंग, एंड ऑल्सो वी हेल्प्स आर पेरेंट्स, देन वी ऑल्सो रिजर्व टिकट्स। थैंक यू।
2: आई एम श्वेता, आई स्टडी इन इग्नू यूनिवर्सिटी और आई डन NPTT कोर्स फॉर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रजौरी गार्डन। और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं डिटेल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, ऐसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली, टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इस लाइन में आने से, क्योंकि इसमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए, इसमें नॉर्मली होता है। फाइनली मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है, और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनको आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा, मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं, तो इससे हमें हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में, मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है जो मिलती है वो करनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है, सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दे या मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करे, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था 12th कर लिया पास

आउट हो गया स्कूल, शादी कर दो, ये है वो. लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है, तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करे ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े और वो अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो. तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया. मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ. और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है. उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए. ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं. उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है. और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है. तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए. लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो.

0: I welcome everybody, all our viewers who've joined us today in another inspiring episode of Imbibing Grassroots Leaders. This program is an initiative of Read India supported by Read Connect Council and Folk Brain. Today's guest, as everybody shared, that's Dr. Nidhi Gulati. Welcome, Dr. Nidhi, to our channel.
1: Thank you so much. Thank you, Read India and Read Council, Read Connect Council, for letting me take part in this wonderful episode.
0: So how this journey has been of your childhood, education, what kept on inspiring you?
1: Smita, since childhood, I had a dream. Mera bahut dream tha ki mujhe kuch life mein karna hai. डॉक्टर बनना है एंड माय पेरेंट्स बोथ माय मॉम एंड माय डैड उनका भी बहुत ड्रीम था कि मैं हम अपने बेटी को कुछ अच्छे से एजुकेशन देकर उनको उसको डॉक्टर बनाएंगे एंड वी डिड इट आई डिड इट एंड मैंने डेंटल किया मैंने सुभारती डेंटल कॉलेज से डेंटल का स्टडी किया एंड उसके बाद इट वॉज अ जर्नी ऑफ 5 ईयर्स उसके बाद मैंने आकर अपना गुड़गांव में ही कुछ डॉक्टर के साथ ज्वाइन होकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी बट उसके बाद फिर आई गॉट मैरिड टू अ लखनऊ एंड देन आई स्टार्टेड विद द कॉलेज आई वेंट टू द कॉलेज सरस्वती डेंटल कॉलेज एंड हेयर इन लखनऊ एज अ लेक्चरर Then I quit it after 2 years because of my family journey went on. But since childhood, mera bahut dream tha ki main kuch apne life mein banu aur apne society ke liye, apne community ke liye main kuch kar sakun.
0: Ye jo passion tha, isko pura karne ki jo aapne ek exit thi, usko aapne kis tarike se apne haathon mein liya? Kya opportunities aayi aur aapne kaise usko mold kiya? अपने डॉक्टर के जो रोल था उसको आपने कैसे मोल्ड किया एक सोशल इंस्पायरिंग लीडर के रूप में
1: स्मिता व्हेन आई गॉट इनटू अ फैमिली वे तब मैंने कुछ नहीं किया था आई वाज एट होम बिकॉज़ डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टे एट होम बट आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न समायरा वाज बोर्न इनिशियली आई डिडंट वर्क फॉर बिकॉज़ आई वाज लुकिंग आफ्टर हर मैं उसकी देखभाल कर रही थी एंड वो छोटी थी तो आई कुडंट लीव हर एट होम आफ्टर एन ईयर एंड अ हाफ और टू रीड इंडिया केम टू माय लाइफ एंड विद माय हस्बैंड सपोर्ट सौरभ का बहुत सपोर्ट था मेरे साथ कि आप ज्वाइन करो आपने कुछ नहीं डेंटल में कुछ नहीं किया एंड यू बिकमिंग बीइंग अ डॉक्टर आप डॉक्टर हो तो आपको अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए एंड रीड इंडिया इज एन एनजीओ जहां पर आप हेल्थ को लेकर अपना कर सकते हो तो ही वाज अ बिग सपोर्टर बाय माय साइड एंड मैंने किया मैं रीड इंडिया को ज्वाइन किया इनिशियली आई वेंट टू गोसाईगंज एंड बाराबंकी सेंटर्स टू गिव द हेल्थ सेशंस टू द कम्युनिटी वर्कर्स देयर इटसेल्फ और बहुत इंस्पायर किया मुझे ये चीज मुझे एक अंदर से बहुत पैशनेट था कि मैं ऐसे लोगों को अपनी एजुकेशन अपनी अंदर का एक एजुकेशन है अपनी अंदर की एक सोच मैं उनको बता रही हूँ कि हाँ आप ये कर रहे हैं आपको ऐसे करना है अपनी हेल्थ के साथ आपको हाइजीन मेंटेन करनी है आपको साफ सफाई रखनी है और मैंने उनको बहुत समझाया 2 साल तक मैंने उनको बहुत एजुकेशन दिया हर एक बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन पे और बहुत सारी डिजीजेस पे भी मैंने उनको बहुत समझाया एंड नाउ वो इतना अपनी उसको इतनी लाइफ में फॉलो करते हैं एंड दे कॉल मी कि मैम आपका समझाया हुआ इतना काम आ रहा है आजकल कि थैंक्स टू यू टू गिव मी सच एन एजुकेशन टू अस
0: डू यू वांट टू शेयर some challenges support system of your extended family or in-laws
1: yes
0: this is about
1: yes.
0: women and the support system and the power that we have yes, as leaders
1: main apni daughter ko school chhodti thi matlab she was in a play group main apni daughter ko play group mein chhod kar then I used to go to gosaiganj wahan par main session leti thi health ka aur life skill ka uske baad जो स्कूल का टाइम होता था मैं कम्युनिटी पे डिवोट करती थी एंड देन आकर मैं अपनी डॉटर को पिक कर कर घर आकर देन आई यूज टू स्पेंड टाइम विद हर. सो ये जो टाइम था जो कम्युनिटी के साथ था वो मेरी फैमिली ने सपोर्ट दिया कि नहीं आपको कुछ करना है आप जाओ वी विल टेक केयर ऑफ द होम. डॉक्टर मेरी स्कूल में थी मैं कम्युनिटी पे देन आई यूज टू पिक हर अप फ्रॉम द स्कूल एंड टेक हर बैक टू होम और फिर अपना टाइम डॉटर के साथ स्पेंड करना.
0: वेरी नाइस. आप ये जो पिक्चर्स हैं इनके बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को यू वांट टू एक्सप्लेन वेयर दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर अबाउट द कम्युनिटी.
1: दिस इज गोसाईगंज. ये गोसाईगंज की पिक्चर्स हैं. यहाँ पर मैंने अराउंड 200 अबव औरतों को हेल्थ के बारे में शिक्षित किया है. यंग गर्ल्स को हम लोगों ने लाइफ स्किल्स के बारे में बताया है. ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जिनको मैंने प्यूबर्टी के बारे में बताया था. लड़कियां हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं थी प्यूबर्टी एंड मेंसेस के बारे में उनको मैंने शिक्षित किया था. इसमें ऐसे बहुत सी प्रोग्राम सेशंस मैंने हेल्थ के ऊपर गोसाईगंज वालों के साथ लिए हैं जहाँ पर मैंने उनको हेल्थ एंड हाइजीन डेंटल हाइजीन एंड आपका डेंटल डिजीजेज ओरल हेल्थ की डिजीजेज बिकॉज डेंटिस्ट थी तो मैं इसका ज़्यादा इनको बता सकती थी. पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मैंने बहुत सेशंस लिए थे यंग गर्ल्स के साथ गोसाईगंज में. या मैंने ये वाला जो फोटो है ये हमने हैंड वॉश के ऊपर सेशन लिया था बीच गांव में जाकर जहां पर लोग आ नहीं पा रहे थे सेंटर में. सो आई वांटेड टू टेक अ सेशन विद देम.
0: एंड इफ आई एम नॉट दिस वाज बिफोर कोविड.
1: दिस वाज बिफोर कोविड.
0: हमें कोई अंदाजा भी नहीं था आज दुनिया में ऐसा कोविड सा कुछ आएगा. तब से हम ये हेल्थ के वॉश के सेशन आपके थ्रू कर रहे हैं.
1: एग्जैक्टली ये हम बिफोर कोविड के बारे में था एंड अब जब कोविड आया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास है. सो दे आर वेल अवेयर कि हमें कब हाथ धोने चाहिए कैसे हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए कैसे अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए.
0: ये आपकी मशीन्स की वीडियो दिखा रहे हैं. तो आज का जैसे कोविड का टाइम है अभी ऑफलाइन से हमें ऑफलाइन से तुरंत ही ऑनलाइन मोड पे आना पड़ा. सो जो हमारी कम्युनिटी से कनेक्ट था फिजिकल हमारी विजिट्स और हमारा जो फिजिकल कनेक्ट बना हुआ था उसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए थ्रू योर सेशंस जिसमें आपने कई तरीके के सेशंस होस्ट करे हैं एज अ डॉक्टर. वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दोस सेशंस.
1: मैंने बहुत अभी नॉट इन गोसाईगंज या लखनऊ मैंने बाकी सारी रीड इंडिया सेंटर्स जो अलग अलग जगह भी सिचुएटेड हैं उनके साथ भी हेल्थ सेशंस लिए हैं कोविड के ऊपर साफ सफाई के ऊपर हेल्थ के ऊपर हाइजीन के ऊपर हैंड वॉश के ऊपर एंड आपको कैसे प्रिकॉशंस लेनी है कोविड में क्या क्या आपको करना चाहिए ये सब चीज़ें मैंने ऑफलाइन अब जूम के थ्रू कोविड जब चल रहा था तब सारी इंफॉर्मेशन बेनिफिशरीज को दिया था. ये वाला जो फोटो आप अभी देख रहे हैं ये वुमेन्स डे था International Women's Day. This is also before COVID picture, जहाँ हमने बाराबंकी का पिक्चर है ये जहाँ हमने Women's Day सेलिब्रेट किया था.
0: So, आप अपना बैक जर्नी बताना चाहेंगे हाउ यू मेक योर कंटेंट सूटेबल फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ यू ब्रिंग दैट एस्पेक्ट टू देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल्स.
1: स्मिता मैं कहना चाहूंगी कि इनकी इनके सोच तक जाने के लिए आपको खुद इनके साथ लगना पड़ता है. तो मैंने इनके साथ पहले बातचीत करी इनसे पूछा कि इनको किस चीज़ के बारे में कौन सी हेल्थ के बारे में इनको जानकारी चाहिए. आपको इनकी नॉलेज जितनी नॉलेज है उसके बारे में पता होना चाहिए. देन आई मेक माय कंटेंट फ्रॉम दैट कि इनको उसी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है नॉट टेकिंग द डेंट आपका पूरा मेडिकल टर्म्स ना लेकर बहुत बेसिक टर्म्स यूज कर सारा हमने मैंने अपना कंटेंट बनाया था चाहे वो मेंसेस के ऊपर हो चाहे प्यूबर्टी या कोई सिंपल एक डिजीज मलेरिया डेंगू के बारे में भी कंटेंट जो बनाया था बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज किया था बिकॉज इनकी समझ ही उतनी है जितनी क्योंकि ये लोग पढ़े नहीं होते तो समझ भी थोड़ी होती है, तो इसलिए उस समझ को सोच कर वही कंटेंट मैंने इनको एक्सप्लेन किया था, नॉट यूजिंग द मेडिकल टर्म्स.
0: So would you like to share about the center that you opened in Lucknow, the community, how you opened that center? Challenge क्योंकि COVID में वो center खुला था, क्या challenges आए वो? उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए?
1: स्मिता, जब वो center खुला था, that was this November 2018 and March December से COVID आना शुरू हो गया था. तो मैंने वो सेंटर जब खोला था तब हार्डली वी गॉट 3 months बेनिफिशरीज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम रीड इंडिया क्या क्या काम करता है एंड हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम किस मोटिव से आए हैं. पर वो सेंटर खुला और 3 months के बाद जब कोविड आया तो बहुत एक बैकलॉग हो गया था. हमने बहुत मुश्किल से बेनिफिशरीज को अपने फोन के थ्रू कांटेक्ट कर उनको जूम के बारे में समझा कर कि ऐसे आपको लिंक करना है, ऐसे आपको लिंक खोल कर आपको क्लासेस लेनी है. सो वी एंड विद माय टीम, नो डाउट माय टीम इज सो हार्ड वर्किंग, कि विद माय टीम आई स्टार्टेड दैट थिंग. उनको जूम एक्सप्लेन करना, पहले जूम के ऊपर बताया, एक सेशन लिया, फिर एक सेशन हमने लिया कि आपको कैसे जूम के थ्रू एंटर कर आपको अपनी अपनी क्लासेस लेनी है. सो माय टीम वर्कर्स डू दैट, अपनी क्लासेस वो लेते थे. पहले टीम को समझाना, फिर बेनिफिशरीज को समझाना. समहाउ वी मैनेज टू, कोविड में हमने ये किया था. इट वाज अ बिग चैलेंज टू अस. आई होप ये तो सबके लिए था, बट हमने इसको किया एंड हमने अपने चैलेंजेस को मीट कर हमने काफी ट्रेनिंग्स देकर आज बहुत लोग वी एक्ट के थ्रू जो ट्रेनिंग्स दी थी हमने उसमें अपना काम कर रहे हैं. दे आर अर्निंग.
0: निधि, वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट द वुमेन हुव बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और हुव स्टार्टेड टू अर्न समथिंग आउट ऑफ दिस दिस पर्टिकुलर यू नो लाइवलीहुड कंपोनेंट ऑफ योर स्किलिंग?
1: आई वुड लाइक, स्मिता, मेरे यहाँ पर एक औरत है जिसने जिसके हस्बैंड का केटरिंग का काम था. कोविड के दौरान केटरिंग पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आया था, तो उसने अपना एक स्टिचिंग खोला था, ब्यूटी खोला, साथ ही साथ उसने पार्लर भी खोला. एंड कोविड के दौरान ये उसने ऑनलाइन या अपने क्लाइंट के थ्रू उसने अपने अर्निंग करी. नाउ द सिचुएशन इज दैट कि उसके पास दो पार्लर हैं एंड दो ब्यूटीक है. शी इज अर्निंग वेल ऑफ बिकॉज उसके हस्बैंड का केटरिंग का बिजनेस इतना कोविड के दौरान ठीक नहीं चल रहा था.
0: वंडरफुल निधि, आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू कॉल आवर मेंटर ऑन द स्क्रीन. वी वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर गीता मल्होत्रा, आवर मेंटर, एंड welcome her on the show.
2: Nidhi, I am very confident that you handle the community one by one. It's not that you were handling 20 women altogether, because 20 women were thinking what they can imbibe and what they cannot imbibe. But your topics were so important that you wanted to instill everything into their minds, because it in turn takes a shape of behavioral acceptance. How you handle this challenge?
1: I would like to say मैंने उनके community में जाकर उनकी पहले life history के बारे में समझ कर, क्योंकि life skill के sessions जब मैं लेती थी तो वो अपनी problems मेरे से share करते थे आकर, तो जब उनकी problems को मैं समझती थी तो मैंने उस पे depth पे सोचा कि इनको ज़्यादा एडवांस स्टडी ना देकर बेसिक स्टडीज पे अगर हम इनको एजुकेशन देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा है. अपनी जिंदगी को वो वहीं कंस्ट्रेन कर देते हैं, 4 लोगों के बीच में या 10 लोगों के बीच में. और इनको मोटिवेट करना कि आप आगे जाकर कुछ करो, आपने आगे जाकर कुछ करना है, तो पहले मैंने उनको लाइफ स्किल्स के बारे में बताया. वो स्किल्स इनकी एनहांस कर देन आई टुक इट टू हेल्थ की मेको इनको अब हेल्थ के बारे में जानकारी देनी है, क्योंकि अगर ये बाहर जाएंगे तो ये अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी को भी इनको एनहांस कर, क्योंकि आगे जॉब करनी है या कुछ कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, सो दे नीड टू एनहांस देयर पर्सनालिटी. सो यू नीड टू गिव अ सर्कल कि आपको पहले लाइफ के बारे में जानकारी देनी है, देन हेल्थ, देन देयर पर्सनालिटी. So this all three together worked.
2: Community health workers, you as a coordinator, and medical doctors whom we enrolled on our programs, you made a bridge between the communities as well as the medical doctors who were addressing COVID prevention precautions and the medicines they had to take. Would you like to reflect on that, how you played that role?
1: जब मैंने उनको ट्रेनिंग्स दिया था कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर, तब काफ़ी क्वेश्चंस मेरे ऊपर, मतलब उन्होंने मेरे से पुट करे थे कि मैम हम कैसे करेंगे ये सब. देन मैंने उनको बताया था कि आप अपनी कम्युनिटी पे, अपने गांव में जो आशावारी हैं या आशा दीदीज हैं, आंगनवाड़ीज हैं, उनके साथ जाकर बात करो, उनको बताओ कि हम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग्स मिल रही है और हम आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं. सो उन्होंने जाकर आशा दीदी, आंगनवाड़ीज के साथ बात करी, डॉक्टर्स के साथ जाकर बात करी, कम्युनिटी के साथ जाकर बात करी. नाउ दे आर कमिंग अप विद कि उनको ये इस किसी भी एक बीमारी के बारे में जानना है. तो मैंने डॉक्टर्स उनको बोला, डॉक्टर्स से संपर्क कर आप अपनी बीमारी के बारे में उनसे पूछ सकते हैं. एंड आशा दीदी के साथ आपको कॉन्टैक्ट रखना है, बिकॉज बच्चे हैं, उनको किस टाइम पे इम्यूनाइजेशन चाहिए, किस टाइम पे आपको प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर्स को दिखाना है, आयरन कब देना है, ये सब जानकारी मैंने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स में ट्रेनर्स को दी है.
2: बहुत सारे ऐसे लोग हैं कम्युनिटी में जिनके पास मोबाइल एक्सेस नहीं है एंड दे कैन नॉट लिसन टू योर प्रोग्राम्स व्हाइल सिटिंग एट होम. देन हाउ डू यू इनवाइट दोज वुमेन टू योर सेंटर एंड द चिल्ड्रन so that we can create a commonality. We should not discriminate between the haves and have nots. So how did you handle that?
1: मैंने जब कोविड के दौरान अपना सेशंस लेने, जिनके पास मोबाइल नहीं थे, तो मैंने औरतों को स्टाफ के साथ मिलकर बने औरतों को बुलाया. 10-10 के ग्रुप्स में औरतें आती थी, सेंटर आती थी, एंड दे यूज टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड वेयरिंग मास्क. हमने ऑनलाइन मैंने उसको सेशंस दिए थे एंड उन्होंने भी बहुत इसको सीरियसली लेकर सेशंस लिया एंड अपनी लाइफ में उसको अपनाया. कोविड में मैंने उनको सेशंस लिए कोविड के बारे में, क्या आपको खाना चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सेफ्टी रूल्स मेजर करने चाहिए आपको. तो उनको ये सेशंस बहुत इंफॉर्मेटिव लगे थे जब कोविड आया था.
2: Now what I understand कि पूरी हेल्थ का भार समुदाय के ऊपर है अभी, और उनको क्या चाहिए, एक समझ चाहिए, एक राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए और राइट कॉन्टेंट चाहिए डॉक्टर्स के साथ, जो उनको ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन दे सके और राइट काइंड ऑफ मेडिसिन एट राइट टाइम दे सके while sitting in their homes only. They don't want to go to the hospital. They don't want to talk to anyone else except the persons who are trustworthy. So where do you stand in the whole process which I have shared?
1: इस time पे हमारे पास center पे ही oxymeters हैं, BP machines हैं, we have a thermometers. So जिनको हमने training दी है वो उनको हम ये मशीन्स देते हैं, जिसकी भी घर में कोई प्रॉब्लम्स है आप जाए, आप उनका चेकअप करें, आप मेरे को आकर बताएं, देन आई कैन गिव देम बेसिक मेडिसिंस जो उनको नीड में है. वी आर गिविंग द फुल फैसिलिटीज कि अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जो ट्रेनर्स हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के, वो ये इक्विपमेंट्स लेकर जाकर उनका चेकअप कर सकते हैं एंड दे कैन टेल मी व्हाट इज द सिचुएशन. ये करने में हम वी आर पेइंग टू देम, हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को इसको पे करते हैं उनको कि आप अग जा रहे हो तो आप इसको पेमेंट्स ले कर
2: और फिर आप डॉक्टर्स को कनेक्ट करके कंसल्ट करके देन यू कनेक्ट देम विद द डॉक्टर राइट
1: एग्जैक्टली
2: सो दैट इज द वंडरफुल इनिशिएटिव आई शुड से दैट रीड इंडिया इज गेटिंग डन फ्रॉम द कम्युनिटी लीडर्स लाइक दिस
0: थैंक यू मैम थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड टेकिंग द डॉक्टर नीति फर्दर

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को भारत की राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबरधन कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG को मंजूरी दे दी है। कुल 23,771 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली ये योजना देश के जैविक कचरे और कृषि अवशेषों को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास के अवसर में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि गोबरधन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह मजबूत कर सकती है, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए इसके क्या अवसर हैं, और कचरे से कंचन तथा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। श्रोताओं, भारत दुनिया की प्रमुख और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ देश की ऊर्जा आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग 50% हिस्सा भारत अभी आयात के माध्यम से पूरा करता है। हाल के वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों और ऊर्जा आपूर्ति में सामने आई चुनौतियों ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी देश के लिए घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। भारत के LNG आयात का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होकर आता है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह का व्यवधान ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार ऐसे स्वदेशी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है जो आयात पर निर्भरता कम करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को भी गति दे सके। इसी सोच को आगे बढ़ाती है गोबरधन योजना। गोबरधन का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। वर्ष 2018 में इसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर, रसोई के जैविक कचरे, कृषि अवशेषों और बाजार से निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना था। अब इस पहल को एक व्यापक राष्ट्रीय CBG कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया गया है। पहले CBG इकोसिस्टम विभिन्न मंत्रालयों के दायरे में था। बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अब पूरी योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एकीकृत किया गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये CBG क्षेत्र को किस प्रकार नई गति देने वाली है।
2: गोबरधन योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। इसके लिए योजना में पूरी CBG मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। योजना के तहत सबसे पहले CBG उत्पादकों के लिए निश्चित बाजार और खरीद का भरोसा सुनिश्चित किया जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD संस्थाओं के माध्यम से CBG की खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है स्थिर CBG मूल्य निर्धारण। इसके तहत सरकार ने 2,110 रुपए प्रति MMBTU की कीमत तय की है जो लगभग 105 रुपए प्रति किलोग्राम CBG के बराबर है। न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि वाला यह मूल्य ढांचा उत्पादकों को राजस्व की स्थिरता प्रदान करने और नई परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। तीसरे घटक के रूप में पात्र ग्रीन फील्ड CBG परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के आधार पर प्रति टन प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले ब्राउन फील्ड परियोजनाएं भी इसके दायरे में आ जाएंगी। चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाइपलाइन अवसंरचना। CBG संयंत्रों को ट्रक पाइपलाइन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक पाइपलाइन अवसंरचना को सहायता दी जाएगी। इससे परिवहन लागत कम होगी और CBG के लिए बाजार तक पहुंच आसान होगी। पांचवें घटक के तहत पात्र MSME आधारित CBG परियोजनाओं को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी तंत्र विकसित किया जाएगा। इसके तहत ऋण पर 85% तक ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जा सकेगा। छठा घटक है CBG इकोसिस्टम चैलेंज फंड। इसके माध्यम से जिला स्तर पर कच्चे माल का आकलन और मैपिंग, कच्चा माल एकत्रीकरण, तकनीक सुधार, जैविक खाद का मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण और जागरूकता जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: श्रोताओं, गोबरधन योजना का महत्व केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, कचरा प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी है। हर CBG संयंत्र के पास कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर और अन्य जैविक कचरा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे गाँव में कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ कच्चा माल एकत्र करने, परिवहन, संयंत्र संचालन और जैविक खाद के उत्पादन जैसे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। CBG उत्पादन के साथ निकलने वाले जैविक उर्वरक भी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार पहले से ही फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मेन्योर जैसे जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दे रही है। इससे एक ऐसी चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है जिसमें खेतों से निकलने वाला अवशेष कचरा नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन बन जाए और CBG संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद वापस कृषि क्षेत्र में उपयोग हो। यानी गोबरधन का मूल विचार है कचरे को संसाधन में बदलना, संसाधन को ऊर्जा में बदलना और ऊर्जा को आर्थिक विकास का माध्यम बनाना। श्रोताओं, गोबरधन योजना के जरिए भारत अपने विशाल जैविक संसाधनों को ऊर्जा सुरक्षा के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस पहल के बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: श्रोताओं, गोबरधन योजना की रूपरेखा और इसके प्रमुख घटकों को समझने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में CBG को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि गोबरधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।
2: भारत के गांवों में बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधन उपलब्ध हैं। यदि इन संसाधनों को संगठित तरीके से एकत्र कर CBG संयंत्रों तक पहुंचाए जाए तो किसानों और स्थानीय उद्यमियों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हो सकते हैं। CBG संयंत्र केवल ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा बल्कि अपने आसपास एक स्थानीय आर्थिक चक्र भी तैयार करेगा जो कच्चे माल का संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, गैस उत्पादन और जैविक खाद का निर्माण करेगा। इस तरह गोबरधन ग्रामीण भारत को केवल ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा का उत्पादक और ऊर्जा सुरक्षा का भागीदार बनाने की क्षमता रखता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये पहल महत्वपूर्ण है। कृषि अवशेषों और जैविक कचरे के वैज्ञानिक उपयोग से खुले में कचरा जलाने और लैंडफिल में जैविक कचरे के जाने को कम किया जा सकता है। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
1: श्रोताओं, गोबरधन योजना के तहत पहले से चल रहे प्रयासों को भी अब राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत रूप दिया जा रहा है। बायोगैस एकत्रीकरण मशीनरी योजना के तहत CBG उत्पादकों को कच्चा माल एकत्र करने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने में सहायता दी जा रही है। वहीं जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है। श्रोताओं, गोबरधन योजना के तहत देश में CBG क्षेत्र में हो रहे प्रगति के भी उत्साहजनक हैं। 6 अगस्त 2026 तक गोबरधन के एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर देश भर में 1908 CBG और बायो CNG संयंत्र पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 217 संयंत्र चालू हो चुके हैं और लगभग 0.4 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन कर रहे हैं जबकि 339 संयंत्र निर्माणाधीन हैं। श्रोताओं, गोबरधन भारत की उस विकास यात्रा का हिस्सा है जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण को एक दूसरे का विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक बनाया जा रहा है। कचरे से ऊर्जा, ऊर्जा से रोजगार और रोजगार से ग्रामीण समृद्धि, यही चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। गोबरधन योजना कचरे से कंचन, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई। नमस्कार।

0: surgió Me. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: संसद ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन कर हमारे डिजिटल भुगतान प्रणाली के मजबूतीकरण, व्यापार की सुगमता बढ़ाने और निवेश एवं विनिर्माण को गति देने वाले अहम प्रावधान शामिल हैं। इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक मिस्टर ए.के. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: मिस्टर भट्टाचार्य, ये जो एक लैंडमार्क बिल आया है, कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं और आपके अनुसार इसमें सबसे प्रमुख की टेकअवेज जैसे हम कहते हैं क्या है?
2: इसमें जो विदेशी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं जो वो विनिवेश करते हैं इस देश में, पर्टिकुलरली जो सरकारी जो सिक्योरिटीज जो है उसमें जो निवेश करने से उनको टैक्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो बर्डन था, उसको उठा लिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि करीबन जून 2026 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने एक साथ मिलकर हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज जो है वो बढ़ने की आशंका लोग जता रहे थे, उस समय सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर तय किया था कि किस तरह से हमारे देश की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस जो है उसको बढ़ावा दे। मैं समझता हूँ कि पहला जो प्रधान जो इसका जो टेक अवे है जिसे आपने कहा वो है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पहले क्या करते थे, अगर वो सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे उनका जो इंटरेस्ट जो आय होता था उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता था, और अगर मान लीजिए वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और कहीं बेचे या कैपिटल गेन्स को बुक करें तो उसमें भी उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, और इनकम टैक्स इंटरेस्ट का जो रेट था वो 20% था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 30% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 12.5%। इस विधेयक से सरकार ने ये ऐलान तय कर लिया है कि पहली अप्रैल 2026 से अब ये फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसी ना इंटरेस्ट के इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% टैक्स माफ हो जाएगी, और कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में 12.5% और शॉर्ट टर्म में 30% ये भी टैक्स माफ हो जाएगी। उससे सरकार का मानना यह है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो सरकारी सिक्योरिटीज में थोड़ा और बहुत पैसा लगाए, और जिससे कि लगाने से हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाए।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में बताया कि ये विधेयक मौजूदा डेटा सेंटर्स के विस्तार में और विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इससे बड़े स्तर पर विस्तार होगा और भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स स्थापित होंगे।
3: Of provisions providing exemption to a foreign company procuring data services from a specified data center. And this exemption is provided up to the year ending 31st March 2047. Long-term certainty so that investments come. These are big ticket investments. They have to come with a certainty which can be provided to them. The outcome that I'm expecting is to provide ease of doing business for companies providing cloud services by way of procuring data center services in India. The amendment is also expected to enable much larger ecosystem again of Indian data centers providing data center services to a foreign company. The reform will enable AI data cities in India and is expected to bring in significant investments for AI data cities in India. there is an apprehension that this is only for foreign companies. These kind of exemptions are not going to be available for Indian companies. It's not true at all, sir. I want to explain how. This will enable, sir, current data centers to expand their footprints and services for foreign cloud service providers.
1: दूसरा एक जो पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे, बल्कि हम आपसे ही चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा विस्तार में समझाएं कि जो यूपीआई हमारा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जो उसके रेवेन्यू मॉडल में कुछ बदलाव करने के लिए जो एनेबलिंग प्रोविजन आया है उसके बारे में बताएं, और जो एक स्पष्टीकरण भी आया है सरकार का जिसमें उन्होंने कहा है कि यूजर्स के लिए अभी भी यूपीआई का इस्तेमाल मुफ्त ही बना रहेगा, स्मॉल मर्चेंट्स के लिए भी, तो इसके बारे में क्या प्रोविजन है और ये स्पष्टीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
2: इस कानून में एक प्रोविजन का एक परिवर्तन किया गया है, वो है कि जो हमारे देश में जब 2007 में ये जो एक कानून बनी थी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007
1: जी,
2: उसके जरिए से हमारे देश में पिछले 10 साल और 12 साल से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए बहुत सारे पेमेंट का इंटरेक्शन होता है और डिजिटल पेमेंट होता है ऑलमोस्ट रियल टाइम में। जैसे हम बात कर रहे हैं वो पैसा मेरे से आपके पास चला जाएगा या मेरे से कोई मर्चेंट में चला जाएगा, और ये मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम था यूपीआई। तो इसका जब 2020 जनवरी में सरकार ने यह तय किया कि इस डिजिटल पेमेंट की और भी उसको जनप्रिय बनाने के लिए उन्होंने जो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है कि जो मर्चेंट जब पैसा लेता है तब उसको कुछ सर्विस चार्जेस देनी पड़ती है, वो करीबन 0.5% होता है, कभी 0.3% होता है, बहुत ही कम होता है, पर तब भी एक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो सरकार ने उसका विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि जिससे कि लोग और भी डिजिटल पेमेंट को वो अपनाएं, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी का और भी प्रभुत व्यवहार भी हो, इसलिए किया था। पर पिछले 5 साल में स्थिति सामान्य हुई है और इसकी जनप्रियता इतनी बढ़ गई है कि यूपीआई की पेमेंट करीबन महीने में 29 लाख करोड़ की होती है
1: जी।
2: तो सरकार ने यह सोचा कि इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसका टेक्नोलॉजी का भी जो इम्पैक्ट होता है उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सरकार एक सब्सिडी देती है, करीबन 1500 करोड़ की सब्सिडी भी देती है। तो सरकार ने यह सोचा कि इसको हम क्यों ना कानूनी तौर से एक ऐसा एक प्रावधान लाएं जिससे कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ये यूपीआई को चलाती है उसके पास ये पावर रहे कि जब उसको जरूरत होगी वो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को इन्फोर्स कर सकता है। पर सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया इसके साथ साथ कि ये जो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल की जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, और जो भी डिस्काउंट रेट आएगा लगेगा वो मर्चेंट और इंडिविजुअल्स के बाद उसमें भी थ्रेशोल्ड्स होंगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा बिजनेस है तो उसमें लगेगा। इससे ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, साइबर फ्रॉड की चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी
1: जी।
2: और मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिविजुअल और जो छोटे व्यापारी जैसे खोमचे वाला है या सब्जी वाला है उसको पेमेंट करने में, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पेमेंट होती है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो ये एमडीआर का जो इंट्रोडक्शन, ये अगर आप देखें कि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से ये काफी हमारी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी सुदृढ़ करेगा, ये भी देखेगा कि इंडिविजुअल को कोई असुविधा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कानूनी परिवर्तन है। इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, वो कमेटी उसको देखेगी कब किस तरह से मर्चेंट डिस्काउंट रेट की लागू होगी, पर ये रेट कभी भी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू नहीं होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में बोलते हुए स्पष्ट किया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और छोटे मर्चेंट्स पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
3: Will consumers pay any UPI charge? No. UPI has remained free for consumers since its launch, and every Indian will continue to make instant digital payment without paying a transaction charge. Chai wale ke upar, sabzi wale ke upar, tele wale ke upar, patri wale ke upar MDR charge nahi lagegi. Chote merchants aur kirana stores हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का. स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ. उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है. एनी फ्यूचर एमडीआर विल अप्लाई ओनली टू अ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस अबाउ अ सर्टन प्रिस्क्राइब्ड हाई थ्रेशोल्ड.
1: मिस्टर भट्टाचार्य, एक और एस्पेक्ट जो मेक इन इंडिया को एनकरेज करने के लिए कुछ सेक्टर्स को खास प्रावधान उनके लिए लाए गए हैं, अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें जिसमें हमने पिछले दशक में बहुत प्रगति देखी है, मोबाइल फोन्स एक जैसे पोस्टर बॉय है इस प्रगति के, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के प्रावधान हैं इस विधेयक में?
2: जैसे विदेशी जो कंपनियां हैं जब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई कैपिटल गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम में आएगा, जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल फोन की कंपनियां जो यहाँ पे मोबाइल फोन बनाती हैं और आज हम बहुत सारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो मोबाइल फोन बनाने में जो टूल इक्विपमेंट टूलिंग्स की यंत्र जो आते हैं उसकी जरूरत होती है, उसके सप्लाई में जो सप्लाई होती है उनका जो टैक्स जो होता है वो टैक्स उनको टैक्स हॉलीडे दिया गया है जिससे कि करीबन 15 साल का मतलब अप्रैल 1, 2026 से मार्च 2041 तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इससे मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक और भी इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बाहर से कैपिटल गुड्स और टूल्स ला सकते हैं और जो कंपनीज उनको सप्लाई करेंगी उनके ऊपर कोई टैक्स का कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगा. ये एक बहुत बड़ा एक बढ़ावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी है.
1: एक और जो सेक्टर जिसका मेंशन है ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड को भारत में आकर्षित करने का, ये क्या पहलू है और इस पर क्या प्रमुख प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है?
2: देखिए, ये बताया गया है नए कानून में कि जो रफ डायमंड्स जब कोई कंपनी बेचती है अगर सेल्स जो होता है वो अगर नोटिफाइड स्पेशल जोन में हो
1: जी,
2: वो अगर जब विदेशी कंपनी जब बेचती है उसके ऊपर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा. पहले उनके ऊपर टैक्स नॉर्मल रेट में लगता था, अब वो टैक्स नहीं आएगा. उससे ये होगा, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो रफ डायमंड इम्पोर्ट करती है, आयात करती है, उसको फिर प्रोसेस करके वैल्यू एड करके उनकी फिर निर्यात करते हैं
1: जी.
2: तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनी अब थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि वो जब रफ डायमंड सप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लग जाती है. इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन दिया गया है. उसके साथ साथ और एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है वो डेटा सेंटर के ऊपर है. वो डेटा सेंटर में क्या है कि जो फॉरेन कंपनियां जो अपनी इंडियन डेटा सेंटर से जो सर्विस सप्लाई करेंगी उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो मैं पूरी ओर से अगर देखूं कि इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट जो है वो टैक्स के हिसाब देखेंगे तो उसमें काफी रिलैक्सेशन आई है, उसमें क्लैरिटी आई है और एक स्टेबिलिटी भी आई.
1: मिस्टर भट्टाचार्य, बहुआयामी और व्यापक रूप से हमारे देश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और हमारे देश की विनिर्माण को मेक इन इंडिया मुहिम को गति देने वाले विभिन्न प्रावधान जो है इस नए कानून के, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
0: अभी आप सुन रहे थे कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
4: सुर्खियों में

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करते हुए आज देश 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2025 के 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए, 2 विशेष प्रकाशनों का विमोचन हुआ और पुरस्कार विजेता उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का महत्व क्या है, इस वर्ष दिए गए पुरस्कार क्यों विशेष हैं, सरकार हथकरघा क्षेत्र को किस प्रकार सशक्त बना रही है और ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा ग्रामीण आजीविका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत की हथकरघा परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारतीय बुनकरों ने अपनी कला, कौशल और रचनात्मकता से दुनिया में अलग पहचान बनाई है। हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जिसने भारतीय उत्पादों और विशेष रूप से हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा दी थी। वर्ष 2015 से इस दिवस को राष्ट्र स्तर पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से भारत के समृद्ध हथकरघा परंपराओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: आज भारत का हथकरघा क्षेत्र केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी है। देश में 35 लाख से अधिक बुनकर और संबद्ध श्रमिक इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें 72% से अधिक महिलाएं हैं। ये क्षेत्र लाखों परिवारों की आजीविका का आधार होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। हथकरघा क्षेत्र के विकास, सरकार के विभिन्न पहलों और भविष्य की संभावनाओं पर विकास आयुक्त हथकरघा डॉक्टर एम बीना ने आकाशवाणी संवाददाता उत्पल कुमार से विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं।
3: डॉक्टर बीना, सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए हैं और अब तक इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या रही है?
4: भारत के हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसके तहत हमारा अप्रोच है क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, क्योंकि वीवर्स जो हैं ज्यादातर एक ही इलाके में रहते हैं, तो उस पूरे इलाके को एक क्लस्टर आइडेंटिफाई करके वहाँ पर विकासशील कार्यक्रम और योजनाएं हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें 2 तरह की योजनाएं हैं, एक तो है स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ 500 लगभग वीवर्स जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे हम ये योजना चलाते हैं, 2 करोड़ तक उसका हम सहायता देते हैं। इसमें हम लूम्स, सोलर लाइटिंग, वर्कशेड वगैरह का हम सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा क्लस्टर में जो एक क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होगा, जब तक ये क्लस्टर कार्यक्रम चलाया जाएगा, और एक क्लस्टर डिजाइनर भी रहेगा, ताकि वीवर्स को नए डिजाइन से भी वो उनको अवगत किया जाएगा। दूसरा, हमारे मेगा क्लस्टर्स, माने जो बड़े क्लस्टर्स हैं जहां 10,000 से ऊपर वीवर्स है, तो वहां पे मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो 30 करोड़ तक उसका हम असिस्टेंस देते हैं। वो राज्यों के साझेदारी से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्ट हैं, जैसे कि स्किलिंग सपोर्ट। देखो, वीवर को नए वीविंग टेक्निक्स के बारे में, नए डिजाइन्स के बारे में वगैरह के लिए हम समर स्कीम के तहत उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनको डिजाइन सपोर्ट, प्रोडक्ट नया करने के लिए भी उनको सपोर्ट देने के लिए डिजाइन रिसोर्स सेंटर्स भी बनाया गया है।
3: हथकरघा बुनकरों की आजीविका में सुधार लाने में सरकार की कौन सी योजनाएं सबसे अधिक प्रभावी रही है?
4: बुनकर की आय को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जो रॉ मटेरियल है, सूता जो है, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। तो अगर आप नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया, या फिर सिल्क हो गया, या वूल हो गया, तो उसमें हम 15% हम प्राइस सब्सिडी देते हैं, और जो भी अगर इसके अलावा जो नॉट नेचुरल फाइबर्स है उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी देते हैं। तो इस तरह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट में हम कमी लेके आते हैं। दूसरा, वीवर को मुद्रा लोन का भी फैसिलिटी है, और जब प्रोडक्ट बन जाए तब उनको वीवर को चाहिए मार्केटिंग सपोर्ट। तो उसके लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर बुनकर मेले लगाए जाते हैं।
3: डॉक्टर बीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार केवल उत्कृष्ट बुनाई के लिए नहीं, बल्कि नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप, उत्पादक कंपनियों और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी दिए जाते हैं। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान और पारंपरिक बुनाई को संरक्षित रखने वाले बुनकरों को दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन बुनकरों और अन्य हितधारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने परंपरा और आधुनिक तकनीक के संतुलित प्रयोग से गुणवत्ता और रचनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद हाजाम और फैयाज अहमद वानी भी शामिल हैं, जिन्हें चंदर कानी शॉल की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा।
5: मैं फयाज अहमद वानी और मेरे साथ है मंजूर अहमद हजाम।
1: पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा।
5: मैं फयाज अहमद वानी और मेरे साथ है मंजूर अहमद हजाम। हम कानी हमा बड़गाम के रहने वाले हैं। हम बहुत ही खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये लम्हा हमारे लिए इज्जत और फख्र का दिन है, और हम ये अवार्ड उन कानिहामा के बुजुर्गों को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने इस फन को नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंचाया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे गांव टूरिज्म विलेज और हैंडलूम विलेज करार देकर करोड़ों रुपयों की मावनत की। हम उनके भी बहुत ही आभारी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसने हमें इस एजाज से नवाजा।
1: इसी तरह ओडिशा के प्रफुल्ल कुमार साहू को पारंपरिक जगतपुर साड़ी की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने भी आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए।
6: मैं प्रफुल्ल कुमार साहू फ्रॉम ओडिशा जगतसिंहपुर। आज मेरे लिए बहुत गर्व और भावुकता का क्षण है। मुझे 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से नेशनल हैंडलूम अवार्ड प्राप्त करने के सौभाग्य मिला है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ओडिशा के जगतसिंहपुर जिलों के सभी बुनाकर और हमारी समृद्ध हथकरघा परम्परा का सम्मान है। मैं भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, ओडिशा सरकार, वीवर सर्विस सेंटर, नेताजी तंतुबाई सहयोग समिति के सदस्य, बॉयनिकाओं और सभ्य संस्थाओं दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हम जैसे बुनकर को प्रोत्साहन दिया। मैं इसे सन्मान

उठाए हैं। 36 हस्तशिल्प वस्तुओं पर GST घटाकर 5% किया गया। हथकरघा क्लस्टरों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय फाइबर योजना तथा राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम जैसी नई पहलें शुरू की गयी। डिजाइन, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम हैकाथॉन 2026 जैसी पहलें भी की जा रही हैं। भारत की हथकरघा परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ी हुई है। आज भारतीय हथकरघा फैशन, डिजाइन, निर्यात, डिजिटल विपणन और सतत विकास के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें उन लाखों बुनकरों के श्रम, समर्पण और सृजनशीलता का सम्मान करने का अवसर देता है, जिनके हाथों से भारत की सांस्कृतिक पहचान दुनिया तक पहुँचती है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अरुण दीप का था। नमस्कार।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार। कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य क्या है, किस रूप में यह भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में आने वाले खनन क्षेत्र की जमीन पर अपना असर डालेगा, इसके विनियमन पर नया परिवर्तन क्या होगा, इसी विषय पर हम मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो संजीव जी, हम यही समझना चाहेंगे कि वर्तमान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है और पहले से यह किस रूप में अलग है।
3: जी, ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का लेके आए हैं, ये जो 1957 का एक्ट है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसको अमेंड करने के लिए है। और प्राइमरीली इससे एक चीज सबसे बड़ी जो इसका मायने है कि जो मिनरल्स और माइंस जो है हमारे देश में डिफरेंट पार्ट्स में, वो सेंटर अपने कंट्रोल में ले रही है इस अमेंडमेंट के थ्रू, कि स्टेट्स जो हैं, जिस स्टेट में भी है, तो स्टेट्स अपनी तरफ से टैक्सेस, लेवीज या सेस कोई किसी तरह का नहीं लगा सकती। एनी जो भी कोई मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर अपने कंट्रोल में लेगी और निर्धारित करेगी कि ये कंडीशंस हैं स्टेट्स के लिए या माइनर के लिए, तो वो कंडीशंस ही एप्लीकेबल होंगी। स्टेट्स अपनी तरफ से कोई टैक्स या लेवी इसके ऊपर नहीं लगा सकता। इसकी बैकग्राउंड मैं बताता हूं कि माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अनकॉम्पिटेटिव हो गई थी। उसके दो रीजन है, एक कि अगर माइनिंग हमारे देश में नहीं हो रही तो इंपोर्ट करेंगे, अगर यहाँ टैक्स महंगा पड़ रहा है, देश के अंदर से माइनिंग अगर करेंगे वो महंगी पड़ रही है तो विदेश से सस्ती मिल सकती है तो वो करेंगे, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ज्यादा अगर लगा हो, किसी स्टेट ने ज्यादा लगाया हो। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आए हैं जो माइनिंग इंडस्ट्री सेंटर को अपील किया है कि माइनिंग अनरिम्यूनरेटिव होती जा रही है, कुछ स्टेट्स हैं जो एडिशनल लेवी लगाई जा रही है, तो उसको रोकने के लिए स्टेट ने कि माइनिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और जो रिसोर्सेज हैं मिनरल्स और माइंस के रिसोर्सेज हैं जो पूरे देश के, वो पूरे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो और यूनिफॉर्मिटी हो, टैक्सेस की भी यूनिफॉर्मिटी हो और रिसोर्सेज भी पूरे यूनिफॉर्मली इस्तेमाल हो पूरे देश के लिए। तो इस संदर्भ में ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो लोकसभा में ये 10 अगस्त को जी किशन रेड्डी जी, जो कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बिल, वो आज पारित हो गया है और राज्यसभा में शायद ये कल आएगा।
2: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि कुछ क्षेत्र राज्य के विषय हुआ करते हैं, कुछ केंद्र के हुआ करते हैं और कुछ दोनों के बीच के हुआ करते हैं, तो यह जो कदम उठाना पड़ा, हालांकि आपने उसका थोड़ा स्पष्ट किया लेकिन थोड़े से उदाहरण के साथ हम समझना चाहेंगे कि विभिन्न खनिज बहुल जो प्रांत रहे वहां किस रूप में कर को लेकर एक रूपता नहीं थी, जिससे कि खनन उद्योग से संबंधित पार्टियों को अपना पक्ष रखना पड़ा कि हमें खनन

0: विस्तारीकरण के लिए या कह लें एक रूपता के लिए अपनी जो लागत है उसे घटाने के लिए समाधान चाहिए।
1: जी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कुछ स्टेट्स झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो आसपास हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं
0: जी, जी।
1: तो यहाँ पे कुछ खनन होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोयला है, तो अगर डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट पार्टीज की है और हर स्टेट अपने अपनी तरफ से लेवी लगा रही है, किसी ने 500 पर टन लगा दिया है, किसी एक पदार्थ पे किसी ने 1000 पर टन लगा दिया है, अपने अपनी सहूलत के हिसाब से लगाया, तो डिस्पैरिटी हो रही थी टैक्स की, एक स्टेट में एक खनन सस्ता मिल रहा है, दूसरी स्टेट में महंगा मिल रहा है, तीसरी स्टेट में जो माइनिंग कर रहे हैं माइनर्स हैं उनको मुश्किल आ रही थी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्सेस की, तो इसीलिए उन्होंने अपील की सेंटर को। और सबसे बड़ा कि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही थी माइनिंग सेक्टर की, कि उस पर एडिशनल लेवी जब स्टेट लगाती थी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर हो रही थी, और
0: जी,
1: इसी
0: जी।
1: संदर्भ में उन्होंने अपील की सेंटर को और सेंटर ने ये अख्तियार अपने पास लिया।
0: यहां पर यदि ये हम समझना चाहें कि श्रोताओं के नजरिए से कि राज्य अपने आवश्यकताओं के लिए राजस्व प्राप्ति के लिए अपने हिसाब से शुल्क लगा रही थी या लगाती है, यहां पर जब केंद्र अपने अनुसार जमीन भी चिन्हित करेगी, उसको नोटिफाई भी करेगी और उसके बाद लेवी भी करेगी, तो राज्यों के हित की रक्षा किस तरह हो पाएगी?
1: यही कुछ पार्टीज यही अपोज कर रहे हैं कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है ये बिल, क्योंकि स्टेट्स को अख्तियार है कि अपनी स्टेट में जो मिनरल मिलता है उसके ऊपर अपनी लेवी लगा सके, तो अगर जिस स्टेट में लेवी मिल रहा है जहां से रिकवर किया जा रहा है
0: जी,
1: उस स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वहां के लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट कि नौकरियां लोकल मिल रही हैं, कि लोकल पीपल को नौकरियां मिल रही
0: हैं, जी जी,
1: लेकिन जो पदार्थ वहां से निकल रहा है उस स्टेट के नीचे है खनन पदार्थ, तो उस स्टेट को उसका कोई बेनिफिट नहीं, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं, तो सारा कुछ सेंटर ले जाएगा, सेंटर जो आपको स्टेट को देगा उतना ही स्टेट को मिल सकेगा। लेकिन सेंटर का नजरिया ये है कि अगर किसी एक स्टेट में मिनरल है, माइनो मिनरल है, वो पूरे देश के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, पूरी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए और टैक्सेशन जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो सेंटर इसको कह रही है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी एक स्टेट के साथ, सबके साथ बराबर टैक्स होना चाहिए, तो अपनी कंडीशंस जो पहले ले करेंगे, ये नहीं कि स्टेट को टैक्स मिलेगा नहीं, उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, सारा सेंटर ले जाएगा, पहले कंडीशंस ले होंगी, उसी कंडीशंस के मुताबिक चलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल जैसे देता हूं कि जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन झारखंड में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, कुछ और स्टेट्स में भी है, तो लाइमस्टोन के ऊपर झारखंड में 40 रुपए पर टन का लेवी लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, और तमिलनाडु में 250 रुपए का टैक्स लगाया गया था, तो जो साउथ में कोई कंज्यूमर है या माइनिंग कर रहा है उसको महंगा पड़ रहा है, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, झारखंड में कम देना पड़ रहा है, तो ये डिस्पैरिटी को भी खत्म करने के लिए ये यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी था।
0: नटसेल में समझे तो यह राज्यों का जो अधिकार था उसमें एक रूपता लाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से यह अधिकार केंद्र ने अपने पास इस संशोधन के माध्यम से लिया है। यदि हम ये समझना चाहें कि देश की खनिज सुरक्षा प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने में यह जो व्यापक उद्देश्य हमारा है खनिज उत्खनन का, उसे कैसे पूरा करेगा, क्या लग रहा है आपको?
1: यही मैं बता रहा था कि सपोज टैक्स इतना हैवी लग गया किसी एक मिनरल के ऊपर,
0: जी
1: मिनरल रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो अगर एक स्टेट बहुत हैवी टैक्स लगा देती है तो विदेश से उसका इम्पोर्ट सस्ता हो रहा है,
0: जी,
1: कोई
0: जी।
1: और कंट्री है जिसके ऊपर टैक्स बहुत कम है और जहां मिनरल्स ज्यादा हैं तो इंपोर्ट होगा, तो जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व्स भी जाएंगे और रेवेन्यू दूसरे देश में जाएगा, कि अपने देश में रहने की जगह दूसरे देश में जाएगा, और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत 2047 तक बने, इस उद्देश्य को लाते हुए कि जो रिसोर्सेज हमारे देश के अंदर हैं वो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम आए,
0: जी जी,
1: और इसीलिए ये यूनिफॉर्मिटी जरूरी थी।
0: यहां पर यदि हम कर व्यवस्था को लेकर समझना चाहें कि राज्य द्वारा लेवी यानी पहले ली गई होगी या कुछ कंपनियों का बाकी होगा, उसको लेकर इस विधेयक में क्या कहा गया है?
1: जी, इस विधेयक में एक सेक्शन 9D एक एडिशनल ऐड किया है, जो अमेंडमेंट है उसमें ये कहता है कि जो कर आपने किसी स्टेट ने अगर लगाया हुआ था और पहले अदा कर दिया, स्टेट ने रिकवर कर लिया वो, तो उसका रिफंड नहीं होगा। ये अमेंडमेंट जब एक बारी जो बिल है, ये प्रपोज लेजिस्लेशन एक बारी जब एक्ट बन जाएगा, उसके बाद वो स्टेट किसी भी माइनर को या वापस रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने ये कर नहीं दिया अभी तक, जब तक कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो उस डेट के बाद वो स्टेट रिकवर नहीं कर सकती उस टैक्स को
0: अच्छा।
1: पुरानी डेट से कि ये आपका बकाया है ये हमें दीजिए। तो ये अमेंडमेंट भी एक लाया गया है इसमें कि ये खत्म करने के लिए कि रिकवरी पुराने टैक्स की नहीं कर सकते और जो दिया हुआ टैक्स की रिफंड नहीं होगा।
0: अच्छा, वहां की जमीन को परिभाषित करने का भी कोई प्रावधान किया गया है नए विधेयक में?
1: जी, वो तो सेंटर ने लिया ही है, यही तो मेन है कि सेंटर ही डिसाइड करेगा कि कोई भी लैंड जो मिनरल रिच है, जहां पे मिनरल्स हैं, वो सेंटर उसको अख्तियार करेगा और उसका कंट्रोल सेंटर लेगा और उसमें मिनरल्स जो निकलेंगे, उसकी जो माइनिंग के लिए लीज देनी है, जो लाइसेंसेस देने हैं, वो सब सेंटर करेगा। स्टेट्स का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं,
0: अलग हो जाएगा। यहां यदि हम ये समझना चाहें कि नए विधेयक से निजी क्षेत्र किस रूप में आकर्षित होगा और अपना निवेश लेकर आएगा, क्या भविष्य दिखा रहा यह विधेयक?
1: जी, इस विधेयक से क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो पूरे देश में कहीं पे भी माइनिंग करनी हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट और लगेगी, माइनिंग सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा क्योंकि स्टेट्स अब एडिशनल लेवी नहीं लगा सकते, तो माइनिंग विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल। इससे माइनिंग इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सकते हैं कि हमारे देश में खनन पदार्थ तो बहुत है लेकिन माइनिंग में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस विधेयक से स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट और आने का स्कोप है और माइनिंग सेक्टर में।
0: यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी चर्चा को अपना आगे बढ़ाएं और ये समझना चाहें कि जो पुराना विधेयक था उससे यह निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग है, राज्यों के अधिकार थोड़े सिमट जाएंगे और खनन के क्षेत्र में केंद्र के पास पूरी शक्तियां आ जाएंगी, जमीन परिभाषित करने से लेकर इसके नियमन तक की। यहां पर पर्यावरण की चिंताओं को इस विधेयक में या पुराने विधेयक में किस रूप में आंका गया है और कैसे उन चिंताओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का हम असर देख रहे हैं और खनन क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं उनकी चिंताओं को देख रहे हैं, तो दोनों का संतुलन कैसे बनाया गया है?
1: अब तो सेंटर के अंडर आ गया तो एनवायरमेंट भी सेंटर के अंडर ही है।
0: जी जी,
1: तो अब सेंटर डिसाइड करेगी कि कोई इलीगल खनन ना हो, इलीगल माइनिंग ना हो उस एरिया में, तो सेंटर लाइसेंसेस देगी। जब लैंड ईयरमार्क हो गया, सेंटर के कंट्रोल में आ गया, सेंटर उसके ऊपर माइनिंग लाइसेंसेस इशू करेगा और टैक्स और लेवी डिसाइड करेगा कितना देना है।
0: जी,
1: तो एनवायरमेंट भी वही देखेगा कि इलीगल क्वारिंग ना हो, ये ना हो, लेकिन एक चैलेंज जरूर है कि अभी भी क्योंकि सेंटर ने वो लैंड को तो अपने कंट्रोल में ले लिया लेकिन है तो स्टेट में,
0: बिल्कुल,
1: और वेयर विद ऑल सारा स्टेट्स का है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस फोर्स है जो एनफोर्स करेगी लॉ को, वो तो स्टेट में ही है। तो इस एक्ट से जब तक की माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया जाता तब तक इलीगल माइनिंग और क्वारिंग का ये चैलेंज जरूर रहेगा।
0: यदि आपने लाइसेंस की चर्चा की तो हम समझना चाहेंगे इस विधेयक के दायरे से थोड़ा सा आगे निकलकर कि खनन के क्षेत्र में जो ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई और सब कुछ पारदर्शी बनाने की कवायद हुई, उससे कितना लाभ वस्तुतः पहुंचा है अभी तक?
1: जी बिल्कुल, स्टेट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अब ई ऑक्शन होता है। माइंस किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी मिनरल को माइनिंग के लिए अब ई ऑक्शन होता है, तो अलॉटमेंट जो थी वो खत्म कर दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, करप्शन कि किसी को मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये क्लोज है, या किसी ने कोई एक्सट्रैनियस कंसिडरेशंस करके किसी को माइनर लाइसेंस दे दिया, माइनिंग लाइसेंस, तो अब वो सब खत्म हो गया है।
0: जी,
1: और
0: जी,
1: स्टेट को रेवेन्यू, आपने अगर देखा होगा लैक्स ऑफ क्रोर्स एडिशनल रेवेन्यू मिला है थ्रू ई ऑक्शन, और जितने भी लाइसेंसेस हैं बाहर से कोई आएगा, देश से, विदेश से, जहां से भी जो भी कंपनी उसमें अप्लाई करेगी, उसको जो ज्यादा रेवेन्यू देगा उसको मिल जाएगा लाइसेंस।
0: बिल्कुल,
1: तो अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो खत्म ही करती है,
0: यानी बाबूशाही की जो बीच की प्रक्रिया थी वो अब यानी घट गई नहीं बल्कि खत्म हो गई है।
1: बिल्कुल।
0: यहां फिर एक कैप्टिव माइंस को लेकर सवाल पूछना चाहूंगा कि कैप्टिव माइंस के लिए क्या नए निर्देश नए विधेयक में रखे गए हैं, उनको लेकर कोई दृष्टि दी गई है इसमें?
1: नहीं, इस विधेयक में सिर्फ एक अमेंडमेंट ये है प्राइमरीली दो चीजों के लिए कि स्टेट्स एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकता और जो मिनरल रिच लैंड है वो सेंटर के अख्तियार में आ जाएंगे।
0: जी,
1: ये प्राइमरीली इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इसका यही है। और एक नया सेक्शन मैंने आपको बताया कि वो जो पुराना टैक्स रिफंड नहीं होगा और नया रिकवर नहीं कर सकते पुराना टैक्स।
0: हाँ, कुल मिलाकर यदि आने वाले भविष्य को देखते हुए हम समझें तो खनन उद्योग के लिए यह कितना सहायक होगा, किस रूप में आकलन करते हैं आप?
1: जी बिल्कुल, जैसे भारत विकसित भारत की तरफ 2047 की तरफ बढ़ रहा है तो आत्मनिर्भरता मिनरल सेक्टर में हमारी बढ़ रही है और ये जो अमेंडमेंट लेके आए हैं इससे इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए जैसे कुछ ऑपोजिशन देख रही है कि हमारे राइट्स ले लिए, हम लेवी नहीं कर सकते टैक्स, इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए, बल्कि नेशनल डेवलपमेंट गोल के लिहाज से देखना चाहिए कि इससे क्या है कि माइनिंग सेक्टर में एक तो रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, माइनिंग प्रॉपरली होगी, रेगुलेटेड होगी बाय वन एजेंसी विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वैसे भी ई ऑक्शन करते हैं तो कोई इसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का कोई स्कोप नहीं है, तो सारा कुछ मॉनिटरिंग इसकी प्रॉपर होगी और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में और बढ़ेगा।
0: कुल मिलाकर श्रोताओं, नया विधेयक देश की तरक्की के लिए उपयोगी साबित होगा, इसी नजरिए से इसका प्रावधान किया गया है और आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष लाभ निश्चित रूप से हम देखेंगे। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विशेषज्ञ संजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: जी बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताएं और जलवायु परिवर्तन। ऐसे में ऐसे ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है जो स्वच्छ भी हो, भरोसेमंद भी हो और लगातार बिजली उपलब्ध करा सके। यही कारण है कि दुनिया में एक बार फिर परमाणु ऊर्जा की ओर ध्यान बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत स्वच्छ तो हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता मौसम और समय पर निर्भर करती है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2400 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए इन्हें बिजली व्यवस्था की एक विश्वसनीय आधारशिला माना जाता है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही है। एक ओर शांति अधिनियम के माध्यम से कानूनी और नीतिगत ढांचे को आधुनिक बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकियों के विकास और नई पीढ़ी के रिएक्टरों पर निवेश बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ईंधन सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हाल के वर्षों में किस प्रकार भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई दिशा मिली है और इस क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को किस प्रकार मजबूती प्रदान कर रही है। श्रोताओं, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम देश के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला बना। इसके बाद संशोधनों के माध्यम से सरकार ने इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, तकनीकी क्षमताओं और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों में तेजी से बदलाव आया है। ऐसे में आवश्यकता महसूस की गई कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न धारों को एक आधुनिक और व्यापक कानूनी ढांचे में समाहित किया जाए। इसी सोच के साथ शांति अधिनियम 2025 लाया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
2: भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो देश के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की वर्ष 2024-25 में हिस्सेदारी लगभग 3% रही, जबकि देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.78 गीगावाट है। सरकार का लक्ष्य स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विकसित रिएक्टरों के माध्यम से वर्ष 2031-32 तक 22 गीगावाट से अधिक की क्षमता विकसित करना है। वहीं दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि देश में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा दिया जा सके। लक्ष्य ये भी है कि वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR विकसित किए जाएं। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लाया गया शांति अधिनियम 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। इसके तहत नियामकीय निगरानी के अंतर्गत निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सीमित भागीदारी की अनुमति दी गई है। वे परमाणु बिजली संयंत्रों के संचालन, बिजली उत्पादन, उपकरण निर्माण और निर्धारित सीमा तक परमाणु ईंधन निर्माण जैसी गतिविधियों में भाग ले सकेंगी। हालांकि संवेदनशील गतिविधियां केंद्र सरकार या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगी। अधिनियम में परमाणु ऊर्जा और विकिरण से जुड़ी गतिविधियों के लिए लाइसेंस तथा सुरक्षा स्वीकृति की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को वैधानिक दर्जा देकर नियामक व्यवस्था को और सशक्त बनाया गया है। इसके साथ ही परमाणु क्षति से जुड़े दायित्व, मुआवजा, दावों के निपटान और अपील की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है। स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में परमाणु तथा विकिरण तकनीकों के उपयोग के लिए भी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाई गई है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: श्रोताओं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कोई अल्पकालिक योजना नहीं, बल्कि 6 दशकों से अधिक समय में विकसित हुई एक दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। सीमित यूरेनियम संसाधनों और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। इसकी खास बात ये है कि हर चरण अगले चरण की नींव तैयार करता है। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरे चरण में उसी प्रक्रिया से प्राप्त ईंधन का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में किया जाता है। इसके बाद तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडारों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी दूसरे चरण की दिशा में भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि इस रिएक्टर में पहली बार नियंत्रित और सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिय सफलतापूर्वक शुरू हुई। इसके साथ ही भारत ने अपने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। लेकिन आखिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है और इसे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है, इस विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया।
3: एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में हम लास्ट अबाउट 30 ईयर्स उसी कल्पक्कम में टेस्ट कर रहा था। उस अनुभव का बेसिस में ये हम बिल्ड किया है। यूजुअली आप एक एटॉमिक रिएक्टर लिया तो वो एटॉमिक रिएक्टर से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बट इस रिएक्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो वर्ड ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब किसी चीज को नया पैदा कर सकता है ना, तो उस तरह से फ्यूल को ये पैदा करता है, वेस्ट को पैदा नहीं करता है। इस रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन फास्ट तरीके से निकलेगा। इसके कारण वो क्या करेगा, ये रिएक्टर के बाहर एक कवच के रूप में हम किसी नॉन फिसाइल मटेरियल को हम रखेंगे, लाइक थोरियम को हम रख सकता है, उसमें ये फास्ट न्यूट्रॉन टकरा के उसको फ्यूल बन, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक विशेष मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल होने के बाद अपनी आप एक चेन रिएक्शन में उसे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो ये क्रिटिकलिटी। इंडिया का एक अपनी आप एटॉमिक पावर का प्लान है, उस प्लान में 3 स्टेज बोलेगा, ये सेकेंड स्टेज है। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है, इसमें हमको कामयाब हो गया तो होगा, पक्का होगा, मुझे यकीन है। सो कामयाब होने के बाद हम देखा तो स्टेज 3 में हम इंडिया में अवेलेबल है थोरियम, वो थोरियम को हम यूज कर सकता है। थोरियम बहुत सेफ विषय है, तो ये एटॉमिक पावर प्रोड्यूस करने का थोरियम यूज किया तो बहुत सेफ होगा। एंड सेकेंड वो पूरा की पूरा इंडिया में अवेलेबल, सो इसका मतलब दैट हमको एक एनर्जी सॉवर्निटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा।
1: श्रोताओं, भारत के पास यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, जबकि थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत के पास है। भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी सोच पर आधारित है कि भविष्य में इन विशाल थोरियम संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। आइए इस विषय पर वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन की राय सुनते हैं।
3: लास्ट 20-30 वर्ष में एटॉमिक पावर के ऊपर एक नेगेटिव व्यू था, बट अभी पेट्रोलियम एंड कोल का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देख के बहुत लोग ये बोलने लगा दैट हम नया दौर पर नया दृष्टिकोण से एटॉमिक पावर को देख, तो एक एटॉमिक पावर ग्रीन एनर्जी है, इसका मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाला चीज को नई पैदा कर। एंड हम थर्ड स्टेज दैट इज थोरियम यूज करने लगा तो इवन एटॉमिक सेफ्टी का इश्यू बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो फ्यूचर में आई थिंक सर्टनली ये एटॉमिक पावर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में, एंड बिकॉज वी हैव थोरियम इन ह्यूज रिजर्व, बहुत ज्यादा मात्रा में थोरियम इंडिया में है, तो फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एटॉमिक पावर प्ले करेगा।
1: श्रोताओ, आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग और अधिक बढ़ने का अनुमान है, और ऐसे समय में पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक संघर्षों ने ये दिखाया है कि ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अनेक देश परमाणु ऊर्जा को एक दीर्घकालिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वर्ष 2023 में आयोजित COP28 सम्मेलन में 20 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कम से कम 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत भी अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लगातार विस्तार दे रहा है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के कुल यूरेनियम संसाधनों का 1/3 से अधिक हिस्सा है। ऐसे में ये व्यवस्था भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ईंधन सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी और सुरक्षा प्रावधानों के तहत की जाएगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया है। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक है अलका सिंह।

ये डेंगू डेंगू क्या है, ये डेंगू डेंगू जब आसपास पानी जमा होता है तो एडिस पैदा होता है ये डेंगू मच्छर।

0: डेंगू डेंगू।
1: तेज बुखार, सर दर्द, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द, जी मचलना, त्वचा पर चकते और थकावट, यह हो सकता है डेंगू। डेंगू एडिस मच्छरों से फैलता है। अपने घरों और आसपास मौजूद गमलों, बाल्टियों और कूलर्स और गड्ढों में पानी जमा न होने दें और मच्छरों के काटने से बचें।
2: रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट, फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो यह धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। यह बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं यह बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ युम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
1: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
0: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
1: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरैक्ट कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
0: अब इलाज की बात करें।
2: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
3: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
4: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैको इबल्सिफिकेशन सर्जरी।
2: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स. मोतियाबिंद तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता. ये बीमारी है ग्लॉकोमा. आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है.
1: ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है. ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है. दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है जिसे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर कहते हैं. प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं. इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है. ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है. एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है. पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्राबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है. दरअसल ट्राबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं. अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है. दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है. नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है.
2: क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है. इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है. जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है. अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं, तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए.
1: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है. कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो. और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की. इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं. आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो. ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख हैं टोनोमेट्री. इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है. दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है. तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट. इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है. इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है. ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है. ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है. यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं. सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है, इसको ट्रैबेक्यूलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं, इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
3: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
0: यही कोई 15 बार।
3: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
0: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
1: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का पूरा गोला।
4: नेत्रदान महादान है। अगर आप नेत्रदान के इच्छुक हैं तो अपने पास के आई बैंक से संपर्क करें।
1: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्रैकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्रैकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
3: सो, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
0: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
3: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
0: बबलू,
3: बाय फ्रेंड्स,
0: तुमसे मैंने
3: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
0: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
3: बबलू,
1: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी, रीड इंडिया लखनऊ से, आपके साथ, आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मॉनसून आ गया है, बारिश का मौसम आ गया है, और ये बारिश का मौसम अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आता है। आज मैं उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी के बारे में बात करूंगी, जिसका नाम है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या होता है? टाइफाइड फीवर एक बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, और इसके बैक्टीरिया का नाम है सेल्मोनेला टाइफी। सेल्मोनेला टाइफी एक मेडिकल टर्म है, और ये बैक्टीरिया हमारे जब बॉडी के अंदर घुसता है तब हमें टाइफाइड फीवर के होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाता है, और इसके द्वारा बहुत से लोगों में ये फैल जाता है। सच ये है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया जो होता है वो पानी या सूखे मल में हफ्तों तक जिंदा रहता है। इस तरह से वे दूषित पानी या खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंचकर संक्रमण का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति का जूठा खाद्य पदार्थ खाता है या पीता है, तो इससे दूसरे व्यक्ति को टाइफाइड रोग होने का संभावना बन सकती है। आमतौर पर प्रदूषित पानी पीना व संक्रमित या बासी भोजन का सेवन करना टाइफाइड होने के मुख्य वजह है। किसी भी व्यक्ति को अगर घर में टाइफाइड है तो घर के अन्य सदस्यों को भी टाइफाइड होने का खतरा हो सकता है। मॉनसून में बदलाव और कुछ गलत आदतों के कारण इस बुखार का वायरस बहुत परेशान करता है। टाइफाइड एक तेज बुखार से जुड़ा रोग है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि टाइफाइड होने का कारण क्या है? टाइफाइड बुखार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित होता है। ये भोजन या पानी के सेवन से होता है, या इस बैक्टीरिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है या जिसको पहले से ही टाइफाइड होता है, उसके जूठा खाने से या उसके आसपास बैठने से भी हमें टाइफाइड हो सकता है। दूषित खाद्य पदार्थ से भी ये संक्रमित हो सकता है। पाचन तंत्र से पहुंचकर इन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचता है। श्रोता, आप जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं? बुखार होता है, इसमें 104 डिग्री तक बुखार जाता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है वैसे वैसे भूख कम हो जाती है। टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को सिर में भी दर्द होता है। टाइफाइड के लक्षण के रूप में शरीर में दर्द होता है, ठंड की अनुभूति होती है, सुस्ती एवं आलस का अनुभव होता है, टाइफाइड से कमजोरी का भी अनुभव होता है, इसमें दस्त का भी अनुभव होता है, दस्त भी होने लग सकते हैं। आमतौर पर टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को 104 बुखार तक पहुंच सकता है। बड़े बच्चों को कब्ज की भी शिकायत हो सकती है, तथा बच्चों में दस्त की भी शिकायत हो सकती है। श्रोताओं, आप जानते हैं टाइफाइड से बचाव का उपाय क्या है? आमतौर पर भोजन और जीवन शैली के असर के कारण भी टाइफाइड होता है। इसके लिए आहार और जीवन शैली को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि क्या बदलाव कर सकते हैं। टाइफाइड में प्याज और लहसुन या वो खाद्य पदार्थ जिसकी बहुत तीव्र स्मेल हो, उससे हमें बचना चाहिए। टाइफाइड में सभी मसाले जैसे कि मिर्च, सौंफ, सिरका आदि से परहेज करें। इस बुखार में गैस बनने वाले आहार जैसे अनानास, कटहल आदि से परहेज करें। टाइफाइड के लक्षण महसूस होने पर घी, तेल से परहेज करें। टाइफाइड में बाजार की बनी हुई चीजें ना खाएं। टाइफाइड में मांसाहारी भोजन
से भी परहेज करें। पेट भरकर कुछ भी ना खाएं। ऐसा भोजन ना करें जो देर से पचता है। चाय कॉफी का भी कम सेवन करें। श्रोताओं, आप जानते हैं कि जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए। उचित स्वच्छता बनाए रखें। अपने हाथों को गर्म पानी से साबुन के साथ बार बार धोएं। साफ उबला पानी पिए और केवल बोतल बंद पानी पिए। कच्चा आहार ना लें। उचित तरीके से पका भोजन गरम गरम ही खा लें। भारी दुकानों से पाए गए पदार्थ ना लें। संक्रमित व्यक्ति को घरेलू कार्यों से दूर रखें। संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति की व्यक्तिगत उपयोग और वस्तुओं को अलग रखें। पानी को स्वच्छ कर ही पिएं। कूड़े कचरे को सही तरीके से फेंकें और अच्छा स्वास्थ्य भोजन करें। संक्रमित व्यक्ति को अपने बर्तन और भोजन किसी से भी नहीं शेयर करने चाहिए, बांटने चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को भोजन भी नहीं पकाना चाहिए। कच्चे फल और सब्जियां खाने से बचें। ज्यादातर गर्म खाद्य पदार्थ का सेवन करें और अपने आसपास सफाई रखें। श्रोताओं, आप जानते हैं कि टाइफाइड का उपचार में घरेलू नुस्खे क्या होते हैं। टाइफाइड जैसे रोग अक्सर डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं, इसलिए रोगी को कुछ कुछ समय के बाद अपने पदार्थ में पानी, ताजे फल का रस या हर्बल चाय का सेवन करना चाहिए। उबले पानी का ही सेवन करें। यह टाइफाइड में कमजोरी की स्थिति में भी आपकी मदद कर सकता है और बीमारी से राहत दिला सकता है। टाइफाइड में तुलसी का पानी भी बहुत अच्छा इलाज है। सेब का जूस भी टाइफाइड में उपचार के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सेब का जूस निकालें, इसमें अदरक का रस मिलाकर पिएं। इस तरह से बुखार में राहत मिलती है। आप टाइफाइड के उपचार के लिए लौंग का इस्तेमाल करें। लौंग में टाइफाइड ठीक करने के गुण होते हैं। 8 कप पानी में अगर आप 5 से 7 लौंग डालकर उबाल लेंगे, जब पानी आधा रह जाएगा तो उसे छानकर पी लें। इस उपचार को 1 हफ्ते लगातार करें। इससे टाइफाइड में हुई कमजोरी दूर हो सकती है। अगर बुखार तेज है तो ठंडे पानी की पट्टियां भी कर सकते हैं। टाइफाइड के उपचार के लिए शहद का सेवन भी बहुत अच्छा होता है। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पानी को पी लें। ये टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाने वाला बहुत फायदेमंद उपाय है। श्रोताओं, ये तो मैंने आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताए थे, पर जब टाइफाइड होता है तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना उतना ही जरूरी है। टाइफाइड के लक्षण दिखते ही हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे अपनी बीमारियों के बारे में बताना चाहिए, नहीं तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी बन सकती है। श्रोताओं, आप जो डॉक्टर आपको दवाई देता है उसका अच्छे से पालन करें, समय से दवाई खाएं और साथ साथ हम घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और अगर आपके घर में कोई भी टाइफाइड का मरीज हो या आपको ही टाइफाइड हो जाए तो आपको ये सब जानकारी मिलने के बाद आप अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: एंड वेलकम टू जीते रहो।
1: हाय फ्रेंड्स।
2: कुहू, मैं बहुत दिनों से एक बीमारी के बारे में जानना चाह रहा था, पर
1: ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बारे में जानने से तुम झिझक रहे हो?
2: एक्चुअली थोड़ा पर्सनल हो जाता है। इस बीमारी के बारे में सोचते ही मुझे मासी का दर्द याद आ जाता है।
1: ओ, यू मीन कैंसर? आई नो, ये बीमारी एक साथ कई जिंदगियां बदल देती है।
2: हाँ, हमेशा सुनता रहता हूँ, रेगुलर आर्टिकल्स भी निकलते रहते हैं, पर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये है क्या और इसका नाम कैंसर कैसे पड़ा।
1: आइए देखते हैं।
3: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका संबंध हमारे शरीर की मूलभूत इकाइयों से है। हमारे शरीर की ये मूलभूत इकाइयां हैं कोशिकाएं यानी सेल्स। शरीर में इनकी संख्या अरबों में होती है। ये कोशिकाएं शरीर के हर एक अंग के आधार पर अलग अलग होती हैं, जैसे लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स इत्यादि। इन्हीं कोशिकाओं के विकास के आधार पर हमारा शारीरिक विकास होता है और इन्हीं से बनते हैं उत्तक यानी टिश्यूज। टिश्यूज असल में कोशिकाओं का एक समूह है। हम सबके शरीर में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, जो विभाजित होकर अलग अलग ऑर्गन्स की सेल्स में बदल सकती हैं और उस ऑर्गन का विशेष काम करने लगती हैं, जैसे किडनी और लिवर की सेल्स। कुछ स्टेम सेल्स किडनी सेल्स में परिवर्तित होती हैं तो कुछ लिवर सेल्स में। वहीं कुछ स्टेम सेल्स ब्रेन सेल्स में बदल जाती हैं तो कुछ मसल्स की सेल्स में। सामान्य स्थिति में कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। इस परिस्थिति में कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है और इसी वजह से नई कोशिकाएं भी बहुत तेजी से बनने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया पर लगाम कस जाती है। इससे टिश्यूज में अतिरिक्त कोशिकाएं जमा होने लगती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। जहां तक इस बीमारी के नामकरण का सवाल है तो इसके पीछे भी इन्हीं ट्यूमर्स का हाथ है। आज से हजारों साल पहले हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें मेडिकल साइंस का जनक कहा जाता है, ने जब एक ममी के ट्यूमर को देखा तो उन्हें जो आकृति दिखी वो केकड़े यानी क्रैब के पैरों से मिलती जुलती थी। लैटिन में केकड़े को कैर्सिनोस कहा जाता है, लिहाजा उन्होंने इसका नाम रखा कैर्सिनोमा, जो आगे चलकर कैंसर कहलाने लगा। कैंसर दो तरह से शरीर में फैलता है, इनमें एक तो इन्वेजन है और दूसरा मेटास्टेटिस। इन्वेजन के तहत कैंसर सेल्स अपने ओरिजिनेटिंग यानी उत्पन्न होने वाले अंग के पड़ोसी टिश्यूज में घुस जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में बनने वाली गांठ इसका एक उदाहरण है। लेकिन मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स ओरिजिनेटिंग अंग के साथ साथ दूसरे अंगों के सेल्स में भी प्रवेश कर जाते हैं। मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स पहले लिम्फ यानी लसिका और ब्लड वेसल्स में प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाते हैं। कैंसर के सिम्टम्स यानी लक्षण कई बार कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इन्हें स्पेसिफिक सिम्टम्स कहा जाता है। जैसे कोलन कैंसर में दस्त, कब्ज और मल के साथ खून का आना, और ब्लैडर कैंसर में पेशाब में खून आ सकता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये सिम्टम्स कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा नहीं करते, जैसे हमेशा थकान।

ध्यान लगना, क्योंकि कैंसर सेल्स शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करने लगते हैं। इसके अलावा वजन का घटना, भूख न लगना, बुखार आना, त्वचा का काला हो जाना, खुजली होना और असहनीय दर्द होना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के उदाहरण हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इन सिम्टम्स का या तो पता नहीं चलता या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

0: वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के सिम्टम्स की। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कैंसर शरीर में फैलता कैसे है। लेकिन शायद आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे पाचन तंत्र, हड्डियां या फिर कोई और अंग।
1: मोटे तौर पर कैंसर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा ये कैंसर का सबसे सामान्य रूप है। शरीर के किसी भी अंग की बाहरी या अंदरूनी सतह यानी एपिथेलियल टिश्यूज में होने वाले कैंसर इस श्रेणी में आते हैं। लंग्स, ब्रेस्ट, कोलोन कैंसर, सर्वाइक्स यानी बच्चेदानी का कैंसर और माउथ कैंसर कार्सिनोमा के प्रमुख उदाहरण हैं।
2: कैंसर की दूसरी कैटेगरी है सार्कोमास। इस कैटेगरी में कैंसर सपोर्टिव या कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं में होते हैं, जैसे हड्डी, कार्टिलेज, वसा और मांसपेशियां। कैंसर की अगली कैटेगरी है लिम्फोमास। लिम्फ नोड्स में होने वाले कैंसर को लिम्फोमास कहा जाता है।
1: लिम्फोमा के बाद आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है।
2: अब सवाल उठता है कि कैंसर होता कैसे है। आम धारणा तो यही है कि इसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। कुछ प्रमुख कारणों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इनमें एक तो शरीर के अंदरूनी कारण है, जैसे हेरिडिटी, असंतुलित भोजन और हॉर्मोन्स। कुछ बाहरी कारण भी हैं, जैसे सिगरेट और तंबाकू का सेवन, शराब, कुछ कार्सिनोजेनिक रसायन, अल्ट्रावायलेट किरणें और न्यूक्लियर रेडिएशन इत्यादि। इन दोनों वर्गों के अलावा कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया भी हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ खास किस्म के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं।
0: अब बात आती है इनके डायग्नोसिस की। कैंसर के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अर्ली स्टेज में इसका पता लगाया जा सकता है।
3: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर अर्ली स्टेजेस में सिर्फ पता ही लगाते हो या फिर ठीक भी करते हो तुम लोग?
0: जी हाँ बबलू जी, अर्ली स्टेजेस में पता चलने पर कैंसर काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन आइए पहले ये तो देख लें कि कैंसर का पता कैसे चलता है, यानी क्या है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स।
2: कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इलाज में काफी फायदा होता है और इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अक्सर कैंसर के मरीज डॉक्टर के पास एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं, जब किसी अंग में कैंसर के कारण सूजन हो जाती है या कोई अल्सर जब लंबे समय तक ठीक नहीं होता या ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में इलाज के विकल्प सीमित हो जाते हैं, मगर अब कुछ ऐसे स्क्रीनिंग मेथड्स उपलब्ध हैं जिनसे अर्ली स्टेजेस में ही कुछ खास तरह के कैंसर का पता चल जाता है। ऐसा ही एक टेस्ट है पैप स्मियर। ये एक ऐसी स्क्रीनिंग टेक्निक है जो सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस प्रोसेस में एक छोटे ब्रश या स्क्रेपर से सेल्स का सैंपल ले लिया जाता है, फिर इन सेल्स को एक स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर यदि किसी तरह की असामान्यता यानी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो ये कैंसर का इंडिकेटर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार मैमोग्राफी भी एक तरह की एक्सरे तकनीक है जो खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में काफी कारगर है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए भी कैंसर का पता चल जाता है। अगर पेशेंट को नॉन हीलिंग ओरल इन्फेक्शन है तो माउथ कैंसर के लिए उसकी जांच की जाती है। लंग कैंसर में मरीज को लंबी खांसी हो सकती है, बलगम के साथ खून भी आ सकता है और मरीज की सांस भी उखड़ी रहती है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने पर मरीज की लंग कैंसर के लिए जांच की जाती है। अगर बार बार दस्त या कब्ज हो जाए जो 3 सप्ताह से ज्यादा चले तो बाउल कैंसर के लिए जांच जरूरी हो जाती है। उल्टी के साथ खून आने पर लिवर कैंसर की जांच जरूरी होती है।
1: अगर 2 और 3 सप्ताह से ज्यादा लो ग्रेड फीवर हो और उसकी वजह का पता न चले तो ब्लड कैंसर के लिए टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि लो ग्रेड फीवर कई तरह के कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा बार बार किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या बगैर किसी वजह से वजन घटे तो भी ब्लड कैंसर के लिए जांच करवाई जा सकती है।
2: अगर पेशेंट में कैंसर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC करते हैं। FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें एक बारीक पतली सी सुई ट्यूमर स्थित जगह पर डालकर कुछ कोशिकाएं निकालते हैं। पैथोलॉजिस्ट फिर इसका परीक्षण करते हैं। ट्यूमर, लिम्फ नोड और बोन मैरो कैंसर का पता लगाने के लिए FNAC या बायोप्सी की मदद ली जाती है। बायोप्सी के लिए कैंसर वाली जगह से टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है, फिर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर कैंसर टिश्यूज नॉर्मल टिश्यूज से एकदम अलग दिखते हैं। नॉर्मल टिश्यूज जहां सुव्यवस्थित होते हैं वहीं कैंसर टिश्यूज का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये टेढ़े मेढ़े अव्यवस्थित से लगते हैं। कैंसर सेल्स जितने अव्यवस्थित होते हैं कैंसर उतना ज्यादा जानलेवा होता है।
4: एक बार डायग्नोसिस हो जाए कि ये गांठ, जैसे गले में गांठ है और गांठ के अंदर कैंसर का डायग्नोसिस आया है, तो ये गांठ का कैंसर कहां से आया है इस विषय में हम फिर कुछ और जांचें की जाती हैं, जैसे हम CT स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि ये कैंसर किस स्टेज का है, कहां तक गया है। पहले कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद उसका स्टेजिंग किया जाता है। स्टेजिंग के लिए कुछ जांचें होती हैं जो मैंने अभी बताई, वो की जाती है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है।
1: कैंसर को मोटे तौर पर 4 भाग में बांट सकते हैं। कैंसर जिस अंग में हुआ है अगर उसमें ही रहे और उसका फैलाव और गहराई थोड़ी हो तो इसे फर्स्ट स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर का फैलाव अगर बढ़ जाए और आसपास के अंगों में फैल जाए तो इसे सेकेंड स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर फैलकर आसपास के रीजन और लिम्फ नोड्स में फैल जाए तो इसे थर्ड स्टेज का कैंसर कहा जाता है। फोर्थ स्टेज में कैंसर भयानक रूप ले चुका होता है। अब कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स के जरिए शरीर के दूसरे अंगों जैसे लिवर, हड्डी और फेफड़ों तक फैल जाते हैं।
4: यदि कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो इससे पूरे बचने की पूरी पूरी संभावना है। अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ने के बहुत से फायदे हैं। एक, कि आप बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं, तो इसका इलाज बहुत सरल है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, खर्चा इलाज का, वो भी बहुत कम हो जाता है। तीसरा, डिसफिगरमेंट यानी कि अगर बड़ा ट्यूमर होगा तो उसको निकालने के लिए उतना बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है, उतना ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। और यदि छोटा सा ट्यूमर है तो उसका छोटा सा ऑपरेशन है, 2 दिन 2-3 दिन अस्पताल में रहना है, उसके बाद घर चले जाना है, नॉर्मल लाइफ आपकी जल्दी आ जाती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं आता। आजकल कई टेस्ट आ गए हैं जिससे हम कैंसर को जड़ बड़ी अर्ली स्टेज में, इवन स्टेज 1 से पहले की स्टेज में भी हम पकड़ सकते हैं। जैसे कि आजकल हम मैमोग्राफी करते हैं, मैमोग्राफी में छोटा सा छोटा लीजन भी हमें दिखाई दे जाता है, जब तक गांठ बनी ना हो उससे पहले भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। दूसरा, हम स्त्रियों में करते हैं पैप टेस्ट जो गर्भाशय यानी बच्चादानी के मुंह के कैंसर को डिटेक्ट करने में बहुत फायदेमंद है।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स। कोकिला, एक बात बताओ, अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर का पता चल जाए तो क्या वाकई कैंसर का इलाज संभव है?
0: देखो बबलू, ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे मरीज की उम्र क्या है, उसकी सेहत कैसी है, बीमारी किस स्टेज में है और
3: ये सब तो ठीक है मैडम कुहू जी, लेकिन ये तो बताइए कि कैंसर का इलाज क्या है?
0: बबलू, एक सवाल का जवाब खत्म नहीं होता तुम दूसरा सवाल दाग देते हो। खैर, आइए देखते हैं क्या है कैंसर का इलाज।
2: कैंसर का मरीज कितना ठीक होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस तरह का है और किस स्टेज में पहुंच चुका है। कैंसर के शुरुआती स्टेज में इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्ण उपचार। एडवांस स्टेज में पहुंच जाने के बाद प्राथमिकता होती है बीमारी की रोकथाम कर मरीज की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाना। इसी आधार पर कैंसर के इलाज को चार वर्गों में बांटा गया है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी। सर्जरी में ट्यूमर और उसके आसपास जिन जगहों पर कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। कुछ कैंसर के एडवांस स्टेजेस में सर्जरी का इस्तेमाल रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ भी किया जाता है। रेडियोथेरेपी लगभग 6 दशक से कैंसर के इलाज का एक प्रमुख विकल्प बन गया है, चाहे कैंसर फर्स्ट स्टेज में एक अंग तक सीमित हो या एडवांस स्टेज में शरीर के कई अंगों तक फैल चुका हो। और शायद यही वजह है कि आज कैंसर के 50% मामलों में रेडियोथेरेपी का उपयोग हो रहा है। रेडिएशन एक खास तरह की ऊर्जा है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मशीनों के जरिए बीम के रूप में प्रवाहित की जाती है। गामा रेज कैंसरस सेल्स को मार देती हैं।
4: इसमें ना ऑपरेशन की जरूरत है ना कोई डिसफिगरमेंट होता है, सिर्फ रेज आती हैं और ट्यूमर को बर्न करती हैं और ट्यूमर जब खत्म हो जाता है। रेडियोथेरेपी का उपयोग मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, टट्टी के मार्ग का कैंसर, स्वरपेटी का कैंसर, इनमें बहुत ज्यादा है और कभी कभी छाती स्तन के कैंसर में भी यूज किया जाता है। रेडिएशन बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी यूज की जाती है। रेडिएशन के अपने बहुत से फायदे हैं, बिना ऑपरेशन बिना किसी के आप ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। दूसरा, ऑर्गन सेव होता है, जैसे कि स्वरपेटी आपकी बच सकती है, आप आवाज बोल सकते हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म में मुंह में लार बननी बंद हो जाती है, पेशेंट को सॉलो करने में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी खाने का स्वाद नहीं आता है, और लंबे टर्म में ये फाइब्रोसिस वगैरह करती है जिससे पेशेंट को बाल, जहां जहां रेडिएशन लगती है वहां बाल चले जाते हैं जो आजीवन चले जाते हैं, दोबारा कभी नहीं आते वो लाइफ में बाद।

0: जीते रहो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के इलाज की। तो कैंसर के विरुद्ध हमारी लड़ाई कई फ्रंट्स पर जारी है और यकीन मानिए इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं।
1: कैंसर के इलाज की अगली कैटेगरी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी असल में एक ड्रग थेरेपी है। इसके तहत मरीज को जो दवाइयां दी जाती हैं, वो मैलिग्नेंट सेल्स के विकास यानी ग्रोथ और विभाजन यानी डिवीजन को प्रभावित करती हैं। कीमोथेरेपी की दवाइयां किसी भी स्टेज में कैंसर की कोशिकाओं को मारकर उनका विभाजन रोक देती हैं। इस प्रक्रिया की वजह से कई बार कैंसर सेल्स के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाएं भी खत्म हो जाती हैं। तुरंत दिखने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वॉमिटिंग टेंडेंसी, चक्कर आना, कमजोरी, कभी डायरिया या कभी कब्जियत, बालों का झड़ना, मुंह आना, मुंह में छाले पड़ना। ल्यूकेमिया, लिम्फोमास और टेस्टिकुलर कैंसर के मामलों में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल सर्जरी और रेडिएशन के मुकाबले ज्यादा किया जाता है। कुछ खास परिस्थितियों में सर्जरी या रेडियोथेरेपी के बाद मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि कैंसर फिर से ना हो। हार्मोन थेरेपी भी कीमोथेरेपी का एक प्रकार है। कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में हमारे शरीर के हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ही कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद करने लगते हैं। इसलिए हार्मोन थेरेपी में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो उन हार्मोन्स के बनने को कम करती हैं जो कैंसर को फैलाने में मदद कर रहे होते हैं।
2: जानती हो कोकिला, मुझे अंकुश फिल्म का वो गाना याद आ रहा है।
0: अच्छा, कौन सा गाना? जरा हम भी तो सुने।
2: इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
0: तुमने ठीक कहा बबलू। दोस्तों, इस बीमारी के विरुद्ध जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है पेशेंट का आत्मविश्वास। इसीलिए अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए और हाँ, एक अच्छी जीवन शैली अपनाइए। अपने खान पान में हरी सब्जियों के साथ साथ फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि हाल ही में ये स्पष्ट हो चुका है कि एक अच्छी जीवन शैली, अच्छे खान पान से हम काफी हद तक इस भयावह बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
2: बाय एंड डू टेक केयर। जीते रहो।
1: हमारे शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। मोटे तौर पर कैंसर को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कैर्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अगर पेशेंट में कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC या बायोप्सी करते हैं। कैंसर का इलाज चार तरीकों से किया जाता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी।

नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं आपको लेकर आया हूं आज चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप यहां पर देखेंगे बैम्बू फार्मिंग। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रॉकेट की गति से तेजी से बढ़ने वाला बांस है जगेंडिस, और आप देख करके आपको लगेगा कि ये कहीं अमेजन के जंगलों में खड़े हुए इतने मोटे बांस है, लेकिन नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, ये चंडीगढ़ है और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि बांस की करीब 1600 वैरायटी हैं पूरे हिंदुस्तान में, कुछ वैरायटी कहीं भी हो सकती हैं। और इस तरह से ये जगेंडिस जो है, यहां पर हमें पता लगा कि इसकी उम्र मात्र 3 महीने है, 3 महीने में भी ये इतना ऊंचा चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो ड्राई होता है, सूखता है, उससे पहले उसको काट लिया जाता है। उसके क्या उपयोग हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। बांस को लेकर जो सरकार ने जो अपना प्रोजेक्शन दिया था, उसे जो एक तरह से लकड़ी से घास में की कैटेगरी में उसको रखा, और बांस की खेती पर किसी तरह का प्रतिबंध, उसे काटने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध न हो, ये एक नियम बना दिया गया, तब से पूरे देश में बांस को प्रमोट किया जा रहा है।

0: हमारे साथ चंडीगढ़ में जो एनवायरमेंट सोशियोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, आप यहां पर हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो बांस है उसका इस एनवायरमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद आगे चलेंगे।
1: देखिए, बांस एकमात्र ऐसा पौधा है जो आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बाकी पौधों से अगर कंपेयर करें तो 135% तक ज्यादा ऑक्सीजन देता है।
0: क्या बात।
1: और ये बढ़ता इतनी तेजी से है कि आप जैसे देख रहे हैं कि 3-4 महीने में ये 90-100 फीट तक चला जाता है।
0: रॉकेट साइंस है,
1: रॉकेट है। और ये एक दिन में 3-3 फीट तक बढ़ सकता है। आमतौर पे 1 फीट तो रेगुलर बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन 3-4 फीट तक भी बढ़ सकते हैं। और इसमें 1600 के करीब वैरायटी है जो नॉर्थ इंडिया में है, वो अभी लगभग 30-35 वैरायटी अच्छे से चल रही है।
0: और ये आपने सिर्फ यहाँ पर डैमो के लिए, यहाँ पर ही ये हम सब देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन भी किया गया है।
1: हम सैकड़ों एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं, मैं अपने खेत में भी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े इलाकों में हम लगा रहे हैं।
0: एक्यूरेट कितने एकड़ में किया होगा?
1: लगभग 500 एकड़ में पहुंच चुका होगा।
0: क्या बात। कौन कौन से एरिया स्पेशली कवर किए हैं?
1: इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं जो तेजी से लग रहे हैं, और हिमाचल में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो लगा रहे हैं। और इसको लगाने के पीछे कारण ये रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी घोषित किया, जो बांस पहले पेड़ की कैटेगरी में था उसको अभी घास की कैटेगरी में लगा दिया है। इससे क्या हुआ कि जो नॉर्थ इंडिया के किसान थे उनको भी बांस में इंटरेस्ट जागा है। पहले हमें ये लगता था कि बांस को कल्टीवेट करना, इसको आगे बढ़ाना, ये इलीगल है, तो अभी इसको लीगल कर दिया है सरकार ने, उसकी वजह से ये बहुत तेजी से अभी फैल रहा है। ये CNG, चारकोल, एथेनॉल इससे बनना चालू हो चुका है, और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर होता है, और ये बर्निंग के लिए काम आता है, जो बड़ी बड़ी भट्टियां चलाने के लिए, तो ये डीजल, पेट्रोल और कोयले का एक अच्छा रिप्लेसमेंट है।
0: बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि अब बांस लकड़ी नहीं है, वो घास की कैटेगरी में है, उसको उगाना, उसको काटना, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, और इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में भी किसानों ने इसको उगाना शुरू किया है। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस इलाके में भी करीब 500 एकड़ जमीन पर तो उनके अकेले के प्रयास से ये शुरू हो चुका है, और इसके अलावा भी किसान अलग अलग तरीकों से उसे पहले से ही कर रहे हैं। यहां पर जो वैरायटीज हैं, हम उन वैरायटीज को जानेंगे, उनकी खासियत क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस रॉकेट बैम्बू से।
1: जी, इसको नाम जाइगेंटस है और चाइनीज बैम्बू भी बोलते हैं, लेकिन चाइनीज बैम्बू थोड़ा डिफरेंट होता है। चाइनीज बैम्बू में क्या होता है, 5 साल तक वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और 5 साल के बाद वो तुरंत 90-100 फीट का चला जाएगा विद इन 3 महीने में। और ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उसके जैसा ही है, ये जाइगेंटिस बोलते हैं इसको। और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत मोटा होता है, इसकी जो फर्नीचर बनने का, घर बनाने के लिए, पैलेट्स बनाने के लिए, और एक जो खूबसूरत फर्नीचर होता है उसके लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत महंगा भी बिकता है। अगर प्रोसेस करके बेचा जाए तो किसान कई गुना ज्यादा मुनाफा इससे कमा सकते हैं।
0: यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे उतर उतर कर इस तरह के प्लेट्स गिर रही हैं, आप इनको नेचुरल प्लेट कह सकते हैं, इनका क्या उपयोग?
1: देखिए, इसके हजारों उपयोग हैं। ये इसका पैकिंग मटेरियल बनता है, गत्ता बनता है, पेपर बनता है, कटोरियां बनती हैं, चम्मच बनते हैं, डिस्पोजल आइटम बनते हैं, ये सीधे भी पैकिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं अभी, इसकी पैलेट्स भी बनती हैं, खाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, और ये हर पोरी पे एक गिरता है। तो किसान मान लो कि एक बैम्बो है उसके पास और 50 पोरियां, तो 50 ऐसे गत्ते उसके पास गिरने वाले हैं, तो ये एक्स्ट्रा इनकम है किसान की। और इसका मल्चिंग के लिए भी किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं।
0: हम यहां से कुछ और वैरायटीज हैं उधर चलते हैं, और डॉक्टर साहब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सामने हम एक और वैरायटी देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, और ये क्या उतनी ही तेजी से बढ़ता है जिस तेजी से जाइगेंटिस बढ़ता है? जी डॉक्टर साहब,
1: देखिए, लगभग सारे बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और ये न्यूटन, टोल्डा और बालकोआ, ये 3-4 वैरायटी हैं जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलती हैं, उन्हीं में से ये एक है। और इसका भी बढ़ने का जो रफ्तार है वो बहुत तेज होता है, और इसमें आप देखेंगे जैसे हमने जाइगेंटिस में देखा, एक ही पौधे में हजारों डंडे निकले हुए हैं, इसमें भी उसी तरीके से हजारों निकलते हैं। और इसको संभालना और इसको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, और आप जितना चाहें इसको जिस तरफ चाहें बढ़ा सकते हैं।
0: आमतौर पर हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया की जो मार्केट है, जिसमें बल्लियों की, जब आप बल्लियों की बात करते हैं, तो उसमें ये बांस जो है ज्यादा इस्तेमाल में आता
1: है। जी, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है, और ये भरा हुआ निग्गर बांस जिसको बोलते हैं वो है, वो खोल अंदर से खाली होता है, ये पूरी तरह भरा होता है, तो इसमें वजन जाता होता है। तो अगर किसान इसको पर किलो के हिसाब से या पर टन के हिसाब से बेचे तो इसमें मुनाफा ज्यादा होता है।
0: बांस की तीसरी वैरायटी आई हमारे साथ, और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये कुछ पतला बांस है, इसका क्या नाम है, इसकी खासियत क्या है? जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइए।
1: इसको टुल्डा रॉक्स बोलते हैं, और इसकी खास बात यह है कि यह भी बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये बंच में बढ़ने वाला बांस है, इसको जितना काटेंगे उतना ज्यादा फैलता रहेगा ये। और जिस मान लो कि आपको कच्चा बांस है उसमें 50% आपने तोड़ के अगर उसका अचार मुरब्बा बना लिया तो 50% डंडे और ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, तो तुरंत आपको पैसा मिल गया अचार मुरब्बा से, और जो 50% बाकी बचा वो आपके डंडे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के तैयार हो जाते हैं।
0: यहाँ पर बांस की उपयोगिता जो है वो बांस की वैरायटीज के साथ में बदलती रहती है, और इस उपयोगिता में आप कुछ और बांस देखेंगे। बांस खेतों की बाढ़ लगाने के भी काम में आता है। आपको बाढ़ लगाने में नेट पर अवेलेबल है कि इतने हजार रुपया लगेंगे पर एकड़, लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे क्या शायद ये बाढ़ के लिए उपयोग आने वाला बांस है?
1: ये अर्बन हाउसेज में जो दीवारों के साथ में लगाते हैं, हेज बेम्बो बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही खूबसूरत हेज बनाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको धूप नहीं मिल रही है तो बहुत कम बढ़
0: खेतों की भी हेज बना देता है।
1: हाँ, खेतों की भी बना सकते हैं, लेकिन खेतों की हेज बनाना चाहिए आपको टुल्डा न्यूटन या बालकुआ से, और या एक डी स्टिक्टस बेम्बो है उसके पीछे लगा हुआ है उस तरीके से, क्योंकि वो पैसे ज्यादा देते हैं। ये केवल देखने के लिए काम आता है, इसके चटाई वगैरह मैट और ये सब चीजें बनती हैं। जो पीछे हमारा लगा हुआ है उसको बुद्धा वैली बोलते हैं, उसका इससे पीछे वाला उसका डेकोरेशन के लिए।
0: बुद्धा वैली ये है, हम बुद्धा वैली के पास में ही आते हैं। ये बुद्धा वैली है जो गांठदार बांस है जी, इसके बारे में आप बता रहे हैं।
1: इसको बैम्बूसा वल्गरिस या बुद्धा वैली बोलते हैं। इसमें गांठें होती हैं छोटी छोटी, और ये देखने में खूबसूरत लगता है। अर्बन हाउस होल्ड में भी लगाते हैं इसको। इसी तरीके से इसको व्हाइट बैम्बो भी बोलते हैं, पॉलीमार्फा बोलते हैं इसको वैसे अंग्रेजी में। तो ये व्हाइट कलर का रहता है, और इसकी जो यूज है वो फर्नीचर में सीढ़ियां बनाने के लिए।
0: इसकी खास बात ये है कि इसमें जो है स्मूथनेस ज्यादा है।
1: हाँ, स्मूथनेस ज्यादा है, इसमें फालतू जो कांटे होते हैं, जो डंडियां होती है, वो नहीं निकला होता है। टुल्डा में, न्यूटन में और बालकुआ में थोड़ी बहुत डंडियां निकलती हैं।
0: बांस की एक और वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसका बनता क्या है स्पेशली, ये भी हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
1: ये बैम्बूसा न्यूटन वॉल बोलते हैं इसको। वॉल इसलिए क्योंकि इसके कांटे आपस में फंस के और एक दीवार बना लेते हैं। जैसे किसान ने अपनी मेड पे चारों तरफ लगा दिए, तो उसका फायदा क्या होगा कि कोई जानवर इंसान अंदर नहीं आ पाएगा।
0: आप कह रहे हैं कि किसान को अगर अपनी मेड तैयार करनी है तो बैम्बूसा सबसे अच्छा है।
1: हाँ, इसको बोलते हैं लाइव फेंसिंग या लाइव वॉल। तो ये पशुओं को भी रोकता है, इंसानों को भी रोकता है, और इससे पैसे भी आते हैं। ये दुनिया की एकमात्र बाउंड्री है जो पैसे खर्च नहीं करवाती, पैसे देती रहती है।
0: और स्पेसिफिक यही वाला बांस है वो?
1: हाँ, यही वाला है, और इसके अलावा भी दूसरी वैरायटी लगा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह आपकी जो बाउंड्री उसको कवर कर लेगा।
0: तो क्या ये ऐसे फैलता नहीं है जैसे जगेंडिस वगैरह फैलता है इतना इस तरह से चूड़ा?
1: फैलते सारे हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस साइड से आपको नहीं फैलाना उसके साइड से ट्रैक्टर निकाल देंगे तो वो नहीं फैलेगा। और आप एक पीढ़ी लगाएगी इसको बांस को, मान लो कि मैं लगा रहा हूँ तो मेरी 3-4 पीढ़ियों के लिए मौज है। ये लगभग 60 से 70 साल चलता है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है।
0: मतलब ये घास जरूर है, लेकिन ये घास 70 साल तक आपके लिए उपयोगी रहती है। यहाँ पर ये भी पेड़ है, ये इसका नाम क्या है, ये भी हैज की तरह दिखता है कुछ कुछ, लेकिन इसे भी समझेंगे।
1: हाँ, ये वाइल्ड बेम्बो हैं, और इनको भी न्यूटन के आसपास की ये वैरायटी हैं, जैसे वहां पे काट के भी हमने डाले हुए हैं। तो ये सारे बेम्बो ऐसे हैं जिनको कहीं पे भी लगाया जा सकता है। खारा पानी, मीठा पानी, अच्छी जमीन, खराब जमीन का भी इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार लगाने के बाद में 70 साल तक ये नॉन स्टॉप चलते हैं।
0: राजस्थान में जैसलमेर जैसी जगहों पर जहां खारा पानी नीचे बहुत है, वहां पर भी
1: अभी BSF का एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के जो बाउंड्री है हमारी उसके साथ साथ में 1 किलोमीटर चौड़ाई और लगभग 200 किलोमीटर लंबाई में वो लगा रहे हैं बेम्बो। हाँ, वो दुनिया
0: स्पेशली राजस्थान के बॉर्डर पर,
1: बिल्कुल, ताकि उससे एक तो फेंसिंग हो जाए एक डेजर्ट ना फैले, दूसरा जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उनके लिए भी आसान रहे डिमार्केशन करना, और उससे पैसा भी निकलता रहे, और जो बीएसएफ या बाकी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको जो बांस के डंडे चाहिए जो हजारों लाखों की संख्या में चाहिए होते हैं वो भी उनको वहां से मिल जाएंगे और वो एरिया भी हरा भरा होना चालू हो जाएगा।
0: मतलब आप ये जो बैम्बू है, जो बांस है, इसकी आप जो महिमा है उसको आप समझ सकते हैं। 1600 तरह की वैरायटीज हैं। यहाँ पर एक और वैरायटी है, और इस तरह की वैरायटी जो नॉर्थ इंडिया में आसानी से हो सकती हैं, और मैंने पहले बताया ये जो घास है ये 60-70 साल तक चलेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ ना कुछ और बहुत कुछ लाभ देती रहेगी। ये वैरायटी जो है बहुत स्मूथ दिख रही है, इसका क्या नाम है, ये किस उपयोग में आती है, ये भी हम देखेंगे।
1: ये व्हाइट बैम्बो है, इसको टूल्डा व्हाइट भी बोलते हैं, इसको और भी दो तीन नामों से जानते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके कोई कांटा नहीं है, बिल्कुल सीधा होता है ये, और इसकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है और ये चारों तरफ भी फैलता रहता है जितना हमें चाहिए, और ये बहुत ही नजदीक नजदीक ग्रो करते हैं, और इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में, केन बनाने में, या फिर जो सजावटी सामान है उसमें, और पशुओं के लिए बाड़ा वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। वैसे बैम्बो की किसी भी वैरायटी को किसी भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनका स्पेसिफिक फीचर की वजह से किसी पर्टिकुलर काम में उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लो कि पशुओं के बाड़ा बनाना है या फिर आपको उससे सीएनजी निकालना है या फर्नीचर बनाना है तो उसके हिसाब से वैरायटी में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। जैसे अभी हम ब्लैक बैम्बो देखेंगे, उसकी वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है, हैमिल्टोनी बैमिल्टोनी करके तीन चार वैरायटी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बांस से लगभग 25,000 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो वो कैसे बनाएं और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
0: यहाँ पीछे कम से कम 4-5 तरह के बांस के झुंड दिख रहे हैं, इनके नाम क्या हैं, इनकी खासियत क्या है, यहीं से एक बार डॉक्टर विनोद से हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ में फिर बांसों के अधिकतम उपयोग क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
1: ये डंडा बांस है, लाठी बांस है, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं और हर क्षेत्र में इनके नाम बदल जाते हैं, साइंटिफिक नाम सेम रहते हैं, लेकिन जो डंडा बांस है उसकी खासियत, जैसे पुलिस वाले डंडे रखते हैं या फिर मच्छरदानी लगाने के लिए रखते हैं, या बायोमास में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैमिल्टोनी बैमिल्टोनी और टूल्डा न्यूटन बालकोआ, इस तरीके से इनके एक पूरी फैमिली है, और इन फैमिली में दो तरीके के स्पेसिफिक बांस होते हैं, एक वो हैं जो दूर दूर फैलते हैं और एक वो हैं जो बिल्कुल बंच में एक साथ में निकलते हैं। तो इसमें दो मेजर वैरायटी हैं, और ये कोई भी वैरायटी कहीं पे भी पैदा हो सकती है। जो ऐसी जगह है जहां पे बर्फ गिरती है वहां पे थोड़ा वैरायटी सोच के लगाना पड़ता है, और बहुत गर्म इलाकों में, उसके अलावा लगभग सभी वैरायटी सभी जगह पे चल जाती है।
0: बिल्कुल, यहाँ पर आखिर में मैं आपको ब्लैक बैम्बू की तरफ ले जाऊंगा, और वहीं से फिर बांस का पूरी जो खासियत है, बांस की जो उपयोगिता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे।
1: इसको सिमेंसिस बोलते हैं। इस बांस की खास बात यह है कि ये पूरा बंच में उगता है और ये बहुत ही गहरा होता है। आप देखेंगे एक पौधा लगाया था ये, और इस एक पौधे के कई हजार बन चुके हैं।
0: ये भी वॉल बनाने के काम आ सकता है।
1: हाँ, वॉल बनाने के लिए भी काम आ सकता है, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है फर्नीचर में, अगरबत्ती की काड़ी बनाने में, या जो आपके चॉपस्टिक्स हैं, ऐसी सीधी चीजें जिनको मार्केट वैल्यू ज्यादा है उनमें इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये वाले जो बैम्बो हैं, इसके खास बात यह है कि ये हजारों की संख्या में उग जाता है, और जिस साइड में इसको पानी मिलेगा, जिस साइड में इसको नमी मिलेगी, उस साइड में बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ये भी जैसे व्हाइट बैम्बो का एक वैरायटी है। इसका जो खास बात है ब्लैक बैम्बो का, ये इसको दो वैरायटी हैं, हैमिल्टोनी बैमिल्टोनी, इसको ब्लैक बैम्बो भी बोलते हैं, और इसकी खास बात ये है कि इसके पत्ते चौड़े होते हैं, और इसकी जो बॉटनिकल जानकारी है वो हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल ब्लैक कलर है, और इस ब्लैक कलर की खास बात यह है कि जो ही वो ग्रीन उगता है वो ताजा प्लांट है, और जो ही वो काला हो जाता है
0: तो काट
1: ये
0: चाहिए।
1: काट लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसको बजा के देखते हैं कि अच्छा। जितना पुराना हो गया उतना अच्छा है। और इसको काटने के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए कि वो इसको तीन जनरेशन में डिवाइड कर ले, कि एक तो दादा है, एक बाप है, और एक पोता है। तो जो दादा है मतलब 3 साल पुराना जो हो गया उसको काटेंगे तो वो पूरी तरह पका हुआ है, तो पिछले साल वाले अगले साल तैयार हो जाएंगे, अगले साल तैयार हो जाएंगे, तो साल में एक बार इसकी अच्छे से कटाई करते रहें।
0: तो हमेशा आपको दादा को
1: निकालता रहना है क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, उसको नहीं निकालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो बांस एक ऐसा पौधा है जो जबरदस्ती पैसा देता है, अगर आप नहीं भी लेंगे तो बोलेगा कि भाई काटो मेरे को, मेरे पास पैसे रखने का अभी टाइम नहीं है। तो किसान के लिए एक जबरदस्त चीज है ये, अपने आप बढ़ता रहता है, कोई देखभाल नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं लगती है, तो ये किसान के लिए बहुत ही अच्छा एक चीज है।
0: शुरू में डॉक्टर साहब जब बांस की खेती करनी होती है किसी किसान को, उस समय तो कुछ समय के लिए उसका पानी, उसकी देखरेख, इस सब को थोड़ा सा समझना होता है।
1: इसमें ये घास की वैरायटी है, जैसे हरियाणा पंजाब राजस्थान में झुंडा एक उगता है, सरकंडा जिसको बोलते हैं, लगभग वही चीज है ये। ये इसकी हाइट और जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत है नहीं। जब स्टार्टिंग में लगाएंगे तो अच्छे से इसको सोच समझ के, इसके बारे में जान के लगाना चाहिए, और आपके लोकल मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसके हिसाब से लगाना चाहिए, फिर किसान को बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं इसका चारकोल, CNG पैलेट्स और तमाम सारी दूसरी चीजें बनाना चालू कर चुकी हैं, तो बेचने के लिए वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी ऐसी वैरायटी लगाएं जो लोकल मार्केट में जल्दी बिक जाती है, जैसे टूल्डा, न्यूटन, हैमिल्टोनी, बेमिल्टोनी, जैगेंटिस, तो ये फटाफट बिकने वाली वैरायटी है। और इसके साथ साथ में जब पहला 1 से 2 साल मान लें किसान की, उसको बेसिक देखभाल करनी चाहिए।
0: 1 एकड़ में कितने पौधे,
1: ये डिपेंड करता है कि फार्मर कितना जल्दी प्रोडक्शन चाहता है। तो कुछ फार्मर इसका 500 पौधे लगाते हैं, कुछ 600 लगाते हैं, कुछ 750, कुछ 1000 भी लगाते हैं। तो
0: आपका रिकमेंडेशन?
1: मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 600 से 750 के बीच में लगाने चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और आपके पास साइजेबल क्वांटिटी हो बेचने के लिए।
0: कुछ छोटी जोत के किसान इस देश में ज्यादा हैं, उनके लिए भी क्या ये लगाना जरूरी है, या फिर आप उनको यही सलाह देंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री पर लगाएं? तो
1: बाउंड्री से चालू करें, और जब उनको बाउंड्री से पैसे आने चालू हो जाएं तो वो अपनी बाकी सारी फसल से ज्यादा पैसा देना चालू करें।
0: कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़े,
1: बिल्कुल, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो फिर अंदर भी लगाना चालू कर दें। और ये इसकी खास बात ये है कि मान लो कि कोई छोटा जोत का किसान है, मात्र 1 एकड़ का किसान है, उसने खेत के चारों तरफ बेम्बो लगाया, बीच में एक पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर का सिस्टम है जिसको PQNK भी बोलते हैं, तो उस मॉडल पे उसने फल सब्जियां लगा दिया, बीच में थोड़ी बकरियां छोड़ दी या बाकी जानवर छोड़ दिए, तो उसके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बन जाएंगे और उसकी दीवार भी उसको पैसा देना चालू करेगी। आपने और कोई दीवार नहीं सुनी होगी जो पैसा देती हो, लेकिन बैम्बो की दीवार पैसा देती है। इसके साथ साथ
0: दीवार के लिए ब्लैक बैम्बू भी अच्छा है,
1: कोई भी बैम्बो लगा सकते हैं। आपके खेतों में पशु का नुकसान कितना है उसके हिसाब से सोचना चाहिए।
0: आपने 500 एकड़ जमीन में किसानों को बांस लगवाया है अभी तक, इसको लेकर के आप कितना उम्मीद से हैं?
1: UN की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा गया है कि पानी की भयंकर कमी होने वाली है हमारे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, और हम पहले से ही ब्लैक जोन और डार्क जोन में, रेड जोन में आ चुके हैं, तो पानी आगे मिलेगा ही नहीं खेती करने के लिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जितना भी पानी अभी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करते हुए बैम्बो लगाए जाए और एग्रीकल्चर की टेक्निक को समझ के पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर पे खेती की जाए, तो कम से कम पानी में किसान जिंदा रहेगा। इसके साथ साथ में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बांस भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी जड़ें लगभग 50,000 लीटर पानी को पकड़ के रखती हैं, और हर बरसात में ये पानी ज्यादा पकड़ के रखती हैं और बाकी पानी जमीन में छोड़ती रहती हैं। जमीन को ये ऑर्गेनिक करते हैं, फर्टाइल करते हैं, इसके आप देख रहे हैं हर जगह पे पत्ते जो गिरे हुए हैं, ये पत्ते जमीन को ढक के उसको ज्यादा नेचुरल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम जनरेट करता है और इससे रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, आप जो सोच सकते हैं वो सब बनता है। तो किसान को ये एक ATM मशीन जैसा है, जैसे बकरी को किसान का ATM बोलते हैं, वैसे ही ये भी ATM है। जब मर्जी उसको काटा और 200-300-400 रुपए का एक डंडा बिक जाता है, तो उसकी इनकम का एक स्टेबल जरिया ये रहेगा। इसके बाद में आपने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारी सरकारों का और इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में जो हल्ला मचा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी बांस है, क्योंकि कार्बन सिंक करने में बांस का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। ये हवा से धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको कंज्यूम करके अपने अंदर समा लेता है।
0: बाकी पौधों के अलावा ज्यादा CO2 को कंज्यूम करता है
1: जी, लगभग 130-135% ज्यादा लेता है ये, और उसका फायदा ये होता है कि हवा बहुत जल्दी साफ हो जाती है और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा छोड़ता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी अनलिमिटेड है।
0: कार्बन क्रेडिट को लेकर के आपने डॉक्टर साहब कुछ काम किया है? मान लिया एक एकड़ में अगर 750 पौधे किसी किसान ने लगाए हैं तो वो उसका कैलकुलेशन की भाई ये इतना CO2 कंज्यूम कर लेगा और जो फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है वो उसे इतना पैसा उसको मिल सकता है, ठीक है, क्या कंपनसेशन है उसका?
1: इसके लिए अभी यूरोप में चालू हो चुका है और इंडिया में भी कुछ कंपनियों ने चालू किया है और लगभग $75 पर टन के हिसाब से कंपनियां इस पे स्पेंड करेंगी, ये कंपलसरी उनके लिए हो चुका है। और जो इनकम है कार्बन क्रेडिट सेल करके वो काफ़ी अच्छा होने वाला है किसान को। एक मोटा मोटा अंदाज़ा मैं दूँ तो 10-15 हज़ार से लेके और 60-70 हज़ार पर एकड़ उसको मिल सकता है बिना कुछ और एक्स्ट्रा किए,
0: अकेले कार्बन क्रेडिट से।
1: और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल इसको लॉन्च किया है 15 अगस्त को कि कार्बन क्रेडिट हम सेल परचेज कर सकते हैं जैसे हम शेयर मार्केट में सेल परचेज करते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो ये कार्बन क्रेडिट का जो बिजनेस है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ
0: पर, मैं आपको बता दूं कि भारत में, जबकि उन्होंने, डॉक्टर साहब का कहना है और हम भी मानते हैं कि कार्बन क्रेडिट जैसी बातें यूरोप में, पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में ज्यादा होती हैं, फिर भी भारत के अंदर 4,000 करोड़ रुपया जो है कार्बन क्रेडिट के मार्केट में वहां से वो उठाया गया है। तो एक बात यह है कि जमीन से लेकर के और पूरे इकोसिस्टम को कैसे डील करता है अकेला बांस, ये एक बात यह है। एक साथ में बहुत बड़ी बात है जिसको हर किसान समझना चाहता है क्योंकि वो अपने वॉलेट की तरफ देखता है। आपने बैंबू की इकोनॉमी को समझा है, एक एकड़ में अगर वो 750 पौधे लगाता है तो एक एकड़ से वो साल भर में कितना पैसा वो अपने घर में ला सकता है, इसका कुछ अंदाजा?
1: जी देखिए, लगभग 3 साल बाद में चौथी साल में कटना चालू हो जाता है और ये एक पौधा लगाया गया था, आपके सामने है, ये हजारों की संख्या में निकल चुके हैं। इसमें हम मान लें कि वो 10 से 15 डंडे ही काट पाएगा, तो अगर वो 10 डंडे भी काटेगा 7,500 डंडे उसके पास होते हैं, पर डंडा अगर 100 रुपए का भी बिक रहा है तो 7,500 रुपए का बनता है। तो आप 7,500 छोड़िए 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, तो उसकी इनकम ये स्टार्टिंग है और वो हर साल बढ़ता रहेगा और कार्बन क्रेडिट भी मिलने की संभावना अभी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा सब्सिडी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बैम्बो मिशन के अंडर दे रही है, कुछ राज्यों में हम चालू करवाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो जल्दी ही सब जगह चालू होने की संभावना है। तो किसानों के लिए एक ये परमानेंट ATM जैसा है और वो लगाएंगे तो इससे मल्टीपल फायदे उठाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ज्यादातर किसान सब्जी की खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, सब्जी की खेती में एक एकड़ में वो लगभग 20,000 के जो बांस के डंडे होते हैं वो खरीद के लगाते हैं। तो अगर उसके खेत में 2 बांस भी लगे हुए हैं तो उसको अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं उससे पूरा कर लेगा। अगर उसने थोड़ा ज्यादा लगाया तो मान लो 20,000 रुपए वहां पे सेव कर रहा है, पशुओं के बाड़े बनाने पे सेव कर रहा है, बाउंड्री को अच्छे से बना लेता है ताकि आवारा पशु उसके खेत खराब नहीं करें, तो उसको एक कंटिन्यूअस इनकम का स्ट्रीम चालू हो जाता है। इसके बीच में वो पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन और तमाम सारे दूसरे कार्य भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को बढ़ई का काम आता है, इसका फर्नीचर बनाए, इसकी कटलरी बहुत अच्छी बनती है।

मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: हो रही है, आप उनके बारे में कुछ कर लो, गीता मैम कुछ कर ले, नहीं तो सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप क्या करोगे? एंड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस वी डू वॉट एवर मैक्सिमम वी कैन डू इन दैट मेवात रीड इंडिया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर गीता मल्होत्रा इंसर्ट into that locality where women were not even allowed to talk with the women. The every person outsider was kind of alien for them. They were not allowed, even the male were not allowed to have, you know, proper interactions with them. And with this situation, Dr. Geeta Malhotra with her team went there and they have two things to convince them. Culture matters, number one, and understand that, respect that nativity, the native cultures. With these two things, they motivated the people. They said, we are not outsiders. They ate together. They talked together. They could somehow manage to convince them that we are not alien. We are an insiders. We have come here with the message to improve your lifestyle, the way you want to improve yourself. And that was the power of Dr. Geeta Malhotra and the entire team of Reed India and the Reed Global. They changed the world. How do they change the world? That is also a very interesting, Dr. Geeta ji will tell you. But I must tell you, after 1 year and so, they happily agreed to donate the land and they themselves constructed the library. Reed India paid the cost of the library, not the land. And some of them also contributed significantly, nominal, but that contribution was significant. And then the library was made, women started reading. Now the women which were motivated by Read India, they are the representatives of the Gram Panchayat and they are powerful women. And the new beginning was made and prevalence of Read India can easily be found in the locality of Mewat. Mewat is now divided into two districts. Initially, it was a Mewat district that was Firozpur, Jhirka, Noh, Tavru, Punahana, Hathin, and Nagina. Now, the Hathin part is in Palwal district, and the remaining is in the Mewat district. So, before I go to invite Dr. Geeta Malhotra ji to talk about her experience and the experience of Read India, her innovations and everything that she did. Now, without any delay, I would request Dr. Geeta Malhotra, the country director of Read India, the visionary, the leader, the master. She is a proper leader who works 24/7. And this is, I remember one thing, I am not exaggerating. I have been feeling her commitment. I am the witness from last 12 years, what she has been doing and how she has been motivating, energizing, emotionally evaporating the people who have been working with her. So, Geeta ji, aapka bahut bahut swagat hai. Humne chaha tha ki log jo hai, wo dekh le ki aap kaise karti hai. After presence, I have seen people is teaching their vision, decision and future. I have seen women reading and writing. I have seen women, you know, using the library. I have seen people using the computer. I have seen women reading. So, you know, this is a new discovery that you have created. Please.
1: Thank you, Dr. Mishra, for such a elaborate description, which I don't need at all. But I am so thankful to you for giving this gesture to me. You know that I am very simple, very introvert person, but I do believe in doing. I do believe in action. That's what you have narrated. Thank you so much. मेरा जो सोच है, आप मुझे अपने 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन में 2012 में ले गए मुझे. 2012 में जब मैं रीड ग्लोबल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीड ग्लोबल के साथ बात कर रही थी, 2012-14 कुछ ऐसे ही है, मुझे पक्का याद नहीं है, बट हाँ 7 साल पहले की बात है. मुझसे टीना शाबिका हमारी उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी. शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट टाइम एंड द ईयर शी ज्वाइंड शी केम टू चाइसा विलेज टू डू द स्टोन लिंग सेरेमनी ऑफ द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर. शी केम इन मे. इट वॉज वेरी हॉट एंड आई टुक हर टू चाइसा फॉर स्टोन लिंग सेरेमनी. But before stone laying ceremony, she asked me that Geeta, one of my very close friend settled in Singapore would like to dedicate one of the library in her mother's name. Her mother was live. She's live now also. But she said, "Ki I would like to build a community library, but let me know the area, the geography, who need the most." That time back home, I was interacting with Mewat people, the stakeholders there, and Asif Ali, who was the sarpanch that time, came to my house in Gurgaon and said that Geeta ji, we need the most. Hamari community ko bahut zarurat hai. Agar aap wahan aake study karein. जो डॉक्टर मिश्रा ने स्टडी करी तो आपको पता चलेगा कि कितनी जरूरत है. तो आई वॉज कन्विंस्ड. आई विजिटेड द एरिया. आई सैट विद हिम. आई सैट विद अदर मेवाती स्टेक होल्डर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हाउस द लैंड. आई वॉज द ओनली वुमेन. ऑल वर मैन. बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट that I have to come back again in this area. I have to work in that area. Mujhe wahi kaam karna hai. Mujhe unhi logon ke saath kaam karna hai. Because one thing which I experienced, because I am a great observer for culture and attitude of the people, they gave me lot of respect. Lot of respect. First time, the woman came in one room, they gathered. They did not come out where I was sitting with the stakeholders. They told me later on that the women are waiting inside the room. When I went inside, there were more than 100 women sitting in just in each other's, on each other's lap. And they welcomed me. They said, "Hum aapko दिल से स्वागत करते हैं और आपका बहुत बहुत वेलकम है. आप हमारे लिए, हमारे बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समुदाय के लिए कुछ करिए." दैट चेंज माई माइंड 100%. आई सेड वॉट एवर चैलेंजिंग इट वुड बी बट आई हैव सिलेक्टेड ए कम्युनिटी. नेक्स्ट वेरी डे आई कॉल्ड माई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन US and said, "I have found a community where I would like to set up a community library and resource center." Then I started working there. And that Singapore friend of my executive director committed that she will come on the inauguration of the building, which was great, great emotional attachment with the building, which I'm going to show you the inauguration also. Then we did the stone laying ceremony. Asif Ali had a house on the main road of Hathin block in Chansa village. He said, "Ma'am, the whole land, whole building is for you. You decide what you want to take." Then I said, "Okay, main road part I will not take because the children will come. It will be risky for them to cross the road and come through the main road because it was part of the highway." I said, "Give me the backyard." And he divided completely half of his land. Unhone wo program dekh bhi rahe honge zaruri, maine unko link bheja hai. And he, wo itne generous the. मैं ये एक्नॉलेजमेंट हिंदी में बोलना चाह रही हूँ उनके लिए. वो इतने जेनरस थे. उन्होंने अपने प्लॉट की जो लंबाई थी उसको बिल्कुल आधा करके उसमें दीवार बना दी. और बोला ये पीछे वाला लैंड आपका, आप जो मर्जी करिए, आप बिल्डिंग बनाइए, आप सेंटर बनाइए, मेरी 100% सपोर्ट आपके साथ है. तो दैट वॉज द कमिटमेंट ही गेव मी एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एरिया. मैं मिस्टर आर एस दलाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी इस फोरम पे, क्योंकि ही वॉज द वन हु एनकरेज्ड. ही इज द रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर ऑफ हरियाणा. व्हेन बिफोर द बिल्डिंग वॉज यू नो इनॉग्रेटेड, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड, सर आपके एरिया में हमने एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बनाया है और मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ कि आप उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करें. एंड ही वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया और दैट वॉज द जर्नी वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट वॉज ग्रेट ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर अस बिकॉज एट द बैक ऑफ अस उनका हाथ था, उनका आशीर्वाद था, उनकी सपोर्ट थी और आज तक हर रोज जो एक मैसेज वो नहीं भेज लेते हमें एनकरेजमेंट का, वो आराम से नहीं बैठते हैं. तो मैं उनकी एसोसिएशन को यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहती हूँ. और उन्होंने खाली हथीन ब्लॉक में हमारे सेंटर को इनॉग्रेट नहीं किया, हरियाणा में हमने जितने भी सेंटर बनाए हैं उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, दिल से वो रीड को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट्स की के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है जो काम करती है और लोगों को साथ लेके चलती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है अपने कार्यक्रम से, ये वो बहुत अच्छे से जान गए हैं. तो डॉक्टर मिश्रा अलॉन्ग विद यू आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज Mr. R. S. Dalal on this platform because he supported us a lot and till today he is supporting us. So aapne launch
0: he is a bubbling star. He is a bubbling star and energized, you know, he is an energizer. He is emotionally charged. He makes you work and work for the community. That is the power that we have learned from him. He has donated his entire haveli for the Eid activities, you know.
1: तो झज्जर उन्होंने कैसे हमें अपनी पूरी हवेली दे दी कि गीता जी एक सेंटर मेरी कम्युनिटी के लिए भी बना दीजिए. तो दैट इज जस्ट ही एक्सटेंडेड टू अस एंड टिल नाउ ही इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग दैट झज्जर विलेज, मेहंदीपुर विलेज, दबोदा विलेज अ ब्यूटिफुल विलेज वेयर वन कैन गो एंड इवन यू नो स्पेंड डेज टुगेदर. The community is so, you know, welcoming, and the plants, the gardens he has created there, it's worth visiting that place also. So, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि Read India के जितने भी सेंटर हैं, वो community tourism को भी support करते हैं, because home stays are welcomed there by the communities, and we always make it a point that people come there and होमस्टे तो है ही है, पर जो खाना वो लोग हमें परोसते हैं, जो खाना हमें वो खिलाते हैं घर में बिठा के, घर में फ्रेश खाना कुक करके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकमिंग आई शुड से दैट. और आसिफ अली जी के घर में तो मैंने कम से कम 100 बार ही खाना खाया होगा. उनके घर में उनकी वाइफ को मैं नहीं मिल पाती थी, पर उनके ड्राइंग रूम में बैठ के खाना जरूर खाती थी, इतना तो मैं कह सकती. और मैं वेजिटेरियन थी और उनके घर में तो नॉनवेज इट्स अ कल्चर देयर, आई शुड से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर. बट व्हेन आई यूज टू गो विद माय टीम स्मिता राय, नाहिद जुबेर एंड अदर्स, ही मेड इट अ पॉइंट कि दो डिशेस तो वेजिटेरियन होनी ही हैं, क्योंकि स्मिता और मैं दोनों ही वेजिटेरियन थे. तो ये हमारी बिगनिंग थी मेवात में चाइसा के सेंटर के साथ. और अभी डॉक्टर मिश्रा यू कैन से समथिंग अबाउट द बेसलाइन.
0: जब आपने मुझे बोला कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो मेरी एक आईएएस फ्रेंड हुआ करती थी डॉक्टर निरुपमा अनुपमा, तो जो डॉक्टर अनुपमा थी शी वॉज एन आईएएस ऑफिसर और शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी व्हाट यू कॉल इट एमडीए। और उस समय बाद में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने अंसारी साहब उनकी पत्नी भी मेवात में कुछ काम करना चाह रही थी। शी ऑल्सो टोल्ड मी डॉक्टर मिश्रा लेट अस गो टू मेवात एंड डू समथिंग देयर। मैं दोनों के साथ मेवात गया और मैं आपको और अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रता और निष्ठा पूर्वक ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ मेवात में काम करने का। लेकिन जब डॉक्टर गीता जी हमको बोली कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है तो पता नहीं मुझे कहां से एनर्जी मिली और मैंने कहा कि मैम लेट अस वर्क देयर। और हम वहां गए, जब हम वहां गए तो मैं एक महिला से मिला और वो महिला अनाज को हिला रही थी। उस महिला के साथ उसके 17 बच्चे थे जो फोटोग्राफ मेरे पास है। तो और एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग वन मोर बेबी। उसके बाद मैंने देखा वहां का सिचुएशंस, वहां की गंदगी देखी, वहां का बहुत सारे चीजों को हमने देखा। देन आई रियलाइज कि ये एरिया है जहां पर काम करने की जरूरत है। हमने उनके नमाज में भाग लिया, उनसे दोस्ती की और हम वहां पे काम करने लगे। शुरू में थोड़ा सा हुआ लेकिन बाद में वो हमें इतने प्यार करने लगे, खास करके अशरफ जी, आसिफ जी और सारे लोग, पूरे गांव के लोग, महिलाओं को, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को, उनको लगा कि ये लोग अपने लोग हैं। और हमने उनकी सारी जानकारी ली। वहां पे हर एक घर में 2-4 भैंस है और एक जो दूध वाला होता है जिसको दूधिया कहते हैं, उनसे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। उनके दूध को बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदते थे। हमने सारा रिपोर्ट कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो गीता जी ने कहा कि एक प्रपोजल आया और वो प्रपोजल 2011 में ही आ गया था मैं और 12 में वो बन गया था। तो वो प्रपोजल आया और गीता जी वर्क डे एंड नाइट, वो एक विजन ही कह सकता है कि अगर कोई दूसरा कंट्री डायरेक्टर होता तो रोड के साइड का ही जगह ले लेता। लेकिन गीता जी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा कि हमें रोड के साइड का जमीन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? मदर वॉज हिडन इन साइड हर एंड द मदर से लुक, बच्चे एक्सीडेंट में कुछ हो सकता है, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो पीछे का वहां भी रास्ता है, पक्की रास्ता हो गया है लिया और वहां पे काम शुरू करने लगे। बाद में धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने ये महसूस किया कि रीड जो है ये रीड कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई धर्मांतरण की संस्था नहीं है, कोई पॉकेट की संस्था नहीं है, यह कमिटमेंट की संस्था है। इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं हैं जो बहुत मातृस्नेह के भाव से काम करना चाहती हैं। और वैसा ही जिस तरह से ये कहने की तो जरूरत है कि गीता जी ने बहुत ही मातृभाव से अपनत्व को लगाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया। लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और उससे हमें ये लगता है कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली नो मैटर, आप दुनिया के किसी भाग में काम करें, लोग आपको उसी समर्पण से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गिव बैक आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। वो जो कंसेप्ट था वो गजब कंसेप्ट था और वो आपने देखा।
1: ओवर टू स्मिता। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। As Raiti said, it's a very, very rich culture in this community, very, very warm, welcoming community. As shared in the PPT, there are many, many programs that we have done in partnership with this community. We've done the setting up of community library and resource center. There are many, many women who've been trained on livelihood skills. Then we've had trainings on as advanced computer skilling. This was done through Adobe IT skilling program for youth. Then since past 4 or 5 years, we have been doing Skills to Succeed program in this area and skilling women on enhancing their livelihood skills. We are having programs for mother and girl child literacy in this community. So each, you know, household have one mother and her girl child get coming to the center and walking towards a more literate future. So this is beautiful Mewat for us. As far as culture is concerned, they have very beautiful crafts such as they make changeris, the baskets made out of moonj grass. This grass is eco-friendly and it helps in keeping. They normally use it to store food. Like, we have covered more than 12 villages as Kamlesh is rightly. Thank you, Smita. जैसा कि स्मिता ने कहा, literacy से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके महिलाओं की पढ़ाई तक हमने काम किया. महिलाओं को हमने सक्षम बनाया, उनकी जो कल्चरल स्किल्स थी उसको एनहेंस किया. और कल्चरल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए अब रीड तो बहुत छोटी सी संस्था है, तो हमने सृष्टि स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट्स मंगवाए जो डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने मेवात में लाइब्रेरी में रह के रात को वहीं बिस्तर बिछा के सोना और महिलाओं के साथ चर्चा करनी और महिलाओं के जो हुनर था, जो छिपा हुआ हुनर था, उसको उभारा. और उन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए, जो दरी था और तापर से उन्होंने बास्केट्स और बहुत सारे हमारे गिफ्ट आइटम्स बनाए जो हमने कॉर्पोरेट्स को गिफ्ट दिए, बिकॉज हमें फंड रेज भी करना था. और मेवात के लिए फंडिंग लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए. पर मैं उन डोनर्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, हमारे कमिटमेंट को रिकग्नाइज किया. और सीरीज ऑफ डोनर्स आए जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मेवात में काम करने के लिए. तो ये एक मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज वर्क स्पीक्स वॉल्यूम. जब हमने काम किया, डोनर्स ने अप्रिशिएट किया, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एक साल का MOU साइन होता है, और कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उस एरिया में. बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं मेवात में. मैं सबका बहुत ही, मतलब कि आई नो देम वेरी वेल, दे आर डूइंग एंड आई एम अप्रिशिएबल ऑफ देयर वर्क ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम गोइंग टू द ग्रास रूट्स, कैचिंग देयर कल्चर, अंडरस्टैंडिंग देयर एटीट्यूड्स एंड ब्रिंगिंग वैल्यू टू देयर लाइव्स वॉज वॉट रीड हैज डन. दीज आर द 3 मेजर अचीवमेंट्स वी हैव डन इन दिस एरिया. Dr. Mishra, would you like to add something here, what I have said?
0: Without any political motive, you know, yeah. Reed has gone there as an organization to work without any political motivation, without any political inclination, without any interest. The only interest was to see that people are raising their social economic status, their livelihood, they are well-respected people, well-educated people, well-cultured people, their culture glory is restored. So these the women are well-respected. There is a continuous harmony, you know, visible harmony between men and women, between husband and wife. So these are the things that are clearly visible, tangibly see. People can go and view. You know, that is the USP of working Reed in the Mewat, you know, area. That is really very, very great. That is
1: all I wanted to say. Memory goes back when we saw power to hai nahi, to computer kaise seekhenge bachche?
0: Yes.
1: Oh, power, how they will read the books. Then we requested Bill and Melinda Gates Foundation. They gave us a special grant to put solar panels in the areas where we are facing problems with regard to the power. So you could see in the film also, we put solar panels on top of the building so that 24/7 there is a power in the library and there is no power cuts And the children can come, enjoy, sit there, talk to each other, learn from each other, study the books, and 50% of the books are in their own language. Because we did not want to put the book they cannot touch, they cannot read.
2: बिगावली की रहने वाली हूँ और ताराक्षर में मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लगता है। ऐसा है कि हमारे पास में ताराक्षर का अध्यक्ष लेके आए थे सुनील कुमार, तो इन्होंने कहा कि आप पढ़ाई कर लो। हमने कहा ऐसे बुढ़ापे में क्या हो, कौन पढ़ावेगो, कौन पढ़ पावेगो। उसने कहा नहीं जी, कोशिश करके देखो एक बार। तो हमने कोशिश करी तो हमको अच्छा लग रहा है पढ़ने में लिखने में, हमारा मन भी लग रहा है। फिर वो हम तो हर जगह पे कर लेंगे, कोई हिसाब है, किताब है, घर का धंधा है, घर के बच्चे हैं, है, घर की पढ़ाई है, काम है, कोई भी दूसरा सब में काम आती है पढ़ाई, मतलब ठीक है कि ना, हर चीज में आती है। अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी बैठा के पढ़ा सकते हैं। बच्चे ये है हर को इसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो।
3: पहले भैया हमने इसलिए पढ़ा, मान पढ़ते तो हमने आवाज दी की भैया हम पढ़ जाएंगे तो हम बैंक में भी काम करते हैं, चाहे घर बैंक करते हैं, आदमी का नाम भी लिखने सीख जाते हैं, अपनों भी सीख जाते हैं। तो बैंक में जाते अपने पैसा निकाले तो अपने हिसाब कर आते हैं बैंक में जाके। इसीलिए हम भैया के पास पढ़े थे, यही बारे हम अनपढ़ते थे, भैया पढ़ा देंगे तब इसे सीख जाएंगे।
2: मेरा नाम गजना है और हमारे ये भैया आए पढ़ाने के सुखवीर सिंह, और इनने पढ़ाई पूछी की तुम पढ़ सको। एक बार आए, दो बार आए, तीसरा के हम बोले अब तो हम पढ़ेंगे। जब ये भैया पढ़ान लगे हैं यहाँ स्कूल नहीं खोल दिए तो आगे पढ़ाने।
4: आपको क्या फायदा हुआ इससे?
2: अब हम सीखने लग गए, जो भी हम पे आ गए या हमें तो देख देख के चैट में पहले हम पे आ गई ना हो कुछ तो हम नाम भी लिख लें। अब हम अपने काम कर ही ले जाए, भैया बताऊ
5: सर्वे और पढ़ से पढ़ना चाहते अपने बच्चे ने पढ़ा ले, घर का काम कर ले, कोई काम काज आ जाए उसे कर ले, और सेंटर आ जाए कोई काम आ जाए। इसीलिए
2: मेरा सीख लूंगी कुछ तो कुछ काम पर बैठूंगी मैं, परेशान आदमी आंगनबाड़ी लग जाए या कुछ सिलाई में लग जाए, कुछ भी काम जो तुम खिलाओगे वो करने पर जाने।
6: राम ये सरदार सुखवीर पढ़ाने आवे, हम लोग न पढ़े पर दो बार आए तीन बार आए, हम बोले हम पढ़ेंगे, उनका पहले कुछ नहीं आवे, हम नाम भी लिख ले और जो काम दे वो पूरा काम कर ले।
7: हम पता एन आर भी ना आवे अब तो एन आर ने भी सीख ले। अरे बेचारा आया पढ़ने सुखवीर, कहने लगो ना भाई लाली पढ़ लियो, माता जी पढ़ लियो। हम बोले हम ना पढ़े, हम बुढ़ाते में कहा पढ़ेंगे। तो बेचारा कई बार आया फिर हम पढ़ने लग गए, कई सीखो हमने पढ़नो, हम पे अनार भी नहावे या फिर या भी सीख गई, नाम भी सीख गई अपनो।
8: मेरा नाम अमता है, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ताराक्षर में पढ़ती हूँ। पहले इन लोगों ने आकर हमारे गांव में सर्विस करी थी, हमने जानी क्यों कर रहे हैं। और जब हमारे सब आई थी तो पढ़ाई करने के लिए, पहले हम पढ़ाई नहीं जानते थे और अब इससे पढ़ते नहीं है, पढ़ना सीखे हैं और इससे पढ़ने से हमें बहुत कुछ आने लगा है। और हमारे गांव के अंदर तीन ताराक्षर एक ज्ञान चौपाली खुली हुई है और हम बचत पढ़ते हैं सभी और उसके बारे में भी जानते हैं, पहले जानते नहीं है कुछ।
9: मेरा नाम भगवती है, मैं स्वामी के रहने वाली, मुंह पे कुछ भी नहीं आता है, मैं अक्षर समाज जान गई नाम, हाँ अक्षर जान गई हूँ, मैं अक्षर समझ गई, नाम लिख लेती हूँ।
10: मेरा नाम रजनी है, मैं स्वामी के रहने वाली हूँ। मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी और यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ जान सकती हूँ।
11: मेरा नाम आशा है, मैं स्वामी के में रहने वाली हूँ। मुझे तारा अक्षर से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। हम पर पहले अपने साइन भी करने नहीं आते थे, हम पर साइन कर सकते हैं, अक्षरन की पहचान कर सकते हैं।
12: मेरा नाम सरस्वती है, गाँव में तारा अक्षर का स्कूल खुला है। ये लोग आए तो कहने लगे हम पढ़ाएंगे, हमें इन लोगों की बात समझ में आई, पढ़ा लिखना शुरू कर दिया। ये इनसे पढ़ के हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते थे। और ये गांव के अंदर जो समूह खुली रहती है उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते, बैंक में जाते थे पैसे भरना लिखाना कुछ नहीं जानते थे। अब हम खूब पैसे भी निकाल लेते हैं, फार्म वार्म भर देते हैं, पढ़ाई से ये फायदा है कि अपने बच्चे जहाँ भी कहीं पढ़ने जाते पहले कुछ नहीं जानते, उसकी किताब कॉपी वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा है। कहीं हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए पैसे वैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं लगता था कितने दे रहे कितने नहीं दे रहे, तो अब हम उसे पढ़ के बता सकते।
9: अपना नाम कांति।
4: कौन से गाँव से? यहाँ
9: छाए से।
4: तो आपको पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा
9: है? इतना फर्क है, पहले हम 100-200 रुपया का हिसाब लगा सके, अब हम 500 रुपए तक हिसाब लगा लें। पढ़ाई इतने जब थोड़ी बहुत पढ़े, अब थोड़ी बहुत अक्षर मिला के मात्रा मिला के सब कुछ अब हम कर लें, मात्रा लगा दें, डंडा लगा दें।
13: मेरा नाम मीना है, छांसे के रहने वाली हूँ। पहले कुछ आवे ना हो, अब हम पे लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आने लगो, हिसाब जोड़ 100-200 रुपए आए 500 है उन्हें भी जोड़ सके।
14: मेरा नाम बबीता जी है, छांसे के रहने वाली हूँ। पहले कुछ नहीं आता था, अब बहुत कुछ सीख गई, बहुत अच्छा लगा पढ़े के। इन्होंने नीतू जी ने बहुत अच्छा सिखाया हमें, लोकेश जी की बात पे अच्छा पढ़ाने सुनाया वो।
15: हम तारक सर में ट्रेनिंग ली थी हमने, जो कि मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जो अक्सर होते हैं, अब वो पढ़ लिख थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने जान गई है और अपना नाम लिखना सीख गई है, अपने गाँव का नाम कहीं भी आ जा सकती है, हिसाब किताब लगा लेती है। इस प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी और हमको भी।
16: तो सबसे पहले हमने औरतों को मोटिवेट किया पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, उनको मैंने फिर क्लास में बुलाया। बिगाड़ी में मेरी ड्यूटी है, वहाँ पे मैं 3 बैच चलाता, वहाँ पर 10-10 महिला आती है, प्रत्येक बैच में 10 महिला होती है, बहुत ही अच्छी तरह से वो पढ़ रही है और उनसे मैं बातें करता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है मैं उनके घर जा करके, अगर कोई मना करता है तो उनके घर जा करके परिवार वालों से मिलता हूँ और उनसे समझाता हूँ पढ़ाई के फायदे क्या होते हैं, तो वो भी क्लास में आ जाती है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आप बहुत खुश हैं इसमें आकर।
17: तारक सर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि हम इसमें जो निरक्षर महिलाएं हैं उसको साक्षर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी अम्बेवात इलाके के 3 गाँव में चला हुआ है, छायसा, बिघावली और स्वामी का। इसमें लगभग 90-100 महिलाएं इसका लाभ उठा रही है इस कार्यक्रम का, और ये तीनों गाँवों में कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक गाँव में 3 बैचेस चलते हैं, इसे कुल मिला के 9 बैचेस चलते हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। पहले जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने, आज अब वो महिलाएं बोलने लगी हैं और अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गई हैं और वो किसी के सामने भी खुलकर उनको जवाब देने लगी, अच्छे से बोलने लगी हैं। और वो पहले उनपे कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, अब वो क्या नाम है पढ़ने लगी हैं, लिखने लगी हैं, अपना खुद का नाम लिख सकती है, पति का नाम, अपने बच्चे का नाम और अखबार भी पढ़ने लगी हैं। इस कार्यक्रम से महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और हम सभी खुश हैं कि ये कार्यक्रम हमारे इस पिछड़े इलाके मेवात में चलाया जा रहा है।
18: मैं पूरे अपने गाँव की औरतों से, बड़े बूढ़ों से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी ये स्कीम है, जो भी संस्थाएं यहाँ आ रही हैं, वो हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे गांव के हित में, हमारे गांव को अच्छा समझ के इस गांव में वो काम कर रही हैं। इसमें हर एक जन जन को इसमें जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। मैं गीता मल्होत्रा जी का और मैडम मई जी का तह दिल से, अपने गांव की तरफ से, अपने तीनों चारों गांव की तरफ से बहुत बहुत दिल से, तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनका एहसान मंद हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे गांव और हमारे अड़ोस पड़ोस को चुना।

0: time is so short that we have to move further also. इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेरी टीम लिखती जा रही है कि हमने क्या क्या और काम किए. तारा अक्षर के अलावा हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया यहाँ पे मैजिक बस के साथ मिलके, क्योंकि हमें उनके एटीट्यूड को बदलना था कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाने थे. अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने नहीं आते थे, हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को लाइफ स्किल्स सिखाए कि कैसे एक लड़की लड़के की इज्जत करती है और लड़का लड़के की इज्जत करता है, कैसे फैमिली में हम एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं. तो ये हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सिखाया था. और इन सब कार्यक्रम को बंद करने का दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है. मैं कहती हूँ जितनी भी पॉपुलेशन है मेवात की, उन सबको इन सब प्रोग्राम्स की बहुत बहुत जरूरत है. इसके आगे की जर्नी में हमने औरतों को स्पिनिंग सिखाई, धागा लेके कैसे धागा बुनते हैं ये उनको सिखाया, चरखा कैसे चलाते हैं, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उस कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी. यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, यही सोच के सब कुछ किया कि कभी औरत को काम करने की जरूरत पड़े तो वो अपने हुनर को निखार सके और अपने हुनर को पहचान सके और अपने बुरे टाइम पे इस हुनर को यूज करके अपनी आमदनी को इंक्रीज कर सके. यही हमारा सोच थी और कंट्रीब्यूशन था. अभी हम छायसा से आगे तारू में जाएंगे. तारू में हमने एक और सेंटर लॉन्च किया था तो हमें Amazon ने सपोर्ट किया था. आई वुड लाइक टू शो दैट फिल्म डॉक्टर मिश्रा रीड इन तारो.
1: इस फिल्म के में जो अभी हमने दिखाया उसके बारे में एक चीज मैं गीता मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परिवर्तन आपने देखा वो तो हुआ. सबसे बड़ी बात है कि जो समाज को ये भी, जिस महिलाओं को ये भी नहीं मालूम था कि हम अपने पैसे को कैसे रखें, क्या करें, कहाँ रखें, उनको न्यूमरेसी लिटरेसी का ज्ञान हो गया. इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उनके कपड़े साफ हो गए, उनमें हाइजीन का सेंस आया, उनमें हेल्थ और क्लीनिनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदेही का है ना निर्माण हुआ. तो ये जो छोटे छोटे विजिबल चेंज है, वो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चेंज अगर आप डे वन से उस दिन तक को देखें तो महिलाओं में जो स्वच्छता, निर्मलता, लिटरेसी न्यूमरेसी, काउंटिंग करना, ये सब चीज में, और एकाएक सारे महिलाओं के चेहरे पे एक गजब ही नैसर्गिक हंसी, उल्लास का भाव था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
2: Partnered with Read India in 2015 to set up Amazon Care Community Outreach Centers in Taulu in the villages Chamwar, Dingaveri and Gujarat. Through these centers, we are covering 5 villages, including Nihalgarh and Sheikhpura. The center focuses on education, women empowerment and livelihood, skill development and entrepreneurship, and health awareness and advocacy. We do focus on education by designing programs on improving reading and writing habits of children, studying in government schools, training Anganwadi teachers on teaching small children through playful activities, and the same activities are repeated at the Reed Center. We have a library with more than 1,000 books where children, youth and other community members come and have access to books for reading and reference. We conduct classes to enable youth for competitive examination and do career counseling. Solar panels for regular and uninterrupted supply of power. We have special workshops with women on women empowerment and provide them a safe space to learn stitching and weaving to start with and enable them to learn how they can start their small enterprise. And also collectively join the group for walking together to Reed Center.

0: we have also designed the programs to make them learn financial and adult literacy. Women have started moving out from their villages to other read centers and also to other organizations to learn from other women how they are involved in these programs and enhance their networks. Job-oriented workshops are organized for youth, girls and boys, to focus on their future careers and learn specific skills for suitable jobs. Farmers' meetings are conducted on a regular basis with planned visits to other parts of Haryana, including meeting with government officials so that they themselves realize where they are and where they have to reach in relation to profit-making, agribusiness they can do. Health intervention is the important component. We do regular workshops on best practices and also partner with other organizations to organize health camps. Audio workshops are being organized at the center to enable youth one voice modulation, and exposure visits are done at community radio stations. Various visuals are displayed at the centers, Anganwaris and the villages to constantly remind the villagers about best practices. Women and men are understanding the gaps in their lives and uniting together for the progress of their villages, and also focusing on their children's growth by creating positive environment at the read centers and at their homes. Read India and Amazon Care work closely with local government, completing the collective efforts. Within 1 year, this partnership was extended to another village, Tamaspur in Sonipat. The center is repeating the same activities through effective community mobilization, effective involvement of the school teachers and other stakeholders.
1: एक दिन ज्योति ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर गांव में आया हुआ है जो रीड इंडिया एंड अमेजोन मिलकर चला रहे हैं, तो मैंने आके देखा कि यहाँ सिलाई हो रही है और सिलाई का काम ज्योति सिखाएगी। तब मैंने ज्योति से बात की कि मुझे भी सिलाई सीखनी है। तब ज्योति ने सिलाई सिखाई मुझे, तो मैंने 3 महीने तक सीखी और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यशाला भी होती है, जो फार्मर की भी मीटिंग्स हुई, हेल्थ वर्कशॉप भी हुए और पढ़ाई के बारे में भी बताया, आगे कैसे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया। तब मैंने 10वीं के ओपन पेपर फॉर्म भरे और अपनी पढ़ाई चालू की फिर से, और फिर आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ।
2: मैंने सिलाई सीखना मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने देखा कि मैं अपने भी कपड़े सिल सकती हूँ और दूसरों के भी, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है।
3: मैं रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में लाइब्रेरी कम कंप्यूटर ट्रेनिंग की जॉब कर रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बच्चों को कुछ सिखा पा रहा हूँ और उनके साथ कुछ सीख भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रीड की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यशाला की जाती है, जैसे इस्लामी सर ने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया, उस प्रोग्राम से बच्चों ने कुछ सीखा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
4: रीड इंडिया अमेजोन तरफ से जो सेंटर चल रहा है, इसमें मैं जो छोटे बच्चों का ईसीडी का सेक्शन है वो देती हूँ। यहाँ सेंटर पे नई नई एक्टिविटी होती है, जैसे हेल्थ की भी हुई है या खेलों के बारे में भी होती है, तो उसमें भी क्योंकि मैंने खुद ही बीए करके बीएड की हुई है तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ को कह रही की कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें मैं भाग ले रही हूँ, तो उससे मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा।
5: मैंने परंतु करने के बाद जेबीटी किया है और सरकारी नौकरी के लिए स्टेट हरियाणा का एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना जरूरी है। वो क्लियर करने के लिए किताबों की आवश्यकता थी। मैंने रीड इंडिया एंड अमेजोन के सामुदायिक लाइब्रेरी है, वहां से मैंने मुबारक सर से संपर्क कर 2 बुक्स प्राप्त की और वहां 2 बुक्स लेकर मैंने उनकी पढ़ाई की और टेस्ट आने पर मैंने टेस्ट दिया, जिससे मेरा पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गया।
6: यहाँ पे पहले मैंने सिलाई सीखी थी, उसके बाद मैं कंप्यूटर के सिखाते, जिसका उसे सिखाने में मुझे भी बहुत फायदा हुआ है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है उसे सिखाते सिखाते। बहुत अच्छा है वैसे यहाँ पे सब चीज, क्योंकि यहाँ पे सिलाई सेंटर कंप्यूटर का भी है, लाइब्रेरी भी है, ईसीडी का भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें सुधार की गई है। मैं आंगनवाड़ी में भी जाती हूँ और रीड एंड राइटिंग का होती है। कोर्स चल रहा है उसे बच्चों को कराती हूँ, और इससे इधर मीटिंग होती है, इससे किसानों की मीटिंग होती है, इधर डॉक्टर आते हैं, और इधर हमने सिलाई भी सीखी है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं रीड इंडिया अमेजोन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
7: रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ, अब तक मैं 10 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ, जो कि वो अपना काम आराम से कर लेती हैं और घर में दिन महीने में 2-4 हजार रुपए भी कमा लेती है। अब उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो हर कार्य को अच्छे से कर लेती है।
8: मेरा नाम राम बाबू, आठ जिला में करता हूँ। अब मैं जब छुट्टी हो जाती सेंटर में आता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, फिर खिलौना से खेलता हूँ, फिर कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ।
9: पहले ये सिलाई सेंटर यही नहीं था, तो अब इसके आने से हमारी जितनी लड़कियाँ हैं, औरत है, जो यहाँ पे सब सिलाई सीखने के लिए आ जाती हैं, इससे काफी सुविधा है, क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं कपड़े सी जाते हैं, तो अपना काम हल हो जाता है, पैसे की भी बचत है।

0: this is a beautiful journey of another village, few of the villages in Mewat. The picture speaks volume because आप देख सकते हैं कि मेवात में ही छाइसा भी है और मेवात में ही तारू भी है और कल्चर कैसे डिफरेंट है आपको बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि औरतें खुल के बात कर रही हैं और वहां पे हमें औरतों के साथ 3-4 साल काम करने के बाद औरतों ने अपने मुंह खोले और अपनी बात लोगों के सामने रखी. That is the difference you can see within one, I should say, the district. So that is the beauty of Reed, because Reed understands the culture of the people, the challenges of the people, the dynamics of the community, and work accordingly. That is how we are succeeding and walking step by step with very much consciousness and a great, vision. So that we can empower people, we can move from one village to another village. और ये वाला सेंटर भी इनॉग्रेट करने के लिए गुड़गांव के कमिश्नर ऑल द वे तारू जिन्होंने ये सेंटर इनॉग्रेट किया था और उन्होंने बहुत सी ब्लेसिंग्स दी और बोला कि आप ऐसे नेक कार्यक्रम को कभी बंद मत करिएगा और ये चलता रहे. तो स्मिता को ये बात बहुत ही दिमाग में जैसे एक रेजिस्ट कर जाती है कोई बात तो वो रेजिस्ट कर गई एंड शी स्टार्टेड राइटिंग प्रपोजल्स फॉर अदर कम्युनिटीज आल्सो. और दिस जर्नी हैज नॉट येट स्टॉप्ड. वी हैव गॉन फ्रॉम तारू टू मोहम्मदपुर आहिर विलेज वेयर वी आर अगेन सेटिंग अप द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर व्हिच इज ऑलरेडी इन ऑपरेशन. And then we moved on to Nu. COVID के टाइम पे के पहले सेंटर लॉन्च किया था फरवरी में आई थिंक सो और उसके बाद कोविड आ गया. तो कैसे हमने कोविड के दौरान एकदम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए थे. जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन था उनकी ट्रेनिंग तो हम अपने ऑफिस में बैठ के कर लेते थे और जिनके पास नहीं था वो हमारे कम्युनिटी ने स्मॉल स्मॉल बैचेस में बुला के उनके साथ ट्रेनिंग करी, उनको मैसेजेस दिए व्हाट्सएप के थ्रू, उनको फोन के साथ टच में रहे. और जब उनके पास काम नहीं था, उनकी फैमिलीज हार्डशिप में थी, तो हमने अपने डोनर्स से बात करी कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमने उनको राशन पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे. और दिस इज नॉट आई वुड लाइक टू से हियर दैट प्रोग्राम्स आर वन थिंग बट रीचिंग आउट टू द कम्युनिटी व्हेन दे नीड अस बैडली दैट इज अनदर थिंग व्हिच वी डिड ड्यूरिंग कोविड एंड स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग प्रोवाइडिंग आवर सपोर्ट टू देम. श्रेष्ठा God is the coordinator who is the link between the community and us, and every day she shares with us what exactly the community needs. And Smita Rai speaks with the donors and we convince the donor that we have to strategize the needs of the community in a manner that they should not feel that Reed is not for them. That is very, very important for us, and we develop our linkages with each child, each woman, each person of the community, so that they should see that Reed is at their back. That's all I just wanted to say, Dr. Mishra.
1: You compare from the day one to today's situations, one can easily find the difference. Difference in their dressing sense, difference in their, personality, the way they speak, the way they do the everyday things, the way they present themselves, the way they go to the center, the way they interact with the people, these are all visible changes. If a third party agency comes to evaluate the Reed activities at Mewat, they will realize the power of presence of Reed in the area. I am telling you as an honest student of anthropology, the change that we have experienced in past 10-12 years, these changes are mainly among the women and also among the youth. You know, the perceptual change, what you see. They have changed their perception about the, you know, the divide between inside and outside agencies. Now there is no such divide in the locality. If you go there, you are being welcome. Where initially, first time we went there, we were doubtful. We were a doubtful element for them. They had doubt in everything that we were doing, you know. Now this doubt doesn't exist. Now there is a sense of, belonging. Ki wo hamare saath hai. Namita says, Reed has embedded impression the community and they welcome. Oh, really?
0: Educating donors is also very important. Donors wanted us to establish the center in Gurgaon, but Smita convinced them that there is a need in Mewat. So we took them to Mewat and they saw the area and they realized themselves, yes, there is a deeper and greater need in Mewat rather than establishing or investing in Gurgaon. And we as Reed team committed that we are ready to work in that area. Unfortunately, the pandemic came and we immediately switched over to the hybrid model. But we are ready to overcome the challenges. It's never late. And we are committed that we will be able to do justice with our programs, with the communities, wherever we are working. And we will continue with the struggle of reaching them with the programs they need the most.
1: Yes, that is true. I tell you one thing. It is not the issue of convincing or educating the donor. It is an issue of knowing what you are doing, confident on yourself. So you know what you were doing. You had the guts and power to tell them, look, we are the people who have been working there with their, you know, mind and spirit. You know, with their, you know, you can come anytime and see the, you know, visible changes. So then donor came and donor became happy with your performance there. Because they obtained the database directly from the people, interacted with the people, and they realized the visible changes. You know, that was the major thing that I think, you know, like anybody if go and you know that.
0: I would also like to mention here, during COVID, like in March when the lockdown was announced, we immediately conducted the workshops on mental health through Sonia Bhandari and reached to more than 200 women online. Women started walking half an hour, 1 hour to reach to the center where those who did not have Android phone. To listen to Sonia Bhandari, our consultant who is a mental health expert, to know how they can stable their minds during this pandemic. And it really paid us a lot because women were stable, women knew how to handle the challenges, women knew how to handle the attitudes of the family members. So nothing wrong happened in the harmony of the family that we explain to them with love and affection. That was really a hit program of Reed India, I should say that. This is the vision we carry along because we don't want to, create setbacks for the community. We really want to rejuvenate them time and again. Whatever they need, our support, we are ready to provide.
1: You see, in anthropology, we call it native intelligence. You know, what is native intelligence? You create a sense of nativity within yourself. You go, as I have told you, you go there as participant, observer, as an insider, as a family member, as a member of society, get yourself connected with them, and then they open up. Once they are open up, they share their pains, their pleasures, their agonies, their shortcomings, their limitations, their power, their weaknesses. And then you realize, oh, these are the areas, these are the weak areas where we need to attack. These are the areas where we just need to sharpen them. These are the areas where the massive programs are required. And accordingly, you make up your mind to prepare the projects, identify the donors. Because every donor has its interest area. Interest area. So accordingly, you select everything, and that you and Smita and your entire team, you have been doing it very correctly. And this is something, bare minimum, resources. Because if you compare yourself with the government and other big agencies, you are very small, you are a small fish. And even with this small, amount of money and with very little human resources, you go to the area and change the people. This is the example for those who are working in the grassroots area with the most able community like Mewati. So it is very much needed such thing. Thank you everybody. Thank you Dr. Geeta Malhotra. It was the day today.
0: I would like to, sir, thank you Maipal for making all these films on.
1: Yes.
2: He's a movie maker.
1: Yeah. Bye bye. God bless you.
3: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026, तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में। 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
4: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में जानता था, मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
3: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटरनरी कॉलेज पहुँचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
4: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाई। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
3: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
4: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए 1 चम्मच एलोवेरा, 2 मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
3: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
4: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
3: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निशुल्क हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुंचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
4: मैं दिल से खिलाड़ी हूं, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूं।
3: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कैसे हैं सभी लोग? सब
1: गुड मैम, गुड
0: अच्छे
1: है
0: हैं।
1: मैम।
0: गुड
1: गुड है
0: आफ्टरनून
1: मैम। बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ठीक
0: और सब कैसे हैं? ठीक
1: है मैम।
0: है। कोई और कैसे हैं?
1: गुड आफ्टरनून मैम। सब ठीक है? आप कैसी हैं मैम? गुड
0: सब ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
2: आफ्टरनून मैम। हम
1: मैम अच्छे।
2: अच्छे
1: गुड
2: हैं। आप कैसे हैं? अच्छे हैं। और
1: मैम
2: कैसे हैं?
1: अच्छे हैं। आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
0: एनर्जी है। और कैसे हैं सब? ठीक
1: ठीक है मैम। अच्छे
0: हैं। और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है इस
1: है
0: वक्त?
1: मैम। बहुत बढ़िया
0: बढ़िया है। और कैसे हैं?
1: मैम, को आज सबकी वॉइस सुननी
0: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि पांच छह लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं।
1: मैम। सब कुछ ठीक है बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम
0: ठीक है,
1: सबका।
0: लेकिन गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना?
1: मैम
0: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है, सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं। चार पांच लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं।
1: सब अच्छे हैं मैम।
0: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही हैं शायद, है ना?
2: हाँ
0: हाँ जी। बच्चे कैसे हैं आप लोग? सांगले,
2: सांगले अच्छे।
0: सांगले का
2: मराठी
0: क्या?
2: में बात करते मैम वो
0: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है? अच्छे
2: अच्छे हैं हम सब।
0: हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं? महाराज
2: तुम्हें
0: आपके पीछे मुझे
2: बोला
0: है तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा ऋतु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना? अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको, यस?
1: यस मैम।
2: यस मैम।
0: तो
2: यस
0: आज
1: मैम।
0: इसी चीज पे बात करेंगे जिस पे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 E's की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे, इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सके, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है, या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
1: सही बात है मैम, बिल्कुल।
0: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं पांच बार बार पूछती रहूंगी ताकि खुद देखू सो तो नहीं गया कोई, है ना? तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 E नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
1: एम्पावर
0: पावर ऑफ वॉट?
1: मैम, इमोशनल स्ट्रेंथ।
0: एब्सोल्युटली। मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना? अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है? तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं, ह्यूमन एक इंसान में कितने इमोशंस हैं, आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त, ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू करें, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, बस आप अपनी समझ से जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे, मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है। कितने
2: मैम बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक खुशी
0: होते
2: हो,
0: हैं? 5, 6 खुशी होती है, और बताइए। हेलो,
2: हम जैसा फील कर होते हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम,
0: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो
2: जैसे
0: गया, गुस्सा
2: मैम
0: हो
2: गुस्सा आ
0: गया,
2: जाते हैं, कभी कभी अंदर से
0: 5,
2: नाराजगी होती है, बोल नहीं पाते हैं तो
0: छः,
2: वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी
0: सात,
2: कभी
0: खुश,
2: देखिए भी होता है।
0: 8, 8 इमोशंस हो गए, तो बिल्कुल ठीक। 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना? मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए, मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, फुल
1: यस मैम,
0: स्क्रीन दिख रहा है। सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम EQ भी बोलते हैं। जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल क्वोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ 8 या 9 जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ, कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया है। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उसपे, हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं, इसे कितना भी बात कर लो ना, इसे गुस्सा नहीं आता, अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूफ किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूँ। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं, उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है? हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसे होती है, हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा, वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में? नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं, वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी, तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है, या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बंधन के जा रही थी और सारा खराब हो गया, मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई, अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी, गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका, हो सकता है मैं रुक के धो लूँ उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन्ट बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा। अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में, अगर हमें लगेगा कि नहीं जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना सलमान खान उसमें वो 10 तक गिनती करता है। किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मार मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती है कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखिए किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे? देखिए
2: मैंने देखी है मैम,
1: सबने
0: देखी है। तो वो क्यों करता है, उसको
1: मैम
0: उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूँ और उसको मैं पॉजिटिव। मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मेटीरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं, आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको। वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयर ही गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता। बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पे वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना तब इसकी, ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता था, क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहती थी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था तो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार ही नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं, एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने ईक्यू समझा, इमोशनल क्वोशंट समझा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 E's की बात कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो स्विंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी एंड वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो, आप पहले पहचानेंगे तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80, 90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक, तो आप सोचिए काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है। लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी एंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा, अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था, अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी, अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे तो मुझे कैसे लगेगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर, पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया, जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे। हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशियरी को भी उससे फायदा हो जाए, तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो एक शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे हमारे ऊपर, हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाय, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। फेल होंगे ही होंगे, आप कितनी बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा, ये ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही, अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उससे डर के रुक जाए, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे। रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं। हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी। बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है। क्या मैं रुक जाऊंगी तब, ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए। लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर 1 साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ, जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाई, हो सकता है 1.5 साल में खोला। अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उसे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स। जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए। नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 ईज। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, सेकेंड ई पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट? अब इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है या कोई गोल, या अब जिसने डायरी रखनी शुरू करी है कोई फीडबैक देना चाहता है? बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी एनकरेजिंग ईच अदर टू इंटरैक्ट। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ एंड आई एनकरेज एवरीबडी, आपके साथ बेनिफिशरीज भी अगर हैं तो उनको भी एनकरेज करिए कि कुछ इस इन सेशन से अगर समझ में आया या कुछ सीखा, और मुझे भी फीडबैक दीजिए कि अगर ये सेशन बहुत वर्बोस था, यानी कि वर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो मैं इसे और कम और सरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी।
2: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेडीपल्ली.
0: हेलो संगीता जी।
2: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था. दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है. बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे. वो पूरा बहुत अच्छे से था. तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर में रिकॉल कर रही थी मैम.
0: एब्सोल्युटली राइट। हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना। जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी अच्छा नहीं फील कर रहे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी। सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं।

0: चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है।
1: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं, मैं खुश हूं मैम।
0: आप खुश हैं? अच्छा, वेरी गुड। और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोस और कई साइकोलॉजिस्ट थी जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे पीएचडी, डबल पीएचडी करी है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तो वो अभी भी पढ़ रहा है, उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब हम इन इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है, इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है। इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है। इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा। जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे। अगर हम उदास हैं, गुस्सा हैं, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ से कोई ले नहीं सकता। तो अगर मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ तो अगर कोई बच्चा आके, मेरा बेटा आके मुझे हग भी करता, मेरे पीछे जाना, मेरे को नहीं करना, मेरा मूड नहीं है अभी, तो उस बेचारे की क्या गलती है? दिन तो मेरा खराब गया है और चिड़चिड़ी तो मैं हूँ, इमोशन तो मेरा खराब था, मैंने अपना खराब इमोशन उसको भी पास ऑन कर। ऐसा ही सेम रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो इमोशन से ही पैदा होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बने ही इमोशन पे हैं। चाहे वो प्रोफेशनल इमोशन है, सोशल इमोशन है, फैमिली इमोशन है, घर के हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, मदर डॉटर, मदर सन, जितने हैं रिलेशनशिप वो इमोशन पे ही बने। तो इसकी अहमियत तो हम हटा नहीं सकते, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए मैं नहीं मैनेज कर सकती, आप मेरे लिए नहीं मैनेज कर सकते, अपने अपने पहचान के और अपने अपने मैनेज करने। मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोग प्लीज कुछ शेयर करिए। हेलो
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: स्वाति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं?
2: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
0: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में मैंने सारा शेयर कर दिया। कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है।
2: यस मैम, काफी टाइम ना, मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने, और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घड़ती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
0: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आया था कि नेगेटिव इमोशन जो है ना वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं। हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया, या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव इमोशन हो गया हमारा। अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते। अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है। इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है। अगर मुझे डिप्रेशन है या मुझे दुख है या मैं नेगेटिव इमोशन से घिरे रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके। एक एक घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं। हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं, ऐसा होता है।

0: एक सहेली सबकी होती है जिससे इतना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है। कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते। कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है। वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं, अच्छी चीजें, उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है, आज के दिन की ये 4 बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी, और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट? लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे? सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्यों तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे? आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे आइडेंटिटी, उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है कि, और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद कि जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। हो सकता है बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भरपूर है, फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं। और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है कि पूछे ही मत। वो कोई मटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बंधी होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में, उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
1: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई शेयर विद समबडी एल्स।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये फॉर्मूला भी है कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा था, ऐसा हैप्पीनेस का फॉर्मूला एंड जो नेगेटिव एंगर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने जो बोला ऐसा है, एक उन्होंने डिराइव करके लिखा हुआ। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ साइकोलॉजी में कि वो फॉर्मूला डिराइव कर दूं, लेकिन आई रेड अबाउट इट।
1: यस मैम, जब गुस्सा होता है बर्स्ट हो जाता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, और दुख रहते हैं किसी से बोल के रो देते हैं तो भी वो इमोशन बस कम हो जाता है, और हैप्पीनेस किसी से भी कितना भी शेयर करो डबल ट्रिपल होता जाता है।
0: लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से में हम गुस्सा कर किस पे रहे हैं, कहीं गुस्से में हम ऐसा गुस्सा किसी पे ना कर दें कि जो हमारा पूरा रिलेशनशिप उससे खराब है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उस पॉइंट पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, उस बैलेंस को, कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहा भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी दिन, तो उसको निकलना भी जरूरी है। बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट? बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को रिलेट करा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए।
1: हेलो मैम
0: हाँ जी ज्योत्सना जी,
1: मैम, मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी। आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी। जितने मेरे पेंडिंग्स काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई, तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी। तो अब मुझे ये चीज और याद है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम, जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है,
0: हम सब
1: लेकिन सबके अंदर होता है, वन टू ऑल, अपने अपने लेवल पे मैम, सबके अंदर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। पर ठीक है, आज हमें और गाइडेंस मिली है कि वो अपना स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक्स
0: मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर जब गुस्से में आती थी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो जिस दिन उसका खाना बहुत अच्छा बना होता था ना, तो हम उसको कहते हैं आज मम्मा गुस्से में थी क्या। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर पाते, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो
1: जी
0: कर सकते हैं।
1: मैम जी।
0: हाँ जी तुषार, आप बोलना चाहते हैं?
2: एक साल पहले आप हमारा जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप चित्ता मैम आई थी, तब आपसे जो बात हुई थी मैम, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे, वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हर हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री लेबर और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं, उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं, तो उनको नहीं क्या, पुराने जमाने में जो टीचर थे हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है। और जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो डरते हैं सभी चीजों से, नई चीजें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकलने का काम आपके जो सेशंस होते हैं मैम, उससे हमें इनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करते हैं हमें और गाइडेड करते हैं, इसलिए
0: थैंक यू तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से, क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते हैं, नहीं आप साइकिल चलाओ, गिरोगे तो क्या हुआ, कोई वहां पे कुछ बांध देता, कपड़ा बांध देता, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते, अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीका, लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे, फेल तो होना ही है, लेकिन फियर ऑफ, पहले से ही क्यों मान ले कि हम फेल होंगे। अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशन है वो खींच रही है हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। तो तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे, अरे और वो हो ही गया। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखोगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशंस हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना? आप, मैं, कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमने कल पढ़ाई करी, थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई। मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। मुझे लगता था गुस्सा, हंसी, खुशी, यही 4, 5, 8, 10 इमोशन होते हैं। पर सोचो मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊँ कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूँ, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है, वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे। जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं। हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना? सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए। आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए। ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
1: मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
1: जी मैम। सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है, और हर वक्त रीड कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम लोगों के साथ तैयार खड़ा रहता है। और इतना कुछ सिखाया कि कभी कुछ उदासी हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे साथ, तो हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ तो उस चीज में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देने लग जाती है अपनी आप ऑटोमेटिक ही। और ये सब शायद मैंने रीड से ही सीखा है और आप लोगों से सीखा है। थैंक यू मैम इसके लिए।
0: थैंक यू सुमन जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए अब वक्त हो गया, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, तो अब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बाय टू एवरीबॉडी।

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
3: भरपूर साथ ताऊन।
0: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई, ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं, ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है, जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।

0: నా పేరు సరిత. మా గ్రామం పేరు కలుగుట గ్రామం. నేను కడతెట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీని వల్ల మనకు చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడింగ్. మా
1: ఊరు పేరు ధనశ్రీ. మా ఊరు పేరు రంగంపల్లి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడపనాకంకి వెళ్లి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడపనాకం పక్కనే కడతటపల్లి ఉంది. మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్లి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో ఉంది కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పిరు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th లో ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతా ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్లారు, వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది, కానీ ఏమీ నష్టం లేదు. కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పాను. చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇంకా చాలా మంది. రీడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
2: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ షామి ఫ్రమ్ బారెట్పల్లి. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఐ అటెండెడ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ కండక్టెడ్ బై రీడ్ ఇండియా. Before this class, we had no idea about such thoughts. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friend lost 2000 rupees, but now we all are aware of such frauds. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. Thank you very much.
3: Mera naam Rekha Singh hai. Katahum Katahri gaon mein rehte hain. Hamari umr 40 saal hai. Hum high school tak padhe hain. Ye hamare yahan Read India ka center khula hai. Wahan par computer silai sab se juda hai. Hum logon ko pata chala to hum log apna bhi registration karaye aur padhe seekhne bhi aate the. वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज सिलने और काटने का आ गया है. हम लोग कुछ नहीं जानते थे तो इतना तो बहुत कुछ आ गया है. मास्क वगैरह, फ्राक और बेबी मेकर और बहुत से सलवार, कुर्ता, कुर्ती, ब्लाउज, पेटी कोट बताया गया. सब कुछ काटे, अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले. थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ.
4: मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है. मेरी उम्र 20 साल है. हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर समराइज से सिलाई सीखी है. पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है. और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं. इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया. और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ.
5: मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है. मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ. मेरी उम्र 16 साल है. रीड इंडिया सेंटर जो कटहरी में खुला है उस पे मुझे पर्चे के द्वारा पता चला. जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुँचे तो मैं यहाँ पर आई और इससे जुड़ी. मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूँ. पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे. लेकिन जब यहाँ रीड इंडिया सेंटर खुला तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर खत्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
6: मैं विनीता मौर्य है, मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, एक अच्छा तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला है, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ।
7: कोमल पाल है, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं, अपने पूरे घर परिवार के, और जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
8: मेरा नाम बिंदेश सिंह है। हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं इस सिलाई को लेकर, और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
9: मासूम है, मेरी उम्र 21 ईयर है, मैं बी ए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मेरे ग्राम का नाम कटारी चंदार है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहां पे हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके, और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीखकर हम आगे अपने रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
10: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी जरूरी होती है, शारीरिक हाइजीन में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे, जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है, जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था, जो चल रहा है इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने अस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है, जिससे मतलब हमारी जो श्वास नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो इसके उपचार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है कि हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
11: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
12: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
13: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
14: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज कांकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीन इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया। फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट एड इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए। शारीरिक क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापे जाता है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीकों का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर किडनी इसके बारे में मैम ने हमें बताया, साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। ये बहुत ही अच्छी जनरेशन थी, अच्छे से मैम ने हमें समझाया एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।
15: मैं निर्मला पांचाल बोल रही हूँ और गांव भवरगढ़ की रहने वाली हूँ और इसमें जो लॉकडाउन के दौरान रेड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनिंग कराई गई थी उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टैली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टैली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसे कोई बात नहीं थी, कोई सूचना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें, लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत कुछ सीखा है और मैंने बीए कर रखी है। और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया, लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवा ऐसे जो करे वह प्राप्त किया जाता है उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है जैसे कि चल अचल दृश्य अदृश्य। दृश्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, वो दृश्य संपत्ति होती है। अदृश्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अदृश्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
16: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसिन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रेड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप की परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
17: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा जिले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय, परचेज करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की, लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी। लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया। जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया। उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। रीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
18: हेलो, मेरा नाम मुस्कान मनर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ, और मैंने जब रीड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर रीड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी है। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी। मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ, और तुम और भी बच्चे, रिश्तेदार, तुम्हारी मम्मी, इनकी जो भी महिलाएं हैं उनको तुम सिखाओ। तो मैं यहाँ से ले गई और उनको मैंने सिखाया। मैंने भी उनको वही सिखाया जो मैंने सीखा था, जैसे कि यहाँ से फोटोशॉप के अंदर जैसे फिल्टर, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना, उसके बाद शरीर को अलग करने करके वहाँ पे चेहरा लगाना, ये सब मैंने सिखा था। जो जो मैंने वो सब अपने बच्चों को, इनके अपने स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया।
19: हेलो नमस्कार रीड इंडिया वाले, मैं मंजू हूँ। मैं गांव परानिया की रहने वाली हूँ, और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मैं महिला समूह की सदस्य हूँ, और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रीड इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें। और मुझे राजीविका वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है, तो मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
20: रीड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी हुई थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, और बैंक का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा, इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से, मान लो किसी ने फोन कर दिया कि ये तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया तुमको, जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, ऐसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फोन आए कि तुम्हारा फोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते, हम इसमें सतर्क हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में हम मिला हुए थे, जो ट्रेनिंग में, जो उसमें भी हम बढ़िया तरह से सीख गए। और मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें स्टोर पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत खांसी भी आए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
21: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से। मैं रीड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP, ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हमने जैसे हमें हम जैसे शॉपिंग करते हैं उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है, और ये खुद मैंने भी मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट हमारी OTP ये सब, मैं उनको भी इस सब के जागरूक करवाऊंगी।
0: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक BSc किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचे के बारे में बताया गया था, और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताया था। हम जैसे कि हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। वो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। ये लिंक्स कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम हमें भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें #@ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी एप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
1: राठौरे, मैं भवरगढ़ की रहने वाली हूँ, और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी, और इस पे हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी बैग्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी, और इनमें वो शहद घी और वो ग्रीसलीन और डिबांग ये चीज़ों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको 3 तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के शेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में और रीड इंडिया में। यह सब चीज़ हमको रिया दीदी ने सिखाया था, और इसमें मीना दीदी भी की, और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज़ सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
22: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट भोयल तहसील सावर डिस्ट्रिक्ट 12 से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी, जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीजें थी उसमें, पेज बनाना, ये सब कुछ था उसी में, और अपना ऑनलाइन अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें, और OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीजें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। थैंक यू।
23: मेरा नाम जया बंसल है,
2: और मैंने रीड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। उसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है, और फेसबुक पर पेज बना कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से, और मैं करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है। और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रीड इंडिया।
3: मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और पेंटिंग बनाने से बेबी पेंटिंग ये बना ली मैंने, और अब वो बना के आई अम्ब्रेला वाले बाद वो प्लाजो।
4: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
3: हाँ, दो बार ले गए थे।
4: दो बार आप लेके गए।
23: मेरा नाम मीसा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ, और यहाँ मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ की दुकान वकान भी नहीं थी, अब ये तो बहुत महंगे होंगे उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जाती है, तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है विनटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी यहाँ के सीखने लगी। और मुझे आता भी कुछ नहीं था, मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना देती हूँ। और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान मतलब अनजान जो लड़कियाँ बढ़ती आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है, और कोई भी मतलब बुरा बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम भी मिला था, और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसमें सिखाया था, और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है। और यहाँ से मैंने अपनी एक मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी, जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी, जिसमें मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
24: नमस्ते आप सभी को, मेरी तरफ से मैं तनु सैफी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए जैसे सूट सलवार प्लाजो पैंट बहुत सारे।
4: खुद कटिंग कर लेती हूँ? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
24: कैची भी चलाने नहीं आती थी।
4: कैची भी चलाने नहीं आती थी। अच्छा, तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
24: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले करूँ।
4: हाँ,
24: और फिर अपनी एक छोटी सी शॉप
4: बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ से सीखने के बाद?
25: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास से तुगलपुर गांव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीजों के साथ, बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ, और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रीड इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ, और यहाँ आके तो एक नई जिंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे, बच्चों के लिए बड़े खुशी से आते हैं बच्चे, कौन सिखाता है, नहीं तो हजार रुपए देते हैं मंथ के यहाँ पे, तो बच्चे गरीब बच्चे नहीं सीख पाते हैं। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने की।
4: लगन है सीखने की।
26: उनको मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैंने ऑनलाइन सेलिंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था, बट अब बहुत कुछ पता है, मैं इसके बारे में सीख चुकी हूँ और जानकारियाँ मैं देती रहूंगी। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला है।
27: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूनम मैम का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी, बट जब यहाँ पे जुड़ी, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स, फोटोज ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रेडियो इंडिया सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ, इन सब चीजों से मैं अनजान थी, पर जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसी है, ये मायने लगता है। हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, जरूरी ये है। जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है, लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं, हमने इस समय में हम खाली नहीं बैठे, रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के, लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे एफएम रेडियोस को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था, लेकिन रेडियो सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं बट कभी जाना नहीं, जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर, करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ ये सब महिपाल सर, पूनम मैम की इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
5: हेलो, मेरा

0: ये कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज किया है। जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
1: मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ। मेरा नाम रंजिता जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीखती हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं अपने फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ। और मैंने पोस्टर डिजाइनिंग करना सीखा और पैम्पलेट बनाना सीखा। मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बना सकती हूँ।
2: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया, जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, वो भी सेफली। थैंक यू।
3: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट, प्लाजो, फ्रॉक सूट, ये सब। और अब मैं बहुत खुश हुई सीखने के बाद। मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं हमारी इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है। और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। चाहे कितनी बार भी पूछो, बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूंगी और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूंगी, अपने भी, बाहर के भी। और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई जरूर करती रहूंगी, जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूंगी। धन्यवाद।
4: मेरा नाम गरमा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी, जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा, जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
5: अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में रहने वाली हूँ। मैंने रेड इंडिया से स्टिचिंग, एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह, गले की डिजाइन, बाजू, सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
6: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रेड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला, जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक। और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन, ये सब अच्छे तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है, मेरे कपड़ों में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं, जिससे मेरी अपनी खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
7: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास

0: के लिए कपड़े आते थे लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिजाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नए नए डिजाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रेड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रेड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
1: मेरा नाम नीनू है। मैंने रीड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी जो मैं किसी के पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती थी और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ शाबाद मोहम्मद को। थैंक यू सो मच।
2: मेरा नाम किरण राजपूत है। मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रीड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया जिससे कि हम मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
3: हेलो, मेरा नाम आशु है। मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरी फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं पार्लर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। थैंक यू सो मच।
4: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी। मैं शाहबाद के रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रीड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया। हर्बल प्रोडक्ट जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया। मेरी फैमिली को भी यूज कराया। सबको बहुत अच्छा लगा और सबने मतलब बहुत तारीफ किया। इसलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच।
5: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं रीड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रीड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसके वजह से मुझे मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है, क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।
6: हाय, माझं नाव सामी आहे। मी जोगेश्वर आहे। माझं शिक्षण 11वीपर्यंत झालेलं आहे। मी रीड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते। त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज, वरण प्रिन्स कटोरीवाला ब्लाऊज वगैरे सर्व शिकतो।
7: हाय, मेरा नाम है रेशमा अब्दुल रऊफ जोगिनकर। मैंने 12वी की हूँ। गोरेगाव से और मैं बी ए मैंने से रीड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ बेसिक टेलर कोर्स का, और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, बिनवाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कॉटरी ब्लाउज, फ्रॉक और पंजाबी सूट। थैंक यू।
8: हाय, माझे नाव अक्षता अशोक कांबळे, मी ऍग्रीकल्चर डिग्रीमध्ये डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे। त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लग्नासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जाते आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या रेड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते। थँक्यू।
9: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन आडवीलकर, माझं शिक्षण टीवाय बी ए मधून झालेलं आहे। मी इथे रेड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे। त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकले आहे। थँक्यू। रीड इंडिया, माझं नाव नौशीन वजीर जोगिलकर, माझा शिक्षण 12वी, मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास, 3 महिन्याचा कोर्स आहे। त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवले गेले आहे। हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत।
10: आपकी उम्र 22। इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
11: कंप्यूटर के पालन की।
10: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं।
11: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं।
10: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
11: कंप्यूटर ही कोचिंग देंगे और कंप्यूटर में ही स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब करेंगे यहाँ पे।
10: आपका नाम क्या है?
11: स्वाति।
10: आपकी उम्र?
11: 24।
10: रीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग ली?
11: यस मैम, हमें 2 ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का।
10: तो आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा?
11: कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग
10: बेसिक सीखा आपने। और पार्लर में?
11: पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग।
10: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
11: कंप्यूटर सीखने के बाद घर पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग कराते हैं कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम मिलेगी।
10: और पार्लर का?
11: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है।
10: अच्छा, जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
11: यस मैम, पहले से ज्यादा इनकम होने लगी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है।
10: गुड। आप आगे क्या करना चाहती हैं?
11: मैम पार्लर में करना है, पार्लर खोलना है।
10: अपना पार्लर खोलना है? अच्छा, पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
12: माझे नाव आदिती संजय वाळंकर, माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे, आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली। रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटरे मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो।
13: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले। मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमने आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे। त्यामुळे आम्ही टाटरे मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत।
14: माझे नाव शर्मिला मंगेश विसापूरकर, माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली. या वतीने टाटरा मॅडम रीड इंडिया व टाटरा मॅडम यांचे मी आभार मानतो.
15: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला. यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं. त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.
16: माझं नाव श्वेता रोशन सप्पा, वय 29 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला. या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो. या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू. रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद.
17: मेरा नाम लक्षा है, मैं दी इंडिया पडवाई सेंटर सिलाई सीखी है. मैं पडवाई में रहती हूँ और मैं सेंटर में आती जाती रहती हूँ. इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है. अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ. इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं. इस रीड इंडिया में सिलाई सीख कर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ. उससे जो पैसा आता है मैं अपने कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ.
18: मेरा नाम निशा है, मैं पढ़वाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है. मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ. और मेरा एक सपना ये है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूँ. मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद.
19: मेरी एज 21 है. मैं लास्ट डे पर रहती हूँ. मैं रीड इंडिया सेंटर में एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है. मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पैंट, प्लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है. और मेरे डिजाइनिंग मैं अपने डिजाइन खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना डिजाइन सिलाई करना. और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर. और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ. और मैं पहले मतलब अपनी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ. और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ. पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपने नहीं कर सकती हूँ. मैं एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है.
20: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है. मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ. रीड इंडिया कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है. जैसे कि लिप बाम, बॉडी वैक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है. मैं रीड इंडिया कलघर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ.
21: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम है और मेरी एज 18 ईयर्स है. और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा. और मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी. मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं. तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूँ अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूँ, मम्मी पापा से नहीं लूँ. इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूँ, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूँ खुद भी. फिर मैंने मुझे यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आई. मैंने यहाँ पर आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है. इसके साथ मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है. और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है. पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी. और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ. मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है. पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल. यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके. और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट स्टिचिंग कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है. इससे मैं अपनी इनकम भी अच्छे से कम कर लेती हूँ और मैं अपना खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती. और पहले मैं मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही. मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है, उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ. और यहाँ पर आने के बाद मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिजाइन अपलोड किए और मैं उसको अपसेल करती हूँ उस पर। उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने में इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरे डिडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मेरे डिडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच डिडिया सेंटर।

0: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
1: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किए।
0: पर असल समस्या और थी।
2: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
1: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टॉप डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
0: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
1: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
0: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
1: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
0: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
1: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
0: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले, पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
1: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
0: श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

एवरीबॉडी इज वेलकम ऑन दिस सेशन। तो आज हम सेशन जो है, आप सबको पता है, लीडरशिप पे ही मैं सेशन लेती हूँ। और सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। एवरीबॉडी शुड एक्नॉलेज कि हाँ, मैं एक लीडर हूँ, किसी ना किसी रूप में मैं लीडर हूँ। तो ये सब एग्री करते हैं इस बात पे कि लीडरशिप तो है, हम उसको इन्वोक करते हैं कि नहीं करते, वो हमारा डिफरेंट कंसर्न है, बट एवरी बॉडी हैज अ लीडरशिप क्वालिटी इन दैट। एग्री करते हैं आप सब मेरे से? तो चैट में थोड़ा यस लिख दीजिए या हैंड रेस कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, एवरीबॉडी एग्रीज दैट एवरीबॉडी हैज द लीडरशिप क्वालिटी। किसी में परसेंटेज वेरी कर ज्यादा है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बट एवरीबॉडी हैज दैट, राइट? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत करते हैं कि हर एक में लीडरशिप क्वालिटीज होती है, पर हमें क्या करना होता है, उस लीडरशिप क्वालिटीज को इन्वोक करना होता है। इन्वोक मतलब कि पहचानना होता है और उसको जागरूक करना होता है, जो हम नहीं कर पाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। मे बी कोई भी सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कोई चैलेंजेस ऐसे होते हैं, या हम अनइंटेंशनली भी नहीं कर सकते। इंटेंशंस तो सब में होती है कि हमें लीडर बनना है, पर हम अनइंटेंशनली भी उसको इन्वोक नहीं कर सकते। इन्वोक मतलब कि उनको पहचानना, उनको रिकग्नाइज करना, और उनको एवरी टाइम वी हैव अ फीलिंग इन आर माइंड, यस वी आर लीडर्स विद इन आर सेल्स। सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग अलग होती है, कोई बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, कोई डरता है कि मैं बात बोलूं तो मेरी बात पता नहीं पहचानी जाएगी कि नहीं पहचानी जाएगी, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं ठीक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो स्मिता उसके ऊपर लाइफ स्किल्स का सेशन लेती है, और वो कल इस बात को भी हाईलाइट करेगी कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल हेल्प अस इन डेवलपिंग आर लीडरशिप स्टाइल, आर लीडरशिप विद इन आवर सेल्स। इफ वी हैव लीडरशिप, हाउ टू इन्वोक दैट थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच स्मिता विल हाईलाइट टुमारो। द सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो कहना चाहते हैं अपने, जब हम लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। सबको पता है कि बातचीत के दौरान कम्युनिकेशन के तीन प्रकार के हम यूज करते हैं टूल्स। एक तो हम वर्बली बोलते हैं, दूसरा हम लिख के बताते हैं, और तीसरा 80% ऑफ आवर बॉडी लैंग्वेज आल्सो स्पीक्स अबाउट आवर लीडरशिप क्वालिटीज। कि हम किसी के सामने अगर टिमिड बन के बैठ जाते हैं, टिमिड मींस कि हम अपने आप को कमजोर साबित करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फुली व्हाट वी वांट टू से, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। बट यस, रिटन एंड ओरल आर द टू टूल्स नॉर्मली वी यूज फॉर शोइंग आर लीडरशिप क्वालिटीज एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। दो साइलेंटली ऑल्सो, जो बहुत सारे लोगों का ये भी विचार है और मैं भी सहमत करती हूँ उससे, कि साइलेंट कम्युनिकेशन आल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट साइलेंट कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज आल्सो। सो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा बात, हम ये होते हैं सोचते हैं कि क्या हम ठीक है या गलत है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि क्या मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ये एक्सपीरियंस से, पढ़ने से, सुनने से और
अपने आप को एक्सपोजर देने से इन राइट सोसाइटी, मेरे वर्ड्स अंडरलाइन करिए, इन राइट सोसाइटी अगर हम बैठ के कुछ भी बात बोलते हैं या कुछ सुनते हैं या सीखते हैं, तो हमारे अंदर का जो लीडरशिप सैंक्टिटी है, मैं इसको सैंक्टिटी बोलती हूँ, मैं भी पहले ऐसे नहीं थी जो आज जो आपके सामने हूँ, तो इसलिए मैं बहुत क्लियरली आपको समझा पा रही हूँ कि लीडरशिप हर एक में होती है क्वालिटी, पर उसको पॉलिश करना, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी पड़ी है उसको हटाना और अपनी बाकी के स्किल्स को एनहांस करना ही हमें हेल्प करता है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करने में। तो एक तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो हम कॉन्फिडेंट हो कि हम राइट बोल रहे हैं, राइट वे में कन्वे कर रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है वो भी ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं जिसको हम कंटेंट बोलते हैं वो भी ठीक है। तो ये कैसे आता है? पढ़ने से, सुनने से, आंखों से देखने से, कानों से सुनने से, और सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उसको जानने से हमारा कॉन्फिडेंस, हमें क्लैरिटी भी आती है, हमें करेज भी मिलता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जो थर्ड पॉइंट है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, सब लेते हैं, सुबह उठते ही चाहे छोटा डिसीजन हो और रात के सोने तक चाहे छोटा डिसीजन हो, चाहे बड़ा डिसीजन हो, चाहे घर के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में हो, चाहे ऑफिस के बारे में हो, चाहे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में हो, या हम कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं पहले कि ठीक है या नहीं, वो प्रैक्टिस से हमें आता है जब हम उसको एनालाइज करते हैं कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, और फिर हम डिसीजन अपना कन्वे करते हैं। और बहुत बारी हमें एक्सपीरियंस ये होता है कि हम डिसीजन शायद इमोशनली ले रहे हैं या हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जो कश्मकश है हमारे दिल में, जो हम ये इसके बारे में सोचते रहते हैं, वो एक आर्ट है, उसको हमें प्रैक्टिस से ही आता है और उसको हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ पीपल के साथ डील करते हैं और हमारा डिसीजन डिपेंड करता है कि हम उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसको हम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन अपना कन्वे करें या नहीं करें। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और अगर हम इनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने डिसीजन गलत भी ले सकते हैं। हम जब अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, कोई उसको एक्सेप्ट करता है, कोई उसको क्रिटिसाइज कर देता है, या कोई उसको डिस्कार्ड कर देता है। सिमिलरली मैं आज अगर सेशन ले रही हूँ, तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, 29-30 लोग लाइन पे हैं, उनमें से हर कोई 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं किसी को सोचती हूँ तो मैं कुछ हद तक, मे बी 90%, मे बी 80%, मे बी 70% मेरी एब्जॉर्प्शन लेवल होता है। क्यों होता है? ऐसे वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने अलर्ट हैं। हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, शायद घर की टेंशन है, चाहे ऑफिस की टेंशन है, चाहे मैं आई रास्ते में मुझे बस नहीं टाइम से मिली, या मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, या मेरे बच्चे के स्कूल का कुछ है, या हस्बैंड के साथ कोई बात है, एनी रीजन जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, वो हमारे एब्जॉर्प्शन लेवल को
उसका असर होता है, राइट? तो हम तभी कहते हैं कि हमें अपनी सोच को उस हद तक ही एक्सटेंड करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए कि हम उसका उसका असर हमारी दिनचर्या पे नहीं हो। प्रॉब्लम सबके साथ है, चैलेंजेस सबके साथ हैं, पर ये प्रैक्टिस के साथ आता है। अगर हमारे अंदर कुछ लीडरशिप की शक्तियां हैं या कुछ लीडरशिप के भावना है अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करने की, तो विद प्रैक्टिस हम ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, हम किसी हद तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हमें ये हमेशा ये लेसन हमें मिलता है कि हम अपने पास्ट को एनालाइज करें, अपने प्रेजेंट को उसी तरीके से एक्शन लें और अपने फ्यूचर को एनविजन करें। ये लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, क्योंकि लीडरशिप थोड़ा हटके होता है, वो दिनचर्या के साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसको नहीं जोड़ सकते हैं। और मैं क्यों बार बार इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि हमें अपनी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, जो सो रही हैं, उनको जगाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आज मैं आपको 10 E's की फिलॉसफी समझाऊंगी कि 10 E's क्या है। E मतलब कि कैपिटल E। एक तो हम बहुत ज्यादा, मैं जिस भी गांव में जाती हूँ, जिस सेंटर में जाती हूँ, हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, और हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ। तो जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, तो हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि अगर हम इमोशनली बह जाएंगे तो हमें अपने दिमाग से जो सोचना है वो शक्ति हमारी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना है। वी आर वर्किंग विद वुमेन फ्रॉम द पास्ट 2 डेज। आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज इन रामपुर, आई वॉज इन उधम सिंह नगर, आई मेट हंड्रेड्स ऑफ वुमेन जिनको मैं बार बार यही कहती हूँ कि देर इज अ नीड टू ड्रॉ अ बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड योर ब्रेन, दिमाग के साथ। तो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर ये प्रैक्टिस से आप अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस के जो स्टेप्स हैं मैं आज आपको समझाऊंगी कि क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि ऑलवेज अगर कोई हमारे पास सेंटर में आ रही है कोई इशू लेके, अपना पर्सनल इशू है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम उसको सुनते नहीं हैं, हम अपना बिना सुने, बहुत 90% लोग क्या होते हैं, सुनने की क्षमता कम रखते हैं और अपना डिसीजन करने हम बहुत जल्दी करते हैं। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम बिना सोचे समझे, बिना सुने, बिना उसको एनालाइज करे, हम अपनी बात पहले रखने की कोशिश करते हैं, और ये घर में भी होता है। हमें सिंपथी से ज्यादा एम्पथी अपनानी चाहिए। एम्पथी मीन्स, एम्पथी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के उस इंसान की प्रॉब्लम को रियलाइज करें। शायद आप उस प्रॉब्लम से ना गुजरे हो और दूसरा इंसान उस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, और वो उसके पास एक ही उम्मीद है कि मैं सेंटर में जाऊंगी, मैं अपनी टीचर से ये बात करूंगी, या अपने पीयर ग्रुप में ये बात करूंगी, या मैं अपने कोऑर्डिनेटर के सामने ये बात रखूंगी। और हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते, पर हमेशा हमें उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के अगर हम वो प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उस
प्रॉब्लम को इमोशनली ना देख के जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं लीडरशिप की या लाइक किसी की सिचुएशन को समझने की, उसको सामने रख के अगर हम उसको हेल्प करें तो हम बहुत ही रियलिस्टिक वे में उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने दो चीजों को यहाँ पे एम्फेसाइज किया, जो भी मैंने अभी बोला है, कि इमोशंस को कंट्रोल में रख के और एम्पैथी के साथ अगर हम दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं और उसको हम ठीक ढंग की सलाह देते हैं, तो वो इंसान भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और हमको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है, आगे चलो। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि वी शुड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू ब्रेन बट वी कैन नॉट बी रथलेस। इसमें भी फर्क है। देखिए, एक तो मैं बोल रही हूँ कि आप 100% इमोशनली कोई डिसीजन कन्वे नहीं करें। दूसरा, मैं बोल रही हूँ कि आप अपने दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल करें, उसको सोचें, उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखें, बट हमें बहुत हार्श, बहुत रथलेस जो होते हैं, रथलेस मीन्स विदाउट, मैंने कम्युनिकेशन की पहले बात करी थी आपके साथ, कि विदाउट विदाउट एनालाइजिंग व्हाट वी आर कन्वेइंग, हाउ वी आर कन्वेइंग, व्हाई वी आर सेइंग दिस, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट मैनेजर्स, वी आर लीडर्स। हम यहाँ पे लीडर्स की बात कर रहे हैं। मैनेजर तो ये बोलते ना कि मुझे नहीं पता तेरे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इट्स योर कंसर्न, मुझे तो ये काम चाहिए चाहिए, मुझे आज ही करके दो, नहीं तो कल से जॉब पे नहीं आना। ऐसे कभी सेंटर्स में बात हुई है? नेवर एवर। मुझे नहीं पता कि आज तक हमने कभी इस लहजे में किसी से बात की है, हम कभी भी नहीं करते हैं। दैट इज द वन ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ रीड इंडिया विच वी पास ऑन टू आर कोऑर्डिनेटर्स, आर टीम, आर स्टेक होल्डर्स, एवरीबॉडी। एम आई राइट? तो रथलेस बिल्कुल नहीं होना, एम्पैथी इज द आंसर, पुटिंग योर सेल्फ इन टू देयर शूज एंड एनालाइज व्हाई शी इज सफरिंग, व्हाई शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम टुडे, और उसको पूरा टाइम देना है उसकी प्रॉब्लम सुनने का। और ये मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जब भी सेंटर में जाती हूँ, कोई भी लेडी मेरे पास आती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको टाइम देती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें मैं नहीं जा पाई हूँ, जैसे बिहार के सेंटर्स हैं, मैं नहीं जा पाई, बैंगलोर का सेंटर है, कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई, बागेपल्ली मैं पहले बहुत बार गई हूँ, आंध्रा भी गई हूँ, श्री सिटी भी गई हूँ, पर जितना फ्रिक्वेंटली मुझे जाना चाहिए उतना फ्रिक्वेंटली मैं नहीं ट्रेवल कर पाती हूँ। अर्लियर बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड सेकेंडली अभी इतने सारे सेंटर्स बढ़ गए हैं कि वो ट्रैवल करना ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। नाउ जब हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, तो हमारे हमें अपनी एक प्रैक्टिस ये भी शार्प करनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें कि व्हाई दिस हैज हैपेंड टू हर। ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, उन रीजंस को हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको एनालाइज नहीं करते हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, और हम जल्दी से अपना डिसीजन लेके हम अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं। जब हम इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं, या अगर हम इस तरीके से दूसरों को सलाह देते हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता। हम उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके उस दिन के लिए अपना सलूशन निकाल रहे हैं, पर वो लॉन्ग टर्म सलूशन नहीं है।
हमें हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए अपने आप को। जितना हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम अपने आप को ये जो वेब है चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का, डे टू डे लाइफ का, वेब का मतलब क्या होता है, जाला, उससे हम अपने आप को आस्ता आस्ता बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने चौथा ई यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएट करना, उस सिचुएशन को परखना, उस सिचुएशन को जांचना। और ये हम अगर आदत डाल लेंगे अपने, तो ये हमारी एक रूटीन बन जाएगी कि व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस, व्हाई व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट एक्शन आई एम टेकिंग। ये हमें आदत पड़ जाएगी और कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिना हमें आके स्टॉप करेगा कि लेट अस नॉट बी वेरी एग्रेसिव इन कन्वेइंग आवर डिसीजंस, इन यूजिंग द रथलेस लैंग्वेज, इन यूजिंग द वर्ड्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड टू से। तो ये हमें क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश भी करता है और ये डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत असर करती है ये चीज। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर अगर हमारे में लीडरशिप का स्पार्क है, तो हम उस दूसरे पर्सन जो हमारे पास आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके, हम उसको एनेबल करते हैं कि अपनी सिचुएशंस को खुद ही एनालाइज करो। हम अपना डिसीजन उनपे नहीं थोपे, हम अपना डिसीजन नहीं कन्वे करें कि यस आप तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हम उनके अंदर एक आदत डालते हैं कि हम उनको एनेबल करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज करो, और उनको बहुत ही हलीमी से हम उनको समझाते हैं, तो शायद हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद एनालाइज करे, खुद अपने जीवन में आगे बढ़े और अपनी प्रॉब्लम्स को उलझाना की बजाय उनको रिजॉल्व करने की आदत डाले। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस प्रोसेस से अगर हम चलते हैं, हम उसको एनेबल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको किसी ना किसी तरीके से बातचीत करके, समझा के, उसको हेल्प करके उस शक्ति को भी हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसको एम्पावर भी कर रहे हैं। एम्पावर किसके लिए कर रहे हैं, जो सिचुएशन में वो फंसी हुई है, जो सिचुएशन से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस सिचुएशन को एनालाइज करके कामली कंपोज मैनर में वो अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ रही है और हम उसको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरिंग। हम भी ऐसे ही करते हैं। रीड इंडिया क्या करती है, एंगेज करती है, एनकरेज करती है, एम्पावर करती है और आपको आगे बढ़ने का खुद ही आप अपना रास्ता ढूंढते हो। मैं खाली जो आप लोग करते हो उसी को आपके सामने रख रही हूँ, मैं कोई नई चीज आपके सामने नहीं रख रही हूँ, ठीक है? जब हम एम्पावर करते हैं, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर राइट एक्शन एट राइट टाइम। आप तीन चीजों को नोट करिए कि जब आप उसको एम्पावर एनेबल कर रहे हो, उसको एम्पावर कर रहे हो, तो आप उसमें एक आदत इनकलकेट कर रहे हो। इनकलकेट का मतलब उसको एक आदत उसमें ये बहुत अच्छे से डाल रहे हो कि वो
राइट डिसीजन ले, राइट एक्शन ले उस डिसीजन के ऊपर, और राइट टाइम पे ले। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो वो कैसे आती हैं? जब हम पिछले जो 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं उन पे हम रेगुलर प्रैक्टिस करने की आदत डालें, उसको रोज प्रैक्टिस करें, अपने दिनचर्या को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को उसके साथ हम जोड़ें। तो मैंने आपसे अभी तक जो बात की है वो इमोशंस की बात की है, एम्पैथी की बात की है, इवैल्यूएट करने की बात की है, एनेबलिंग करने की बात की है, एनकरेज करने की बात की है, और उनको एम्पावर करने की बात की है। तो ये पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं सबको मेल भी कर दूंगी। ठीक है, सो विद दीज 5 E's यू आर एनेबलिंग द अदर पर्सन टू एनलाइटन हिज और हर ओन पाथ ऑफ ग्रोथ। तो उसको एक रोशनी की किरण मिलती है कि हाँ, अरे ये तो ठीक ही है, इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हूँ, मुझे इन्होंने रास्ता दिखाया, डिसीजन मेरा है, उन्होंने खाली मुझे रास्ता दिखाया है कि आप इस रास्ते पे भी चल सकती हैं, सेकंड लेन में भी जा सकती हैं, थर्ड में भी जा सकती हैं, फोर्थ में भी जा सकती हैं, चॉइस आपकी है, क्योंकि आपने उसको डिस्कस किया है, उसको एनालाइज किया है, उसको इवैल्यूएट किया है, और आपने अपना राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें तो मैं यही कहूंगी कि इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो कभी तो वो विजिबल हैं सरफेस पे और कभी वो इनविजिबल भी हैं। विजिबल ये है कि हाँ, सामने सिचुएशन खड़ी है, सामने पहाड़ गिर गया है और मुझे सड़क पार करनी है, और जब तक मैं उस पहाड़ को, पत्थर को अपने रास्ते से नहीं निकालूंगी, नहीं आगे धकेलूंगी, तो मैं सड़क पार नहीं कर सकती। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं जो बिल्कुल इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, बट प्रॉब्लम्स तो हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे को रास्ता ढूंढना है, उन प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ का व्हीकल आगे बढ़ाने के लिए। और वो कैसे बढ़ेगा कि हमें अपने आप को सेल्फ एनकरेज भी करना है आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम अपने आप को सेल्फ एनकरेज नहीं करेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे और हम कहेंगे कि वी विल गिव अप, नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस। जब ये थॉट्स हमारे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे तो हम वेवरिंग माइंड हो जाएगा हमारा, हम फिर भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो शुरू में मैंने क्या बोला कि हम अपने आप को इमोशनली वीक करें या हम अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को दिमाग से सोच के हम अपने आप को स्ट्रांग करें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और उसको किसने करना है? आप लोगों ने करना है। कोई भी लीडर आपके दिमाग में घुस के आपकी सोच नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपके इमोशंस को नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपको उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखाएगा, लीडर खाली आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना किसने है? आपने चलना है। ठोकरें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, इमोशनली वीकनेस भी आएगी, बट लीडरशिप सेज दैट यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स। ब्रेक द बैरियर्स मीन्स जो भी रास्ते में उलझने आ रही हैं उनको सही दिमाग से,
बहुत हलीमी से, पेशेंस से, परसिवरेंस से उनके सॉल्यूशंस निकाल के आगे बढ़ना है. बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बट बिकॉज हमारा माइंड इतना वेवरिंग होता है, हमारे पे इतने प्रेशर्स होते हैं माइंड पे, हम राइट डिसीजन एट राइट टाइम नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हैं. अनलेस वी हैव क्लैरिटी इन आर माइंड, वी कैन नॉट डेवलप द करेज फॉर शेपिंग आर ओन लाइफ टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल. इज इट राइट? अगर हम हमेशा कंफ्यूज ही हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और क्लैरिटी प्रैक्टिस से आती है. अगर आप अपनी दो सिचुएशंस को एनालाइज करके उसका ठीक टाइम पे उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो आपकी क्लैरिटी अपने आप ही शार्प हो जाएगी. ये मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. पर अगर हम हमेशा रट में ही रहेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस भी नहीं आए. अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, समाज के बारे में, कि मुझे समाज ने दिया क्या है, मेरे परिवार ने मुझे क्या दिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, अगर हम ये क्वेश्चन मार्क की जिंदगी जिएंगे, तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी. हमें इस क्वेश्चन मार्क की जिंदगी से एफर्मेशन की जिंदगी में आना है कि हाँ, ये चैलेंजेस हैं मेरे सामने, इन चैलेंजेस को मुझे रिजॉल्व करना है, और इन चैलेंजेस की प्रायोरिटी भी आपने तय करनी. कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुत प्रायोरिटी सिचुएशन हमारे सामने है, हम उससे आंखें छुपा के हम दूसरी प्रायोरिटीज को रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं. ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हम लोग सब करते हैं, इंक्लूडिंग मी. आज मैं ये सेशन आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं एक लाइफ सिचुएशन आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ. पर हमें प्रायोरिटीज भी अपने आप ही तय करनी है कि ये 100% प्रायोरिटी है, ये 80% है, ये 60% है, ये 40%. ये हमारे दिनचर्या ऑफिस में भी यही होता है कि हम अपने पूरे 8 घंटे ऐसे ही पास कर देते हैं, हम मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजों को छोड़ के लेस प्रायोरिटी वाली चीजों के ऊपर फोकस कर देते हैं, और मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं. उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है, जो हम बाकी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, और इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा. और अब हम बात करें कि हमने अपने आप को एनकरेज भी किया, और हमने अपनी लाइफ में एनविजन भी किया. जो मैंने आपको बोला था ना, मोस्टली स्टेटमेंट ये होती है कि यू लिव इन योर प्रेजेंट, राइट, इन अ मैनर दैट योर पास्ट गिव्स यू द हैप्पीनेस. आज का पल जो प्रेजेंट है, वो पल अगले मोमेंट में वो पास्ट बन जाएगा, बनेगा. जब वो पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट को इस तरीके से जिया है कि आपका पास्ट आपको खुशी नहीं देगा, तो आप दुख को ही लेकर आगे बढ़े. तो आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूज नहीं किया, आपने अपने प्रेजेंट को इस तरीके से नहीं जिया कि जब वो पास्ट बने तो आपको उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, आपको उसमें खुशी मिले. और खुशी अगर हम खाली अपने लिए ढूंढेंगे तो बहुत छोटी सी खुशी होगी, वो एक बिंदु होगा. तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यू लिव योर प्रेजेंट इन अ मैनर, व्हेन इट बिकम्स पास्ट यू फील हैप्पी अबाउट दैट.
ये बहुत चार अक्षर की स्टेटमेंट है पर बहुत पावरफुल है। इस स्टेटमेंट को अगर हम इग्नोर करते हैं, इस स्टेटमेंट को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर तो कभी एनलाइटन फिर हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें तो पास्ट का भी इफेक्ट आएगा, प्रेजेंट का भी आएगा और वो हमारा फ्यूचर बनेगा। सो वी हैव टू एनालाइज व्हाट

वो खुशी का सॉन्ग हो, चाहे वो स्ट्रगल्स का सॉन्ग हो, चाहे वो ग्लोरी का सॉन्ग हो, हमें दूसरों को भी स्पेस देनी चाहिए उनके बारे में सुनने के, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में. वी जस्ट रिएक्ट, दूसरे इंसान की बात ही खत्म नहीं होती है और हमारा सोचने का स्केल इतना हाई हो जाता है, वो हमें रिएक्ट करने के लिए इतना मजबूर कर देता है कि दूसरे इंसान की बात वो किस लहजे में कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या चीज उसको अंदर से प्रोत्साहित कर रही है ये बात कहने की, हम बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस मार देते. तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. तो ये जो जर्नी है ये लाइफ की, हमारे हाथ में है. अब हमने डिसाइड करना है कि हम किस रास्ते पे चलें, कौन सा रास्ता अपनाएं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन हम कौन सी रखें. वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन आर अचीवमेंट्स एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंजेस. ये हमारा मिशन होना चाहिए. ये आसान नहीं है, प्रैक्टिस से आता है. जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उतना जो सुपर पावर है वो हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा. अगर हम अपना ही दुख को इतना बड़ा और इतना एनहेंस कर देंगे तो जो हमारी क्षमता है दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की वो खत्म हो जाएगी. तो इस बात को भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. अगर हम ये आदत डाल लेते हैं, आप अगर मैं कल भी परसों रामपुर में मैं लड़कियों को बोलकर आई थी कि आप अपनी एक डायरी बनाएं और जो भी अच्छी चीज आपने सीखी, आपने समझी और आपने करी उसको अपनी डायरी में लिखें, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं वो डायरी देखना चाहूंगी. एंड दैट डायरी इज ए बाइबल फॉर यू, दैट डायरी इज ए कुरान फॉर यू, बिकॉज हमें स्पिरिचुअल बुक्स भी क्या कहती हैं, हम अपने आप को सुधारें, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, हम अपना सुख भी लोगों के साथ बांटे, खाली दुख नहीं बांटे, और दूसरों के दुख में शामिल होके, उनके चैलेंजेस में शामिल होके उनको भी हेल्प करें उसमें से बाहर आने की. यही कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल होली बुक्स. और अगर हम अपनी एक होली बुक लिखना शुरू कर दें तो कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आपका, जब एक साल के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं, है ना, कितना अच्छा लगेगा आपको वो पढ़ के. तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा जब आप पेपर पे लिखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगाने के लिए और पॉजिटिव चीजों को इंवाइट करने के लिए. जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं वो आपसे आस्ता आस्ता दूर जाना शुरू कर देंगी और पॉजिटिव चीजें आपके आसपास रहेंगी और आपको हमेशा एक सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, एक आत्मविश्वास मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं. बस मैं आज इतना ही कहना चाह रही थी. अगर किसी के कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहता हो तो हमारे पास 10 मिनट हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं. तो जो मैंने इतने सारे ईज की आपके साथ आज बात करी है वो मैं शिवानी को दे दूंगी या मैं इसी मेल पे लिख दूंगी सबको. मैंने बात करी है इमोशंस की, एम्पैथी की, इवैल्यूएशन की, एनकरेजमेंट की, एम्पावरमेंट की, एनेबलमेंट की, एनलाइटनमेंट की, एनविजन करने की, लाइफ्स को एनरिच करने की, और लास्टली जब आप अपनी डायरी लिखना शुरू करेंगे तो आप एम्फेसाइज करेंगे दूसरों के सामने में कि इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, बिकॉज यू हैव जस्टिफिकेशन, यू हैव प्रूफ विद यू दैट यू हैव डन दिस.

0: ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कोई कमेंट और कोई शेयर करना चाहता है कुछ, तो प्लेटफॉर्म आपके पास है। हमारे पास 10 मिनट हैं और हम 10 मिनट में फिर इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच, हमें इनक्रेज करने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
2: मैं सुवर्णा बोल रही हूँ मैम, पूना सेंटर से। बहुत अच्छा सेशन लिया मैम आपने, जैसा मोटिवेट किया, मतलब हम भी आपके सेशन से हम भी बहुत अच्छा मतलब स्ट्रांग बन जाते हैं आपका सेशन अगर सुना तो।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक पॉइंट, आप एक वर्ड शेयर कर दीजिए सबके साथ, जिस जो वर्ड ने आपको मोटिवेट किया है।
2: इमोशनली हम भी स्ट्रांग बन जाते हैं मैम आपका सेशन अगर सुना ना।
0: हाँ, वेरी
2: यस
0: गुड,
2: मैम,
0: वेरी
2: थैंक यू मैम।
0: गुड।
3: मैम अंजू द्वारका सेंटर से,
0: हाँ जी अंजू,
3: आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम, आपका लीडरशिप की क्वालिटी जो आपने बताई है।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रैक्टिस करिए उसको, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सरपास एवरीबॉडी।
3: जी मैम,
0: ये बहुत जरूरी है। इसको खाली सुनने से तो समझ में आता है, पर प्रैक्टिस करने से और भी ज्यादा अच्छे से। थैंक
3: थैंक यू मैम।
0: यू, थैंक यू अंजू।
4: मैम इस पे चलने के लिए भी हमें पावर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जरूर इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि
0: हाँ,
4: बहुत कुछ है जिसपे प्रैक्टिस करना है, ऐसा लगता है चीज टूट जाती है, कुछ चलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इसके बाद हमें लगता है कि हमें किस किस जगह चीज को इम्प्लीमेंट करना है, इससे हमें पता चलता है कि हमें अभी और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है।
0: बिल्कुल
4: एग्जाम
0: बिल्कुल।
4: जी मैम,
0: पहले अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, फिर दूसरों की लाइफ को भी स्ट्रांग बनाना है। दोनों
4: जी मैम, जी मैम,
0: चीजों का दारोमदार आपके कंधों पे है। गुड
4: जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम।
5: आफ्टरनून मैम, फरहा बोल रही हूँ रामपुर से।
0: फरा, कैसी हो आप?
5: ठीक है मैम। आपने बताया कि हमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है करना, कभी भी अगर हम सेंटर पे बेनिफिशियरीज को सिखाते हैं तो यही नहीं होना चाहिए कि उसका एडमिशन किया और सिर्फ हमारा मतलब है उसको सिखाने से कि आज उसने क्या सीखा, कल क्या सीखा, वो क्या सीख रहा है, बट उसके साथ हमारा एक अंदर से बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए कि वो फैमिली में कैसा चल रहा है उसका, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सके। अभी एक ही अभी मैंने लाइब्रेरी के सेशन में भी ये शेयर किया था और यहाँ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बेनिफिशियरी मेरे पास आ रही थी और वो आती थी, कंप्यूटर सीखती थी और चली जाती थी। काफी लड़कियां थी जो हंसती भी थी, बोलती भी थी, बट उसको किसी से कोई मतलब नहीं, आई और उसने सीखा और वो चली गई। तो मैंने नोट किया 15 दिन 20 दिन, एक दिन मैंने उसे याद करने के लिए कुछ दिया कि आपको ये याद करके लाना है, तो वो अगले दिन याद नहीं करके लाई और बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि मैम आप हमें डांटेंगी। मैंने कहा आपने मतलब देखने से पहले ही सोच लिया कि हमें मैं डांटूंगी। मैंने कहा डांटूंगी नहीं, आप मुझे बताओ कि आप रो क्यों रही हो कि मैंने ये स्पेलिंग याद नहीं की। तो मैंने कहा आपने याद क्यों नहीं की कि वो मेरी ना मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने उससे ऐसी धीरे धीरे बात निकलवाई, मम्मी क्यों परेशान करती कि मेरी पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और वो कहती है अब तुम्हें कहीं पढ़ने नहीं जाना है, घर का काम करना है और भैंसों को देखना है, दूध वूध बेचना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है और मुझे पढ़ना है मैम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करने आऊंगी घर पे और उनको समझाऊंगी और आप सेंटर पर आओ, आपको जो सीखना है वो सीखो, बट ऐसे परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी बात करनी होगी खुद के लिए घर पर। तो उसको ये बात काफी समझ में आई, उसने अपने पापा, मम्मी तो नहीं सुन रही थी उसकी बात, लेकिन उन्होंने अपने पापा से वो बात की और हम उसके गाँव गए, हमने उसकी मम्मी से जब फेस टू फेस बात की तो वो बहुत तेज किस्म की थी, वो यही बोल रही थी कि नहीं अब ये क्या करेगी, पढ़ के नहीं पढ़ना है, इसकी शादी करनी है हमें और ये है और वो, और वो जो उनकी सगी बेटी थी उनको पढ़ा रही थी। मतलब गाँव में ये होता है कि वहां पर सगा सौतेले का थोड़ा सा रखते हैं कि इनको नहीं करना है, तो वहां उनको हमने बहुत इनकरेज किया और बोला कि शादी से पहले अगर आप 1-2 महीने हमारे सेंटर पे भेज दो, पूरी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आप सीखने दो जो वो सीखने के लिए बोल रही है, आप फीस मत देना, आपको लगता है कि मेरी बेटी के लिए वहां फीस जा रही है और मैं नहीं दे सकती, आप फीस मत दीजिएगा लेकिन इसको भेजो क्योंकि ये सीखना चाहती है। तो वो उस चीज से बहुत खुश हुई और उसकी मम्मी ने ठीक है आधे पौन घंटे के लिए सेंटर पे भेजना शुरू किया। तो तो वो जो उसकी बातें दिमाग से थी और जो वो सोचती थी, डरती थी, वो टेंशन में रहती थी, तो वो धीरे धीरे दूर हुई। तो वो सारी चीजें आपने हमें बताई कि हमें कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है सेंटर पे। अगर हमारे पास एक एक बेनिफिशियरी आ रहा है तो हमें उससे हर एक बेनिफिशियरी से बात करना चाहिए। क्या पता हम अपनी बात समझा के उसको कुछ इनकरेज करें उसकी लाइफ के लिए, क्या पता उसकी सोच चेंज करें, उसके जितने भी दिमाग में निगेटिव पॉइंट है उसको दूर करके उसको पॉजिटिव सोच में बदले। तो ये बात आपका ये पॉइंट हमेशा हम नोट भी करते हैं, करते भी आगे, और आज आपने जो बताया वो काफी हमारे लिए काम आता है। थैंक यू
0: फरा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं सबको सबको ये बोलना चाहूंगी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं परसों मैं कब थे हम फरा के सेशन में, ऑन ट्यूसडे राइट, ऑन ट्यूसडे मैं स्मिता डिम्पल मैम फरा और अकबर के सेशन में सेंटर में थे और इट वॉज अमेज्ड। 50 से ऊपर लड़कियां थी जो इनके सेंटर में बैठी थी और सबने बुर्का पहना हुआ था। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, मेरी हालत एकदम खराब थी बिकॉज मुझे बहुत पसीना आता है वहां पे, तो आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। पर वो माहौल देख के ना मैं अपने आप को रोक पाई, ना स्मिता अपने आप को रोक पाई, ना डिम्पल अपने आप को रोक पाई, ना फरह रोक पाई और ना ही अकबर रोक पाया। हम पांचों ने इतना उन लोगों के साथ बातचीत की, इतना उन लोगों को समझाया और वो ना वर्ड्स अपने आप आते हैं उनसे बात करने के लिए। एंड फरह, अकबर इज नॉट हियर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑनलाइन। आज आपका फेस्टिवल है पर फिर भी आप सेशन मिस नहीं कर रही हैं। और उस दिन मेरे सामने से वो आंखों के आगे से वो सीन ही नहीं जा रहा है कि इतनी सारी लड़कियां वहां पे हमें सुनने के लिए आई हुई थी और पीछे की लड़कियां स्टूल्स पे खड़े होके हमारी शक्ल देख के हमें सुनना चाह रही। दैट वाज अमेजिंग फरा, यू आर अ रियल लीडर एंड यू आर वर्किंग इन द कम्युनिटी वेरी वेल।
5: ये सब आपसे ही सीखा है मैम, जो आप सिखाते हैं वो हम आगे करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा उस दिन मुझे। डिम्पल ने अपने सेंटर के, स्मिता ने अपने एक्सपीरियंसेस, फरा ने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैं हमेशा फरा को कोट करती हूँ कि फरा को मैं जब फर्स्ट टाइम मिले थी तो दरवाजे की एक पार्टीशन थी, फरा उधर से बोल रही थी और मैं इधर से बोल रही थी। आज फरा सबके सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और अगर हमने ऐसे 10,000 या 20,000 भी लड़कियों को तैयार कर दिया तो वो लड़कियां कभी भी पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को नहीं देखेंगी। और आप लोगों की भी गारंटी है बिकॉज यू पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, राइट? ठीक है, थैंक यू फॉर दैट।
6: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून।
6: मैं गरिमा गृह से शशि।
0: हाँ जी शशि।
6: यस मैम, लड़कियां आपसे बात करना चाहती मैम, वो आपका सेशन सभी सुन रही हैं और मैम सभी लड़कियां अभी आपके सामने हैं लाइव में, वे कुछ बात करना चाहती हैं मैम।
0: हाँ जी,
7: गरिमा गृह सेंटर से बोल रहे हैं मैम। जो ट्रेडिशन सीख रहे हैं ना मैम, बहुत अच्छा सीख रहा है शशि मैम, हमें बहुत अच्छा सिखा रही है और हम चाहते हैं कि हमें और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमने कभी सोचा भी था कि यहाँ ट्यूशन भी सिखाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ गरिमा गृह सेंटर में ट्यूशन आके बहुत अच्छा काम हुआ है मैम। एक और तो कहना आता है ना सुनना, हमें वो पहचानने के लिए मिला है मैम से, शशि मैम से,
0: बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। गरिमा गृह एक ऐसा सेंटर है, मैं सबको बताना चाहूंगी कि कीर्ति नगर में एक एमसीटी का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था जिसको पीवीआर नेस्ट ने बिल्कुल रेनोवेट कर दिया और उसमें दो कमरे हमें दिए हैं जिसमें हमने लाइब्रेरी कंप्यूटर सेक्शन और स्टिचिंग सेक्शन और ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्शन बनाया है और पैर रखने की जगह नहीं होती है। ये सब औरतें इतने उत्साह से उस सेंटर में आती हैं, कोई इनहिबिशन नहीं है कि वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमें नहीं बैठना, वहां पे हमने नहीं सीखना। जहां सीखने की इच्छा होती है वहां पे राह भी निकल आती है। ये मेरा विश्वास था, तभी हमने पीवीआर नेस्ट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे सेंटर खोला था। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फरजाना, आप कैमरे में आई और फिर चली गई, आप कुछ कहना चाहती हैं?
8: थैंक यू मैम,
0: बोलिए।
8: थैंक यू सो मच, आपका सेशन लेकर हमें ये महसूस होता है कि लीडरशिप सबके अंदर होती है, लेकिन आपका जब हम सेशन लेते हैं ना, हम अपने अंदर से उसे जगह पाते हैं। तो बात है तो सिर्फ उसे जगाने की है मैम, और फिर आपकी बातों से और आपके समझाने के तरीके से, आपके सेशन से हमें इतना अच्छा लगता है कि हमको ये अपने ऊपर कर पाते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं भी बहुत कुछ हूँ।
0: अब फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शेयर करने का, और ईद मुबारक, आज आपका त्योहार है और फिर भी आप सेशन अटेंड कर रही हैं। और फरजाना एक ऐसी लड़की है जो इतने रिमोट एरिया से और आगे इतनी बढ़ गई है, और इसका थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो गया, और ये इतनी औरतों को एम्पावर करती है। तो अभी ये अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकती है, ये मेरे को पूरा विश्वास है ना फरजाना?
8: जी मैम, मुझे तो ना हर बार और अच्छा लगता है मैम, ऐसा लगता है ना पिछली जगह भी याद करती हूँ, ऐसा लगता है मैं वो फरजाना हुई नहीं, पता नहीं कैसे ऐसे हो गई मैं। बात करने का तरीका, मतलब जो भी पहले था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, सिर्फ जो भी है आपकी वजह से है और हम बहुत अच्छा कर पाए, और आगे भी इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेंगे रीड इंडिया के।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना। सना, यू ऑल्सो केम ऑनलाइन एंड देन यू क्लोज्ड। यस,
9: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून,
9: हाउ आर यू मैम? हैप्पी ईद।
0: हैप्पी ईद टू यू ऑल, सबके परिवार को बहुत बहुत मुबारक, और सबने बहुत अच्छी खीर भी बनाई होगी आज मुझे पता
9: है। यस मैम, थैंक यू मैम फॉर द सेशन, फॉर टेकिंग आउट टाइम हम लोगों के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए थैंक यू।
0: नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है और मेरा काम है
9: मैम। एक्चुअली जिस सेशन होता है इसकी वजह से हम लोग इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, हमारी बात हो वीडियो कॉल पर, हम दूसरे से बात भी कर पाते हैं, सारे सेंटर्स के लोग इकट्ठा होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो हमें भी लगता है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो अदर सेंटर से भी सीखने को मिलती रहती है कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लर्निंग्स बढ़ती है, तो ये सारे सेशन बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। और मैम कल का सेशन पता मैम का है, वो भी बहुत अवेटेड सेशन है।
0: बहुत अवेटेड सेशन है, और मैं आपको बताऊं स्मिता और मैं इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। इट्स नॉट दैट आई स्पीक एक्सटेम्पोर, मैं पहले अपने थॉट्स को कोलेट कर लेती हूँ, एक पेपर पे लिख लेती हूँ और स्मिता के साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हम कैसे यू नो एम्पावरमेंट जो है या लीडरशिप है, हम हवा में बात नहीं कर सकते, हमें बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करके, उसको समझा के, उसको कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं, वो डिस्कस करने में हमें भी एम्पावरमेंट मिलती है, हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, पर उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इट्स ए कलेक्टिव सेशन फॉर एवरीवन। हम सारे इकट्ठे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की हम आ सकते हैं, अदरवाइज फिजिकली मिलना तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला कि मैं फरा के सेंटर पे हम लोग गए थे, इट वॉज इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती, एंड थैंक्स टू ऑल द गर्ल्स हु केम देयर, मोर देन 50-60 गर्ल्स वर देयर, एंड दे वर बबलिंग विद एनर्जी कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो वो प्रोत्साहन देख के हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी खुशी होती है, और फिर हमारा और करने का दिल करता है। ठीक है,
9: वेरी गुड मैम,
0: थैंक यू सर,
9: थैंक यू मैम।
10: मैम मैं सेशन आपका पूरा सुना है, फिर अरे मैं बस में ट्रेवलिंग पे हूँ, पर आपसे बहुत कुछ सीखा सभी लोगों ने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। और आपसे सीख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश है लाइफ में, जो हम अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम।
0: सुमन इज अनदर एग्जाम्पल, जो मैंने आज एक पिक्चर आपकी आंखों के आगे दिखाने की कोशिश की है। सुमन इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फर्रा इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, सना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरजाना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। तो ये हमारे सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, और शायद ये लोग ही मुझे इनकरेज करते हैं ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम सब तक पहुंच जाए तो एक्चुअली रियल माने में हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बस में सेशन सुनने का, थैंक यू सो मच।
10: थैंक यू मैम, थैंक यू,
0: थैंक यू,
6: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सबको फिर से ईद मुबारक, और सब लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।
11: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयाँ बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता। शुरुआत में इस सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी। डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
12: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
11: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
12: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
11: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।

0: गुड आफ्टरनून,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। काफी हम लोग बात कर चुके हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर, और कुछ सेशंस आई बिलीव आप लोग खुद कर रहे हैं, खुद से बना के, या कुछ सेशंस जो हम लोगों ने दिए हैं उनको भी आप शायद यूज करते होंगे। क्योंकि ये नॉन यूनिक है, और ज्यादातर हम चाहते हैं कि जितने लोगों के साथ आप ये कुछ शेयर कर सकें, उनकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप हो सकें। इंटरनेट से भी वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। एक मेजर लाइफ स्किल जो हमें एज ए इंडिविजुअल भी आनी चाहिए और एज अ फैमिली पर्सन भी आनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हम मनी को लेके हम सबको कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं, चैलेंजेस रहते ही हैं। चाहे आज हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम आज अर्न कर रहे हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं। सो वी थॉट दैट इट कुड बी इम्पोर्टेंट टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू अ लाइफ स्किल, बिकॉज ज्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस पे बात होती है, लेकिन ये लाइफ स्किल ऐसी है जो जब हम लाइफ में जब इस इसके अंदर उतरते हैं तभी वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें प्रॉबेबली हैं जो अगर हम शुरू से ही अपने दिमाग में रखें तो हम एक बेटर फंड मैनेजर या बजट मैनेजर या इंडिविजुअल जो अकाउंट की जो हमारी अपनी वेल्थ मैनेजमेंट है उसको हम बेटर कर सकते हैं। सो टेकिंग दैट आई कैन शेयर सम स्लाइड्स। मैंने अपनी जो एक फोटो है वो लिखी, एक लगाई हुई है, बट आई बिलीव जब आप ये सेशन अपने बेनिफिशरीज के साथ करेंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगी, उसमें यूथ भी हो सकता है, उसमें हो सकता है बुजुर्ग भी होंगे। सो सबसे पहले हमें ये जरूरत है उस चीज की मैपिंग की कि मुझे एज एन इंडिविजुअल मनी चाहिए क्यों। सो कैन एनीबडी टेल कि मनी हमें लाइफ में चाहिए क्यों होता है? पहले जब रुपए नहीं आए थे तभी भी तो जिंदगियां चलती थी ना, बार्टर सिस्टम से चलती थी, या फिर उसके अलग तरीके होते थे। अब क्योंकि मनी है, करेंसी आई है, तो ये और अब हम क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरीज बैंक में क्रेडिट होती है, हम मनी को फिजिकल फॉर्म में तो देख ही नहीं पाते, वो आती है ईएमआईज में चली जाती है, पेमेंट्स में चली जाती है, स्कूल फीस में चली जाती है। सो एज एन इंडिविजुअल मनी हमें चाहिए क्यों, कोई बता सकते हैं? एज एन इंडिविजुअल इसमें कुछ सही कोई गलत नहीं है, हमारी जिंदगी में मनी हमें क्यों चाहिए? इफ समबडी कैन डिफाइन दैट।
1: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली।
0: हेलो जी,
1: एक बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए मैम,
0: मनी हमें बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए। वेरी गुड
1: अच्छे से
0: सर।
1: कंफर्टेबल
0: मैं
1: लाइफ
0: सत्यम
1: के
0: फतेहपुर जी।
2: मैम, मनी की हमें आवश्यकता मैम हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए भी बहुत जरूरी थी आज के टाइम में, क्योंकि एक तौर पर ये एसेट के तौर पर इसे आइडेंटिटी दी गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिक नेसेसिटी यानी कि खाना, कपड़े हो गए, हमारी एजुकेशन हो गए। एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन के अंदर फ्री है, लेकिन फिर भी हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए काफी मनी चाहिए होता है। डू वी अग्री ऑन दैट?
1: यस मैम।
0: तो एनीथिंग एल्स? एक तो बेहतर लाइफ के लिए हमें चाहिए, बेसिक लाइफ के लिए चाहिए, जो कि अभी हमारे दोस्त ने हमें बताया, संगीता जी ने बताया कि बेटर लाइफ के लिए चाहिए, और किस चीज के लिए मनी चाहिए हमें?
1: मैम प्रिया वर्मा, बाराबंकी सेंटर। मैम जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए
0: हाँ
1: हमें
0: जी
1: मनी की नीड होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारे फतेहपुर सेंटर से किसी ने बताया था शायद कि बेसिक नीड्स, और आप भी वही बोल रहे हैं, दैनिक दैनिक नीड्स जो हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमें चाहिए, पैसा चाहिए, यानी कि पेट भरा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। ये दो चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए हमें मनी चाहिए होता है? आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज के लिए पैसा चाहते हैं? दैनिक नीड में क्या हमारे और कुछ जरूरतें आती हैं, या ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको मनी चाहिए होता है?
1: इसमें हमारा
0: हेल्थ
1: स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई,
0: हेल्थ के लिए चाहिए। वेरी गुड।
1: एक्चुअली मैम
0: एजुकेशन
1: इनफैक्ट हर एक चीज के लिए हमें मनी चाहिए ही है एट प्रेजेंट।
3: सब कुछ के लिए, इवन पानी भी अभी तो पैसे से ही है, सब कुछ के लिए।
0: तो वो तो बेसिक नीड्स में कवर हो जाता है ना, पानी हो गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया।
2: मैम
0: जी बताएं।
2: मैम सत्यम फतेहपुर मैम, हमें मैम मनी की आवश्यकता मैम कोई स्टार्टअप करने के लिए भी पड़ती है, जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कर रहे हैं
0: बिल्कुल
2: के लिए कर।
0: बिल्कुल, तो हमें बेसिक से उठ के अगर हमें कोई रोजगार शुरू करना है, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह के
3: मैम
0: इनपुट्स की कोशिश कर रही थी। जी
3: मैम
0: बताइए।
3: फार्मिंग के
0: फार्मिंग
3: लिए भी चाहिए होती है मैंने
0: के लिए,
3: हमारे
0: बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है। और
3: पास।
0: बताएंगे क्या आपको, अगर अच्छा फोन चाहिए उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। यहाँ तो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम मनी खर्च किन किन चीजों पे करते हैं आजकल। हम एक्सपेंसिव कपड़ों पे खर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग जगह पे घूमने जाएं, उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि कभी कभी की अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाने जाएं, करीबन मतलब कभी कभी तो हम जाएं अच्छी जगह पे, कोई हमें बहुत फैंसी सा रेस्टोरेंट पसंद है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास मनी हो। क्या ऐसा होता है हमारे साथ?
4: यस मैम, पर्सनल ग्रूमिंग पर भी मैम इस टाइम पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि जो बहुत जरूरी है आपको प्रेजेंटेबल लगना जब आप बाहर जा रहे हो, तो इन सब चीजों पे काफी एक्सपेंसेस आते हैं।
0: बिल्कुल, तो ये जो सना ने बोला ये बहुत हटके है हमारी बेसिक जरूरतों से। बेसिक जरूरतें यानी कि हमारा रोटी कपड़ा मकान हो गया, एजुकेशन हो गई, इसके लिए तो हमें ये तो हमारी बेसिक नीड्स में आ जाता है। जो सना ने बोला या जो फतेहपुर से बोला था अभी किसी ने, कि हमें एंटरप्राइज शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस या लघु उद्योग शुरू करने के लिए सीड मनी चाहिए होता है, यानी कि हमें अपना कुछ ऐसा पैसा चाहिए जो हम अपना उद्योग शुरू कर सकें या अपना बिजनेस शुरू कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि सना ने बोली है, कि आजकल हम बेसिक से उठ के अपनी एक इमेज मैनेजमेंट, जिसको कह सकते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए भी हम काफी पैसे खर्च करते हैं एज एन इंडिविजुअल। हो सकता है सभी नहीं करते हो, बट बहुत आजकल ये जो सोशल मीडिया की वजह से ना, हमें ये बहुत लगता है कि अच्छा ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा मेकअप होना चाहिए, इस तरह का फोन होना चाहिए, इस तरह के कपड़े, इस तरह की जगहों पे मुझे जाके फोटोज लेना है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक बेसिक जरूरत नहीं है, लेकिन आज के दौरान में ये एक फैशन या फिर एक ऐसी जरूरत बन गई है जो कि हमारी शायद इमेज मैनेजमेंट, इसको हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारी इमेज ऐसी हो, तो हम उस इमेज मैनेजमेंट के लिए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। उसकी जरूरत है नहीं है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, उसमें सही या गलत कुछ भी नहीं हो सकता या है। तो अब जब हम मनी की बात करते हैं ना, तो अभी देखिए सबने अलग अलग जवाब दिए, तो मनी की वैल्यू मेरे लिए कुछ और हो सकती है, सना के लिए कुछ और हो सकती है, संगीता जी के लिए कुछ और हो सकती है, हाँ हमारे जो और दोस्त जुड़े हैं सभी के लिए मनी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी जरूरत हो सकता है कुछ और होगी, आज मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं एज ए मदर हूँ तो मेरी जरूरत कुछ और हो सकती है। तो मनी की जो नीड है वो समय समय पर चेंज होती है, और अमाउंट ऑफ मनी क्या चाहिए वो भी चेंज होता है। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ मनी की बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल इसकी विशेषता अपने हिसाब से डिफाइन करे, और इसमें कोई सही या कुछ गलत नहीं है। बिकॉज किसी के पास थोड़ा है तो उसमें भी शायद वो खुश है या ना खुश है, किसी के पास बहुत है तो उसमें भी वो खुश है ना खुश हो सकता है। सो मनी इज टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, द नीड ऑफ दैट मनी इज ऑल्सो टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर फ्यूचर, यू नो पेरेंट्स और योर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। एवरीबडी अग्रीज, या इसमें किसी की कोई और सोच है या कोई और हेल्प करना चाहता है इसको डिफाइन करने के लिए? तो पहले तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मनी समझना है। यहाँ पे थोड़े बच्चे भी हैं, ये प्रिया वर्मा के जो सेंटर से हैं,
1: मैम 12 बंकी सेंटर।
0: बाराबंकी से हैं, ओके फाइन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट दिस एज ग्रुप टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये टीओटी सेशन ज्यादा है, सो आई बिलीव जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, और अगर इन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर आज बात कर सकते हैं, या फिर आपके सेशंस के दौरान भी आप इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। सो जैसे अगर हम अपना एक मंथली बजट बनाएंगे, मनी मैनेजमेंट की बात हम ये कर रहे हैं कि ठीक है एज ए स्टूडेंट मुझे क्या मैनेज करना है, कितना मुझे बजट चाहिए एज ए हाउसवाइफ मुझे क्या चाहिए, एज ए एंटरप्रेन्योर अगर हम अपना कोई उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं तो मुझे किस तरह का बजट चाहिए, वो बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम जब एक महीने का भी बजट बनाएंगे ना, तो मोटा मोटा हमें पता चलेगा कि हमारा मेजर खर्चा वो किस चीज के लिए रहा है। कभी किसी ने बजट बनाया यहाँ पे अपने, जेन्युइनली बताना कि किसी ने भी बजट बनाया है अपने घर का या फिर बिजनेस का या फिर सेंटर का, तो आप बनाते ही होंगे, सेंटर का बजट बनाया है। कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश करी है कि मेरी जो सैलरी आती है या मेरी जो इनकम आती है वो जाती कहाँ। जब जब मैं 10 साल पहले काम कर रही थी या कर रहा था, तो शुरुआत में जो मेरी इनकम थी मुझे वो भी कम लगती थी, आज भी जो इनकम है वो भी कम लगती है, आगे आने वाले मुझे जो चीजें हैं उनके लिए भी जरूरतें कम पड़ रही हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ, बनाया है किसी ने बजट अपने घर का या अपना खुद का, एज ए स्टूडेंट आपने कभी बनाया है कि ठीक है मुझे
2: यस
0: अपनी
2: मैम
0: हायर एजुकेशन के लिए, कोई कोई एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहते हैं
2: जी मैम
0: बताएं।
2: मैम क्योंकि मैम कभी कभी मैम ऐसा होता कि मैम हम जो बनाते अचानक से कोई जरूरत पड़े, जैसे मैम कॉलेज की फीस हो गई, सेमेस्टर वही पड़ जाती है, जिम की फीस अलग जाती है, ये सब मैंने बना कर रखा है, और कभी कभी अचानक भी ज्यादा पैसों की जरूरत लग जाती है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल सही,
2: थोड़ा मैनेजमेंट करना।
0: बिल्कुल सही। हम पूरा बजट बनाते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमने शायद प्लान भी नहीं करी होगी। तो बहुत जरूरी है पहले तो अपनी नीड्स को समझना। नीड्स हो गई जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितना कितना बजट की जरूरत है, पहले तो हमें वो समझना है अपनी लाइफ में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में। और फिर दूसरी आ गई वॉन्ट्स, जिसकी वॉन्ट्स मतलब जिसकी हमारी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम जी सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा आउटलुक मेंटेन करने के लिए हमें वो चीजें चाहिए। मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा जगह पे खाना खाना चाहती हूँ। खाना तो मैं बेसिक भी खा सकती हूँ, घर पे बना हुआ, खुद का बनाया हुआ, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ, या बहन के या भाई के हाथ का, किसी के भी हाथ का बनाया हुआ खाना मैं खा के खुश रह सकती हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊँ, वहां जाके अच्छे कपड़े पहनूं और फिर वहां जाके अच्छा सा खाना खाऊं और टाइम स्पेंड करूं, थोड़ी सेल्फीज लूं, वो सेल्फीज को मैं पोस्ट करूं, तो वो हो गई मेरी वॉन्ट। तो ये नहीं कहना है कि नीड्स और वॉन्ट्स जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। नीड्स मतलब अगर मेरी जरूरतें पूरी हैं तो मैं जी सकती हूँ, मैं वॉन्ट्स पे तब जाती हूँ जब मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जरूरतों को कम करके अपनी वॉन्ट्स को पूरा करूं। जब हम वो करना शुरू करते हैं तब हमारा बजट जो है वो हिल जाता है कि भाई बेसिक नीड, राशन तो घर में आया नहीं महीने का, लेकिन हमने जाके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और एक ही बारी में 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो अब राशन तो आएगा नहीं क्योंकि वो हमने पैसा खर्च कर दिया। तो एक दिन तो मैंने अच्छी जगह पे खा लिया, मेरे पास फोटोज भी आ गई, मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया, मेरे पास 10,000 लाइक्स भी आ गए, बट क्या वो मेरी जरूरत थी या नहीं थी, ये आप इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे अपने लिए। इसमें अगेन कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, आपकी जिंदगी की क्या क्या नजरिया है आपकी जिंदगी के लिए वो यू कैन ओनली डिफाइन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल टू अंडरस्टैंड। ये बहुत जरूरी है एक लाइफ स्किल होना कि पैसे की अहमियत आज समझिए, कल बेहतर, आज और बेहतर कल के लिए। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम अभी नया नया जॉब शुरू किया है, या चाहे हम एक लघु उद्योग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे हम हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं और एक हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अपनी कुछ बिजनेस यहाँ पे कर रही हूँ और थोड़े टाइम में मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल ग्रोथ हो और मैं कुछ आगे जाके एडवांस कोर्सेज करूँ, तो मुझे उसके लिए भी सेविंग्स करनी है। तो बहुत जरूरी है हम एक बजट बनाएं। कुछ लोग मंथली बनाते हैं, कुछ लोग 2-3 महीने का बना सकते हैं, कुछ लोग साल का बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट डू मेक अ बजट एंड डू ट्राई एंड ट्रैक कि जो बजट आपने बनाया एट द एंड ऑफ द मंथ आप कहाँ पे थे, तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। कभी कभी हम क्या कहते हैं, इम्पल्स इम्पल्स खर्चे भी कर देते हैं, कभी कभी इमरजेंसी खर्चे हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो हमारे फ्रेंड फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि कभी कभी वो कोशिश करते हैं कि इन इन चीजों पे खर्चा करें, बट ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है या ऐसी कोई फीस आ जाती है जो उन्होंने शायद प्लान नहीं करी थी और इमिडिएटली उनको पे करना पड़ा, तो उस चीज में उनका बजट हिल जाता है। जब आप ये 3, 4, 5, 6 बारी करेंगे ना, तो आप खुद इफेक्टिवली अपना बजट, जो मंथली बजट्स हैं या जो साल के या 6 महीने के आपका जो एक प्लान है बजट को लेके, वो आप अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, और जो भी मनी आपके पास है उसको आप एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी के पास सैलरी आती है, मान लीजिए जो काम कर रहे हैं, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं?
2: मैम, सबसे
4: हेलो
2: पहले
4: मैम।
2: जो नमस्ते मैम
0: नमस्ते जी।
5: जी, गजराज बोल रहा मैम, वाराणसी। वैसे
0: हाँ जी गजराज सर।
5: मैम, अभी जो सेशन चल रहा बड़ा अच्छा, अभी तक किसी अभी तक जो योजना है बजट को लेकर, पारिवारिक खर्चों को लेकर किसी, मैं मेरी बताऊं तो मैंने अभी फोकस नहीं किया। बाकी ये आज का सेशन से आगे के लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनके साथ हम काम करेंगे उनको भी ये समझाने की जरूरत है मैम। अब जो
0: जी
5: आज अभी आप पूछ रहे हो कि क्योंकि जैसे जो सैलरी मिलती है, तो सबसे पहले तो जो राशन पर खर्चा कितना होता है, राशन पर खर्च होता है नंबर एक, तो 1 महीने में जितना भी जो अपन को जरूरत
0: बिल्कुल
5: होती
0: बिल्कुल,
5: है,
0: पेट
5: और
0: भरना
5: दूसरा
0: सबके लिए
5: पानी और
0: जरूरी।
5: बिजली,
0: ठीक है, पानी हो गया और बिजली हो गया।
5: बिजली और फिर एजुकेशन बच्चों के उस पर, क्योंकि ये तो मनुष्य की जो अति जरूरत चीजें हैं। जब तक राशन नहीं होगा, जब तक उसका जीवन नहीं चलेगा, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
5: ये है मैम। इसलिए सबसे पहले राशन, यानी कि 1 महीने का कितना खर्च, तो जो सैलरी मिलती है वो उस पर नॉन तेल घी जो भी है जरूरतों पर चला जाता है मैम।
0: बिल्कुल
5: दूसरा
0: सर।
5: फिर फोकस करते हैं कि क्योंकि बिजली नहीं है तो भी अंधेरा है, तो वो बिजली का बिल जो भी चुकाना होता है, पानी पर खर्च है, फिर उसके बाद में बच्चों के एजुकेशन पर मिनिमम जो भी जितना बचता है वो धीरे धीरे ऐसे मतलब इस खर्चे होते चले जाते हैं मैम।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू गजराज सर। गजराज सर ने बहुत सिंपल और सरल तरीके में बताया कि सबसे पहले तो जरूरतों को हम पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे सैलरी आती है या जिनका कोई बिजनेस है, कुछ मनी आती है, तो महीने में सबसे पहले वो अपना राशन पूरा कर लेते हैं कि ठीक
5: जी
0: है, पूरा राशन, पूरे परिवार का पेट भरा होना चाहिए, तो हमने उसको राशन पूरा कर दिया। उसके बाद बिजली पानी होना चाहिए, हमारे ऑब्वियसली घरों में बिजली पानी का खर्चा है, वो खर्चे पूरे हो जाते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, तो ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं। हमारा हर मंथ मंथ दर मंथ ऐसे चलता रहता है, महीने दर महीने, महीने दर साल बिल्कुल इन जरूरतों को हम पूरा करते रहते हैं। कोई और एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा इसके बाद? इसके साथ साथ किसी का कोई अलग नजरिया है, कुछ कोई अलग तरीके से अगर अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं, कोई शेयर करेंगे?
2: मैम, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं पहले हम उनको पूरा कर लेते हैं, जो फिर मनी बचती है उसको हम अपने पास सेविंग्स रखते हैं, क्योंकि वो जो आगे मनी आएगी वो आगे भी काम कभी आ सकती है।
0: वेरी गुड। सो पहले हम बेसिक्स पूरा कर लेते हैं और जो बचा हुआ मनी है उसको सेविंग्स में रख लेते हैं। तो सेविंग्स में आप क्या सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें रखते हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं?
2: सेविंग अकाउंट में
0: सेविंग अकाउंट में रखते हैं, भाई कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस सेविंग अकाउंट में से वो मनी निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ 3% के करीब हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो जो सैलरी हमारी आई उसमें हमने बेसिक खर्चे निकाल लिए, और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारा सेविंग में पड़ा रहा। बहुत ही बढ़िया आई। और कोई कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू।
4: मैम, सबसे पहले प्रायोरिटी सैलरी आने के बाद होती है कि फीस जमा करनी है बच्चों की।
0: बिल्कुल
4: मैम, वो एक प्रायोरिटी है जो करना ही करना है, उसके अलावा जो ईएमआई है वो पे करना है। प्लस मैम, 5% मेरी सैलरी का हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, कभी भी कोई फंक्शन हो गया स्कूल में या किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ गई, या बच्चों की कोई हेल्थ का इश्यू हो गया, तो वो अर्जेंट नीड के लिए वो पैसे सेव करके रखने पड़ते हैं, 5% ऑफ द सैलरी
0: इमरजेंसी, आप उसको
4: इमरजेंसी के
0: इमरजेंसी
4: लिए।
0: फंड कह सकते। तो ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा पहलू आ गया जो सना ने बोला। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो पहलू थे, कि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स जो है, रोटी कपड़ा मकान, उसके उसके ऊपर करते हैं। दूसरा था एजुकेशन। अभी तीसरा आ गया इमरजेंसी फंड, यानी कि एजुकेशन से, बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि सना एक यंग कपल है, तो वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई कुछ भी खर्चा आए तो बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब हमारे पास मोटे मोटे तीन पहलू आ गए, पहला रोटी कपड़ा मकान, दूसरा हमारी एजुकेशन, तीसरा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हेल्थ के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, कुछ भी। एक हमने इमरजेंसी फंड के लिए खुद से, वो कह रही है कि हमने बाय डिफॉल्ट 5% अपनी इनकम का, सेविंग्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक इमरजेंसी फंड में उसको रख देते हैं 5%। बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ, किसी और का कोई और तरीका है अपनी सैलरी को मैनेज करने का, कुछ अलग, इससे कुछ अलग, अगर इसके कुछ एडिशन में अगर कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके तरीके से, जैसे मैं कभी इमरजेंसी फंड में शायद नहीं करती हूँ, लेकिन आज सना की बात सुन के शायद मैं आज से 2%, 1%, 3%, 5% इमरजेंसी फंड में हो सकता है रखना शुरू कर दूं। कोई कुछ और करता है अलग सा, ऐसा कोई डब्बे के नीचे छुपाता है पैसे, हस्बैंड से आटे के अंदर, चावल के अंदर, ऐसा नहीं करते?
3: ऑल द लेडीज मैम,
0: ऑल द लेडीज डू दैट। सो उसको, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको उसको भी हम एक सेविंग के तौर में, मतलब हमने कहीं बैंक में नहीं रखा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एज ए, वो भी एक इमरजेंसी फंड ही है, लेकिन वो हमने एज ए सेविंग के तरीके से उसको अपने बचत की तरीके से रखा। यानी कि हो सकता है हमने घर की इनकम के लिए 100 रुपया निकाला हो सैलरी में से, लेकिन हमने घर को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि 80 रुपए में उस महीने के खर्चे हो गए, और जो 20 रुपए बचे उसको हमने एक बचत के तौर पे रख दिया। यानी कि बजट बनाया और उसको भी बचत के तौर पे रख दिया। ये हम सब करते हैं, खासकर लेडीज करती हैं, शायद जेंट्स नहीं करते हो, या करते हो, या इससे भी इफेक्टिवली करते हो, तो ये भी एक सेविंग्स का तरीका है।
5: चंद्रप्रकाश बोल रहा हूँ।
0: जी सर,
5: मैं तो खुद तो मेरे बस बचत करता ही हूँ, पर लेकिन जो मेरे व्यूवर स्टाफ है जो भी साथ काम के, सबको 20% राशि की आरडी का पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा रखी मैंने सबकी।
0: वेरी गुड। सो पोस्ट ऑफिस में जो कि सेफ भी माना जाता है, अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, और एक कंपल्सिव सेविंग भी हो जाती है, दैट इज अनदर।
5: स्वीपर करता है उसकी भी मैंने उसके हिसाब से आरडी करा रखी है। भी वाले महिला है उनकी भी आरडी करा रखी है। तो सबकी जितना पैसा आता है एजेंट वही बुला लेता हूँ, सेंटर पे सबको जमा करवा देता हूँ। तो उनके लास्ट में 100 रुपए में उनको 6,500 करीब मिलेंगे उनको 5 साल में। तो एक उनकी सबकी सेफ बचत आदत पड़ गई, सबकी बचत होने की।
0: तो छोटी छोटी बजट से आपने देखा किस तरीके से स्मॉल सेविंग्स कैन यील्ड टू अ बिग अमाउंट। एक 5 साल के, हमें सोचने में लगता है कि 5 साल बहुत दूर है, लेकिन वो छोटी छोटी छोटी छोटी सेविंग्स करते करते लमसम मनी हमको एंड में मिल जाता है। थैंक
1: मैम,
0: यू
1: कैन आई
0: चंद्रप्रकाश
1: से
0: जी।
1: समथिंग मैम?
0: जी जी मैम, बिल्कुल।
1: मैम, आई डोंट नो इफ आई कैन से लाइक दिस। आई सेव एवरी मंथ सम मनी टू गिफ्ट माय डॉटर एवरी ईयर समथिंग इन गोल्ड मैम। सो एवरी मंथ आई सेव।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वो है कि यू हैव टू गिव समथिंग टू योर डॉटर, राइट? अभी आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो शायद आप प्रोबेबली उस एज में पहुंच गए हैं, उस स्टेज में पहुंच गए हैं आपकी लाइफ में जहां पे बेसिक नीड्स के बियॉन्ड, क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो चुकी है, यू हैव मेड कमिटमेंट्स टू देयर यू नो मैरिज एंड अदर अदर थिंग्स दैट यू हैव, यू माइट हैव सेविंग्स फॉर योर हेल्थ एंड एमरजेंसी। तो आपको लगा कि आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जो कि लमसम हो एंड यू कैन गिफ्ट टू योर डॉटर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो हम गोल की बात कर रहे थे कि आपको मनी क्यों चाहिए, ये आपको खुद को डिफाइन करना, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका। शायद मेरी जिंदगी में अभी वो नीड नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, जैसे सना ने बोला उनके बच्चे छोटे हैं, तो हमारी नीड्स अभी इस वक्त है उनके एजुकेशन को लेके, फ्यूचर को लेके। बट शायद जो हमसे थोड़े बड़े हैं, जो हमसे थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी नीड बदल गई है क्योंकि उनको एक अलग लेवल की जरूरत है। सो आई थिंक, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैं कहना चाह रही थी कि नीड हम सबकी मनी को लेके हर वक्त अलग होती है और वो नीड बदलती रहती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट नीड एंड वर्क योर बजट अकॉर्डिंग टू योर नीड। एज ए स्टूडेंट हमारी नीड अलग हो सकती है, हमें उसे पहचान के अपना डिफाइन करना है कि मुझे लाइफ में कितना मनी चाहिए अपनी स्टूडेंट या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जब वो हो जाता है, हमें कितना बजट चाहिए अपने घर
1: हेलो,
0: परिवार को चलाने के लिए। हाँ जी,
1: नमस्ते मैम, कैसे
0: नमस्ते जी,
1: हो मैम?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
6: ठीक है मैम, हम भी और आपको देख के और ज्यादा ठीक हो गए।
0: हम भी आपको देख के खुश हो गए, और आप
6: अच्छा
0: बोल रहे हैं
6: मैम,
0: कि सबसे अच्छी बात है जी।
6: मैं सुन सेंटर से बोल रही हूँ। हाँ जी, मोबिलाइजेशन का काम करती हूँ मैम, शोभा नाम है मेरा।
0: जी जी जी
6: मैम
0: बताओ
6: हमने
0: शोभा
6: जो हमारी
0: जी,
6: सैलरी मिलती है ना, हम उसमें से अपने पैसे निकाल के हम बचत जमा करते हैं मैम।
0: कहाँ पे करते हैं आप बचत जमा?
6: हमने 10 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है,
0: अच्छा ठीक है,
6: 10 महिलाओं का ग्रुप बना के हम उसमें से 200 रुपये पर मंथ निकाल के अपनी बचत जमा करते हैं, सेव करते हैं
0: तो फिर वो आपको मिलता कैसे है, वापस कैसे मिलता है?
6: मैम। वो पैसा हमको, जैसे हमें कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, घर में जरूरत पड़ती हो, तो हम एक प्रस्ताव बनाते हैं मिलके 10 लेडीज इकट्ठा होके, तो उसमें से जिसको जितनी जरूरत होती है उसमें से पैसे निकालते हैं और अपना काम चलाते हैं हम। और फिर
0: वेरी
6: वो
0: गुड,
6: 200 रुपये बचत तो हमेशा ही जमा होती है, लेकिन पर उसकी किस्त बन जाती है,
0: वेरी
6: 1% का
0: गुड।
6: ब्याज है, 1% का
0: अच्छा
6: ब्याज है मैम इसमें।
0: 1% का ब्याज। तो
6: हाँ
0: आपने
6: जी,
0: ये एक लोकल लेवल पे जो सेविंग स्कीम है अपनी महिलाओं के साथ, एक महिला ग्रुप के साथ वो शुरू किया है, राइट?
6: हाँ जी,
0: तो ये जो है, ये आपको एट ए टाइम ऑफ जो इमरजेंसी है या ऐसी कोई बेसिक जरूरत है जो यकायक आ जाती है, उसके लिए आप उसको, इस फंड को यूज कर लेते हैं,
6: हाँ जी,
0: बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये आपने दिया। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ बात करेंगे, जैसे चंद्र प्रकाश जी ने भी बताया कि हर किसी को ये जो स्किल है एज ए लाइफ स्किल आना बहुत जरूरी है, स्पेशली आने वाली जेनरेशन को, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो इससे भी ज्यादा जो है स्ट्रेसफुल होने वाला है इमेज मैनेजमेंट के ऊपर,
6: बिल्कुल
0: कि अच्छा मुझे किस तरीके से अपने आप को दुनिया को दिखाना है। उस चीज में कहीं ना कहीं हम अपनी बेसिक जरूरतों को काट के हम अपनी इमेज मैनेजमेंट में लग जाते हैं, और हम फिर क्रेडिट कार्ड्स पे या फिर लोन्स लेके या फिर ऐसे एक विशेष सर्कल में फंसते चले जाते हैं जहां पे हम कितना ही कमा लें हमको वो कम ही पड़ता है। सो इट इज वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मनी को मैनेज करना सीखें अपने लेवल पे। हम किस लेवल पे हैं आज, लेवल एज इन हम स्टूडेंट हैं, हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिन जिनकी हो सकता है हेल्थ कंडीशन ऐसी हो कि हमें उनके लिए भी
6: बिल्कुल
0: सेविंग्स करना है। तो समय समय पे ये चीजें चेंज होती हैं और उस समय के अनुसार हमें अपना घर परिवार बजट मैनेज करना सीखना है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जो कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझना हमसे भी शायद ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बताया, अभी हमें सुन से जो एग्जाम्पल मिला है, सना ने जो बताया एंड शैलजा मैम ने बताया, स्टार्ट स्मॉल। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम 10,000 रुपए की एफडी करें या 50,000 की एफडी करें या बहुत बड़े म्यूचुअल फंड में, आजकल हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है, बहुत बहुत आसान है, ऐसे करके एड्स आती हैं। अगर इस समय पे हमें वो बड़ी चीजें नहीं समझ में आ रही या हम नहीं कर पा रहे, इट डज नॉट मैटर। हमारी पहले की जो पीढ़ी थी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी दादी या उनकी जो मदर थी, उनको उनकी कहानियां सुनेंगे तो ये होगा कि अच्छा उन्होंने अपनी जो मंथली उनके पैसे आते थे, उनको मिलते थे हाथ में, उस टाइम पे तो लेडीज अर्न नहीं करती थी ना ज्यादा, उनको जो भी उनके हस्बैंड्स ने दिया या कुछ दिया वो घर के खर्चों में से बचत करके साल 2 साल 10 साल में इतने पैसे इकट्ठे कर लेती थी कि कभी कभी उनको खुद नहीं रियलाइज होता था कि इतने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि स्टार्ट स्मॉल, आज आप छोटा भी अगर सेविंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं आजकल गवर्नमेंट के अंदर, हम स्कीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज हम एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, पैसे को लेके जो एटीट्यूड है हमारा, उस लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात करते करते भी हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स मिल गए हैं कि कुछ जो अभी फतेहपुर से थे उन्होंने बताया कि वो सेविंग बैंक में रखते हैं, सना ने बताया वो इमरजेंसी फंड में रखते हैं, शैलजा मैम, संगीता हमारे साथ और चंद्र प्रकाश जी जो और 2-3 लोगों ने बताया कि वो अलग अलग तरीके के कुछ उन्होंने नॉन फॉर्मल या फिर फॉर्मल जो सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गई, प्रोविडेंट फंड है, आजकल तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हम छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा लेवल एज इन अगर आज हम 100 रुपए भी बचा सकते हैं, 200 रुपए भी बचा सकते हैं, तो 5 साल 10 साल के बाद हमें वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। कई स्कीम्स ऐसी होती हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी देते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स स्कीम्स हैं, उनको अगर अभी हम नहीं भी समझ पा रहे हैं तो हम सिंपल सेविंग, जो सिंपल सेविंग स्कीम्स हैं उनके, उनको समझ के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें रिस्क कम है और अगर जब हमें इमरजेंसी में जरूरत हो तो हम वो फंड निकाल सकते हैं। लेकिन आदत सेविंग्स की होनी चाहिए। सेविंग्स की आदत ऐसे पड़ सकती है कि हम कंपल्सरिली कुछ परसेंट, 1%, 2%, 5%, 10% अपनी सेविंग्स का, अपने इनकम का सेविंग्स में रखें ही रखें। उस एटीट्यूड को बनाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं, उस एटीट्यूड पे बात करने की आज कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो करीबन मतलब एक ऐसी एज पार कर चुके हैं जहां पे उनको सेविंग्स की आदत लग गई है। बट ये सेशन हम अपने बेनिफिशियरी के साथ करेंगे जो 15 से लेके हो सकता है 30 तक की एज में होंगे। वो एज ग्रुप जो है ना वो बहुत वनरेबल है। मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्पेंडिंग, ठीक है अर्बन है, यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, बट ये एक्सपोजर हर जगह पे है क्योंकि जो फोन के जरिए से मीडिया है ना वो सब तरीके से फैला हुआ है। तो ये चीज जो मनी को लेके हमारा एटीट्यूड है ना कंजम्पशन का, मतलब आज अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे कंज्यूम करके खुश हो जाएं, कहीं ना कहीं वो हैबिट आ रही है। कुछ हमारी जनरेशन में भी है, कुछ हमारी आने वाली जनरेशन में भी है। हमारे से पहले वाले जनरेशन तो पूरा ही बचत की तरफ चलते थे, कभी कोई नीड उन्होंने पूरी करी ही नहीं। एक नई शर्ट लेने के लिए भी मुझे लगता है वो 100 बार 10 बार सोचते थे, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। मतलब बहुत ही सेविंग्स की तरफ वो उनका रुझान अलग ही लेवल का था। जब हमारी जनरेशन आई तो हमने एक मिक्स्ड, कुछ हम कंज्यूम करते हैं, कुछ हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और कुछ हम सेविंग्स करते हैं। तो अगेन सही या गलत कुछ भी नहीं है। द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड वॉन्ट्स। पहले नीड्स को पूरा करके हम कुछ सेव करेंगे इमरजेंसी के लिए या ऐसी कोई प्लानिंग के लिए, जरूरी नहीं है इमरजेंसी के लिए हम सेव करेंगे। अगर मेरा शौक है कि मुझे आज से 20 साल के बाद मुझे किसी बाहरी देश में घूमने जाना है तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। छोटा छोटा छोटा छोटा इन्वेस्ट करें, कहीं स्मॉल स्मॉल सेविंग्स करें, 5 साल 10 साल के बाद एक फंड ऐसा आ जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हो सकता है आपका यही ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि शैलजा मैम ने बोला उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो एक गिफ्ट करना चाहती हैं हर साल के एंड पे अपनी डॉटर को। सो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका फंड है, आप उसे मैनेज करेंगे, बट तभी कर पाएंगे अगर आप अपने फंड को तरीके से समझ पाए, अपनी नीड्स और वॉन्ट्स को दो मोटे मोटे भागों में बांट पाए। कभी कभी ना हम किसी चीज को देखते हैं और हमारे पास पैसा है, हमारे पास सेविंग्स भी है, कभी कभी लगता है हमें ना ये चीज खरीद लेनी चाहिए। तो जब मैं ये सेशन बना रही थी बहुत प्यारी सी 30 डे रूल मेरे सामने आई, सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। हो सकता है किसी को ये हेल्पफुल हो। तो ये रूल ये कहता है कि अगर मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, मेरा खाना पानी बिजली, मेरी एजुकेशन भी हो गई, बच्चों की एजुकेशन भी हो गई, अब मेरा दिल कर रहा है कि एक बड़ी सी कोई चीज लेने का, मान लीजिए मोबाइल फोन है, बहुत अच्छा सा नया मोबाइल फोन आया मार्केट में और मुझे वो लेना है, या एक बहुत सुंदर सी साड़ी आई है वो लेनी है, या एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है सब उसमें जा रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, मुझे भी उसमें जाना है, लेकिन वो बहुत खर्चा हो जाएगा उसमें। जितनी मेरी सेविंग्स है करीबन उसकी आधी जो सेविंग्स है वो निकल जाएगी। तो ये 30 डे रूल ये कहता है, बचत का ये रूल है कि आप जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं ना 30 दिन के लिए रुक जाइए। 30 दिन आज आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये चीज मेरे को लेनी है, वो पैसा आप अलग से 30 दिन के लिए डाल दीजिए, किसी एक FD में डाल दीजिए, तो 30 दिन की FD भी आती है आजकल। 30 दिन के बाद आप

उससे एक बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं जो आगे जाके हमें अफसोस होता है कि अरे इसकी शायद इतनी जरूरत नहीं थी। इसके बारे में, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आई वॉन्टेड टू लीव दिस विद यू, बट अगर आप चाहें तो बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं इसके बारे में, ऑनलाइन स्टोरीज हैं 30 डे सेविंग्स रूल के बारे में। आप चाहें तो ये स्टोरीज आप देख सकते हैं अपने बेनिफिशरीज के साथ, जब आप ये सेशन करेंगे यू कैन शेयर दो स्टोरीज। एंड मुझे लगता है ये वाकई, मैंने खुद भी कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये बहुत आई थिंक प्यारा रूल है कि अगर कोई चीज हमें आज लग रहा है कि मुझे वो खरीद लेनी चाहिए या मुझे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मुझे घूमने चले जाना चाहिए इस जगह पे, तो मुझे जाना ही जाना है, सारे लोग जा रहे हैं, 30 दिन के बाद भी अगर आपका दिल, आपका मन, आपकी जरूरत अभी भी वैसी ही है, ये हम इम्पल्सिव परचेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की हमारी सेविंग्स जो है वो खर्च हो जाती है, कभी कभी हमारा बजट पूरा हिल जाता है, उस चीज के बारे में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। किसी के कोई एग्जाम्पल्स, कभी किसी ने ऐसा किया हो, कोई बहुत जरूरत की चीज लग रही हो और उसको 5 दिन के लिए रख दिया कि नहीं अच्छा 5 दिन के बाद सोचूंगी या सोचूंगा, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नेक्स्ट टाइम लेट्स ऑल ट्राई, अगर ऐसा होता है, अगर हमें लगता है तो वी कैन ट्राई दिस एंड दिस माइट हेल्प अस बिल्ड आवर सेविंग्स अलॉट, और हम उस मनी को हो सकता है किसी और अच्छी चीज पे खर्च करने के लिए बचा लें। सो दिस इज वन टेक्निक। दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि जो हमारी इनकम है उसको हम खर्च करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है कि जैसे ही हमारी सेविंग्स आती है हम अपने बेसिक खर्चों में उसे खर्च कर देते हैं और जो बचा हुआ है उसको सेविंग्स में डाल देते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वे है अपनी बजट मैनेजमेंट का। एक प्रोग्रेसिव वे और एक ऑल्टरनेट वे ये है कि जैसे ही हमारी इनकम हमारे पास आती है हम कंपल्सरीली सबसे पहले बचत में डालें उसको, और जो बचा हुआ पैसा है उससे हम खर्चे पूरे करें। तो ये अब अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं इसके बारे में, बट जो सेविंग्स करने का तरीका है वो उल्टा होना चाहिए। पहले हम अपने 100 रुपए में से 5 रुपए, 10 रुपए, जो जितना भी मेरा जितने भी मुझे लगता है कि मैं सेव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ पर मंथ, वो एंड में नहीं करेंगे, वो सबसे पहले करेंगे। जिसका एग्जाम्पल सना ने भी हमें दिया कि इनकम आते ही हम सबसे पहले अपना बचत का जो पोर्शन है उसको अलग कर लेंगे और खर्चे बाद में करेंगे। दैट इज अनदर वे ऑफ यूजिंग आवर मंथली बजट या हमारे साल दर साल का जो हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। देयर वाज अनदर रूल कि ये 50-30-20 का रूल है। इसके अलावा मुझे 70-20-10 का भी रूल मिला है। इसका कहने का मतलब वही है कि किस चीज पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता है। तो 50% जो है हमारी बेसिक नीड्स के लिए हम हमेशा उसको रखें, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीजों पे आप समय समय पे अपना जो है एक्सपेंसेस, जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 50% आप खर्च करते हैं। हम सब खर्च करते हैं, 20% सेविंग कर सकते हैं, 10% सेविंग कर सकते हैं, 5% सेविंग कर सकते हैं, और कुछ आप देखिए हर वक्त सेविंग करते रहेंगे इतना तो कोई हम साधु का जीवन नहीं जी रहा, कोई भी नहीं जी रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त सेविंग मोड में ही रहना है। हमें कुछ अपने शौक भी पूरे करने हैं, हमें कुछ अपने इच्छाएं भी पूरी करनी है उस मनी के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ समय समय पे अपने आप को, अपनी फैमिली को या अपने जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनको मैं कुछ अलग रिवॉर्ड सा दूं। वो आती है बॉन्ड्स में, वो आती है हमारी लग्जरी में। हो सकता है कुछ लोग दिवाली पे नए कपड़े खरीदते हैं, कुछ लोग ईद पे नए कपड़े खरीदते हैं, हो सकता है कुछ लोग मंथली बोलते हो कि ठीक है मुझे कुछ ना कुछ बचत करके अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नया खरीदना ही है। तो उसके लिए भी आप पहले से प्लानिंग करके चलें। जब आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आप इफेक्टिवली यूज करेंगे, इंपल्सिवली नहीं यूज करेंगे। इंपल्सिव में फिर हमारा 30 डे रूल आ जाएगा कि अगर इम्पल्स बाय है तो 30 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, 15 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, अगर 15 दिन के बाद भी मुझे वो जरूरत लगती है तो हम वो चीज को परचेज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अगेन आई वुड से कि हम हो सकता है कर रहे हों इसको,

0: लेकिन ये सेशंस हमने अपने बेनिफिशरीज के लिए भी बनाए हैं, जिसमें कि बच्चे भी हैं, यूथ भी है, शायद उन्होंने अभी कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन 20-25 साल की उम्र में जो कमाने लगेंगे, अगर पहले से ही, शुरू से ही वो आदत डल जाए कि हाँ हमें बचत करते हुए चलना है, तो आप ये सोचिए जो 20 साल में सेविंग्स करना शुरू कर देगा, जब तक कि वो 50 साल का या 60 साल का हो जाएगा, कितनी सारी सेविंग्स उनके पास इकट्ठी हो जाएंगी। सो दिस इज अ हैबिट मैनेजमेंट, दिस इज अ बिहेवियर मैनेजमेंट, जो कि हमें खुद से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट सेशन। आई थॉट कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जिसके बारे में हमने फॉर्मली कभी बात नहीं करी है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। आई जस्ट स्टॉप शेयर। ऑल राइट, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल सेशन ऑन फाइनेंस मैनेजमेंट। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी, दिस यू कैन शेयर विद द बेनिफिशरीज, स्पेशली जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बोला, वो उन्होंने आदत डलवाई है, ना कि सिर्फ अपने बेनिफिश ना कि खुद को, बल्कि अपने स्टाफ को भी, इंक्लूडिंग एवरीबडी, जितने लोग उनके साथ जुड़े हैं सेंटर पे। सेविंग्स की अहमियत उन्होंने वहां पे हाईलाइट करी है। आई वुड से सेविंग्स जो है हम छोटे से शुरू कर सकते हैं, जितना जल्दी शुरू करें, जितना इनफॉर्मल करें फॉर्मल करें। इनफॉर्मल मतलब हम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखें, एफडी में उसको रखें, या फॉर्मल तरीके से किसी इन्वेस्टमेंट में रखें। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में रख रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ आप अपना फंड इन्वेस्ट करिए, पूरी समझ बूझ के साथ करिए, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने के ऊपर, किसी गलत स्कीम में मत उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा 30% का इंटरेस्ट मिलेगा, इतना हमें रिटर्न मिलेगा, उसके धोखे में आके गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम कम इन्वेस्ट करें, कम इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन जो हमारे को समझ में आता है उस चीज पे हम इन्वेस्टमेंट करके चलें। और जितना हम प्लानिंग से चलेंगे, उतना हम लोन्स की तरफ कम हमारा रुझान रहेगा, जितना लोन्स की तरफ कम रुझान रहेगा उतना हम इंटरेस्ट कम पे करेंगे, और उतनी हम मनी सेव्ड इज मनी अर्न, कभी हमने सुना है। तो जितना हम सेविंग्स और जितना हम अपने से सक्षम होके चलेंगे, उतना हमारा आगे आने वाला वक्त सही तरीके से गुजरेगा। सो दिस वाज सम टिप्स, सम सेशन ऑन दैट। कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, वी कैन टेक दैट आल्सो।
1: मैम, इट वॉज सच अ वंडरफुल सेशन मैम, एंड मोस्ट नीडेड ऑफ द आवर मैम. वी कैन रियली, एज यू सजेस्टेड, वील रियली टेक इट टू द बेनिफिशरीज ऑल्सो.
0: यस, क्योंकि मैम सभी लोग काम इसीलिए करते हैं कि अपना फ्यूचर ब्राइट करके चल सके, खुद का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, अपनी फैमिली का, कोई इमरजेंसी हो तो। हमेशा पैसे को लेके हर किसी का चैलेंज ही रहता है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, हमेशा चैलेंज ही रहता है। सो दिस इज वन थिंग जिसमें हम कितनी ही बात कर लें, वो बात कम ही, मतलब उसमें कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन हम जितना आपस में शेयर कर सकते हैं तरीके, उससे हमें कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी मिलेंगी शायद कि हम बेटर फंड मैनेज कर सकें अपने खुद के, अपने परिवार के। एंड दिस शुड बी अ हैबिट, मोर मोर ऑफ अ हैबिट टू मैनेज, टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज आवर नीड्स, बिकॉज आजकल काफी इम्पल्स परचेजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, स्पेशली यूथ यूथ को लेके ये कंसर्न है काफी पेरेंट्स का। जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका भी ये कंसर्न रहता है, हमारा खुद का ये कंसर्न रहता है कि आगे जो बच्चे हैं वो बहुत मनी की जो रियल वैल्यू है उसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर काफी डिबेट चलता है। तो दिस इज अ बिहेवियर चेंज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मनी फॉर अस, फॉर एज ए इंडिविजुअल। थैंक यू मैम, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अभी कोई और बोलना चाह रहा है? एनीबडी वॉन्ट्स टू एड प्लीज डू दैट।
1: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून अर्चना जी।
1: जी मैम, मैम अभी आपने बात करी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे सेंटर पे मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें से 3 बच्चे बहुत ही अच्छी तरह, उसमें उनको पहले से भी आता था कुछ, और फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली तो उनको बहुत अच्छे से आ गया. तो तो अभी तो जो बात हुई कि घर में हम किस तरह से मैनेज करते हैं, सबका अपना अपना नीड है, बेसिक नीड के अलावा भी बहुत सारे नीड होते हैं, फिर बहुत सारे वे हैं जहाँ पे वो सेविंग कर सकते हैं, करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत अच्छा है लगा, और ये सुन के कि हमारे पास नए आइडियाज भी आए। और मैम वो आपने अभी बात करी थी, तो हम मेट्रो सिटी का तो नहीं पता, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें मैं उनकी बात बता रही हूँ, फिर मैं अपनी बेनिफिशरीज की बात बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया है। तो मैम मेरी सोसाइटी में मैंने आपने भी बात जो की हुई थी उससे ही है कि पहले के जो हमारे पहले के जनरेशन के थे, पिछले जनरेशन के, वो अपनी सारी नीड को किल करके, मतलब जो बहुत जरूरी है, सर्वाइव करना, खाना पीना, ये सब, यहाँ तक कि मैंने देखा वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, अपने सारे नीड को किल करके और पैसे जमा करते थे।
0: बिल्कुल
1: फिर जो हमारा जनरेशन है उन्होंने देखा क्या, अरे वो तो सारे कुछ भी नहीं करते थे और फिर ऐसे ही चले गए दुनिया से। नहीं, हम लोग को ना अपना भी करना चाहिए और सेविंग भी करना चाहिए, यानी हम खाएंगे पियेंगे अच्छे से रहेंगे और थोड़ा सा सेविंग भी करेंगे। तो
0: बिल्कुल
1: हमें लगता है अभी का जो जनरेशन है ये दोनों चीज और इंजॉय भी कर रहे हैं ठीक ठाक। मैं मैम मिडिल क्लास, और मतलब मैं जो कम्युनिटी में रहती हूँ उसकी बात कर रही हूँ, और दूसरे जगह मुझे उतना नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं से मैथ्स तो करता ही होगा, तो उसने करी। अब जो हमारा अगला जनरेशन आने वाला है उनको तो मनी वैल्यू पता ही नहीं है, वो जो भी अर्न करेंगे वो सारा का सारा खर्च करेंगे जैसे दिख रहा है। तो मैम मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को और जो भी हमारे आसपास जुड़े हैं उनको ये सिखाना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है, मनी वैल्यू। इसके लिए तो हमको घर से लेकर के और जहां भी हम काम करते हैं वहां तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैम, मतलब ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी चीज के लिए एक बार मन किया खरीद लिए, तो हमको जो खुद
0: बिल्कुल
1: वैल्यू नहीं है तो वो बच्चे क्या सीखेंगे। वो तो मेरी मेरी सिंगल चाइल्ड है तो वो तो यही समझेंगे ना, मम्मी को जब जरूरत होता है तब खरीद लेती है, तो मेरे भी पास ही आ जाएगा क्योंकि पैसा इसके पास है तभी तो आ रहा है। जब हम अपने
0: बिल्कुल
1: ऊपर नहीं कमांड करेंगे तो बच्चे तो यही सीखेंगे कि अच्छा मम्मी ने 20,000 का फोन लिया, ठीक है मैं भी जब कभी बोलूंगी मुझे तो 10,000 का आ जाएगा। तो मैं बच्चों के लिए भी ये करती हूँ कि मैं अपने मेरी सिंगल चार्जर में फिर भी देर करती हूँ थोड़ा सा कि देखो अच्छा ठीक है आ रहा है, आ जाएगा 1-2 महीने में आ जाएगा या 15 दिन में, बहुत ज्यादा नीड है, एजुकेशन से जुड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इंजॉय करने की चीज है तो आ जाएगा। तो ये हुई, तो मैम सबके अलग अपने अपने वो नीड है और अपने अपने तरीके हैं, तो सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं करती हूँ वो करते हैं एक ही पर्टिकुलर, सभी आजकल करते हैं सेविंग, जो अपना स्टेज वो पार कर चुके हैं 25 वाला, क्योंकि 25 तक तो सब। हाँ हाँ जी मैम, तो मैंने बेनिफिशरीज को मैम देखा वो मैं कर रही हूँ, और मैं सभी से आपसे भी मैम गुजारिश करती हूँ कि यदि कोई बहुत अच्छा टिप हो तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो बेनिफिशरीज ने तो हमारे यहाँ क्या हुआ, मैंने वो एसटीएस से शेयर किया हुआ था, जो हम 4 जन जिसमें से 3 बच्चे बेनिफिशरीज और एक मैं हूँ, 4 का ग्रुप बनाई और फिर हमने प्लान किया और हमने अपना पार्लर खोल लिया।
0: अरे वाह,
1: हाँ हाँ मैम, तो पार्लर में खोल लिया। अब इसका ये आया कि भाई सेटअप तो मेरे पास पहले से जो सेंटर का ये दिया हुआ है, तो सेटअप सारा मेरे पास पहले से था, उसमें कुछ प्रोडक्ट लाने थे और जैसे बोर्ड बनाना, कुछ बेसिक जो होता है थ्रेडिंग वगैरह के लिए, फेशियल के लिए, वो सारे प्रोडक्ट लाने थे, और फिर थोड़ा सा वो एडवर्टाइज के लिए कुछ पैसे खर्च करने थे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि घर से यदि लाओगी तो बेनिफिशरीज के तो गार्जियन पूछेंगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये वो सब कुछ तो है, हमारे यहाँ रूम है, इलेक्ट्रिसिटी है और बच्चे भी आ रहे हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, कुछ पैसे हम लोग अपने में जितना भी सेविंग है 500 या 1,000, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट की हूँ मैम, तो हम लोग ले आते हैं। इसके बाद हमारा जो पैसा आएगा तो उसमें से एक बेनिफिशियरी जो ग्रेजुएट है वो बोली कि हमारे पास जो कमाई के कुछ पैसे आएंगे, जैसे कि अभी दिवाली छठ चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही हमारे पार्लर में, क्योंकि अभी उतना ज्यादा मैम प्रचार नहीं हुआ है, बहुत कम लोगों तक तो पहुंचा है कि पार्लर खुल गया है। तो उस पैसे से हम और प्रोडक्ट जो भी मतलब जरूरी है थोड़ा बड़ा करेंगे उसको, फिर हम पैसे शुरू करेंगे अपने पास रखना। तो मुझे आइडिया ये अच्छा लगा मैम, और इस छठ में मुझे लगता है उन लोगों ने 500 कुछ अर्न किया है और उससे वो सामान ही लाई है, कभी फेसियल का कुछ, तो मैनिक्योर का, पेडिक्योर का कुछ प्रोडक्ट सभी। तो मुझे लगा कि वो ग्रेजुएट बच्ची है, गांव की है, लेकिन फिर भी इतना मतलब कि सोच रही है, तो मुझे अच्छा लगा कि आजकल के बच्चे भी थोड़ा सा ये ध्यान दे रहे हैं कि मुझे अभी उसमें से खर्च नहीं करना है, अभी मुझे अपना वो पार्लर सेट करना है।
0: वेरी नाइस अर्चना जी, थैंक यू सो मच. एग्जैक्टली जो मैंने कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि मैं जो बोल रही हूँ शायद मैं सही से नहीं समझा पा रही, लेकिन आपकी इनपुट से मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि यही बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि जनरेशन दर जनरेशन एक तो नीड्स और वांट्स बदलती जा रही हैं, और जब हम खुद पे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं कभी कभी खर्चा करने के लिए, तो हम अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हैं, या अपने जो हम जो जो हमें अपना एज ए मॉडल देखते हैं, या जो हमें सोचते हैं कि ठीक है अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी फिर ऐसा ही करना है, चाहे वो बेनिफिशरीज हो गए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे आप सेंटर में अगर एक लीडर के आप सभी लीडर हैं अपने अपने सेंटर्स के, तो चाहे आप सेंटर पे एज ए लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो वेरी ब्यूटिफुली शेयर्ड एग्जाम्पल की किस तरीके से हम एक तो खुद को एज ए रिप्रेजेंटेटिव मान के हम खुद से अपनी मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करें, और दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया कि छोटे से ग्रुप ने कैसे एक फंड क्रिएट किया आपस में मिलके और एक छोटा सेंटर शुरू किया, लेकिन आइडिया है कि उसको धीरे धीरे करके उसी फंड से कैसे हम बड़ा करेंगे।
1: हाँ जी,
0: दैट इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ यू नो बजट मैनेजमेंट। घर का भी आपने बता दिया और अपने एंटरप्राइज का भी बता दिया। थैंक यू अर्चना जी।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम प्लीज सजेस्ट कीजिएगा आप इसमें कि बच्चे कर रहे हैं, इससे भी कोई अच्छा होगा कि हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं, तो मैम इसके लिए बहुत ये रहेगा।
0: ठीक है जी, ठीक है, विल टॉक सेपरेटली फॉर दैट।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू। ओके, सो आई होप दिस सेशन वॉज अ लिटिल हेल्पफुल टू समबडी। हो सकता है शायद किसी ने कुछ सीख के इससे कुछ अपने आज से या पहले से कर रहे हो तो उसको रीइंस्टेट करें और उसको अपने बिहेवियर में लेके आए। एंड आई होप यू शेयर दिस सेशन विद योर बेनिफिशरीज, स्पेशली टू द यूथ, क्योंकि जैसे अर्चना जी ने कहा जो 25 साल से ऊपर है उनको तो कहीं ना कहीं हैबिट लग गई है, लेकिन ये हैबिट हमें शुरू से ही अपने, मैं सेविंग्स की बात नहीं कर रही, मैं आइडेंटिफिकेशन और उसमें फर्क की बात कर रही हूँ कि हमारी जरूरतें क्या हैं और हमारी इच्छाएं क्या हैं। इन दोनों चीजों में, जरूरतों में और इच्छाओं में फर्क करना बहुत जरूरी है, और अपने लेवल को पहचानते हुए, लेवल एज इन अपने सिचुएशन को एज ए स्टूडेंट, अपने सिचुएशन एज अ होम मेकर या एज अ एंटरप्रेन्योर या फार्मिंग को लेके जो हमारी जरूरत है उसको पहचानते हुए अपने बजट्स को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर हमने आज बात करी है। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इट एट शॉर्ट नोटिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल। बाय बाय। थैंक यू।
1: वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैम।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।

0: मृदंगम ही उनकी धड़कन है। श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति संगीत ममूर्ति की जन्मस्थली।
1: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं, और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
0: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
1: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
0: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
1: जब मैं मद्रास आया तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
0: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. वसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्त वत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्त वत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो।
1: संगीत मेरी सांस है, मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा।
0: श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: एज ए पार्ट ऑफ द करियर काउंसलिंग में आज के सेशन में हम टीचिंग जॉब से रिलेटेड अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, तो आज हम सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ टीचिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, क्या चीजें आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको एक यू कैन बिकम ए गुड टीचर, तो ये सारे इश्यूज पे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी तक पिछले सेशंस में हमने सिविल सर्विसेज के बारे में, फिर हमने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में किया था डिस्कस, तो आज का जो सारा सेशन है वो टीचिंग जॉब से रिलेटेड है। फिर लास्ट में आपकी जो क्वेरीज होंगी डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, वो भी हम इस सेशन में सारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, देखिए टीचिंग जो है ना वो एक नोबल प्रोफेशन, और ऐसा नहीं कि मतलब आप को अगर अच्छा टीचर बनना है तो अच्छा टीचर आप किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास के लिए बन सकते हैं। चाहिए क्या कि आपके अंदर हो, जोश हो पढ़ाने का, यू मस्ट हैव पैशन फॉर द टीचिंग, टैलेंट, नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो ये अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और विद द पैसेज ऑफ की आप एक बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। तो हमारा जो मेजर पॉइंट है कि जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। सीटेट है, एसटेट है, रीट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, डीएसएसबी, केवीएस, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्मी स्कूल्स, तो मतलब इस तरह की सारी टर्म्स जो है वो जब भी कोई पर्सन एक गवर्नमेंट टीचिंग के टुवार्ड्स प्लानिंग करता है तो इस सारी चीजों के बारे में उसे पता होना चाहिए। उससे क्या रहता है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप उसी तरीके से अपने करियर को शेप अप कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में जाने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशंस भी हैं, कुछ आपको टेस्ट भी क्वालिफाई करने रहते हैं, तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप यू कैन प्लान अर्ली, जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतना ही फिर आप एक अपने राइट ट्रैक पे जा सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको मैं इन सब टर्म्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, किस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये सारा आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज क्या है बेटे कि हाँ अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो जस्ट एक मैंने एक वो दिया है, परव्यू दिया है, अभी हम आगे एक एक फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जब आप टीचर की बात करते हैं तो ये कुछ जनरल सी वैकेंसीज होती है हमारे पास में, या तो आप प्राइवेट टीचर बन सकते हैं, उसके लिए तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस हो आपकी, आपने बीएड किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको गवर्नमेंट में टीचर बनना है तो उसमें ये अलग अलग आपके लेवल्स होते हैं। सबसे जो एलिमेंट्री लेवल होता है वो प्राइमरी लेवल होता है, प्राइमरी टीचर जिसे हम कहते हैं, फिर आपके 9 से 12 स्टैंडर्ड तक के टीचर होते हैं। ठीक है, कॉलेज कैडर में भी टीचर रहते हैं, फिर आपके डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सारी वैकेंसीज आती है, तो ये एक स्किल होता है। तो मतलब स्टार्टिंग से प्राइमरी टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का, और इसमें एंट्री के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। तो आज अब हम समझेंगे कि करके कि सबसे एलिमेंट्री पर क्या क्वालिफिकेशन होती है और कैसे आप टीचर बनते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूंगा यहाँ पर सी टेट और एस टेट के बारे में, जो स्कूल लेवल टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं हमारे। जो सीटेट होता है इसमें आपके क्लास वन से लेकर एट क्लास तक के टीचर आप बनते हैं, और उसके बाद में जो पीजीटी की वैकेंसीज होती है वो स्टेट वाइज आती है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये क्लियर हो कि प्राइमरी टीचर होता है फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के जो क्लासेज है उनको जो टीचर टीच करता है उसे हम प्राइमरी स्कूल टीचर भी कहते हैं, पीआरटी भी कह देते हैं, एलिमेंट्री टीचर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है सिक्स क्लास से लेकर एट क्लास तक, तो सिक्स क्लास से लेकर एट क्लास तक जो टीचर होते हैं वो टीजीटी टीचर उन्हें बोला जाता है, और ऐसे ही जो नाइन से लेकर ट्वेल्व तक होते हैं उन्हें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह देते हैं। तो नाइन से ट्वेल्व तक आपके पीजीटी टीचर्स कहा जाता है, सिक्स टू एट में टीजीटी, और क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक प्राइमरी टीचर होते हैं। अब इनके लिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे आज अभी हम डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में। क्लास वन से लेकर क्लास एट तक अगर आपको टीचर बनना है, मतलब प्राइमरी टीचर बनना है या टीजीटी टीचर अगर आपने बनना है, तो उसके लिए आपके लिए सीटेट क्वालिफाई करना मस्ट है। मतलब दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, कहीं भी जहां भी वैकेंसीज निकलती है या आपकी केवीएस में निकलती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर या आर्मी स्कूल्स के अंदर, जवाहर नवोदय के अंदर, जहां भी वैकेंसीज निकलती है, तो सीटेट आपके लिए एक असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। अब हम सबसे पहले ये समझें कि सीटेट की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सीटेट जो है वो साल में दो बार कंडक्ट होता है। अभी इस साल कोविड 19 के कारण अभी एग्जाम अभी था सितंबर के मंथ में, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। बट जनरली सीटेट का जो एग्जामिनेशन है साल में दो बार आपका होता है, ठीक है, और क्लास वन से लेकर क्लास एट तक के लिए, तो मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, उसके साथ साथ टीजीटी टीचर के लिए, दोनों के लिए सीटेट का एग्जाम होता है। इसमें दो पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट इज पेपर वन, सेकेंड इज पेपर टू। पेपर वन जो आपका होता है वो होता है क्लास वन से फाइव के लिए, और पेपर टू होता है सिक्स टू एट के लिए। इसका मतलब अगर आप क्लास वन से लेकर क्लास एट तक कोई भी क्लास के लिए टीच करना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे पेपर वन और मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्या है, पेपर वन और पेपर टू अपीयर करते हैं। दोनों की क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं। जैसे आपको क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो ट्वेल्थ में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास में कैंडिडेट शुड क्लियर ग्रेजुएशन विद 45% और ट्वेल्थ विद 50%। सीटेट के लिए जैसे एक तो जो आपका एलिमेंट्री टीचर्स के लिए है तो ट्वेल्थ में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। जेबीटी या आपने एनटीटी का कोई भी ट्रेनिंग किया हुआ है वो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जामिनेशन होता है, जैसे पेपर वन जो है, पेपर वन मतलब एलिमेंट्री क्लासेस के लिए क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए, तो इसमें आपका ये 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज वन एंड टू, ये दो लैंग्वेजेस में आपको देना है, मतलब टू लैंग्वेजेस आपकी होती है, जनरली हम इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये मतलब फाइव सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। 30-30 मार्क्स के फाइव सब्जेक्ट आते हैं, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है जो पेपर वन होता है, जिसके थ्रू अगर आप पेपर वन क्वालिफाई करते हैं तो एलिमेंट्री टीचर जिसको हम क्लास वन से क्लास फाइव तक की जो टीचिंग है वो आप हर गवर्नमेंट जॉब में एंटाइटल हो जाते हैं। आप देखते हैं कई बार दिल्ली में काफी वैकेंसीज आती है जब भी आती है, या आजकल तो अगर एज ए गेस्ट टीचर भी लगाना है वहां भी आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो फाइल करने के लिए आपको पहले पेपर वन जो देना है वो आपका ये रहता है 1-5 के लिए, और सिमिलरली पेपर टू होता है, पेपर टू स्कीम है, उसमें क्या है कि बाकी सब चीजें सेम है, जैसे आपके फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सेम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज भी आपको टू लैंग्वेजेस आपको लेनी होती है, इंग्लिश और हिंदी, उसके साथ साथ फिर आपको या तो मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है या आपका सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब आप जैसे मैथ्स के टीचर रहेंगे या साइंस के टीचर रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना रहता है और 60 मार्क्स का आपका पेपर रहता है वो, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो एक तरह से अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि सीटेट आपने क्वालिफाई करना है। और अब मैं आपको बताऊं भी कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो इतने डेप्थ नहीं होते, मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है या इसके साथ साथ आप जो मैथमेटिक्स साइंस या एसएस पढ़ते हैं तो वो 8th स्टैंडर्ड तक का आपको क्लियर होना चाहिए। और उसमें भी बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को अपना फॉलो करिए और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक का एनसीईआरटी अपने मैथमेटिक्स का साइंस का और एसएस का आप उसको स्टडी करिए। उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप बीएड के लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स आती हैं तो कोई एक अच्छी सी बुक आप परचेज कर सकते हैं। या मार्केट में भी एक नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल जिसमें अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की पेडागोजी की, तो आप उन बुक्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं सीटेट के, क्योंकि हर साल में 2 बार होता है और पेपर पेंसिल बेस्ड होता है तो उसके पेपर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे एक वहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका सीटेट के बारे में है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट के अंदर। हाँ, आप चाइल्ड देखिए उसमें क्या है कि अरिहंत पब्लिकेशन बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, ठीक है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रतियोगिता किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है या बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बुक्स होती है। अगर आप मतलब अगर आपने जेबीटी किया है बीएड आपने किया है तो बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स होती है, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जनरली सीटेट में देखा गया है कि बहुत ही इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है, ये जो ध्रोवर की बुक है प्रतियोगिता ध्रोवर है, ये एक तरह का पब्लिकेशन है, तो इनकी भी अच्छी बुक्स है, ठीक है। बट उसमें वही सेम चीज है जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया कि पहले एक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करिए, एक बुक को जब आप देखते हैं उसके बाद फिर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन है और जो बुक आप पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं क्या उस बुक में उस लेवल के क्वेश्चंस कवर्ड है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है। मैं आपको बीएड की जो बुक्स आती है उसमें नेम ऑथर आपको मैं कंफर्म करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं सीडीपी की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सीटेट के एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता आपका, तो आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना सीटेट का प्रिपरेशन करिए। हाँ, ये एक चीज मैं फिर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि साल में 2 बार होता है और सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, तो आप अगर 5-7 पेपर्स उनको अटेम्प्ट करेंगे देखेंगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो सारे स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब उसमें कोई चेंज होने का नहीं है, कोई आपका जो करंट का क्वेश्चन तो आता नहीं उसमें, तो सारे हैं जो आपके फिक्स ही हैं। तो पिछले कुछ सालों के पेपर जब आप चेक करते हैं तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है और फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है आपके लिए, अगर आपको प्राइमरी या टीजीटी टीचर में जाना है तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट के एग्जाम की मतलब दे ऑल्सो आस्क फॉर क्वालिफिकेशन इन सीटेट, तो मतलब ये आपको पहला स्टेप आता है। अभी आता हूं बेटा एनटीटी के बारे में भी आता हूं। अब इसके बाद सेकंड होता है हमारा जेबीटी, मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारे जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जेबीटी कह लीजिए या आपका एनटीटी का प्रोग्राम होता है 2 ईयर का, या इसके अलावा आपका डीएलईडी होता है, ठीक है, जो बेसिकली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या रहता है कि ट्वेल्थ के बाद आप जेबीटी कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री जो टीचर है, जो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर के लिए या तो आपने जेबीटी किया हो, जिसको हम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग है ये ट्वेल्थ के बाद होती है, ये एक तरह का डिप्लोमा होता है 2 इयर्स का, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। इसमें स्टेट वाइज कॉलेजेस है, बाकी फॉर्म्स निकलते हैं जब आप ट्वेल्थ के एग्जाम देते हैं उसके बाद में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ट्वेल्थ में 45% की है, राइट। ये एक तरह से जो डीएलडी होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इक्वल होता है, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। ऐसी एंटिटी का आपका होता है, उसमें भी आपको 2 ईयर का डिप्लोमा रहता है एंटिटी का, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको जहां से भी आप ये जेबीटी करें, चाहे आप अपना डीएलडी करें, चाहे आप एंटिटी करें, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कई बार मार्केट में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वो फिर बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो आज से 4-5 साल पहले, व्हाट हैपेंड, आज से 4-5 साल पहले जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ था, ठीक है। तो जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ तो बहुत लोगों ने जम्मू से जेबीटी किया, ठीक है, और बाद में फिर पता चला कि वो तो आपका वैलिड नहीं है। तो ये इस तरह से कई बार प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जिसमें हम ऐसा अपना कोर्स डिप्लोमा कर लेते हैं और जो बाद में वैलिड नहीं होता, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है इसमें कि आप जहां से भी करिए वो आपका वैलिड होना चाहिए। तो जेबीटी है, चाहे आपका एंटिटी है, ये आपको एक टाइप से मतलब एक टाइप से एलिमेंट्री जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये मस्ट होती है ये क्वालिफिकेशंस। आप अब इसमें स्टैंडर्ड मतलब क्या पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसे है, देखिए कैसे वैकेंसीज आती हैं और कैसे आप उनमें अप्लाई करते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट का अपना पैटर्न है, जैसे मैं पहले हरियाणा की आपको बताऊं, हरियाणा में क्या है कि एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है। वैसे तो जो सी टेट है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है, बट हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में एज ए टीचर लगाने के लिए एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो जो टीईटी का मतलब यही होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब हरियाणा में क्या है कि 3 स्टेजेस में वैकेंसीज आती है, मतलब उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज आती है, आपके टीजीटी की वैकेंसी आती है जिसको हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और ऐसे ही आपकी पीजीटी की वैकेंसी आती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए हैं, जो टीजीटी टीचर होते हैं वो क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 8 से अबो। अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग है, जैसे जो पीजीटी आपकी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है उसमें आपकी 12th होनी चाहिए, और 12th के साथ साथ आपने जेबीटी किया हो, एंटिटी का कोर्स किया हो, या आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, ठीक है, तो उसमें आप प्राइमरी टीचर के लिए एंटाइटल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जाना है, जिसको हम टीजीटी कहते हैं, तो टीजीटी के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ बीएड करनी है। अब देखिए बीएड क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिएगा, अगर आपको प्राइमरी टीचर से ऊपर किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो टीजीटी है और चाहे वो पीजीटी है, तो दोनों के लिए बीएड होना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या होता है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है कि प्राइमरी टीचर के लिए तो 12th इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ में आपने जेबीटी एनटीटी कुछ भी किया हो। अगर आपने टीजीटी टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी है, और उसके बाद अगर आपने पीजीटी के लिए जाना है तो मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एचटेट की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए जनरली बच्चों को टीचिंग के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि बेटे आप पहले आप अपनी ग्रेजुएशन करिए सबसे पहले, तो क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन होने के बाद आप बीएड करो, ठीक है। नहीं, इसमें केवल आर्ट से या साइंस नहीं, इसमें आप बेटे किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी टीचर है वो तो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, आपके पास चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आपके पास में कॉमर्स है चाहे आर्ट्स है, आपने उसके बाद में जीबीटी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप टीजीटी के लिए जाते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, वो भी आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, उसके बाद आपको बीएड करना होता है। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जाते हैं फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में भी एज ए मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके साथ साथ मास्टर्स में भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका जो एस्टेट क्वालिफाइड है वो भी मैथमेटिक्स में ही क्वालिफाइड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ज्यादा रहती है, अदरवाइज हम जो टीजीटी है या जो आपके प्राइमरी टीचर्स है उसमें कॉमन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब इन सब का अलग अलग एग्जाम है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप बाकी सबके लिए भी एग्जाम अपियर कर सकते हैं। हरियाणा में जो एस्टेट 2020 की जो एज आई है 18 से लेकर 38 ईयर्स तक है, बट कुछ कैटेगरीज में एज का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न रहता है, एक बार मैं एस्टेट का आपको पैटर्न बताऊं। एस्टेट का तीनों लेवल के जो पेपर होते हैं, पेपर वन है चाहे पेपर टू है चाहे पेपर थ्री है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 2.5 आवर के अंदर आपने करने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और तीन अलग अलग पेपर हैं, अगर आपको प्राइमरी का देना है तो आप पेपर वन देंगे, ऐसे ही अगर आपको टीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर टू देंगे, और अगर आपको पीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर थ्री देंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही सेक्शनल कट ऑफ होता है। जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम, जो सब्जेक्ट का पैटर्न है कि हरियाणा में अब पीछे इन्होंने सब्जेक्ट्स में चेंज किया था, जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो सीटेट में है उसमें ये चीज नहीं आती, आपने देखा होगा अभी मैंने पीछे आपको सीटेट का पैटर्न बताया जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी, वहां दो लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अब हरियाणा में क्या पैटर्न है, आपका मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस, तो 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक तरह के बहुत ही जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में सभी टॉपिक से आपके जो कवर हो जाते हैं जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक आते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ऐसे जो मैथमेटिक्स होता है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जैसे एक जनरल आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें अब बेसिक अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का, फिर हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, फिर आपका मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का, और एनवायरमेंटल स्टडी जिसको हम ईवीएस कह देते हैं। तो ये हमारा पेपर वन है एलिमेंट्री टीचर के लिए हरियाणा के अंदर। इसके साथ साथ आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर टू अपियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर टू किस टाइप का है, क्या पैटर्न है पेपर टू के अंदर, तो इसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स के हैं, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी इंग्लिश यहाँ तक कॉमन है, फिर आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एसएस, साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर आप वैकेंसीज जो निकलती हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिर आपको जिस सब्जेक्ट में आपने जैसे आपको साइंस में जाना है या अगर आपको मैथमेटिक्स में जाना है तो उसी सब्जेक्ट का पेपर आप उसमें अपियर करते हैं, ठीक है। तो एस्टेट का जो पेपर जनरली होता है, आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो 5 ईयर तक वैलिड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आपको देना है, ऐसे ही आपका सीटेट का पेपर है कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो कुछ सालों तक वो पेपर आपका चलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। अब हरियाणा में वैकेंसीज का पैटर्न कैसे होता है कि पहले तो आपका एस्टेट का पेपर होता है, एस्टेट का पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, फिर अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, फिर वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनकी फिर फाइनल जाके ज्वाइनिंग होती है। हाँ ये हरियाणा में जो 5 साल का ना बेटे एस्टेट जो है, ये अभी शायद कुछ चेंज करने की इसमें बात चल रही है 7 साल के लिए, क्योंकि पीछे जो एस्टेट सीटेट एस्टेट हुआ था उसके बाद में फिर वो तब उसके बाद की वैकेंसी नहीं आई बहुत सालों से, तो ये कुछ उसमें चल रहा है अभी इसको 7 साल के लिए कर दें, तो ये पीछे दैट वाज इनटू द न्यूज आल्सो। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे राजस्थान है वहां पे रीट का पेपर होता है, जैसे हरियाणा में आपका एस्टेट का पेपर है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर रीट का पेपर होता है, तो वो भी बेसिकली इसीलिए है। जैसे आपकी वैकेंसी अभी जैसे पीछे इट वाज इनटू द न्यूज कि रीट 2020 में अराउंड, हाँ यूपी का भी होता है बेटे, यूपी का टेट होता है, तो उसमें हर स्टेट अपना पेपर कंडक्ट कराता है, बट मोर और लेस जो इनके सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सभी स्टेट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एज ए सब्जेक्ट आता है, सभी स्टेट्स में आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज है, उसके साथ साथ फिर आपका सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स एज ए ऑप्शनल, जैसे भी आपने जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे रिसेंट में राजस्थान में रीट 2020 का, हाँ मतलब अप्लाई आप कर सकते हो बेटे, क्या होता है ना देखिए, क्या जैसे हरियाणा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई यूपी का बच्चा उसे एस्टेट देना तो वो यहाँ भी अपीयर कर सकता है, क्योंकि जो टीचिंग जॉब में कोई ये तो फिक्स नहीं होता कि हरियाणा का ही होना चाहिए, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह के उनके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब वैकेंसी से पहले आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ये टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, इसमें बेटे जो आपका जीके का पैटर्न होता है, बस वही थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें जैसे हरियाणा में क्या है कि आपका अभी पहले उसमें जीके का सेक्शन नहीं आया करता था, तो लास्ट ईयर से उसमें जैसे 30 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के, 10 मार्क्स रीजनिंग के और 10 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के उसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो जो 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं उसमें फिर वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही और स्टेट्स में भी ऐसा ही होता है कि जैसे आप हम रीट की बात करें तो रीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है, जैसे उसमें भी रीट में भी 2 लेवल के पेपर्स रहते हैं, लेवल 1 है और लेवल 2 है। तो लेवल 1 जो है वो आपका एलिमेंट्री टीचर के लिए है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज रहता है। नहीं एक्चुअली देखिए क्या है बेटे कि प्राइमली ये जो टीचिंग के टेस्ट है ना, देखो ज्यादातर मैं आपको वैसे पर्सनल ओपिनियन दूं, इसमें हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में टीचर्स की जो सैलरीज है, ठीक है, या अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट टीचर्स की जो वैकेंसीज है वो कंपैरेटिवली अदर स्टेट के मुकाबले में ज्यादा आती है। महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसीज काफी कम आती है क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादा टीचर लगाए जाते हैं, तो वो अपना इस तरह का उनका भी एग्जाम होता है, वैसे होता है, मतलब वो भी अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, या कई बार क्या करते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है उसी के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है